और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह व सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की, और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रूए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरो अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकिरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि उसके पास कैदी हों, जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह के पेश नजर आखिरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का नविश्ता पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी पादाश में तुमको बड़ी सजा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है।

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। वजन ज्यादा होना एक पूरा एक इशू बनता जा रहा है, ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया में है, मगर ये कि उसे काबू कैसे रखा जाए और इसके लिए कुछ बहुत ही सादा से उसूल हैं वो हमें अपनाना होंगे। और लिसनर्स के आपको लगता है कि वजन बढ़ाना आसान है और कम करना बहुत मुश्किल है। एक साहब अपने ऑफिस के काम की वजह से रोजाना बाहर का खाना खाते थे, वजन तेजी से बढ़ता चला गया, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 3 आदतें अपनाई यानी कि मॉर्निंग वॉक, शाम को चाय के साथ बिस्किट छोड़ दिए और पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिया, तो उनका वजन खुद ब खुद कम होना शुरू हो गया। उसका मतलब

0: ये है कि बस ज्यादा होने की जो बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे ज्यादा कैलोरीज लेना और एक्टिविटी कम करना यानी कम सरगर्मी करना, और इसी तरह नींद की कमी है, और नींद की क्वालिटी ऑफ आपकी जो स्लीप है वो अगर खराब है तो उससे हार्मोन्स जो हैं वो खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह जो मीठे मशरूबात हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो भी हमारे वजन को ज्यादा करती हैं, और जो डिप्रेशन है या ज़हनी दबाव है वो इस तरह बाज़ लोगों को इफ़ेक्ट करता है कि वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे वज़न को काबू रख करने के लिए बहुत ही सादा सा फार्मूला है कि आप खाएं इतना जितना आप खर्च करें, यानी दिन भर की कैलोरीज जो है वो आप काउंट कीजिए और देखिए कि आप ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहे। एक रिसर्च के मुताबिक दिन में 30 मिनट तेज कदमों की वॉक है, यानी फास्ट वॉक है, वो वज़न को कम करने और हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। तो सुबह का नाश्ता आप लाजमी कर लीजिए, प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी और सैलेड से भर लीजिए। खाने के बाद फौरन बैठने के बजाय 5 से 10 मिनट आप हल्की वॉक कीजिए, और ये कि पानी पीकर फिर खाना खाइए ताकि जो भूख है वो काबू में रहे। मोबाइल या टीवी देखते हुए खाने से दूर रहिए। समय से सोचिए कि कल आपने कितनी बार कोल्ड ड्रिंक्स ली। अभी एक वादा कीजिए कि एक हफ्ते के लिए सिर्फ पानी या लस्सी को तरजीह दीजिए। अपनी जो कमर का साइज है उसे चेक कीजिए, ये सेहत का असल पैमाना है, वजन से भी ज्यादा। वजन बढ़ने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ साथ चलती हैं, लेकिन एक छोटी सी जो आदत है या छोटी छोटी जो आदत है बड़ी तब्दीलियां लाती हैं। वजन कम करने के लिए भूखा रहना नहीं, सही खाना और ज्यादा चलना ही असल राज है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक छोटा सा ऊंट का बच्चा अपनी माँ के साथ एक जू में रहा करता था। वो जू में काफी खुश थे, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था जो वो अपनी माँ से अक्सर पूछा करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, हर दिन वो अपनी माँ के साथ मजीद एक्सप्लोर कर रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से एक इंतहाई जरूरी बात पूछी। मेरी प्यारी अम्मी जान, उसने प्यार से कहा, हमारी बॉडी में ये जो हम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, और हमारे पांव इतने गोल क्यों होते हैं, और हमारी गर्दन ये इतनी लंबी क्यों है। माँ ने अपने बच्चे की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे सवालात बिल्कुल जायज हैं। तुम्हारे ये जो हम्स हैं वो पानी स्टोर करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे डेजर्ट में चलने का तरीका दूसरे जानवरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हमारे पांव गोल होते हैं ताकि हम रेत पर आसानी से चल सकें, और हमारी लंबी चौड़ी गर्दन इसलिए होती है ताकि हम अपनी आँखों को रेत और सूरज की रोशनी से बचा सकें, और हमारी लंबी गर्दन की वजह से हमारी नजर बहुत दूर तक जाती है और यही हमारी नजर की हिफाजत भी करती है। बच्चा अपनी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ से फिर एक और दफा सवाल किया, अम्मी जी अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज हैं जो डेजर्ट में हमारी मदद करती हैं, तो हम जू में क्यों हैं? यहाँ तो कोई डेजर्ट नहीं है, हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग है। माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने अपनी बच्चे की आंखों में देखा और बोली, बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी क्वालिटीज और ताकत हमें डेजर्ट में काफी मदद करती हैं। हमारे हम्स जो कि पानी को स्टोर करते हैं, हमारे पांव हैं जो हमें रेत पे चलने में मदद करते हैं, और हमारी लंबी गर्दन जो हमारी आंखों की हिफाजत करती है, और इन्हीं सब क्वालिटीज के साथ अगर हम जू में रहते हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बच्चा थोड़ा सा परेशान हुआ और कहने लगा, तो क्या हमारी क्वालिटीज हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं अम्मी? माँ ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा, देखो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी क्वालिटीज बेकार हैं। तुम्हारी क्वालिटीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। बात समझने की कोशिश करो कि अगर हम गलत जगह पर रहते हैं तो हमारी किसी भी क्वालिटी का कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारी ताकत, हमारी खूबसूरती और हमारी खास क्वालिटीज सिर्फ डेजर्ट में ही हमारे लिए काम आ सकती हैं। अगर हम अपने असली मकसद के लिए सही जगह पर हों तो हम अपनी जिंदगी का असली मजा ले सकते हैं। बच्चे को अपनी माँ की बात समझ में आ गई। अब उसके दिमाग में ये सवाल था कि अगर हम अपनी क्वालिटीज को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। माँ ने अपने बच्चे को और भी समझाया, देखो बेटा जिंदगी में हमेशा अपने असली मकसद और अपनी ताकत को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने आप को सही जगह पर रखें तो हम अपनी ताकत को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी दौरान जू में दूसरे जानवर की भी आमद हुई। एक दिन जू के एक ट्रेनर ने अपनी टीम को एक नया काम दिया। अच्छा भाई चलो आज से हम ऊंट के छोटे बच्चे को जू के दूसरे जानवरों के छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए यूज करेंगे, ट्रेनर ने कहा। वो उन्हें बहुत एंटरटेन करेगा। ऊंट के बच्चे को ये बात थोड़ी अजीब लगी, मैं अपनी क्वालिटीज को खेलने में कैसे यूज कर सकता हूँ, उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें अपनी असली ताकत को समझना होगा। तुम्हारा असली काम ये है कि तुम डेजर्ट में अपनी स्किल्स को यूज करो। अगर तुम्हारे पास क्वालिटीज हैं लेकिन तुम गलत जगह पर हो तो तुम उसका असली फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकते। बच्चे को समझ आ गया कि अगर वो अपनी असली ताकत को सही जगह यूज करेगा तो अपने असली मकसद को पूरा कर सकेगा। जू में रहना उसके लिए बिल्कुल गलत हो गया था, जहां वो अपनी असली ताकत को यूज नहीं कर पा रहा था। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे अब समझ आ गया है कि अगर हम अपनी ताकत को गलत जगह पर यूज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे हमारे पास ये हम्प है जो पानी स्टोर करता है वो डेजर्ट में काफी मददगार होता है हमारे पांव की शेप जो डेजर्ट में चलने के लिए हमारे बहुत काम आती है लेकिन अगर हम जू में हैं तो ये सब हमारे लिए बेकार है माँ ने अपने बच्चे की बात सुनकर उसे प्यार से कहा बेटा तुम अब समझ गए हो कि हमारी असली ताकत सिर्फ उस जगह पर काम आती है जहाँ हमारी जरूरत हो तुम्हारे पास जो क्वालिटीज हैं वो तुम्हें अपनी असली दुनिया में इस्तेमाल करनी चाहिए ना कि किसी और जगह पर तो साथियों इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपनी असली ताकत और स्किल्स को समझना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी ताकत को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता अगर हम अपनी स्किल्स को सही जगह पर यूज करते हैं तो हम अपने असली मकसद को पूरा कर सकते हैं

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो लोग जिन्हें दिलचस्पी है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, उनके लिए ये सेगमेंट बड़ा खास होता है। और आज एक और नए टर्म पे मैं बात करने वाली हूँ। वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी इकोनॉमिक टर्म्स आपके साथ जो है वो शेयर की, इंट्रोड्यूस की, और शायद उसका 1-2% आपने ग्रास्प भी किया होगा। तो आज जिस टर्म पे बात करने वाली हूँ उसका नाम है कमांड इकोनॉमी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसका नाम या इस टर्म को पहले सुन रखा है। चलो, वो लोग जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने तो सुन ही रखा होगा, या फिर जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। बाकी लोगों के लिए हो सकता है ये टर्म नया हो। तो कमांड इकोनॉमी है क्या? आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि कमांड इकोनॉमी का क्या मतलब है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, काम करने का इसका तरीका क्या है और लोगों की जिंदगी पर किस तरह से ये असर करती है। तो पहले तो जानना ये जरूरी है कि कमांड इकोनॉमी है क्या। कमांड इकोनॉमी को अगर मैं बहुत ही सिंपल जबान में समझाऊं तो मैं कह सकती हूँ ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसेस का इदारा मरकजी हुकूमत के पास होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की सिफारिश या फिर रोल बहुत हद तक लिमिटेड होते हैं और ज्यादातर इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड होती हैं। तो ये तो हुई कमांड इकोनॉमी की सिचुएशन। अब इसके इस्तेमाल पे भी आ जाते हैं। दोस्तों, जब हुकूमत सोशलिज्म की बुनियाद पर रिफॉर्म्स लाती है तो कमांड इकोनॉमी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वेल्थ को बराबर तरीके से तकसीम किया जा सके। वहीं पर कुछ और भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे जंग या फिर पब्लिक इमरजेंसी। इस सिचुएशन में भी कमांड इकोनॉमी का इस्तेमाल होता है। वॉर टाइम में हुकूमत सेंट्रल कंट्रोल अपना लेती है ताकि रिसोर्सेस को जल्द हदफ के लिए भेजा जा सके। वहीं इस टर्म का इस्तेमाल जो है वो तब्दीली और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी होता है। जब किसी मुल्क को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करना हो, जैसे पहले सोवियत यूनियन के लिए किया गया था, तो प्लान इकोनॉमिक मॉडल जो है वो अपनाया जाता है। फिर कई बार छोटे या डेवलपिंग स्टेट्स के लिए भी कमांड इकोनॉमी का इस्तेमाल होता है। कुछ डेवलपिंग या फिर स्ट्रगलिंग स्टेट्स ने कमांड प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया ताकि सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हासिल किए जा सकें। अब बात करेंगे इसके काम करने के तरीके।

कि किस तरह से ये काम करती है, आई मीन हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, कमांड इकोनॉमी के काम करने का जो तरीका है वो सबसे पहले डिपेंड करता है सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी के मुताबिक। हुकूमत एक ऐसी सेंट्रल प्लानिंग बॉडी बनाती है, मिसाल के तौर पे सोवियत यूनियन का गॉस प्लान, शायद आपने पढ़ा रखा हो, जो इकोनॉमिक गोल सेट करता है। ये एजेंसी बेसिकली 5 ईयर्स प्लान या फिर मल्टी ईयर प्लान्स बनाती है, जिसमें प्रोडक्शन टारगेट्स, रॉ मटेरियल एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज मुकर्रर होती हैं। वहीं नेशनलाइजेशन भी इसके काम करने के तरीकों में से एक है। की इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, जैसे स्टील, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और एग्रीकल्चर को अक्सर नेशनलाइज कर दिया जाता है, प्राइवेट ओनरशिप कम या फिर महदूद कर दी जाती है, तो यहाँ पे भी कमांड इकोनॉमी का इस्तेमाल हुआ। वहीं पर प्रोडक्शन टारगेट्स और कोटास, जी हाँ, हर फैक्ट्री, फार्म या फिर एंटरप्राइज को प्लान की रोशनी में प्रोडक्शन कोटास दिए जाते हैं। ये कोटास जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना बनाया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा और किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो ये भी इसके काम करने का तरीका है। वहीं पर प्राइस कंट्रोल, जी हाँ, प्राइसेस को मरकज से कंट्रोल किया जाता है ताकि अफोर्डेबिलिटी बरकरार रहे और इन्फ्लेशन पर काबू हो, लेकिन प्राइसेस मार्केट डिमांड से मैच नहीं करते, जिससे शॉर्टेजेस या फिर सरप्लस पैदा हो सकता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अहम फैक्टर है। कंज्यूमर गुड्स को रेशनिंग या स्टेट स्टोर्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे हम राशन भी कहते हैं, आपने सुना हो राशन कार्ड एंड ऑल, तो वही चीज हम बता रहे हैं आपको। जरूरी जो सहूलियतें हैं हुकूमत के जरिए मुहैया कराई जाती हैं, ये सिस्टम भी कमांड इकोनॉमी के अंदर आता है। वहीं देखा जाए तो लिमिटेड मार्केट सिग्नल्स भी, जी हाँ, डिमांड और सप्लाई के नेचुरल सिग्नल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को पता नहीं चलता कि असल मार्केट प्रेफरेंसेस क्या हैं। इससे कई बार इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो कमांड इकोनॉमी का लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ता है, एंड हाउ इट इफेक्ट्स, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। वैसे अक्सर हुकूमतें सेहत, तालीम और बेसिक हाउसिंग जैसी सर्विसेज फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड देती हैं, जिससे गरीब तबके को बुनियादी सहूलतें मिल सकें। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी भी फराहम होती है। जी हाँ, कमांड इकोनॉमीज में फुल एम्प्लॉयमेंट का टारगेट रखा जाता है। लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टेट जब जॉब क्रिएट करता है तो फ्लरिश करता है। वहीं पर तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, जब रिसोर्सेज सेंट्रलाइज करके प्लान तौर पर इन्वेस्ट करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ जाता है। वहीं इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर होने से इनिशियल तौर में इनइक्वालिटी कम की जाती है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं इसके इतने सारे पॉजिटिव पहलू हैं, तो वहीं कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। तो अगर मैं इनके नेगेटिव पहलुओं पर बात करूं, तो जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है कंज्यूमर चॉइस की कमी। जी हाँ, मार्केट ओरिएंटेड वैरायटी और क्वालिटी का फर्क नजर आता है। लोग अक्सर लिमिटेड प्रोडक्ट्स या काम या फिर बहुत ही कम क्वालिटी की चीजें देखते हैं मार्केट में, बिकॉज ऑफ कमांड इकोनॉमी। वहीं पर कई बार शॉर्टेजेस भी नजर आने लगती हैं, जब प्राइसेस आर्टिफिशियली कम रखी जाती हैं, आई से आर्टिफिशियली, ओके, कम रखी जाती हैं और प्रोडक्शन सही तरह प्लान नहीं होता, तो गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है, लोग लाइन में खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ डीमोनेटाइजेशन। खैर, उसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, डीमोनेटाइजेशन पर भी कभी ना कभी बात करूंगी, लेकिन आज मेरी बात हो रही है कमांड इकोनॉमी पर, तो बस आपको इसी पर फोकस करना है। तो इसके जो मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात कर रही हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे तो हमने बात की ही है, हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम सामने आती है, और वो प्रॉब्लम है ब्लैक मार्केट और करप्शन की। जी हाँ, कमांड इकोनॉमी के चलते जब डिमांड स्टेट सप्लाई से पूरी नहीं होती, तो ब्लैक मार्केट फैलने लगती है।
ब्यूरोक्रेसी और निपुट

ज़म के जरिए रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल किया जाता है या रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इनोवेशन और एफिशिएंसी की कमी देखी जाती है। जी हाँ, मुनाफा और कंपटीशन कम होने से कंपनीज में नई सोच और एफिशिएंसी बढ़ाने की राह बंद हो जाती है। ना मुनाफा होगा, ना कोई कंपटीटर है, तो ऐसे में कुछ नया लाएं, कुछ नए तरीके से अट्रैक्ट करें, ये जज्बा जो है ना वो कम हो जाता है। और ये जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करता है, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। वहीं देखा जाए तो एक और नुकसान है सेंट्रलाइज कंट्रोल और सियासती असर। जी हाँ, इकोनॉमिक कंट्रोल अक्सर जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल से जोड़ा जाता है, जो कि ठीक भी है। लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम्स पर पाबंदियां बढ़ सकती हैं और बर्दाश्त की हद कम हो सकती है, जिससे मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने लगता है। आई मीन टू से करप्शन ज्यादा बढ़ जाता है, डिसऑनेस्टी बढ़ जाती है, लूट मार बढ़ जाती है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सोसाइटी को भी एक बड़ा सेटबैक लगता है। वहीं पर क्वालिटी इश्यूज भी सामने आते हैं। क्वांटिटी पर ज्यादा तवज्जो देने से अक्सर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। कंज्यूमर्स को कई बार खराब चीजें मिलती हैं, जो लेटर ऑन वो कंप्लेन भी करते हैं, जिससे उनका नुकसान भी हो जाता है। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वहीं कुछ कमाल की मिसालें भी रहीं, अहम बार बार आपको मैं याद भी दिला रही हूँ, बोल भी रही हूँ, बता भी रही हूँ, सोवियत यूनियन के बारे में। जी हाँ, क्लासिक मॉडल सोवियत यूनियन का, जहाँ 5 ईयर प्लान्स और हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। पहले तो ठीक ठाक रहा और फिर पूरी तरह से फिस हो गया। पहले कुछ अच्छी चीजें सामने देखने को आई, फिर इनएफिशिएंसी और इनोवेशन की कमी के चलते इसे जो था वो रिवाइज कर लिया गया, या यूं कहें कि स्टॉप ही कर दिया, या यूं कहें कि इसको एक नए तरीके से फ्रेम किया गया। वहीं दूसरा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, आज भी बहुत हद तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमांड इकोनॉमी पर ही नॉर्थ कोरिया चल रहा है, जहां पर राशन सिस्टम है, स्टेट ओनरशिप और स्ट्रिक्ट प्राइसेस कंट्रोल्स अभी भी हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप और फूड शॉर्टेजेस नॉर्थ कोरिया में बहुत आम है, मगर वो इसको रिवाइज करने को तैयार नहीं है, रीफ्रेम करने को तैयार नहीं है, तो अभी भी नॉर्थ कोरिया इस मॉडल को अपना रहा है। वहीं एक और कंट्री का नाम मुझे याद आता है, और वो कंट्री है चाइना। जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट रियली रॉन्ग, आप भी मुझे बताइएगा, चाइना शायद वो पहला कंट्री था जिसने कमांड मॉडल को अपनाया था। अब मुझे ये तो नहीं याद आ रहा कि किस ईयर में अपनाया था, बट हाँ, ये वो पहला कंट्री था और वाहिद कंट्री था जिसने कमांड मॉडल को अपनाया था, आई मीन टू से कमांड इकोनॉमी के मॉडल को अडॉप्ट किया था। लेकिन 1978 के बाद मार्केट रिफॉर्म्स शुरू हुए और फिर जो कमांड इकोनॉमी थी उसको कन्वर्ट करके मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड मार्केट सोशलिज्म का नाम दिया गया और इसे तब्दील किया। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हुई चाइना की। वहीं क्यूबा की बात करें तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में अच्छी कामयाबी मिली और यहाँ पर भी कमांड इकोनॉमी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मार्केट रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस के सबब से कंज्यूमर गुड्स की कमी और फिर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी सामने आई, जिसके बाद इन्होंने भी कह सकते हैं कि मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। तो ऑल टुगेदर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अभी भी पार्शली कमांड इकोनॉमी पे काम करती हैं, लेकिन अब का जो माहौल है उसको देखते हुए मिक्स इकोनॉमी को ही प्रेफर किया जाता है और ज्यादातर कंट्रीज जो है वो मिक्स इकोनॉमी पर ही काम कर रही है। बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि जो कमांड इकोनॉमी है वो एक ऐसा निजाम है जो शॉर्ट टर्म में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल इक्वालिटी अचीव कर सकता है। सोशल इक्वालिटी मुझे बार बार जो है ना बहुत ही अच्छी लाइन लग रही है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि बहुत बड़ा गैप हो दो सोसाइटीज के बीच। कोई बहुत अमीर है तो कोई बेचारा बिल्कुल एक वक्त का उसको खाना भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इस मॉडल के चलते, आई मीन टू से कमांड इकोनॉमी मॉडल के चलते, कहीं ना कहीं कुछ हद तक, देखो 100% जैसा तो मैं कहती हूँ कभी कुछ नहीं होता, बट काफी हद तक सोशल इक्विटी जो है वो सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है और इसे अचीव भी किया जा सकता है। दोस्तों, कमांड इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल इक्विटी अचीव कर सकती है, लेकिन ये सस्टेनेबल ग्रोथ

0: कंज्यूमर चॉइस और इनोवेशन को अक्सर नुकसान पहुंचाती है। आजकल बहुत से कंट्रीज ने कमांड एलिमेंट्स और मार्केट मैकेनिज्म को मिलाकर मिक्स्ड सिस्टम अपनाया है ताकि फायदा बरकरार रहे और नुकसान कम हो। आम आदमी की जिंदगी पर कमांड इकोनॉमी का असर भी मिक्स होता है। कुछ बुनियादी सहूलतें और सिक्योरिटीज मिल सकती हैं, लेकिन जिंदगी का स्टैंडर्ड, वैरायटी और पर्सनल फ्रीडम अक्सर देखा गया है कि मार्केट बेस्ड सिस्टम के मुकाबले में कम महसूस होती हैं। तो देखिए, जाते जाते तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि कमांड इकोनॉमी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं। और अच्छी बात यह है कि जो अच्छे एलिमेंट्स थे इस मॉडल के, उसे अब रिवाइज करके मिक्स कर लिया गया है, मिक्स इकोनॉमी का नाम दिया गया है, और इसके चलते जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो कंट्रीज हैं वो मॉडल प्रेजेंट कर रही हैं। बाकी कितना एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है। अगर आपको और लगता है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर चाइना और सोवियत यूनियन की केस स्टडी कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको मिल जाएगी। नहीं तो आज का तो दौर ऐसा है कि आप सर्च इंजन पर भी डालेंगे ना तो चाइना और सोवियत यूनियन का एक डिटेल्ड कंपैरिजन आपके सामने साफ नजर आएगा। उसे अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो जरूर पढ़िएगा और फिर आप और डिटेल में समझ पाएंगे कि कमांड इकोनॉमी कैसे वर्क करती है और उसका मॉडल अब उतना ज्यादा जो है वो पसंद क्यों नहीं किया जाता। खैर, मुझे लगता है मैंने बहुत बोल दिया, बहुत बता दिया जो है वो कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी बातें मिक्स ना हो जाएं, इसलिए मैं झटपट से आपसे इजाजत ले लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे नाजिया को और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने कराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज हम इंसानी शख्सियत के एक नहायत अहम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू का सिलसिला तकरीबन पिछले हलके से जारी है।

0: And he's hooked that away. That's four runs.
1: Football ho या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, time for the time check. और हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
0: Right guys, salam adab, a very very good morning. क्या हाल चाल है दोस्तों. उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे. पूरे दो दिन की छुट्टी के बाद हम वापस आ चुके हैं और एंट्री भी हमारी हुई है एक नए मंथ में. आई मीन जुलाई, वी आर डन विद जुलाई. अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है. आज 2 अगस्त है, एक दिन भी निकल चुका है. वेल वापस आ गए हैं अपने इसी शो में आपके साथ जुड़ने के लिए. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आई एम श्योर आपके पास होंगी. मेरे पास होना हो मैं तो बोलती ही रहती हूँ. आज आपके पास क्या क्या है वो आप मुझे बताइए. दो दिन आपने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, क्या एक्चुअली आपने मुझे मिस किया कि नहीं मिस किया वो भी मुझे बताइए 6:62107 पर. और मैं भी अपना हाल चाल आपको बताती रहूँगी, धीरे धीरे बताती रहूँगी. आज सुबह सुबह किसी ने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही, यार ये मैंने कल बहुत सारी चीज़ें, बहुत एफर्ट्स डाले लेकिन ये काम हो नहीं सका. तो मैंने कहा कि आज भी तो दिन है तुम्हारे पास. तुम हयात हो, तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे फुली तरह से ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो पूरे नॉर्मल हैं, सब कुछ है. ज़िंदगी हमें हर रोज़ एक नया मौका देती है. ये तो हम हैं कि हम अपने

प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फा वक्तन उसको

0: महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: हाँ जी हाँ जी, वेलकम बैक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नाजिया आपके साथ 6:23 ऑन द क्लॉक। चलो जी, मौसम की बात कर लेते हैं, मौसम का हाल चाल आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए, आज मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल भरपूर धूप रहने वाली है और इस वक्त अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम जो है वो कितना है वो तो बताऊँगी, लेकिन फिलहाल का टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हाँ,

0: नमी की वजह से आपको जो है ना यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उसकी वजह से आपको महसूस होगा 37 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं दिन के वक्त जो है वो टेम्परेचर और बढ़ेगा और ये पहुंच सकता है 45 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि रात में टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होगा और बेहतर हो जाएगा अप टू 33 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑल टुगेदर मौसम जो है वो आज भी ठीक ठाक तरीके से गर्म है। और हवा की अगर बात की जाए तो हवा जो है वो चलेगी तकरीबन 13 किलोमीटर पर आर एंड यूवी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिन के वक्त धूप में निकलते हुए ख़ास प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा ख्याल रखिए अपना हर तरीके से। एंड अगर सनराइज़ की बात की जाए तो आज जो है वो सनराइज़ हुआ है 5:01 यानी 5:01 पे और सनसेट होगा 6:18 पे यानी 6:18 पे। तो इस तरह से ऑल टुगेदर आज हमें 13 घंटे और 17 मिनट मिल रहे हैं, जबकि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये था आज का मौसम का हालचाल और आज है 2nd of August, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। आज कुछ ख़ास दिन जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, कल पिछले वीक भी हमने देखा कि फ्रेंडशिप इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे समथिंग लाइक दैट, और आज भी है फ्रेंडशिप डे। कितनी दोस्ती पे अहमियत है दोस्तों, देखिए आज भी फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और ये दिन भी कहीं ना कहीं दोस्तों की अहमियत को जो है वो और ज़्यादा हाईलाइट करता है कि दोस्त हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो हमें जो है वो खुशियाँ, जो सपोर्ट, जो हिम्मत जो हम अपने रिलेटिव से या और लोगों से नहीं ले पाते या जो बातें नहीं शेयर कर पाते वो अपने दोस्तों से करते हैं, तो ये रिश्ता देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ है आज सिस्टर्स डे, दैट्स नाइस। आज नेशनल सिस्टर्स डे भी है, जो बहनों का प्यार है वो आपस में वो जो रिश्ता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है आज। और बहन जिंदगी भर के लिए कुछ लोगों की बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं, तो इस तरह से आज का दिन फ्रेंडशिप और सिस्टर्स डे मिला कि ये कि अगर आपकी बहन आपकी बहुत अच्छी वाली दोस्त हैं और आप हर बात उनसे शेयर करते हैं तो मुझे बताइए। नंबर है 6662107। वैसे आज अपनी बहनों का एटलीस्ट टाइम निकाल के अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, अगर वो बेहतरीन दोस्त हैं तो भी और नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि आज उनका ख़ास दिन है। ऐसा नहीं कि अगर आप कहेंगे सिर्फ सिस्टर्स डे तो हम क्या, लेकिन आप एज अ ब्रदर उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डे है और ये है इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे, ये भी आज मनाया जाता है ऑन 2nd of August। और इस दिन का मकसद होता ये है कि लोगों को माफ़ किया जाए, दिल साफ किया जाए। माफ़ करना, माफ़ी मांगना दोनों आज के दिन को जो है वो हाईलाइट करता है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है। अगर किसी को माफ़ करना है तो आज करिए, ये मौका आपके पास है। माफ़ी मांगनी है तो भी आज आपके पास भरपूर मौका है, ऐसा नहीं कि कल नहीं है, लेकिन आज करेंगे तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। यू कैन से दैट वे कि आज ये दिन है तो बस मैंने सोचा कि आज इस दिन को जो है भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट। अच्छा, उसके साथ है आइसक्रीम सैंडविच डे, ये भी आइसक्रीम भी भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। गर्मियों का मौसम है और ये मज़ेदार सी ऑब्जर्वेंस तो है ही, मतलब आइसक्रीम सैंडविच डे है तो थोड़ा ठंडा, थोड़ा मीठा, थोड़ा अपने आप को ट्रीट करना, थोड़ा सा इस दिन को सेलिब्रेट करना, ये भी एक अपने आप में अच्छा ही दिन है। चलिए, तो आज का दिन बस मैं यही कह सकती हूँ कि हमें और आपको बताता है कि दोस्त हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बहनों का प्यार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, माफ़ करने का जज्बा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ को कितना खूबसूरत बना देती हैं। तो आज किसी अपने को ना मुस्कुराने की वजह आप दीजिए, कैसे देंगे, माफ़ करके, माफ़ी मांग के या उन्हें स्पेशल फील करा के। तो ये आज के दिन थे कुछ ख़ास जिस पर हमने बात की और कुछ और मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए एंड सलाम कहते हैं और क्या हाल है, यहाँ पर मुझसे पूछा है किसी ने मेरा हालचाल बिल्कुल ठीक है। एंड हु इज़ ही, आई थिंक सामी हमारे साथ है, सामी है राइट। ओहो, आज तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट जो है वो भेजा है और ओह आज ख़ास तरीके का ऑमलेट है, ब्राउन खुबूस भी है और सुबह सुबह इतनी सारी सैलड्स भी हैं और लेमन वाटर भी है, क्या बात है, इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट हर रोज़, छा गए आप तो भाई। वाकई जिस तरह से उन्होंने अपने डेडिकेशन को हमारे साथ शेयर किया, रियली हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ वाकई. यहाँ पर हैप्पी सिस्टर्स डे, और यूसुफ शमीम जी हमारे साथ, सभी को सलाम कहते हैं, पूरी टीम को सलाम कहते हैं, थैंक यू सो मच. और आज मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी बहन से ज़रूर बात करेंगे, अगर आपकी बहन है तो पहले ये भी मुझे बताइए लोग, कोई भी, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, कि क्या आपकी जो सिस्टर्स हैं वो वाकई आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि आप उनसे हर एक बात शेयर कर लेते हैं, ऐसे हैं आपकी सिस्टर्स जो आपकी हर बात में आपका मशवरा, मतलब आपको मशवरा देती हैं, और फिर वो ऐसी वैसी कोई भी बात जहां आपको बचाना हो, जहां आपको कवर करना हो, झट से ढाल बन जाती हैं, सामने आ जाती हैं, और आपको जो है ना अच्छे तरीके से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं. तो इस तरह की बहनें तो किधर निकल के आएँ खुद भी, और नहीं तो उनके भाई जो हैं वो निकल के आए और मुझे बताएं कि हाँ ऐसा होता है. एक और मैसेज है यहाँ पर, इनका नाम अलबत्ता नहीं है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और मैं गुड मॉर्निंग एंड मैं पे क्यों रुके हुए, कुछ तो ना लिखना चाहे पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा ओके, ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ बहुत, मेरी, अच्छा इनकी छोटी बहन है वो, अच्छा ये अपनी बहन को बहुत प्रोटेक्ट और उनका ख्याल करते हैं और उनके दोस्त हैं. अरे वाह, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई. ओके, तौफीक जी ने जज़ाकल्ला मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच. और सामी जी है, कहते मेरी सिस्टर नहीं है, मैं आपको अपनी सिस्टर कह देता हूँ, हैप्पी सिस्टर डे. ओ थैंक यू सो मच, आज से मेरे दो दो भाई हो गए, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया. और बिल्कुल ज़रूर मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी बहुत अच्छी बहन बन सकूँ. यहाँ पर हमारे पास एक और मैसेज है, और इनका नाम जो है वो नाम हमें देखने पड़ते हैं. अहमद जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और आगे भी अगर आप हमें बताते हैं आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा तो अच्छा लगता. अच्छा यहाँ पर हमें मैसेज किया है, इनका नाम है हुसैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम कहते हैं, हम सबको, सभी लिसनर्स को आपने सलाम कहा है. और मेरी बहन और मेरा रिश्ता बचपन से ही बहुत ही दोस्ताना रहा है. नाइस, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों हमेशा से फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं. तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात. इसके साथ हमें गुड मॉर्निंग कहते हैं, इनका नाम हमें पता चलना नहीं, पता इकराम जी है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको. चलिए फाइनली यहाँ पे किसी, कुछ लोगों ने अपने नाम लिखना स्टार्ट किया, अदरवाइज पता ही नहीं चलता कि कौन हमारे साथ जुड़ गया. मोहम्मद जी कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सुबह बखैर आपको भी, थैंक यू सो मच. इसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज है प्यारा सा, अलबत्ता इन्होंने वॉइस नोट हमें भेजा है, तो जिनके लास्ट में है 659, तो मैं सुनती हूँ आपने क्या मुझे भेजा है वॉइस नोट, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा है. और वेरी गुड मॉर्निंग हमें कहते हैं, और इनका नाम भी, मुझे सबके नाम यहाँ पे ढूंढने पड़ते हैं, आप लोग अपने नाम नहीं लिखते ना, ये एक अच्छी सी प्यारी सी बात है. इनका नाम है जावेद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड सलाम. मैडम मेरी भी कोई बहन नहीं है, हम चार भाई हैं. अच्छा ओके, यहाँ पर रिजवान ने भी सलाम कहा है, और हैप्पी सिस्टर डे, थैंक यू सो मच. सरदार जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह बखैर, क्या हाल चाल है. मेरी सिस्टर इनकी दोस्त है. ओह नाइस, चलिए ये भी अच्छी बात है. इसके साथ है यहाँ पर एक और मैसेज, और ये भी एक वॉइस नोट है, तो चलिए आप लोगों के वॉइस नोट हमें सुनने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम जो हैं वो बता पाएंगे कि आपने क्या कहा है. बट हाँ अभी के लिए जो है मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे. आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है, सुनते रहना है समर मॉर्निंग्स एंड स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है. इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। Only on FM 107, दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: Absolute Cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है।

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश कर

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 6:41 ऑन द क्लॉक. और आज का हमारा टीटीटी यानी टी टेबल टॉक जो है वो कन्वर्सेशन, उसका अब हम आगाज करने वाले हैं. देखिए, हर इंसान ना जिंदगी में बेसिकली कामयाब होना चाहता है. हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में उसके जो है वो कंफर्ट हो. लेकिन सवाल हमेशा एक जैसा नहीं होता. सवाल जो है वो अलग अलग तरह से खड़े हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि क्या हमें हमारी कामयाबी के लिए अपने कंफर्ट को साइड में रखना है, क्या हमें हमारे कंफर्ट के साथ अपने आप में कुछ चेंजेस भी लाने की ज़रूरत है, क्या हमें हमारे राहत सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, या फिर हम आगे बढ़ के कुछ नए चैलेंजेस जो हैं वो अपने लिए जो है वो पिक करें. हकीकत में अगर पूछा जाए और माना जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो कंफर्ट को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो है ना सुकून रहे, चैन रहे. लेकिन अब ये कंफर्ट नाम की चिड़िया है क्या, चलिए उस पर पहले बात कर लेती हूँ, फिर आज का जो हमारा सवाल है उस पर भी आऊँगी. देखिए, कंफर्ट का मतलब होता है वो हालत कह सकते हैं, वो सिचुएशन कह सकते हैं जहाँ इंसान जो है वो खुद को महफूज, खुद को जो है वो पुरसकून और मुतमईन महसूस करता है. ठीक है, हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है ना. हम में से किसी से पूछो, हर कोई ये चाहेगा, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो. एक अच्छी नौकरी एंड यू नो घर का सुकून हो, थोड़ा सा फाइनेंशियली आप सिक्योर हो और अपने घर वालों के साथ, ये सारी चीज़ें हमें और आपको कम्फर्ट देती हैं. और कंफर्ट हमारी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर ज़िंदगी में सुकून ना हो, सोचिए थोड़ी देर, तो हम तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के मारे बुरा हाल हो जाए हमारी ज़िंदगी. तो इस स्टेज पे आज के इस दौर में कंफर्ट को नज़रअंदाज किसी हाल में नहीं किया जा सकता. लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हम अपने कंफर्ट से निकलना ही नहीं चाहते. कंफर्ट से ना निकलना मतलब हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टैग्नेट करना जैसा है. और जब हम अपने कंफर्ट से बाहर निकलने से हिचकते हैं, घबराते हैं, नई चीज़

0: चीजों को सीखने में हमारा दिल नहीं लगता, तो ये जो फेज है वो कहलाता है कि अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर ही नहीं आना चाहते। तो ये वाली फेज जो है बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी आई एम श्योर। हम करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम जो है ना कुछ नया सीखें या कुछ नई किसी चीज़ को अडॉप्ट करें। ऐसा लगता है कि अरे जो आ रहा है कर रहा है वो मतलब ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा एंगल जो है ना वो एज भी है, एज फैक्टर भी जो है वो बहुत मैटर करता है। कुछ अगर बच्चे हैं उनके लिए तो चेंजेस तो बहुत एक्साइट होने करते हैं, लेकिन अगर एक मैच्योर स्टेज पर आप पहुँच चुके हैं तो फिर आपके लिए और हमारे लिए जो है ना कम्फर्ट बहुत मैटर रखता है। खैर उसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे फर्दर तो आप भी बात करेंगे और मैं भी अपनी तरफ से डेफिनेटली ऐड करूंगी। लेकिन अभी जो है वो कंफर्ट की बात हुई, अब मैं चेंज की बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि चेंज का क्या मतलब है। चेंज का मतलब है तब्दीली, ठीक है, नई सिचुएशन को कबूल करना, नए स्किल्स को सीखना, नई सोच को अपनाना और कई बार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोई चेंज जो है उसे अडॉप्ट करना। देखिए दुनिया जो है ना वो बहुत तेज़ी से आज के दौर में बदल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मार्केट बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ता, ये तो हम जानते हैं और कहते भी हैं। और जो चेंज से डरता है, आई मीन जो घबराता है, तब्दीली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, जिसमें है उसी में हम खुश हैं, नहीं नहीं यही ठीक है, यही चला आ रहा है इतने सालों से, एंड ऑल दैट, जितनी भी दलीलें आसपास हो सकती है सब कुछ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखें तो आपको और हमें समझ में आता है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर एक बड़े चेंज को अडॉप्ट किया, अपनाया, उन्होंने रिस्क लिया, नए रास्ते चुने और मुश्किल सिचुएशन में भी सीखना नहीं छोड़ा। तो आज का मेरा आपसे सवाल ही यही है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए ज़्यादा ज़रूरी आपके हिसाब से क्या है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ कम्फर्ट और इज इट अ चेंज? आपको क्या लगता है ज़्यादा ज़रूरी क्या है? और चलिए आप अपने लिए बताइए कि आपके पास ये दो चॉइसेस हैं तो आप किस चॉइस के साथ ज्यादा कंफर्टेबली जाना चाहेंगे? आप किस चॉइस के साथ जाएंगे? क्या आप कंफर्ट को प्रेफर करेंगे या आपको लगता है कि आपके लिए चेंज जो है वो ज़रूरी है? और कितना फ्रीक्वेंटली आप चेंज को जो है वो एम्ब्रेस कर पाते हो, कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते हैं ये भी आप मुझे बताइए। नंबर्स जो है वो हमारे जिस पर आप कॉल कर सकते हो और जुड़ सकते हैं वो नंबर है 4434377। यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली इस टॉपिक पर हम और आप बात करेंगे। तो फिलहाल एक कॉलर के साथ यहाँ पर हम जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल चाल है रेस जी?
1: आज हम पहले ही टपक पड़े, हम बोले थोड़ा हम शेयर करते हैं।
0: हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज।
1: बेहतरीन पॉइंट उठाया है आज, और अगर अच्छा। तो बंदा आपको अपडेट नहीं करना चाहता ना वो पीछे रह जाता है मेरे ख्याल से।
0: ये तो
1: ज्यादा कुछ लोग अपने स्तर पे, हमारे उधर एक कहावत है कि दादा ने कहा था सरसों का ही बिजनेस करना तो सरसों में ही लगे रहते हैं वो लोग। अपने आप में कुछ तब्दीली नहीं करते तो फिर वो सरसों के बिजनेस में करते करते करते फिर वो बंदा वहां से कुछ मतलब अपडेट ना करके वो पीछे ही रह जाता है। वो तकरीबन ऐसा ही मसला है। मिसाल मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं खुद पहले मैकेनिकल जॉब, मैंने मतलब ऑटो मैकेनिकल का मतलब मैंने काम सीखा जब मैंने पढ़ाई छोड़ा।
0: अच्छा।
1: पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं मुंबई में जाके मैंने कई सालों तक अपना खुद का मैंने गैरेज भी चलाया और ये करके, तो मैं फिर वहाँ से देखा कुछ ये नहीं तो फिर मैं समझ लो गल्फ कंट्री के तरफ ये किया अपना रुख। वहाँ पे गया तो मेरे सामने ड्राइवर का अपॉर्चुनिटी मिला कि मतलब आपको मेरे पास इतना अभी मैकेनिकल काम नहीं है, मुझे ड्राइवर की सख्त जरूरत है, आपको ये सीखना है। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई। तो एक ड्राइवर मतलब वो हमारा जो मतलब जिस कंपनी में हम गए थे उस कंपनी में हमारे पास मौका मिला, अब ज्यादा हम थोड़ा नहीं स्टार्ट करने बताते, तो मौका मिला तो हमने उसको अपने आप को तब्दील करके और उसमें समझ लो एक स्किल हमारे अंदर और हो गया काबिलियत कि हमने हम मतलब हाईवे ड्राइवर के उसमें हो गए। तो कुछ सालों तक हम वहाँ पे सऊदी में रहे कुछ मतलब, तो फिर बाद में हम वहाँ से मतलब निकल गए। निकलने के बाद में फिर हम कतर में आए, कतर में आए तो फिर हमको वो मौका, फिर मैं सोचा कि नहीं अब फिर मैं मैकेनिकल काम करूंगा। मैकेनिकल काम में फिर आगे मैं 2.5 महीना तक किया और उसके बाद में फिर मुझे मौका मिला, कंपनी ने फोर्स किया कि नहीं आपको आप अच्छे ड्राइवर भी हो आप लाइसेंस निकाल लो यहाँ का। और आपको ड्राइविंग करना है, तो फिर मेरे लिए मैं समझ लो कि वो कंपनी ने यहाँ तक अपने ऊपर लिया कि नहीं मैं आपको सारी मतलब ये करूंगा, आपका जो जितने दिन आप लाइसेंस नहीं निकालोगे उतने दिन तक मैं आपको सैलरी भेजूंगा और ये सब मतलब मेरे सामने उसने मौका ये किया।
0: अच्छा, किया। बड़ी बात है ये तो, बड़ी बात है।
1: मैंने ये अपना मैंने भी एक ये वो रखा ना कि समझ लो कि कंडीशन रखा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस है, मुझे मतलब जो मैं कर रहा हूँ यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो लोगों का जितने दिन ड्राइवर लोग लाइसेंस नहीं निकालते तो उनकी सैलरी नहीं दी जाती थी। अच्छा, तो मैंने इस तरह रखा कि मैं बोला नहीं मैं तो मुझे नहीं चल बोला, फिर उसने कहा कि आप कितने दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो काबिलियत था, समझ लो कि एक हफ्ते के अंदर ही मैंने लाइसेंस को अपने मतलब हाथ में ले लिया।
0: अरे वाह, तो एक हफ्ते में? नाइस,
1: जी जी, बहुत जल्दी। मैं सऊदी अरब में हैवी ट्रेलर ट्रेला में चला चुका था, तो वहाँ पे मुझे खाली सिर्फ थोड़ा सा जाके स्कूल में, असल में वो लाइसेंस हमारा ले लिया गया था वहाँ पे, तो जिस वक्त हम आए थे वो लाइसेंस हमें फॉरन से मिल जाता था सऊदी के लाइसेंस कतर के लाइसेंस में, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिला। हम जब वहाँ से कैंसिल निकले तो समझ लो कि हमें वहाँ से ये कर दिया गया लाइसेंस ले, तो फिर मैं समझ लो अल्हम्दुलिल्लाह गया एक हफ्ते में समझ लो इधर उधर करके अपना और लाइसेंस पकड़ लिया। लाइसेंस पकड़ने के बाद मेरे पास बहुत बेहतरीन मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को समझ लो कि हमारे अंदर वो काबिलियत है मैकेनिकल का भी, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं तो उसके बारे में पूरी पूरी मालूमात है, गाड़ी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कैसा है क्या है, तो जहाँ भी रहते हैं तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी में इज्जत मिलता है, और वो बंदे को मतलब अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस हमारे अंदर एक स्किल है तो हमें उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को अगर मौका मिल रहा है तो अपने आप को तब्दील करना चाहिए। और खाली मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं,
0: सही। तो मतलब आप जो है वो चेंज को जब जहाँ जैसा मौका मिलता है आप एम्ब्रेस करते हैं।
1: जैसा मिला मौका, क्योंकि मैं देख रहा था कि मैकेनिकल में और ड्राइवर उसका डबल कमा रहे हैं, तो वो भी देख के मेरे अंदर से रिश्ता गिरा रहे हैं, इनमें फायदा है, तो समझ लो कि मैंने अपने वक्त को न जाया करके फौरी तौर पे मैंने समझ लो कि जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये किया।
0: सही।
1: तो समझ लो कि अपने आप को ज्यादा फायदेमंद मतलब मेरे लिए साबित हुआ।
0: सबसे बड़ा ड्रॉबैक कंफर्ट का क्या है, वो यही है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हम कुछ भी नया सीख नहीं पाते, फिर सोचते हैं अरे अब क्या जरूरत है, अरे अब ये क्या, मतलब हम उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता और इस तरह से पिछड़ने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ चीजें सीख पाता है इंसान, लर्निंग की भी एक एज है, लर्निंग की कोई एज नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग लर्न कर सकते हो चीजें, स्किल्स हमेशा सीख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं अरे बच्चा है तो ये तो जल्दी सीख लेगा, हमारी उम्र है तो हम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो सीख सकते हैं, बच्चा शायद कम टाइम में, आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम में सीखें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो लर्निंग के उसमें बंदे को मैं समझ लो कि मेरा बहुत मैंने बहुत मेहनत किया खासकर लॉन्ग वेजेस के ऊपर, और जिस मतलब जो जो हमारे लिए मस्त है जैसे अरबिक हो गया इंग्लिश हो गया यहाँ पे इसके ऊपर भी फोकस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब एक एक लफ्ज को मतलब कोई जरूरी नहीं कि खाली काम से ही, जो हमारे लिए जरूरी दुनिया के अंदर हमें जिस लोग में रहना जिस माशरे में रहना जिस माहौल में रहना उस माहौल में भी हमें ढले, वहाँ का पहनावा कपड़ा वहाँ की जबान वहाँ का तहजीब सारी चीजें हम अपने ऊपर मतलब अगर ये करें तो बंदे को कहीं भी रहेगा तो उसके लिए मतलब इतना मसला नहीं बनेगा, वो सारी चीजों को वो अपने ऊपर ये करे और जो कानून से लेके मैंने मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अपने आप को तब्दील करना, उसमें आदमी को अगर मौका मिलता तो उस कोशिश करके अपने आप को थोड़ा सा ये अपडेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको तो ये मोबाइल को ही ले ले, मोबाइल पहले किस टाइप का था और आते आते आते आते आज आज के वक्त के हालात के साथ में अगर वो भी सोचा होता ट्रेन ले लें गाड़ियां ले लें जितनी चीजें हैं उसमें जो अगर अपडेट नहीं किए गए होते सारी चीजें तो फिर वो समझ लो कि वही के वही रह जाते, तो बंदे को उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ये करना चाहिए, मौका जो मिले तो उसको अपने आप को तब्दील करने में मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए,
0: चेंज को जो है फौरन एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा चेंज भी कीजिए अकॉर्डिंगली।
1: जिस जगह पे रह रहे हैं आप वहाँ का सारी चीजें वो भी अपने आप को फॉलो करके और वहाँ का वहाँ पे क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है किस चीज के, उसमें कोई जरूरी नहीं है अपने ऊपर जबरदस्ती थोप के रखें नहीं यार हम तो बस वैसे ही है ऐसे है हमारे यहाँ ऐसा होता था, ऐसा है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है
0: बिल्कुल। जबरदस्त, थैंक यू सो मच रईस जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छी आपने शुरुआत की एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप चेंज को एम्ब्रेस करते हैं।
1: जी जी, हमारे भाई लोगों का और भी सुन के इंशाल्लाह मजा आएगा,
0: इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
1: हमारे जो दोस्त अहबाब हैं सबको सलाम,
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम, नफीस शहजाद में आपके साथ। गुड मॉर्निंग एफएम 107।
0: अ वेरी गुड मॉर्निंग नफीस जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सब ठीक ठाक जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई होप आज का जो टॉपिक है आपने सुना है।
2: जी बिल्कुल, ये पिछले कॉलर से पहले ही थोड़ा सा वो मतलब रेडियो ऑन किया है तो पता चला है कि कोई कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में है।
0: हाँ जी, मैं पूछ ही रही हूँ कि जिंदगी में कामयाबी के लिए आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है, कंफर्ट में ही रहना आपने या फिर कंफर्ट से निकलकर चेंज को एम्ब्रेस करना? और आपको चेंज और कंफर्ट में एक पिक करना है तो आप क्या पिक करेंगे?
2: मैं कंफर्ट पिक करूंगा बेसिकली।
0: नाइस, अच्छा।
2: थोड़ी सी लॉजिक इसके पीछे भी है मेरे पास कि भाई कंफर्ट जोन से निकल के एंजाइटी, काम, जोर, इसकी वजह से मैं पूरा अपना एक बिहेवियर, सब कुछ, अपनी बॉडी, सब कुछ तकलीफ में डाल के भी कुछ इतना बड़ा हासिल नहीं कर पाता जिसके बाद बंदा मुतमईन होके बैठ जाए। क्योंकि इंसान मुतमईन पैदा हुआ ही नहीं,
0: ये इंसान बिल्कुल सही गया।
2: तो मेरे जैसे कुछ रेबल्स भी होने चाहिए जो कंफर्ट जोन में रहने चाहिए यार।
0: मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जवाब, मुझे ना बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं
2: कंफर्ट तो मैं कहता हूँ इंसान को अगर पैदा इसलिए किया भाई, अपना ख्याल रखो, कंफर्ट जोन में रहो, जिम जाओ, खाना सुबह नाश्ता करके दोपहर के खाने तक अगर रोटी अवेलेबल है तो फिर आराम से मजे में रहो, नहीं अवेलेबल तो उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो।
0: अच्छा ओके, तो मतलब आपके हिसाब से कंफर्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज है?
2: बहुत ज्यादा कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए, आपकी एंजाइटी बढ़ती है।
0: अच्छा एक बात बताइए, तो आपने पर्सनल लाइफ में तो कहा कहा, प्रोफेशनल लाइफ में भी क्या आप इसी फिलोसफी को?
2: प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कंफर्ट जोन में रह सकते हैं कि जितना प्रेशर आप पे है उतना ही लो, उससे ज्यादा आप देखिए कंफर्ट जोन से निकलना भला किसी कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन का हेड हूँ, मिसाल दे रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: फॉर एग्जाम्पल अब मैं हर मतलब अपनी पढ़ाने के लिए ना फ्लाइटे तो मैं फिर जाके डाटा एंट्री लोगों को भी तंग करता रहूं, मैं उधर जाके भी पंगे लेता रहूं कि नहीं यार मुझे सीखना है, मैंने आगे जाना है। अरे भाई बस ठीक है, कम्फर्ट जोन ये अपने काम करना, कम्फर्ट जोन को आप ये थोड़ा नेगेटिव ना ले लीजिए या सामयिक नेगेटिव ना ले ले के भाई घर से उठो ही नहीं तो जो
0: नहीं सही कहा
2: नहीं नहीं ऐसे नहीं
0: सही बात है।
2: मैं भी काम पे जा रहा हूँ, कम्फर्ट जोन में जा रहा हूँ, एसी लगा हुआ है आराम से बैठ के।
0: नहीं लेकिन आपने बहुत ही सच्ची और प्रैक्टिकल बात की है, ये वाली बात ऐसी है जो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत कम लोग बोलते हैं, कह भी नहीं पाते, थोड़ा सा झिझकते हैं, पर आपने बहुत ही ऑनेस्टली अपनी राय रखी तो आई अप्रिशिएट आपकी ऑनेस्टी को, मैं अप्रिशिएट करूंगी आपके जैसा। मेरा भी हाल है, मैं भी सेम, आई लव कंफर्ट बट आई एम कंपेल्ड टू टॉक अबाउट चेंज।
2: अभी मुझे लगता है वेट कर रही थी कि कोई कंफर्ट के वोट आए तो फिर आप अपना बताएं। नहीं यार देखिए, मटेरियलिस्टिक जिंदगी क्या है, क्यों इतना तांग लेना अपनी जिंदगी को?
0: हाँ ये बात तो है।
2: मैं इसमें आप बिल्कुल इस्लामी या उस पहलू में ना जाइएगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार देखें आपके नसीब में जो लिखा है मिल के रहेगा। अरे भाई अपने लिए भी तो जीना चाहिए,
0: अपने लिए भी थोड़ा
2: अपने पास भी तो टाइम होना चाहिए मेरे पास कि यार मैं क्या हूँ।
0: सही बात है।
2: वो आपने गालिब का शेर नहीं सुना कि बहुत निकली उम्मीदें, बहुत निकली ख्वाहिश है लेकिन फिर भी काम निकली, ऐसा तो वो शेर है
0: बहुत निकले।
2: तो मुझे बड़ा वो जब पढ़ता हूँ ना तो बड़ा दिल में आता है।
0: सही बात
2: है कि यार इंसान की ख्वाहिशें काम नहीं हो सकती ना खत्म हो सकती
0: ना खत्म हो सकती,
2: तो एटलीस्ट अपने लिए तो टाइम निकले उसके पास इसी कश्मकश में कि मैंने आगे जाना है, मैंने बहुत तरक्की करनी है।
0: सही,
2: और एक वक्त आता है बंदा अपने आप से ही दूर हुआ होता है। और यकीन मानिए आप बिलीव करें, खुदा की कसम मैंने वो बंदे देखे हैं जो अपने आप से भी दूर होते हैं, अपनों से भी दूर रहते हैं। यार एक वक्त आता है जब आपको एहसास होता है कि कुछ भी कायमी नहीं है, कुछ भी कामिल नहीं है, इंसान भी कामिल नहीं है, तो बस इसलिए जितनी हिम्मत हो उतना करो कंफर्ट जोन में रह के, एंग्जायटी से हट के,
0: मतलब जबरदस्ती अननेसेसरी खुद को बहुत

0: ना करें कि नए चेंजेस को जो है वो एम्ब्रेस करना है. और आप जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा देयर हैज टू बी गुड बैलेंस, है ना, आपको अपने कंफर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए एंड एट द सेम टाइम कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट. लेकिन हाँ, कंफर्ट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. कंफर्ट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको हम लोग कह रहे हैं कि आराम करते रहिए, कुछ नहीं कीजिए.
1: नहीं नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि कंफर्ट जोन का मतलब ले लीजिए.
0: हाँ, ये तो है.
1: आपकी तकलीफ ना लें आप कंफर्ट में रहेंगे.
0: हाँ, मतलब आपका जहनी मेंटल सुकून भी तो बहुत बड़ी चीज है ना लाइफ में. आप कितना अपने आप को स्ट्रेस में डालेंगे वो भी है.
1: मैं कहता हूँ बंदे को पता होना चाहिए यार. नदिया, आपको पता है ये मेरा क्वेश्चन अगर आप पीछे कहीं लोगों को रखिएगा कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिनको बात पहली मरतबा में समझ आ जाती है. आई एम रियली सॉरी, मैं ये एक पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एक आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी दिन वोट रखिएगा कि कितनी परसेंट लोग रह गए हैं दुनिया में जिनको पहली मरतबा में बात समझ आ जाती है. ये क्या है ना दिया, फील करे ना ये. मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, मैंने 11th जी मैंने फर्स्ट ईयर.
0: हेलो.
1: तो यकीन माने आप, लोगों को साइकोलॉजी इतने टेंस हो चुके हैं कि तीन तीन मरतबा भी बात करने के बाद फील होती समझ आती है कि हाँ यार दिमाग को इस्तेमाल ही इतना कर रहे हैं.
0: सही बात.
1: अननेसेसरी कि आपको अपने करीब बैठे हुए बंदे की बात दो मरतबा सुनने में समझ आ रही है तो यार ये तो परेशानी वाली बात है ना.
0: बिल्कुल.
1: और उसी जगह पे लेके आके रियली सॉरी टू से कि थोड़ा सा कंफर्ट में रहने वाला बंदा और पहली मरतबा में इसको समझ आ जाएगा हाँ यार इतना काम है यही करना है. ये आप किसी से मुझे वोटिंग कर लीजिएगा, मैं इसमें गलत हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा नंबर.
0: आपने बहुत सही कहा और मैं भी सोचने में मजबूर हूँ कि मुझे थर्ड टाइम में समझ आती है फोर्थ टाइम में बात समझ आती है.
1: यार प्रेशर करवाता है ना ये, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझे ना.
0: हाँ ये तो है,
1: दिमाग का प्रेशर करवाता है. यार क्या कहा,
0: बिल्कुल सही कहा. I've seen people, they are physically present, mentally out है पूरे
1: ये आप पढ़ी लिखी बात कर गई आपने जो मैं कहना चाह रहा था. मैं जरा हिचकिचाहट आ रहा थोड़ा सा.
0: नहीं वही आप ही बात कह रही हूँ कि हाँ ये है और ये बिल्कुल फैक्ट है जो आपने कहा क्योंकि आप हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, यू कैन रिलेट इट वेल. तो ये है आज के दौर में लोग बेचारे इतने ज्यादा स्ट्रेस के ना. हाँ
1: पीछे दिमाग में वाइफ की बातें चल रही है, बच्चों की टेंशन चल रही है, बॉस ने ये कहा हुआ है, फलां कहा हुआ है, रंग खेल रहे हैं, हम रंग खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रही है तो पता चले दिमाग जिसम ही कर मेरे पास.
0: हाँ.
1: हम लोगों का
0: है
1: कुछ अच्छे, कुछ लोग मेरी तरह भी हैं. जैसे अच्छा लगा आपने थोड़ा सा
0: मुझे पता है खुशी
1: हुई.
0: मुझे तो कहा ही गया हैव टू टॉक मोर अबाउट चेंज बट मुझे खुशी हुई कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक ऑनेस्ट अप्रोच एक ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ आए. मुझे लगा यहाँ पे 90% लोग डेफिनेटली भले दिल से चाहते हैं कम्फर्ट दे विल टॉक अबाउट चेंज बट आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी कि कोई ऐसा भी आया जिसने बात की कंफर्ट की और कंफर्ट पे ही स्टिक किया.
1: किसी को हर्ट नहीं करना चाहता. हाँ. बिल्कुल जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाब करे.
0: बस
1: मुझे इतना बचपन से मैं देखता आया हूँ कि भाई मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद मिला ना दिया. मेरे हाथ में बस एक महदूद हाथ तक चीज है चेंज की. बाकी चेंज ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है.
0: सही बात है, चेंज
1: वो दुनिया का असूल अल्लाह पाक ने बनाया हुआ चेंज खुद ही होता रहता है. आप करना चाहें ना करना चाहें.
0: वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने शेयर किया. हैव अ फैंटास्टिक डे. अपना ख्याल रखिएगा.
1: थैंक्स अ लॉट. सेम टू यू आदिया एंड एफएम 107. थैंक यू जी.
0: अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे चूंकि हमारा मैंडेटरी ब्रेक है. वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे उसकी शुरुआत हुई है. एक बंदा हमारे साथ आमिंटो से एक लिसनर जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने डेफिनेटली चेंज की बात की. एक हमारे साथ और लिसनर जुड़े जिन्होंने कंफर्ट की बात की. अब आपका टेक क्या है मुझे बताइए. नंबर इज 443-443-77. फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक.

FM 107. Time check. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स और टाइम फॉर द टाइम चेक. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:04.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 7:13 ऑन द क्लॉक. आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है कंफर्ट या फिर चेंज. एक और बड़ा प्यारा सा सवाल मेरे जहन में आया कि आप कंफर्ट पिक करें कि चेंज पिक करें. तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और एंगल आपके लिए ऐड कर देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि चेंज जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट के लिए होता है. What do you think? जो भी चेंज आप आज एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कल के आपके कंफर्ट के साथ होता है. क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए मुझे. फिलहाल एक कॉलर यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं शिमाना? बहुत अच्छा गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से. उम्मीद कर रही हूँ आपने भी भरपूर तरीके से अपने वीकेंड को एंजॉय किया होगा.
1: जी, बढ़िया वीकेंड.
0: ग्रेट.
1: तो आपका जो टॉपिक है ये एक्चुअली बड़ा, आई कैन नॉट चूज बिटवीन दैट वर्किंग.
0: अच्छा. मैंने आपके लिए एक और ही सवाल बना लिया जब तक आप आए, आप जुड़े मेरे साथ. क्या आपको ऐसा लगता है कि चेंज जो है वो कहीं ना कहीं चल के कंफर्ट के लिए ही होता है?
1: मतलब ऑफ कोर्स बिल्कुल आपने ही बात सही कही कि अल्टीमेटली व्हाई वी चूज चेंज इज बिकॉज़ वी रिलेटिवली आगे चलकर हम जो है ना एक कंफर्ट जोन में जाना चाहता है हर इंसान शायद. ये तो है. और एक्चुअली जो चेंज और कंफर्ट है ये मतलब डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के किस फेज में है. कि इसलिए भी डिपेंड करता है कि ये डज इट रिलेट्स टू प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ. ये सारी चीजें आपको इन फैक्टर्स को डिसाइड करती हैं कि आई वुड यूज चेंज और कंफर्ट. तो और जैसे जैसे एक लेकिन एक चीज इसमें जो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज टू इम्प्रूव योरसेल्फ. आप एक रोज एक बेहतर इंसान होना चाहिए आपको. मतलब यू शुड डेली इवॉल्व योरसेल्फ. दैट रिक्वायर्स चेंज. अब उस चेंज में आपकी हैबिट्स जो है वो ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, वो पर्सनालिटी हैबिट्स हो सकती हैं, वो आपकी लर्निंग स्किल्स हो सकती हैं. देयर कैन बी न्यूमरस थिंग्स विच यू कैन वर्क अपॉन. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो आप एक साइड तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ हो वो कम्फर्ट हो वहाँ, ठीक है. बट ऑन द सेम टाइम आपकी जो पर्सनल लाइफ हो उसमें डेली चेंज हो रहा मे बी. तो I would choose both. I mean, I will not choose either of the two. मेरी लाइफ जो है वो हर वक्त जो है वो इन्हीं दोनों में ही चलती रहेगी. Choose or comfort or change के बीच में. अब for instance like if there is a youngster who is just graduated. तो अब आप वहाँ उसके लिए वो हम देखते भी हैं बहुत कॉमन है ये. तो वहाँ शुरू में होता है कि वो बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली दे चेंज देयर कंपनीज देयर करियर. बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं बिकॉज वहाँ पर वो ग्रोथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसपे. बट एट अ सर्टेन स्टेज वो जाकर फिर दे गो बैक टू चूजिंग वन कंपनी ओवर द अदर. तो ऐसा होता है कि लाइफ में आप जो है वो कम्फर्ट और चेंज के बीच में झूलते रहते हैं. लेकिन पर्सनली जो है वो आप एज एन इंडिविजुअल आप जो है आपको हमेशा मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफकोर्स हो नहीं पाता है. वो ये है कि मैं चेंज की तरफ जो है वो बेहतर इंसान बनने की तरफ कोशिश करता रहता हूँ रोज. और दैट रिक्वायर्स चेंज.
0: सो यू आर सेइंग लाइक चेंज विद कंफर्ट. आपके कंफर्ट के साथ चेंज आए.
1: हाँ देखिए एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है. और इट्स लाइक जैसे आप सपोज करिए कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं जहां तक इसको समझना. आप जैसे कि आप सपोज ना लाइक आपकी बॉडी है अब आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली उसको, ठीक है. अब आप उसको जो है अब इट नीड्स रिकवरी. सो दैट मींस इट रिक्वायर्स कंफर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट आप हर वक्त उसको कंफर्ट में नहीं छोड़ सकते उसको. देन इट विल डिग्रेड.
0: सही सही. बिल्कुल,
1: तो वो आपको इसी तरीके से दोनों ऑप्शंस के बीच में जो है, मतलब एक्चुअली ऑप्शन नहीं है मेरे नजदीक, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज द वे योर लाइफ इज यू नो डिजाइंड और दिस हाउ इट वर्क्स फॉर यू. प्रॉब्लम
0: क्योंकि हम सब जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ चाहते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेबल लाइफ आई मीन टू से इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए. वो आपको कंफर्ट, मतलब लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी कंफर्ट का हिस्सा है और वो होना चाहिए, वो हमेशा ही होना.

0: भूख से नहीं चलती कि एक बंदा चला लेगा।
1: मैं 110% बल्कि 1000 times मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जितनी आपकी लिमिटेशंस हैं और जितने आराम से और एग्जाइटी जो उन्होंने बात की, मैं 100% इस चीज की तायद करता हूँ। मैं खैर वो तो खैर मैं मजाक की बात कर रहा था तो, लेकिन जितना आपसे बन पाता है उतना ही आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इसके जो पसे पर्दा देखे ना, नुकसान क्या है, एग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर है, जहनी टेंशन है, स्ट्रेस है, मतलब दिली सुकून नहीं है, वो अपनी जिंदगी को छोड़ के वो काम जो छोड़ के उसकी उसकी सोचों में गुम है।
0: हाँ, सही कहा आपने।
1: मुस्कुराहट उसके होंठों पे नहीं है, चेहरे पर वो ताजगी नहीं है, बहुत सी चीजें,
0: बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही।
1: तो
0: मतलब आप कहते हैं गुड बैलेंस होना चाहिए, चेंज को भी एम्ब्रेस करें और अपने कंफर्ट को भी जो है उसको भी थोड़ा सा उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हर वक्त अपने को स्ट्रेस में ही डाल रखा है, चैलेंजेस ही आप रोज जो है वो ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी नहीं होना चाहिए।
1: नाजिया, सबसे बड़ी जो चीज है ना, कम्फर्ट रहने के लिए वक्त है, क्योंकि जो जो शख्स जो इंसान वक्त की कदर करे या वक्त को पकड़ के रखता है, अब यकीन कीजिए कि मैं कल मतलब पूरे दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं सुबह 3:10 पे उठता हूँ, ओके, 3:10 के बाद मैं रात को 10:45-11 बजे जाके लेटता हूँ, और उसके अंदर मेरे पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें मेरी इबादत है, नमाज है, मेरी स्पोर्ट्स गेम 2 घंटे है, मेरा फैमिली टाइम है, मेरे दोस्तों के साथ जो वक्त है, मेरे रिलेटिव के साथ, माशाल्लाह कुछ मतलब एक सेकंड का भी हवा नहीं होती, हर चीज बिल्कुल करनी चलती है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड कंफर्ट, मतलब वो रूटीन से वो चीज चलती जा रही है।
0: अब आप उसी में आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं।
1: अगर वो चीज ना हो ना तो मैं उसमें मतलब मैं हर्ट होता हूँ, मेरी जात हर्ट होती है कि यार ये क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने इसको
0: मान लीजिए आपका ये रूटीन है, इसमें कोई चेंज आ जाए, जो आपने रूटीन फॉलो किया जो आप बता रहे हैं उसमें अब चेंजेस कोई आ जाए, वो हो भी सकता है कि कोई ऐसी चीज आ गई ऑल ऑफ सडन कि आप अपना रूटीन एज सच जैसे आपने डिजाइन किया वैसे फॉलो नहीं कर पा रहे और चेंजेस आ रहे हैं या चेंज आ रहा है, तो आप कैसे, आप जैसे आपने कहा आप बेचैन महसूस करते हैं, यू फील दैट
1: एग्जैक्टली। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कभी कभी ड्यूटी मेरी 24 आवर आ जाती है, तो उसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी जो जिस तरह मैं गेम खेलता हूँ लॉन टेनिस, ओके, और मैं उसके अंदर वो 1.5-2 घंटे अगर मैं उस दिन नहीं जा पाता तो आई फील फीवर ब्रेकिंग बॉडी, मुझे फील होता है कि आज मेरे जिस्म में सुस्ती है, क्योंकि मैं हैप्पी चलूँ सादत का। तो बाकी मौजू तो बहुत अच्छा है, तो बस ये है कि मेरी राय में सिर्फ कम्फर्ट जो जिसको आराम कामयाबी की शर्त नहीं है, ये मुस्बत तब्दीली के लिए चेंज होना जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: इतनी सी बात कहूंगा,
0: बहुत सही, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बात रखी, अपने एग्जांपल को देते हुए यहाँ पे रखी, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। मुझे जो समझ में आया वो ये कि पर्सनल लाइफ में तो हम कंफर्ट चाहते हैं बट प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस भी एम्ब्रेस करना चाहिए, वो जरूरी है। और जैसे एक लाइन आपने बहुत अच्छी कही, इतना कंफर्ट ना मिल जाए कि आदमी उससे भी बोर हो जाए, ये बात भी है, कुछ लोग हो जाते हैं वाकई।
1: जिंदगी की जो चेंज आज हम जिस मुकाम पे हैं, सबसे पहले तो देखें आपकी जो नियत है, अल्लाह ताला जो रज़ाक है, जो रिस्क आपके नसीब में उसने लिख दिया है, वो चल के उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो चल के आएगा। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में होते हैं तो फिर आप सोचते कि नहीं यार अल्लाह ने मेरा जो रिस्क है वो नहीं, अल्लाह कहते कोशिश कर, हाथ पांव मारो, मजीद से मजीद मैं अता करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, कोशिश करनी पड़ती है। और नफीस भाई अपना वो एड्रेस भेजिएगा हॉस्पिटल का, वो सर्जिकल साइकोलॉजिकल
0: ये तो बहुत ही अच्छा है, बट आई रियली लव हिज ऑनेस्ट अप्रोच, है ना, ये भी होना चाहिए बंदे में, इतना इतने गट्स तो कि कहें कि नहीं आई लव माय कंफर्ट, सच पूछिए तो इवन आई लव माय कंफर्ट, दिल्ली नहीं जाता मैं बाहर से निकलूं कंफर्ट से।
1: मैंने प्यारे इंसान है वो नफीस भाई ना, मैं मतलब उनसे 2-3 दफा मेरी बात हुई, बड़ी गपशप वाले और बड़ी हंसमुख बंदा और बड़ी शेर, मतलब
0: वो तो लगा बात करके अपना मस्त है लाइफ में जो चल रहा है चलने दो, अपना कंफर्ट देखो भैया, साइड हो जाओ, ये वाली बात सही।
1: टेक गुड केयर, अपना ख्याल रखिए,
0: आप भी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों, सच्ची इतना मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर ना, बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है, कोई कंफर्ट के साथ जा रहा है, कोई चेंज के साथ जा रहा है, किसी को पर्सनल लाइफ में जो है वो जो है उसको कंफर्ट चाहिए बट प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस और चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है. तो बस मुझे इस तरह से आप लोगों की जो ओपिनियन है मिल रहे हैं, मैं खुद भी एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ पहुँच ही नहीं पा रही हूँ. तो मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है कि मैं कहाँ तक पहुँचूँ, मैं किसके किस टेक के साथ जाऊँ. वैसे सच बोलिए तो दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एंड हर चीज़ में हम कह देते हैं ना आजकल कि द गुड बैलेंस. भाई वो बैलेंस भी कहीं ना कहीं कंफर्ट के साथ ही रिलेट करता है. अगर आपके लाइफ में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, तो फाइनेंशियली आप कितना भी स्टेबल क्यों ना हो जाओ आपको सुकून नहीं मिलेगा. आप जो है ना वो चीज़ें जो जिसे हम कहते हैं सो कॉल अचीवमेंट्स या जो आपकी कामयाबी जहाँ होती है, जो सक्सेस है, वो सारी चीज़ें हम चेरिश ही नहीं कर सकते. मज़ा ही नहीं आएगा अनलेस एंड अंटिल आप मेंटली इमोशनली स्टेबल ना हो. तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कम्फर्ट का हिस्सा है. हमारे रिश्ते ठीक चल रहे हैं, रिश्तों में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमारी खुद की लाइफ जो है वो ठीक चल रही है, इन द सेंस हमारा एक प्रॉपर रूटीन है, हमारी सेहत ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट का हिस्सा हैं. और ये हैं तो हम प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस और चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं. वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे आपसे और इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. स्टे हुक्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
2: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: आए हाय, इतना अमेजिंग सा ट्रैक आपने जो किया।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: 7:38 का टाइम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग कहते कहते हम 7:38 की तरफ पहुंच चुके हैं। आज जो है वो एक टफ आपके लिए डिसीजन है कि कंफर्ट के साथ जाएं या चेंज के साथ जाएं। यहां पर वैसे देखा जाए दोनों को एक इक्वल वोट्स मिले हैं। लोग कंफर्ट पसंद करते हैं लेकिन चेंज को अपनाना मजबूरी भी है। फिर एक और मैंने एंगल आपके लिए ऐड किया और आपसे पूछा कि क्या चेंज जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट के लिए होता है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। जब मेरे जहन में आया तो मुझे लगा हाँ, एक्चुअल में अक्सर लोग जो हैं वो चेंज इसलिए करते हैं कि शायद कल आने वाले टाइम में बेहतर कंफर्ट हासिल हो सके। देखो, आज का एक बंदा, एक स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है ताकि कल उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। आज एक एम्प्लॉय जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोशंस के लिए, जो कि हम सब चाहते हैं, एक नई स्किल सीखता है, खुद को और थोड़ा सा बेहतर करता है। वहीं एक बिजनेसमैन है, वो नए आइडियाज़ इसलिए लेकर आता है ताकि कहीं ना कहीं उसको आगे चल के थोड़ा सा फाइनेंशियल कंफर्ट हासिल हो, स्टेबल हो। तो कई बार हमने और आपने देखा है कि जो चेंज जिसकी वजह से हम खुद को चैलेंज करते हैं, वो उसका जो फाइनल मकसद है वो है कंफर्ट को हासिल करना। फिर ये भी सवाल जहन में आता है और एक बात समझना जो हमें और आपको ज़रूरी है वो ये कि कई बार जो टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट है वो परमानेंट कंफर्ट की राह भी बन जाता है। आज की मेहनत, आज की लर्निंग, आज की स्ट्रगल और आज की जो आपकी जद्दोजहद है वो कल के बेहतर और कल का जो आपका जो सुकून है उन सब का सबब बनती है। तो बस कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का आपस में एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। और भी बातें मैं करूँगी बट मेरे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु, कौन है आपके साथ?
0: कौन है मेरे साथ? शहजादा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मैं कॉल लगाया और मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ था।
0: मुझे आपने डाला है?
2: बिजी था कि थोड़ा कॉल कर लेना, फिर बाद में फिर मैंने चलो अभी ट्राई करते हैं। तो मेरे दोस्त साथ में गाड़ी में है तो भी ट्राई करो, तो वो लोग भी सब सुन रहे हैं।
0: अच्छा,
2: तो मैंने कॉल किया तो फिर मैंने लगी जी।
0: ये आवाज पीछे से कौन कर रहा है?
2: हाँ,
0: ये आवाज कैसी आ रही है? कहाँ है?
2: हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं एक साइट पर हूँ ना।
0: अच्छा,
2: तो वहाँ पर क्या है ना, कुछ प्रोजेक्ट चलता है ना, काम वगैरह चल रहा है। आवाज आ रही है अब कम हुई?
0: हाँ, चलिए, आपकी आवाज फिर भी मुझे आ रही है, साइट से आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताइए।
2: अभी बराबर आ रही है?
0: हाँ, आपकी अब बराबर आ रही है।
2: अभी बिल्कुल कम्फर्टेबल आ रही है।
0: यस, अब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम कंफर्टेबल आ रही है मुझे।
2: जी जी, देखो ना, ये आवाज के लिए भी मैंने अपने आप को चेंज किया ना, क्योंकि कंफर्टेबल हो जावे ना।
0: हाँ,
2: आए ना, क्योंकि जहाँ पे वहाँ डिस्टेबल था, वहाँ डिस्टेबल था। हाँ, और अभी जहाँ पे आ गए और वहाँ पर एकदम अच्छे से पीसफुल और कंफर्टेबल हो गया कि हमारा कनेक्ट हो पा रहा है। तो इसी तरह आपके ये जो मेरा जो ये आंसर था आपके जो टॉपिक को है ना, डेलीगेट करता है कहीं ना कहीं।
0: अच्छा, बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, ये आपने सही कहा कि हमारे कंफर्ट के लिए और बेहतरी के लिए हमें चेंज को एम्ब्रेस करना ही करना है, विद नो चॉइसेस लेफ्ट फॉर अस। ये बात तो बिल्कुल सच है और आपने लाइव एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन भी कर दी ये बात।
2: जी, कंफर्टेबल जो है, कंफर्टेबल है क्या? कंफर्टेबल वही जो है, कंफर्टेबल जो आपका अपना हो, एक लम्हा हो या एक मिनट हो या एक घंटा हो, जो आपका अपना उस पे हो इख्तियार पूरा, आप कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। एग्जांपल, आप अगर आपको भूख लग रही है और आप सुकून से बैठकर अपना डिनर लिया, लंच लिया और बैठकर आपने खाया उसको और बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छे से मतलब महसूस किया, बहुत बेहतर एकदम, तो वो कंफर्टेबल है आपके लिए, क्योंकि वो आपका अपना है, वो सही है। उसके बाहर बात निकले तो आपके फिर तरह तरह के जो जॉब से जो आपके काम है जो आपको उसको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे ना अनकंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि उसको है ना पूरा अपना फाइनली फिनिश करना है उसको। ठीक है, तो जो लम्हा, जो मिनट, जो घंटा जो मिल जाए वो आपका अपना है, जो आपको अपने लिए हो तो वो कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल बिल्कुल आप अपने लिए। रही दूसरी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बल हो, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो और सक्सेसफुल नहीं हो तो मस्ट बी यू हैव टू चेंज अदर ट्रैक। हाँ, और वो भी चेंज करने का क्या, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे, हो सकता है कहीं लोग लॉस हो जाते हैं, हो सकता है कहीं लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कहीं लोग बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं।
0: बिल्कुल हाँ
2: जी, सही बात है। हाँ, वायरल है। तो वो चेंज, जो चेंज हर एक जिंदगी में हर एक इंसान की अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि यार उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ क्या होगा या नहीं होगा, चलो कर लेती, अगर नहीं हुआ तो सेकेंड ऑप्शन है, अगर वो भी नहीं हुआ तो थर्ड ऑप्शन है। हाँ, थर्ड ऑप्शन है, तो वो अप टू यू। अब आपके पास 104 ऑप्शन है ना, तो यू कैन डू वेल आई थिंक।
0: तो मतलब आप कहते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव इन योर लाइफ तो चलिए आप अपने कंफर्ट जोन में, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट तो जो चेंजेस हैं उनको आप देखिए और उन चैलेंजेस को जो है वो अपनाइए और अपनी लाइफ बेहतर कीजिए। तो वही बात आ गई अल्टीमेट।

0: डेफिनेटली जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्ट के लिए हम जो है वो पिक कर रहे होते हैं. हाँ, आज के चेंजेस कल के कंफर्ट हमारे हो सकता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो आप कंफर्ट और चेंजेस है ना, ये दोनों मतलब एक अच्छा सा मतलब है ना कॉम्बिनेशन है दोनों एक दूसरे के साथ में. तो वो हर एक इंसान हर एक एक जिंदगी में ना वो है ही है. अगर वो कोई एकदम से मतलब छोड़ दिया ना कि नहीं मैं तो बस इसी में ही हूँ मेरे को क्या करना है, तो वो जिसको बाप दादा के जमाने से अगर किसी को अगर विरासत में मिली हो ना तो वो बात अलग है. लेकिन बाद में फिर वो
0: पर वो भी खत्म हो जाते हैं.
1: बड़े बड़े प्रिंस हो गए तो वो कहीं कहीं ऐसे देखा भी हूँ मैंने अपने बॉम्बे में भी देखा हूँ ना जिनको विरासत में मिली है ना तो जिनको सिर्फ महीने का रेंट आता है तो वो बैठे रहते हैं. लेकिन अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ले ली है तो मेरे से छोटे हैं. हाँ तो वो जो मैं कर सकता हूँ मैं स्पोर्ट एक्टिविटी में रहता हूँ मैं खुश मैच खेल के खुश होता तो वो नहीं कर पाते. वो कहीं ना कहीं वो मिस करते वो सब चीज को. क्यों कि तुमने वो एक अपना अलग तरीके का कंफर्टेबल लिया हुआ है ना एकदम से. बस आराम से दोपहर के 12 बजे तक सोना है और रात को 2-3 बजे तक जागना है तो वो मतलब एक हाँ वो शेल्फिश एक तरह से एक शेल्फिश लाइफ जो होती है ना उस तरह से हो गई कि बस जो है यही है. यानी कुएं का मेंढू कुएं के अंदर क्या बोले यही दुनिया इसके बाहर कुछ भी नहीं है. तो हाँ बेहतर है कि हर एक चीज में आप अपना एक्सपेरिमेंट करें और चेंजेस लेकर आए. लेकिन जहाँ कंफर्टेबल और जहाँ आपकी जो खुशी है ना वही कंफर्ट है जो आपकी अपनी खुशी जो आपका अपना टाइम जो आप उसको महसूस करते हो. वरना हर कदम कदम पे हर एक जगह जो है आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जो है ना फेस करना ही पड़ता है. तो वो एक वक्त ही रहता है लेकिन हमेशा के लिए 100% जो पीसफुल जो कंफर्ट है तो वो बस ये कि आपने अपना काम तमाम किया और घर पे आके जो सो गए ना 6-8 घंटा जो सो गए वो आपके अपने हैं वो कंफर्टेबल है वो आप कंफर्ट है वहाँ पर.
0: सही यानी कंफर्ट को अपने जिंदगी का मकसद ना बनाएं कंफर्ट के लिए चेंज अपनाएं ये बहुत आपने बहुत ही जबरदस्त शहजादा जी. थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह. थैंक यू और सॉरी मैंने आपका मैसेज अब देख रही हूँ तो मैं वैसे अभी थोड़ी देर में जाने ही वाली थी अब मैसेजेस की तरफ लेकिन उससे पहले आपकी कॉल आ गई. हाँ नहीं कभी ऐसा हो आपको इशू तो बताइएगा जैसे हम देखेंगे तो आपको कॉल बैक जरूर करेंगे. ठीक है
1: हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. अपना जावेद भैया है जावेद भाई की मैंने कॉल से ली बहुत बेहतरीन थी.
0: हाँ मैंने आपका सलाम कन्वे कर दिया.
1: वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम और रईस भाई और तमाम लिस्नर और एक से बढ़कर एक है सबके लिए अप्रिशिएट है सबके लिए सलाम और आदाब.
0: तो बहुत ही मजेदार बात चल रही है आज हम जो है वो कंफर्ट और चेंज इन दोनों में से किसी एक को पिक करने की बात आपसे पूछ रहे हैं. आपको क्या लगता है आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल बीइंग इन योर कंफर्ट जोन या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चेंज को एम्ब्रेस करना जरूरी है फ्यूचर के कंफर्ट के लिए? व्हाट यू थिंक डू लेट मी नो ऑन द नंबर 6622107 या फिर आप मुझे कॉल और बताइए. नंबर है कॉल करने के लिए 4436377 और फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना नेहा कक्कड़ बिलाल सईद की आवाज में फ्रॉम द मूवी बाजार. एंजॉय दिस स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: दोस्तों ये वाकई हम सबकी कहानी है। जब मैं इस गाने को बड़े ध्यान से सुन रही थी तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये तो हमारी अपनी कहानी है। पूरी जिंदगी देखा जाए तो हम एक बेहतर ऑप्शन की तलाश करते हैं, है ना। कोई भी ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है ही नहीं, ना हम कंफर्ट में खुश हैं ना ही चेंज में। कंफर्ट के चक्कर में चेंज हम अपना लेते हैं और चेंज में कंफर्ट नहीं मिलता तो फिर परेशान होते हैं। जब कंफर्ट मिल जाता है तो चेंज की तरफ भागते हैं और फिर चेंज तकलीफ दे लगने लगता है। तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि एक्चुअल में हमारी और आपकी जिंदगी के लिए कंफर्ट भी जरूरी है और चेंज भी जरूरी है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नाजिया आपके साथ। इस टॉपिक को कंक्लूड करने का वक्त आ गया, बट बिफोर दैट एक लास्ट कॉलर के साथ हम यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं इस टॉपिक पे। ओके, नॉट द लास्ट फॉर दिस, मतलब इस दिन के लिए लास्ट कॉलर नहीं है बट इस टॉपिक के लिए लास्ट कॉलर है। लेट्स गेट कनेक्टेड। हेलो,
2: हाँ जी, यूपी वाले की हाल चाल है तुम्हारा?
0: चंगा जी, आप बताओ कैसे हैं, कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग?
2: ब्रिलियंट मैडम।
0: नाइस, अ न्यू वर्ड, क्या बात है। तो चलिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी जा रही है और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। दो चॉइसेस हैं कंफर्ट और चेंज की, आप किसके साथ जाएंगे?
2: नाजिया जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे।
0: हाँ जी,
2: अगर प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से आप कंफर्ट जोन की एग्जांपल देना चाहोगे तो आप क्या दोगे?
0: प्रोफेशनल लाइफ में तो मैंने एक चीज कही खुद भी कि आप कंफर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया का जो उसूल है ना कि आपको सीखते रहना है, अगर सीखेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन हाँ, कंफर्ट जोन अगर प्रोफेशनल लाइफ में एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे अरसे तक टिकूं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेंज ना करूं, जो आपकी कंपनी उसे मैं चेंज ना करूं, उसके साथ एक लंबे अरसे तक टिकना मेरा इज माय कंफर्ट जोन।
2: ठीक है, ठीक है, तो ये है कंफर्ट जोन। ठीक है जी,
0: आपको क्या लगता है
2: मैडम? मेरे हिसाब से मैडम देखिए, जो बंदा कंफर्ट जोन में होता है ना मैडम, वो अगर चेंज भी देखेगा ना वो भी कंफर्ट वाला ही देखता है मैडम।
0: अच्छा, ये भी एक नई बात है, कैसे?
2: जी नई बात देखिए मैडम, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास मिलियंस रुपए पड़े हैं बैंक में, ठीक है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है और मैंने कहीं पे जाना है, ऑलरेडी मैं कंफर्ट जोन में हूँ घर में, ठीक है, तो मेरी यही सोच रहेगी कि जाने से पहले बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है भी गाड़ी को 15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया जाए, फ्यूल वेस्ट होता है, होने दो। तो देखिए कंफर्ट जोन से निकल के मेरी सोच फिर दोबारा उसी कंफर्ट जोन में जा रही है।
0: तो मतलब आप ये कहते हैं अगर आप चेंज भी कुछ ला रहे हैं तो वो भी आपके कंफर्ट के लिए है, अगर कुछ चेंज भी आ रहा है तो कंफर्ट के लिए।
2: जो बंदा कंफर्ट जोन में है वो अगर चेंज भी लाएगा ना मैडम, मोस्टली सभी नहीं, वो बंदा वही देखता है भी मेरा आगे वाला जो प्रोसेस है वो भी कंफर्ट जोन में ही हो।
0: तो हम चेंज लाते हैं इसीलिए कि हम जो है ना वो कंफर्ट जोन में ही रहें, बट कई बार क्या होता है कि हम कंफर्ट जोन में आ ही नहीं पाते,
2: हम कंफर्ट जोन में आ ही नहीं पाते,
0: वो चेंज का ही हम शिकार बने।

0: रहते हैं अब ये चेंज अब, क्योंकि हम पता है क्या इंसान ऐसे इतना ग्रीडी है, ऐसे कहना नहीं चाहिए बट है, हम सब इतने ग्रीडी कि हमारी लालच का कोई एंड नहीं है, कोई है नहीं है,
1: नहीं
0: अब
1: है,
0: ये अब वो हमारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते चीज़ों में, और जो लोग हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है बट कम होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सेटिस्फाइड रहो भैया, चुप रहो, चुपचाप बैठो, और अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उन्हें डेफिनेटली एक्सप्लोर करते हो, है ना
1: मैडम। एक्चुअली चक्कर पता क्या है नाजिया जी, देखिए जैसे हाँ। आपके पास पैसा है या मेरे पास पैसा है
0: हाँ।
1: तो हम लोगों की फ्यूचर की सोच क्या होती है, या तो बंदा इन्वेस्ट करे या गोल्ड खरीदे
0: हाँ।
1: ये गोल्ड वाली बात सही है ना मैडम
0: हाँ,
1: तो वो बंदा क्यों खरीदता है, अपने फ्यूचर के कम्फर्ट के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कंफर्ट के लिए काम करना बुरा नहीं है, हमें करना चाहिए, लेकिन कंफर्ट जोन में आना बुरा है। अब कंफर्ट जोन से मेरा मतलब क्या है, कंफर्ट के लिए तो हम सब काम करते हैं कि हमें आराम मिले, है ना, हमें एंड ऑफ द डे जहनी आराम चाहिए, मेंटली चाहिए, फिजिकली चाहिए, जो कि चाहिए, लेकिन हम कंफर्ट जोन में ना है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि मैं अब कुछ सीखना ही नहीं चाह रही नया, मैं इस जॉब के साथ इतनी खुश हूँ, मैं इस कंपनी के साथ बहुत खुश हूँ, जो मुझे आता है मुझे बहुत आता है, ये सोच मुझे कंफर्ट जोन में ले जाती है और मैं अब कुछ नया सीखना नहीं चाहती। जबकि हम और आप जानते हैं कि दुनिया कितना रैपिडली चेंज हो रही है, हर रोज कुछ नया हम लोग के पास है सीखने को। अब हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है, लेकिन एकदम से जरूरत आ जाएगी क्या हम तभी फौरन सीख पाएंगे, नहीं सीख पाए चाहते।
1: मैडम एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं ना पिछले 20-25 साल से
0: हाँ।
1: बंदों को देख रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा डालना है सुबह, ठीक
0: हाँ।
1: है
0: हाँ।
1: पूरा दिन एसी में रहना है घर में, अच्छा हाँ। खाना पीना है
0: हाँ।
1: इवन आप यकीन मानिए वो लोगों को साइन भी नहीं करना आता। तो अच्छा। मैडम उनके पास जो उनका कंफर्ट जोन है ना
0: हाँ।
1: वो ऐसे ही बरकरार है पिछले 20 सालों से। देखिए अभी आईफोन भी आया, ये पिछले कुछ सालों से ही आया है ना, वो बंदे आईफोन भी चला रहे हैं मैडम, पैसे गिनने के लिए उन्होंने मशीनें रख रखी हैं। तो जो बंदा कंफर्ट जोन में है ना मैडम
0: हाँ।
1: वो अभी भी मैं उसको देखता हूँ वैसे ही कंफर्ट जोन में है मैडम।
0: मुझे लगता है वो ब्लेस्ड है, उनके साथ ऊपर वाले की खास रहमत मेहरबानी है, क्योंकि कितना भी आपके पास पैसा हो अगर आप पैसे से पैसा नहीं बनाना जानते, ये भी एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है, उसके लिए खुद को भी चैलेंज करना पड़ता है और सारे चेंजेस एम्ब्रेस करने पड़ते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी को वो अपने बिजनेस या जो भी एक्स वाई जी काम करे उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे।
1: मैडम जो टेक्नोलॉजी बनी है ना देखिए हाँ। सबसे ईजी काम क्या है, सपोज कीजिए आपने AI का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपको लिखना कुछ आता नहीं, ठीक है, कुछ फॉन्ट्स के बारे में नहीं पता, उन्होंने सिंपल ऑप्शन दे दिया, आप उनको बोलो उसका जवाब आपके पास बोल के ही आ जाएगा।
0: हाँ नहीं ठीक है, लिखना आसान हो गया, AI टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारी आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो कुछ स्ट्रैटेजीज तो आपको अपने जहन से भी लगानी पड़ेंगी ना, एकदम से सारा बिजनेस AI के ऊपर, AI के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते आप, बताओ तो कैसे कामयाब होगे।
1: स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो ना आप, वही हाँ। तो मैंने आप पहले आपसे बात की भाई, स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली बंदे के दिमाग में आ जाती है जब बंदे की जेब भारी हो।
0: अच्छा।
1: तो मैं मैडम एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ आपको कंफर्ट अच्छा। जोन की,
0: अच्छा
1: कंफर्ट जोन की और चेंजेस की
0: हाँ।
1: अगर आपने अच्छी खासी एग्जांपल देखनी है ना तो इंडिया हाँ। में आप किनको देखोगे।
0: अब मैं ये तो नहीं कहूंगी बड़े बड़े बिजनेसमैन ना,
1: नहीं नहीं नहीं मैडम, मेरे हिसाब से जो है ना इंडिया के पॉलिटिशियंस है मैडम।
0: अरे अरे
1: वो देखो मैडम बंदे कंफर्ट जी
0: उधर मत जाइएगा
1: नहीं नहीं मैडम सभी ज्यादातर वो लोग देखो मैडम कंफर्ट जोन में भी रहते हैं, चेंजेस भी लेके आते हैं समय के हिसाब से। तो ये मैं टॉपिक के हवाले से बात कर रहा
0: हूं, इतना दिल चाह रहा है कि मैं इस पे आपको इतनी अच्छी बात बताऊं, इतनी अच्छी नाम लेके बताऊं, पर मैं बता नहीं सकती। मैं आपको, आप मुझे मैसेज कीजिए फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी, ठीक है, ऑन एयर तो नहीं बता सकते।
1: पता क्या है फिर मेरे भी थॉट्स होंगे, फिर अच्छी बात नहीं आई है ना।
0: नहीं मैं आपको हाँ, लेकिन चलिए अब आपने कहा, लेकिन बताए हमें जैसा दिख रहा होता है ना वैसी लाइफ नहीं होती है, और जो जितने ऊपर पोजिशन पे होता है ना बिलीव में उस पर उतना प्रेशर होता है। और सबसे बड़ी आर्ट, जब मैं एक इंटरव्यू करती हूँ कतर बिजनेस, जहाँ पे मैं CEOs को ही सिर्फ लेती हूँ, जितने भी कंपनीज के CEOs हैं सारे, तो मैंने उनसे जो बात करते करते सीखा, वो मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो आपके फेस पे नहीं आना चाहिए,
1: वो आपके फेस पे।
0: हाँ, ये सबसे बड़ा उन्होंने जितने सीईओज थे यूनानिमस

0: इसलिए सबने ये बात कही मुझसे कि ये हमारा सबसे बड़ा काम है कि हमें जो प्रेशर है वो लेना है दैट टू कूलली काम ले. हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी जॉब है. तो हम आप जो है वो शायद हम नहीं समझते, हमें लगता है ये तो सही हो, इसके तो कितने मजे, कितने कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है. बट नहीं, उसका प्रेशर भी उतना ही बड़ा है. जितनी बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज्यादा प्रेशर.
1: बस वही है, अगर प्रेशर वो लोग बैलेंस में लेते हैं मैडम, तो बाद में फिर अच्छी डाइट भी उन्हीं को खाने को मिलती है जी.
0: ये बात है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलने का चांस भी है. ये तो है
1: जी, बिल्कुल ना.
0: जितना कम लेंगे उतना कम मिलेगा, ये तो है. अब हम लोग क्या है कि हम लोग उतना बड़ा रिस्क ले नहीं पाते ना, क्योंकि हम डरते हैं, हमें खुद की स्किल्स पे भी डाउट होता है, है ना, कई बार. और फिर हमारी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने लोगों की जिम्मेदारियां हम पर, कि हम रिस्क चाह के भी नहीं ले पाते कि उनको कौन देखेगा हमारे पीछे.
1: पता क्या है, आजकल जो दौर है ना, दौर वो बहुत ज्यादा कंपटीशन का दौर है, इसीलिए हर बंदा डरता है भी कंफर्ट जोन में बैठ के. हमारा जो बना बनाया काम है, अगर ये भी दबाव हो गया तो
0: ये खत्म हो जाएगा बंदे. बिल्कुल 100% सही कही कि आज का दौर ऐसा दौर नहीं है कि हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लें, अपनी जॉब्स को लेकर लें. नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज़ें बहुत लिमिटेड है, सेचुरेशन की तरफ आ रही है. तो ये हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ही पड़ता है. ये आपने बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सच्ची और एकदम सटीक बात.
1: बाकी मैं मैडम यही दुआ करता हूँ कि अपने जितने लिसनर्स हैं, आप हो या मैं हूँ, आने वाले समय में अच्छे कंफर्ट जोन में रहें.
0: आमीन.
1: अच्छी जॉब के साथ.
0: बिल्कुल, मेरी भी यही दुआ है आपके साथ कि हम सब जो है वो चेंज भी अपनाएं, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए. बिल्कुल, वेरी वेल सेड, फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच गाबा जी, थैंक यू, प्लेजर. इट वॉज ऑलवेज, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, हमेशा ही. थैंक यू जी,
1: टेक केयर,
0: बाय. ऑलराइट, तो बहुत ही अच्छी मजेदार बातें हो रही है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितना कुछ इस पर बात करूँगी, इतना अच्छा लग रहा है बात करते करते. खैर, यहाँ पे अब हम जो है अपने शो के थर्ड आवर में एंट्री ले रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे मैंडेटरी ब्रेक, इस टॉपिक को कंक्लूड, एंड हमारा गेम सेगमेंट.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, 8:08 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक की घड़ी में, और फिलहाल देखा जाए तो समर मॉर्निंग्स के थर्ड आर में हम एंटर हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त कहाँ निकल गया।

राइट गाइस वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और 8:08 हो चुका है हमारे स्टूडियो क्लॉक में. तो चलिए आप जल्दी से इस टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं. और मैं तो यही कहूंगी कि कंफर्ट भी ज़रूरी है ज़िंदगी में और चेंज भी ज़रूरी है ज़िंदगी में. ना सिर्फ कम्फर्ट का पीछा करना चाहिए और ना ही हमें हर वक्त चेंज के पीछे भागना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए कंफर्ट कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी देता है लेकिन चेंज हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंफर्ट कहीं ना कहीं हमें सुकून देता ही देता है लेकिन चेंज हमारी तरक्की के लिए इंपॉर्टेंट है. वहीं कंफर्ट हमें जो है

है वो महफूज रखता है, लेकिन चेंज हमें मजबूत बनाता है। असल समझदारी ये है कि इंसान जो है वो अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको स्टेबल रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्रोथ का मौका मिले तो अपने कंफर्ट जोन से नेसेसिटीज़ के लिए बाहर निकलने से ना घबराए। मेरा मतलब है उन चेंजेस को एम्ब्रेस करें। अगर कामयाबी को हम एक सफ़र समझने लगे या समझते हैं, समझा जाए, तो कंफर्ट उस सफ़र की मंजिल नहीं है। कंफर्ट जो है वो कभी भी उस सफ़र की मंजिल नहीं है, बल्कि आराम एक स्टेशन का नाम तो हो सकता है। असल जो सफ़र है वो चेंज के ज़रिए तय होता है। जब लोग अपने कंफर्ट में रहकर कुछ नहीं करते तो वो कुछ वक्त तक तो पनपते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर धीरे धीरे उनका डाउनफॉल कह सकते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। जब लोग सिर्फ कंफर्ट को पकड़कर बैठे रह जाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। जब लोग चेंज को सिर्फ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब रह जाते हैं। इसीलिए दोनों के बीच गुड बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि लाइफ बिगिंस वेयर द कंफर्ट जोन एंड्स, जहाँ आप अपने आप को चैलेंज करने लग जाते हैं, छोटे छोटे गोल्स अपने लिए जो है वो सेट करने लग जाते हैं, खुद को जो है थोड़ी सी परेशानी में डालते हैं कि मुझे नया सीखना है। कंफर्ट आपको सुकून देता है, लेकिन चैलेंज जो है वो आपकी ग्रोथ का सबब बनता है। तो लाइफ में ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैसे आज का बहुत ही कमाल का मिक्स रिस्पॉन्स था और मुझे बड़ा मज़ा आया आप सबके साथ जुड़कर। कुछ मैसेजेस भी हैं जो लिसनर्स ने हमें भेजे हैं, तो ज़रा उसको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग नाज़िया जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं किसी ने कुछ जवाब भी दिया। अच्छा, गुड मॉर्निंग कहा रमेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। शहजादा जी ऑल राइट, और हाँ आपसे तो हमारी बात हो ही गई। यहाँ पर हमारे साथ है मियाँ बख्श उदासी जी, जो सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं, सलाम कहते हैं, और सभी लिसनर्स को अपने सलाम का वालेकुम अस्सलाम। सलाम नाजिया और शिमोन कहते हैं, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू सेम हियर शिमोन, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। एंड उस्मान हमारे साथ हैं आप कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। अरे दिल तो उस्मान जी सबका चाहता है कि है ना हम कंफर्ट में रहें, लेकिन कई बार हमारी मजबूरियां, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें धक्के दे के कंफर्ट से बाहर लेकर आती हैं। आओ भाई चेंज की तरफ आओ। तो क्या कर सकते हैं, हर इंसान की अपने अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। यहाँ इंजीनियर मोहम्मद फैज़ान जी हमारे साथ जुड़े और एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग की उन्होंने रिक्वेस्ट की, दो वो हमारे पास था नहीं, मैंने आपको बोला, बट हाँ आपने हमें कहा है कि इसको हम डालते हैं, तो ज़रूर हम आपके लिए इसको कल इंशाल्लाह, आज हम अपनी टीम को बोलेंगे, कल प्ले करेंगे। सलाम नाज़िया जी, मैं आज बहुत सैड हूँ। हाँ ओके, इंशाल्लाह ज़रूर नूर जी हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। नफीस भाई रईस जी पूछ रहे हैं, आपको लोग जो है वो पूछने लगे हैं। यहाँ पर सैयद खादिम हुसैन जी हमारे साथ जुड़े, सलाम कहते हैं एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड सलाम कहते हैं। मोहम्मद यूसुफ जी वेलकम कहते हैं, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहा, उम्मीद कर रही हूँ आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा रहेगा। आगे कहते हैं, मैं कम्फर्ट को चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे जो है जिसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ वो अच्छा लगता है। चेंजेस तो दुनिया के चेंज जो है वो दुनिया का उसूल है, चेंज को अपनाना भी ज़रूरी है, और वही चेंज थोड़े वक्त के बाद चेंज फिर से कंफर्ट होने लगता है। हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जो चेंज है जब हम उसे अपना लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेंज हमारा कम्फर्ट भी बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत लाइन। अच्छा इसके साथ गुड मॉर्निंग मैम, पवित्र सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, I don't know, I pronounced your name well or not. पवित्र मान जी इनका नाम यहाँ पर दिख रहा है। ओके वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ हुसैन जी हमारे साथ हैं और कहते हैं कि मैडम दिल तो चाहता है कि कंफर्ट में ही रहूं, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आ जाता है। देखिए वही चीज़ है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि चाह के ना चाह के हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। वैसे मज़ा तो बहुत आता है, अपने कंफर्ट जोन में रहो, आराम से रहो। फैसल हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं, मैडम दिल कुछ भी कहे चेंज तो अपनाना ही पड़ता है। दैट्स ट्रू, चेंज तो हमारी लाइफ का जो है वो अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और आज की दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी तेज़ी से हो रही है कि वो भी हम नहीं चाहते, बट हो रही है. यहाँ हमारे साथ जो है वो साथ जुड़ गए हैं. गुड मॉर्निंग कहते हैं, आई एम एंजॉइंग योर शो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज. अच्छा दोस्तों, अब जो है छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊँगी तो अब आपके साथ जो है ना वो गेम का भरपूर आगाज़ हो जाएगा. पहला गेम हमारा होगा आपके साथ व्हाट्सएप पे. यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको हिंट दूंगी, किसी के बारे में कुछ खास बात करेंगे और आपको गैस करना होगा कि ये बंदा या बंदी है कौन. ठीक है, ये हमारा सेगमेंट प्योरली जो होता है हमारे व्हाट्सएप लिसनर्स के लिए है. सिर्फ मैसेज के थ्रू हम आपके जो है वो आपके जवाब लेते हैं. फिर दूसरा हमारा गेम सेगमेंट है, वो भी आज का इंटरेस्टिंग सा है, वो भी आएंगे तो उसके साथ भी हम आपको बताएंगे कि आज कौन सा गेम हम खेलने वाले हैं. फिलहाल के लिए जो है वो जुबीन नौटियाल पूरी तरह से अपनी आवाज़, अपना गला भरपूर लिए बैठे हैं और कह रहे हैं आ जाइए, जैसे मैं भी आपसे कह रही हूँ आइए जुड़िए हमारे साथ. नंबर इज 4434377, या फिर आप मुझे मैसेज कीजिए 4434377 पे, तो कॉल है 6666221107 पे मैसेज.

0: सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 8:24 ऑन द क्लॉक. तो चलिए कुछ छोटी सी अपडेट्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर अपने गेम सेगमेंट की तरफ भरपूर तरीके से आ जाएंगे. एंड बैक टू बैक आज हमारा गेम होगा, चलता रहेगा, ठीक है. तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ये कि दोहा से एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ है ये, और ये आर्ट लवर्स के लिए बेसिकली है. फायर स्टेशन जो कि कतर म्यूजियम का कंटेम्प्रेरी आर्ट हब है, यहाँ आर्टिस्ट इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम 2027 के दूसरे एडिशन के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो मांगी गई हैं. आपको बता दें कि ये महीने मतलब 9 महीने तक ये पूरी तरह से फंडेड प्रोग्राम जो है वो मार्च से शुरू होगा और नवंबर 27 तक जारी रहेगा. तो पूरे 9 महीने

तक ये चलेगा. कतर और दुनिया भर के जो इमर्जिंग विजुअल आर्टिस्ट है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जैसा आप जानते हैं अगर आपकी दिलचस्पी है तो. वहीं आपको बताएं कि प्रोग्राम की जो क़यादत है वो मशहूर आर्टिस्ट और फायर स्टेशन के आर्टिस्टिक डायरेक्टर करेंगे. इस प्रोग्राम में 25 कतरी और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को स्टूडियो बेस्ड लर्निंग, मेंटोरशिप, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और लेक्चर्स के जरिए अपने आर्टिस्टिक स्किल्स और क्रिएटिव सोच को मजबूत बनाने का मौका दिया जाएगा. वहीं प्रोग्राम के आखिर में तमाम आर्टिस्ट के काम को एक खास एग्जीबिशन के जरिए दिखाया भी जाएगा. आपको बताएं कि फायर स्टेशन का कहना है कि इस इनिशिएटिव का जो मकसद है वो है कि मुख्तलिफ कल्चर्स के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर क्रिएटिव आइडियाज और मीनिंगफुल डायलॉग को फरोग देना. तो ये एक बहुत ही कमाल की अपडेट. चलिए इसी कमाल धमाल की अपडेट के साथ आपको अब बता देते हैं फ्यूल प्राइसेस जो अनाउंस किए कतर एनर्जी ने. जी हाँ, कतर एनर्जी ने अगस्त 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है और इस महीने जो प्रीमियम पेट्रोल है उसकी कीमत में कमी की गई है और प्रीमियम पेट्रोल अब 2 रियाल पर लीटर मिलेगा, जबकि जुलाई में इसकी कीमत थी 2.05 रियाल पर लीटर. तो थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर कमी आई है. वहीं पर सुपर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो जुलाई में जो थी वही इस अगस्त के महीने में भी सेम है और ये कीमत है 2.10 रियाल पर लीटर. इसी के साथ डीजल की कीमत की बात की जाए तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. अगस्त में जो थे प्राइसेस वही इस महीने, सॉरी माफ कीजिएगा, जो जुलाई में प्राइसेस थे वही इस महीने अगस्त में भी रहेंगे और अगस्त में डीजल के जो प्राइस हैं वो है 2.05 रियाल पर लीटर. तो यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कतर में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तय की जाती हैं और सेप्टेम्बर 2017 से कतर एनर्जी हर महीने नए फ्यूल प्राइस की जो लिस्ट है वो जारी करता है. तो ये एक हो गई. और एक और अपडेट जो आपके साथ अब मैं शेयर करती हूँ वो है अशगाल के हवाले से. जी, अशगाल ने अलखोर म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर एक स्मार्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है. आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है अल तवासुल पार्क और अलखोर म्युनिसिपैलिटी पार्क में लगाया गया है, जहां पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की जो खपत है उसमें 25% कमी हासिल हुई है. वाओ, इस निज़ाम में जो है वो एडवांस मॉइस्चर सेंसर्स हैं, इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मिट्टी की नमी को मॉनिटर करते हैं और साथ ही पौधों की जो असल ज़रूरत है उसके मुताबिक ही पानी देते हैं. यहाँ पर अशगाल के मुताबिक इस स्मार्ट सिस्टम से पानी का जो ज़ाया होना है वो कम हो जाए, ज़ाया नहीं होगा और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट में भी कमी आएगी और इरिगेशन जो है वो बेहतर होगा और इरिगेशन एसेट्स की लाइफ भी बेहतर होगी. तो ये भी अपने आप में बहुत ही कमाल धमाल की न्यूज़. तो चलिए, सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी. और हाँ, कतर मेट डिपार्टमेंट ने बताया कि अगस्त का महीना जो है वो काफ़ी गर्म रहेगा. यहाँ अब इस महीने में जो है वो ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो आप को अपना खास ख्याल रखना है. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, इसीलिए एक्सपर्ट्स का मशवरा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आफ्टरनूनस में बाहर गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें और पानी का ख्याल रखना है. धूप से आपको एहतियात करनी है और ख़ास करके बच्चों को और एल्डरली पीपल को अगर आप दोपहर में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए. तो चलिए, ये तो कुछ थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की. अब आ जाते हैं आज की अपनी उस कहानी की तरफ, या ये कहिए कि उस छोटी सी बात की तरफ जो हमें आपको मोटिवेट करती है इस शख्स के हवाले से. सबसे पहली बात जो इस शख्स के हवाले से मुझे मोटिवेट करती है वो ये कि ये बंदा अपने काम से काम नहीं रखता. ये बंदा अपने कंफर्ट जोन में भी नहीं रहता और ये बंदा उस हर चेंज को चैलेंज करता है जो लोगों के लिए नुकसानदेह होता है. यहाँ एक अलग ही एंगल है, हर उस चेंज को चैलेंज करना जो आम जनता के लिए, जो मास के लिए नुकसानदेह साबित होता है. तो इसका इस एक्टर का ताल्लुक बैंगलोर से था. बैंगलोर की गलियों में इन्होंने फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिएटर किया. महीने के चंद कुछ 100 रुपये कमा लेते थे लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था. हजारों स्टेज और स्ट्रीट आर्ट परफॉर्मेंस करते लेकिन उसके बाद भी चंद पैसे ही इनके हाथ लगते. अब इनको करना ये था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था क्योंकि इनके ख्वाब बड़े थे. जब ख्वाब बड़े होते हैं तो हर पल हमें जो है ना खुद को चैलेंज करना होता है, चेंजेस को एम्ब्रेस करना होता है, बार बार अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है क्योंकि हमारे गोल्स बड़े

लास्ट में नंबर है 321 कि आज का सवाल क्या है. बहुत ही अच्छी बात पूछी है. अभी तो इतनी बड़ी कहानी मैं बता के सुना के हती हूँ. अब एकदम छोटे से हिंट आपको दूंगी कि इस एक्टर को हम और आप जो हैं वो तमिल सिनेमा के थ्रू भी जानते हैं, तेलुगु के थ्रू भी जानते हैं, मलयालम मूवीज़ में भी काम किया इन्होंने. लेकिन एक रोल जो इनका बेहद पॉपुलर हुआ वो है सिंघम में जयकांत शिकरे का रोल. या कोई और आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या फेवरेट है तो वो भी मुझे बताइए. वॉन्टेड में इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल विलन का रोल किया था. एंड ऑफकोर्स दबंग 2 रेस टेम्पर. तो ये हम किस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं यह आपको मुझे बताना है. इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. बस आपको मुझे बताना है कि ये एक्चुअल में किस एक्टर के बारे में बात हो रही है. अगर समझ में आ गया है तो लिखकर मुझे भेजिए. 666-22-107 इज माई नंबर. एंड यस, कुछ और सही जवाब यहाँ पर आ गए. और जैसे एक भाई ने पूछा था बिल्कुल सही बताया है. इनका नाम है विशाम. विशाम आपका जवाब बिल्कुल ठीक है. एंड हु इज ही. अच्छा, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है. कुछ लोग और अभी टाइम ले रहे हैं. जब तक आप सोच रहे हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे फिर आगे आपके साथ गेम स्टार्ट करेंगे. स्टे हुक्ड एफएम 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ। 8:41 ऑन द क्लॉक वापस आ चुके हैं और यहां पर बहुत सारे और सही जवाब हमें मिल चुके हैं। बहुत लोग जो हैं उनके फेवरेट हैं, है ना, ये वो एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ही रेयर बात करते हैं, लेकिन हाँ वाकई दिल चाहता है कि इनके बारे में बात की जाए, करनी चाहिए। जहाँ पे बड़े बड़े हमारे सो कॉल्ड फेवरेट एक्टर्स जब बात नहीं करते, ये एक्टर्स बात कर जाते हैं कुछ ऐसी बात पे जहाँ बात करना ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट्स द राइट आंसर, शिमोन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। एंड अली भाई फहीम जी हमारे साथ, अच्छा अली भाई का रोल उन्होंने बताया कि बहुत ही दमदार है, उन्होंने क्या था। सैयद अनीस जी हैं और कहते हैं कि ये बैंगलोर से और मैं भी बैंगलोर से हूँ। वाह, चलिए जी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। एंड सलाम कहते हैं मुर्शीद जी हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए, वालेकुम अस्सलाम। राज नाम तो याद होगा, याद है, और अब आपको याद होगा कि आप जो है आज खुद को चैलेंज कर रहे हैं। तो आज आपको जो है वो गेम खेलना है, जुड़ना है हमारे साथ। प्रिंसन को भी जुड़ना है। शहजादा जी वालेकुम अस्सलाम, और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सही वाला जवाब दिया है फिल्म का नाम तो बताना ही पड़ता है, इन्होंने कहीं से कहीं तक अपना नाम लिख ही नहीं रखा है, लास्ट में 049। आपने हालांकि बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट प्लीज़ बताइए हमें कि आपका नाम क्या है। वालेकुम अस्सलाम, मुमताज़ अहमद हमारे साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद कर रही हूँ मुमताज़ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, अभी मुझे याद आया आपने एक गाना बोला था आपकी बेटी के बर्थडे पर चलाने के लिए, राइट? मैं वाकई भूल गई, आई एम रियली रियली सॉरी, बट आई होप आपने उनका बर्थडे अच्छे से स्पेंड किया होगा, उसने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया होगा। थैंक यू एंड माय अपोलॉजीज वंस अगेन। ओके, यहाँ पर मकसूद जी हैं, एंड मकसूद जी का भी ताल्लुक बैंगलोर से है, एंड दैट्स हाउ उन्होंने भी सही बिल्कुल जवाब दिया है। यहाँ शहजादा जी का तो हमने देख ही लिया बिल्कुल सही जवाब, और यो तौफीक जी ऑल सेट फॉर हिज ब्रेकफास्ट, पराठे और आज अंडा भी है, और भी कुछ है क्या? वाह जबरदस्त से पराठे तौफीक जी, आपको हजम हो जाने चाहिए, बस यही हमारी दुआ है। अच्छा चलिए, तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ ये कौन एक्टर हैं। अच्छा एक और मैसेज है अमजद इकबाल जी का। अरे अमजद इकबाल जी कैसे हैं भाई आप, इतने ज़माने के बाद आपका मैंने मैसेज देखा, उम्मीद कर रही हूँ आप खैरियत से होंगे। भाई बिल्कुल ठीक है, और एक दिन और भी आपका मैसेज आया था, हैं कहाँ आजकल आप, आपसे कभी बात ही नहीं हो पा रही है। तो बताइए भाई अपना हालचाल थोड़ा सा और भेजिए। एंड इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है शेख अली जी आपका मैंने नाम लिया, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड जितने लोगों ने यहाँ पर बोला है, प्रकाश राज क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, और आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। बिल्कुल, कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते, जिनको शायद हम उस तरह से नहीं जानते। अभी हम शाहरुख के लिए कोई हिंट देते, या सलमान की बात होती, या अमिताभ जी की बात होती, खड़ाक से सब बता देते। लेकिन हाँ, ऐसे एक्टर्स जो छुप के इतना अच्छा, इतना अमेजिंग काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम उतना ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि जो ये रियल टाइम हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, उनके बारे में बात होनी चाहिए। तो आज ना इनका बर्थडे ना कुछ, बस ऐसे ही कुछ इनके बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत इनके बारे में आज बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। और जब मैंने जाना, समझा, इनकी स्टोरी देखी, तो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी, और कहीं ना कहीं वो रिलेट भी कर रही थी आज के हमारे टॉपिक

0: के साथ कंफर्ट एंड चेंजेस. तो किस तरह से कंफर्ट से निकल के हर बार चैलेंज करना और चेंजेस एम्ब्रेस करना और वो चेंज बेहतरी के लिए हो, ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बात. और अब आ जाते हैं आज के गेम की तरफ. तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे, 15 से भी कम कहते हैं. तो आज का जो गेम है वो बहुत सिंपल रखा है मैंने. एक एक्टर का मैं नाम लूंगी, 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे, उनकी मूवीज जितनी मैक्सिमम आप बता सकते हो वो आपको बतानी है. जो सबसे ज़्यादा बता लेगा वो आज के हमारे इस गेम का जो है वो चैम्पियन होगा. ठीक है, यहाँ पर टाइम है, टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, 20 सेकंड्स आपके लिए रखे जाए और उन 20 सेकंड्स में आप जितनी मूवीज़ बता सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल से लाइक शाहरुख, तो शाहरुख की जितनी मूवीज़ आपके जहन में आती हैं वो आप मूवीज जितनी बता देंगे उतना ही आपका स्कोर बनेगा. सो नाउ व्हाट यू हैव टू इयर्स कि आप मुझे कॉल कीजिए या फिर मुझे हाय हेलो लिखकर भेजिए कि मैं आपको कॉल करूं. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉल करूं तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल कर लूंगी. कॉल करने के लिए वैसे नंबर है 4434377. तो मैं चाहूंगी कि कोई हमारा एक चैंपियन जो है वो आए, पहले जुड़े और उनके साथ हम इस गेम का आगाज करें, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ इस तरह से गेम होगा, इस तरह से हम खेलेंगे. तो फिलहाल एक कॉलर यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैर.
0: अरे वाह, तो ये तो अब्दुल सत्तार जी की आवाज लग रही है, राइट?
1: नहीं,
0: मैं नहीं पहचाना, बताइए.
1: अब्बास
0: बोल रहे हैं. अच्छा अच्छा, तो आप खैरियत से अब्बास?
1: आपकी इस्पानी का ना जी.
0: अब्बास जी, आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे कि नहीं?
1: गेम कौन सा गेम है तुम्हारा? फिल्मी?
0: हाँ फिल्मी. खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे बताइए. सब खैरियत है और मुझे खुशी हुई जान के कि आप भी खैरियत से हैं. चलिए आप मुझे बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन से हैं?
1: मेरी फेवरेट एक्टर वो था समझो अमिताभ बच्चन था.
0: अमिताभ बच्चन है आपका? फिर ठीक है, चलिए. तो आपको ना अमिताभ बच्चन की ही जितनी मूवियाँ याद है वो आपको मैं 30 सेकंड दूंगी. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम दूंगी. 30 सेकंड में आपको जितनी मूवी याद आती है वो मुझे बताएंगे. ठीक है?
1: ठीक है, इंशाल्लाह.
0: चलो जी, तो आपके साथ ही गेम स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं हैट्स ऑफ कहूंगी कि आपने इस गेम को लिया. तैयार है भैया?
1: 30 सेकंड जी हाँ, तैयार है.
0: ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. बताइए,
1: बताओ कितना मूवी था उसका?
0: जितनी जितनी आपको.
1: खुदा गवाह.
0: हाँ,
1: खुदा गवाह, दीवार और भूल गया.
0: सोचिए सोचिए, टाइम तो है.
1: खुदा गवाह, दीवार और क्या बोलते हैं, बादशाह, शाहनशाह, शाहनशाह और क्या बोलो, और नाजिया बहुत ट्रेन में पूरा एक भी चीज.
0: चलिए खैर कोई बबास जी, आपने 4 मूवीज तो सही बताई हैं. क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा खेला. बहुत सारी मूवी थी, डॉन थी, शोले थी, मुझे लगा कि ये तो शायद याद
1: है. अरे शोले सबसे सही, शोले वही भूल गया, पता नहीं पहले वही शोला था
0: वो आप भूल गए, पर कोई बात नहीं. फिर भी आपको 3, आपने 4 का स्कोर किया है. हाँ,
1: 4 मुश्किल है सर.
0: फिर ट्राई करेंगे आपके साथ.
1: ठीक है, मुश्किल.
0: अभी आपके साथ 4 आदमी है, 4 का स्कोर है आपका. चारों को लेके खुश रहिए. पर थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह आपकी कॉल के लिए. अपना ख्याल रखिए.
1: ओके,
0: अल्लाह हाफिज. बाय बाय, अल्लाह हाफिज. आप भी खुश रहिए, अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, तो यहाँ हमारे साथ जो थे बहुत ही अच्छे वाले लिसनर अब्बास जी जुड़े, जिन्होंने फिलहाल यहाँ 4 का स्कोर किया है. तो 4 का स्कोर उन्होंने कर लिया है. अब देखना यह है कि 4 से ज़्यादा आज कोई और स्कोर करेगा कि नहीं. हालांकि बहुत ही आसान गेम कर दिया, इससे आसान और मैं क्या ही कर सकती हूँ और क्या ला सकती हूँ. सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि एक एक्टर, उसकी मूवीज़ जो भी आपको आती हैं, तो बस ठीक है, आपके फेवरेट एक्टर्स हैं उनकी मूवीज़ का आपको नाम मुझे झटपट बताना है. यहाँ पे राज मुझे कह रहा है यू कैन कॉल मी.

0: ओके चलिए मैं राज को यहाँ पे मिलाती हूँ. ओके और इस बीच अगर आप में से किसी का जहन जो है वो काम कर रहा है कि हाँ मुझे भी खेलना है और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक से स्कोर कर सकता हूँ तो ट्राई कीजिए. और यहाँ देखते हैं कि राज फोन उठाते हैं कि नहीं. तो कॉल तो इन्हें जा रही है. अब ये फोन उठा लें तो बहुत ही अच्छा है. जैसे ही उठाते हैं कनेक्ट होंगे और इनके साथ गेम का आगाज करेंगे. पहले मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा मुझे टाइम कम रखना चाहिए बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं लाइक ठीक है 30 सेकंड्स तक क्योंकि लोगों को सोचने में भी टाइम लगेगा. राज आप कहाँ हैं? फोन नहीं उठा रहे हैं आप फोन नहीं उठा रहे हैं और मैं कॉल कर रही हूँ. तो इन्होंने तो फोन नहीं उठाया. एक किसी और बंदे ने मुझे लिखा है कि बिजी इनका नाम है. गुड मॉर्निंग. अच्छा एक सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है. जरूर हम प्ले करते हैं इसको सॉन्ग को भी थोड़ी देर में. अच्छा प्रिंसन इज ऑल्सो कॉलिंग क्यों. अच्छा चलिए अब पता नहीं एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रईस साहब.
1: अरे हमारे राज साहब जो भाई बादशाह हैं इसके वो नहीं फोन उठा रहे हैं तो हम बोले चलो हम ही कुछ कर लेते हैं.
0: उन्होंने लिख के भेजा मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ बट अब क्या बोलूँ मैं.
1: तो हमारे फेवरेट शाहरुख खान के हम कुछ मूवीज को गिना लेते हैं.
0: ये रईस जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे आपने पूछा ही नहीं कि कौन से एक्टर एक्ट्रेस मेरा फेवरेट चाह रहे हो मैं उसी का गाना.
1: वो टाइम वेस्ट करता भैया हम कुछ अपने उत्तराखंड के ज्यादा थोड़ा पहनते और उनका जो एक्टिंग का जो ये था वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा पसंद है.
0: अच्छा
1: हंसने का रोने का सीरियस होने का गुस्सा होने का वाला वो सब तो हम लोग एकदम.
0: अरे ये तो ऐसा हो गया कि आपको पहले से पेपर हो गया. अरे शाहरुख के बारे में क्यों हुआ लेकिन लोग कहेंगे वाह हम ही अपनी लिख के ला रहे हैं वही बोलेंगे. अरे कुछ कुछ और ट्राई कीजिए. सलमान ट्राई कीजिए.
1: मैं बहुत पहले से मतलब पहले से मैं तकरीबन मतलब है और भी लोग हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ज्यादा फैन उसके ही हम लोग थे. शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान हो गए अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार अजय देवगन.
0: अच्छा चलिए आपको भी ना मैंने आप अमिताभ बच्चन ही दिए ठीक है.
1: अरे भैया
0: नहीं देखिए अमिताभ की तो आप बता लोगे बता लेंगे ठीक है.
1: ठीक है मतलब हम शोले जंजीर दीवार.
0: अरे अरे अरे रुकी अरे भाई रईस जी रुकी तो ठहरिए तो मेरा टाइम तो शुरू हो जाए. टाइमर तो लगा लो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. हाँ बताइए.
1: मोहब्बतें हो गया शोले हो गया जंजीर हो गया दीवार हो गया शहंशाह हो गया और बहुत ही मतलब उनकी मूवियाँ भैया हाँ मूवियों को मतलब अब उसको सही बात लिख के आप बता दिए जहन में जिसको माइंड सेट करके रखे थे कि आज आप निकल जाएंगे टॉप टेन में.
0: कितनी अच्छी बात रही जी आपने अपने आप ही क्वेश्चन पेपर दोनों सब आंसर आंसर सेट करके लाए. बट आपने बताया कितने बताए 1 2 3 4 5 पांच मूवीज बताए.
1: कम से कम हमारे एक भाई से एक स्टेप आगे निकल गए. चलो
0: क्या बात है मबरूक मबरूक आप एक नहीं पूरे अच्छा खासी आपने कुछ किया. डॉन कैसे नहीं याद आ रही है आप लोगों को.
1: हाँ भाई जहन में वो उस वक्त ना सेकंड घूमते रहता है ना फिर कंफर्ट जोन से आप बाहर निकाल के चेंजिंग में फंसा रही है. नफीस भाई की तरह कंफर्ट जो है चलो यार आग लगी है यार हो सकता है बारिश हो जाए.
0: क्या बोला है आप सीरियसली बिल्कुल आपकी बहुत ही अच्छी बात है.
1: आपका जो पुराना था मैंने चेक किया लेकिन आप समझ गई होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो आप अगर हो सके तो कुछ लिखने को मिलेगा अगर थोड़ा दे तो लिख के वहीं पे कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके भी मतलब जो बातें कुछ आप शेयर करते हो तो सीखने को मिले. कोशिश करके ऐसा कुछ नहीं
0: ठीक है लिखते
1: हैं.
0: ठीक है ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज. ऑलराइट दोस्तों आज हमारे साथ दो ही गेम जो है दो लोग हमारे साथ जुड़े हालांकि राज जी मिला रहे पता नहीं कहाँ.

नहीं आ रहे, मुझे क्यों नहीं नजर आए, बीच में तो आया लेकिन फिर नहीं दिखा। चलिए मैं जल्दी से कोशिश कर रही थी अगर हम इनको ले पाए, बट आई डोंट थिंक हमारे पास टाइम है, नहीं है हमारे पास टाइम नहीं। तो राज कल आपके साथ गेम खेलना है, और कल आपका सबसे पहले मुझे आप ही से कॉल पे बात करनी है, फिर प्रिंसन होंगे, फिर यूसुफ होंगे, फिर और हमारे चैंपियंस जो है वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आज अभी गेम हमने जस्ट स्टार्ट किया एक नया। यहाँ पर आपको अब टाइम मुझे थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है, लेट्स कीप इट लाइक 20 मिनट्स या फिर 20 सेकेंड्स या फिर 15 सेकेंड्स, कुछ इतना ही हम रखेंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा ही आप स्कोर करें लेकिन सॉलिड हो जाएगा। तो फिलहाल आज के हमारे जो विनर इज रईस जी, क्या बात है, आज आप खेले, जुड़े, आपने कुछ नया, अपने कंफर्ट से निकले, हालांकि आप चाह रहे थे शाहरुख पर, हम आ गए अमिताभ की तरफ, लेकिन आप निकले और जीते। तो बस कल भी इसी तरह से हमारा गेम जारी रहेगा, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह सुबह 6 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है समा मॉर्निंग्स। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: को शफाफ अंदाज में बरआज़मी फेडरेशंस, फीफा काउंसिल, कौमी एसोसिएशंस और खेल से वाबस्ता दीगर फरीकों के साथ मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। फीबा अंडर 18 एशिया के ड्रॉ में कतर को ग्रुप सी में चीन, ईरान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। एशिया का ये अहम बास्केटबॉल मुकाबला 13 से 23 अगस्त तक भारत के शहर अहमदाबाद में खेला जाएगा। यूरोपीय फुटबॉल यूनियन यूईएफए ने कहा है कि फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने यूरोपीय फुटबॉल की हिमायत और एतमाद खो दिया है। यूईएफए ने कहा कि अगरचे इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप से मुतालिक तिजारती सरगर्मियों में निजी सरमायाकारों को शामिल करने के मंसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, ताहम इस मंसूबे ने आलमी सतह पर मुखालफत पैदा की। यूईएफए के मुताबिक इन्फेंटिनो ने 2016 में फीफा सदारत के लिए किए गए बाज वादों की खिलाफ वर्जी की। स्पेन के मारूफ क्लब रियल मैड्रिड ने लेवांते से स्पेनिश फॉरवर्ड कार्लोस एस्पी के साथ 5 साल मुआहदा कर लिया है। 21 साल खिलाड़ी 2031 तक रियल मैड्रिड का हिस्सा रहेंगे। क्लब के मुताबिक एसपी गुज़िश्ता सीजन में स्पेनिश लीग के बेहतरीन अंडर 23 खिलाड़ी का अवार्ड जीत चुके हैं और क्लब के मुस्तकबिल के मंसूबे का अहम हिस्सा हैं। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बेल्जियम के विंगर जिसी बेसियोई से 5 साल मुआहदा कर लिया है। 18 साल खिलाड़ी क्लब ब्रोस से बार्सिलोना मुंतकिल हुए हैं और 2031 तक क्लब के साथ रहेंगे। नौजवान खिलाड़ी ने 2025 की यूरोपीय अंडर 17 चैंपियनशिप में अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हासिल की थी। वो बार्सिलोना की मौजूदा समर ट्रांसफर विंडो की तीसरी बड़ी साइनिंग है। और इंग्लिश क्लब न्यूकासल यूनाइटेड ने अपने हेड कोच एडी हाउ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। क्लब ने 5 साल दौर के बाद हाउ के फैसले को कबूल करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। उनकी क्यादत में न्यूकासल ने 2025 में लीग कप जीता, जो 1969 के बाद क्लब का पहला बड़ा टाइटल था, जबकि टीम ने 2023 और 2025 में चैंपियंस लीग के लिए भी क्वाइ किया। स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए इतना ही और अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: रियासत कतर ने खलीज तआवुन काउंसिल के रुकन ममालिक के डायरेक्टर्स जनरल पासपोर्ट्स के 41st इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें पासपोर्ट से मुतालिक उमूर को जदी बनाना, खिदमात के मायार को बेहतर बनाना, रुकन ममालिक के दरमियान तआवुन, इंजमाम और राबता कारी को मजीद मजबूत बनाना शामिल था। कतर की दाखला सलामती फोर्स लखुरिया से वाबस्ता कतरी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने स्पेन में फैली हुई शदीद जंगलाती आग पर काबू पाने के लिए फील्ड ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ तजवीज़ करदा अमरीकी और इसराइली हमले मुअत्तल कर दिए गए हैं, ताहम ये फैसला फौरी मुआहदे तक पहुँचने की शर्त पर किया गया है। इसराइली फिजाई हमलों में गजा शहर में कम अज़ कम 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ उर्दू रेडियो एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया टीम से इंतखाब आलम और न्यूज़ रूम से इस्माइल खान और मुझे यानी सफा सफदर को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ियमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107।

0: टीम से कॉल दें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में. हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए. अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं. हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है. इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं. तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं. सामने कराम, आज का मौजू है बच्चों से मोहब्बत का इजहार करना और उन्हें बोसा देना. उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि कुछ देहाती आराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए. उन्होंने पूछा, क्या आप लोग अपने बच्चों को बोसा देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ. वो हैरान होकर कहने लगे, कसम हम तो अपने बच्चों को बोस नहीं देते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल रहमत निकाल दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गोद में लेते, उन्हें सीने से लगाते, बोसा देते और उनके साथ खेलते भी थे. एक मरतबा किसी सहाबी ने अर्ज किया, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता. सामने किराम, आज बहुत से बच्चे वालिदैन से आसाइश तो हासिल कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत के दो बोल नहीं सुन पाते. हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तालीम ये कि मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है. एक बोसा, एक मुस्कान, एक दुआ, ये सब बच्चों के लिए ऐसी नेमतें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत. याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है. और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है. प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत. मअस्सलामा.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्त हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर. दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास. ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारी स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं. स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अल मुदार के बारे में, जो कतर चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेस में एक बहुत ही बड़ा नाम है और अहम शख्सियत समझे जाते हैं। मोहम्मद अल मुदाका ने कतर में चेस के फरोग के लिए काबिल तारीफ काम किया है और इस गेम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनकी क्यादत में कतर चेस एसोसिएशन ने ना सिर्फ लोकल टूर्नामेंट्स को बेहतर बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कतर का नाम रोशन किया। कतर में मुनक़द होने वाली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को दुनिया भर से सराहा गया, जो अल मुदाका की प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के वजह से सबूत है। मोहम्मद अल मुदाका पीडीएनई इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ओहदे पर भी फाइज हैं। इस जिम्मेदारी के जरिए वो दुनिया भर में शतरंज को प्रमोट करने, नए ममालिक तक गेम को फैलाने और यंग प्लेयर्स को मौका देने अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा एशिया में शतरंज के मुस्तकबिल पर जोर दिया है और रीजनल डेवलपमेंट को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है। अल मुदाका का मानना है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कतर की शिरकत खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें ग्लोबल एक्सपीरियंस हासिल होता है। दोस्तों मोहम्मद अल मुदाका आज कतर स्पोर्ट्स लीडरशिप की एक रोशन मिसाल है। आज का ये एपिसोड पसंद आया, अगले बार और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकील अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबकी ये हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते ताकि ओवरहीट बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, TC एहतियात बड़ी हिम्मत से बचती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most radio station, FM 107. FM 107. Dil se busy.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक की, मगर कि बहुत से जो बालिग अफराद हैं अपनी मसरूफ जिंदगी, रात की ड्यूटी या थकन की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्ती तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बालिग अफराद में ज़्यादा कैफीन दिल की धड़कन को तेज़ कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उससे, और इसी तरह वो बहुत ही बेचैन या फिर घबराहट का शिकार भी हो सकते हैं। बाज अफराद में सर दर्द और मेदे की शिकायत भी पैदा होती हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मुतासर उससे होता है। बहुत से अफराद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बालिग अफराद हों या बुजुर्ग अफराद हों, तो उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए एहतियात क्यों ज़रूरी है? तो इस उम्र में बहुत से अफराद पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, डायबिटीज़ या नींद के मसाइल का शिकार होते हैं, उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बुजुर्ग अफराद में कैफीन के असरात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे थकन, इसी तरह तवज्जो में कमी और मजबूत सेहत मुतासर होती है। कुछ अफराद थकन दूर करने के लिए बार बार एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असल मसले का हल नहीं है। अगर मुसलसल थकन महसूस हो रही हो तो उसकी वजूहत जानने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स को ही हम देखें और उन्हें ही हम इस्तेमाल करते चले जाएं। सेहतमंद तवानाई हासिल करने के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मुनासिब नींद लेनी बेहद ज़रूरी है, और इस तरह से जो बैलेंस डाइट है, मतवाजन गिज़ा है, आप लीजिए, पानी का मुनासिब इस्तेमाल कीजिए, यानी 8 से 10 गिलास पानी जो है वो आप ज़रूर लीजिए, और बाकायदा एक्सरसाइज सबसे मुअस्सर तरीका है। याद रखिए कि नी ड्रिंक्स वक्ती आपको एक्टिव कर सकते हैं, चुस्ती तो दे सकती हैं, लेकिन तवील मुदत में सेहतमंद तर्ज जिंदगी ही हकीकी तवानाई और तंदुरुस्ती की जमानत है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सुना है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, इनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड स्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल की। FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अतीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी। सामाइन, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताएं जो ना सिर्फ अपने दौर का एक डॉक्टर था बल्कि आज भी उनके इल्म और काम की वजह से दुनिया में उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। आज हम बात करेंगे अबू अल कासिम अल ज़हावी के बारे में, जिन्होंने सर्जरी की फील्ड में इतनी बड़ी तब्दीली लाई कि उनका नाम मॉडर्न सर्जरी के पायनियर्स में लिया जाता है। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि सर्जरी एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, लेकिन जब हम इसके तारीखी पहलू की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे इल्मी और तिब्बी नाम आते हैं जिन्होंने इस फील्ड को ना सिर्फ समझने में मदद दी बल्कि उनको एक नए दौर में दाखिल करवाया। उन्हीं में से एक अबू अल कासिम अल ज़हरावी। आज हम उनकी जिंदगी और उनके कामों को एक्सप्लोर करेंगे। अबू अल कासिम अल ज़हरावी का असल नाम अबू अल कासिम खलफ इब्न अल अब्बास अल ज़हरावी था। मशहूर डॉक्टर और सर्जन 1936 एडी में स्पेन के शहर कोर्डोबो में पैदा हुए। कोर्डोबो उस वक्त अंडलुसिया का एक बहुत बड़ा और इल्म का मरकज था। अल ज़हरावी का इल्म और उनकी तिब्बी खोजें ना सिर्फ अपने दौर के लोगों की मदद के लिए आगे आईं, बल्कि उनके कामों का असर आज तक हमारे लिए जिंदा है। समाइन, अल ज़हरावी ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सर्जरी और इल्मी तहकीकात में गुजारा। उन्होंने सर्जरी के बहुत से ऐसे तरीके डेवलप किए जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नए थे। उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि उन्होंने सर्जरी के एक बहुत बड़े तरीके को पहचाना, जिसमें जख्मों का इलाज, छोटी और बड़ी सर्जरीज और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शामिल थी। उन्होंने जो काम किया उसने ना सिर्फ उस वक्त इलाका बढ़ाया, आज तक हम उसी इल्म से फायदा उठा रहे हैं। समीन, अबू अल कासिम अल ज़हरावी की जिंदगी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है।

उन्होंने तालीम शुरू करने के बाद सबसे पहले बेसिक मेडिसिन को समझना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उनका इल्म बढ़ता गया, उन्होंने सर्जरी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आप सोच सकते हैं कि इस दौर में सर्जरी करना कितना मुश्किल था। मशीन्स का तो कोई सवाल ही नहीं था और मेडिकल नॉलेज भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन अल-ज़हरावी ने अपने तजुर्बात और टेक्निक्स को रिफाइन किया, जो उन्हें एक बेमिसाल सर्जन बना देती हैं। ज़हरावी ने सर्जरी की बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को भी तैयार किया। आज अगर हम सर्जन्स के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, भाई जैसे कि स्कैल्पल्स, फोर्सेप्स या सूचर, तो हम इन्हें बहुत कॉमन समझते हैं। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करने का शौक और काम उन्हीं का था। उन्होंने अपने इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सबसे मशहूर किताब किताब अल तसरीफ में लिखा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड थी सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। ये किताब उस वक्त के बहुत से डॉक्टर्स और सर्जन्स के लिए एक बेसिक रेफरेंस बन गई थी। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सर्जरी को एक साइंटिफिक अप्रोच दी। उन्होंने सर्जरी के कई तरीके समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स का यूज किया। जैसे अगर किसी पेशेंट का हाथ या टांग काटना पड़ता है, उन्होंने इस प्रोसेस को इतना रिफाइंड बनाया कि आज हम उसे मॉडर्न एम्प्यूटेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर उनका वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और फ्री रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहायात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक एलन व सहलन, सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। समीन, अगर हम अल-ज़हरावी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उन्होंने सर्जरी के बहुत से एरियाज में इंकलाब ला दिया था। उन्होंने पहली बार सर्जिकल प्रोसीजर में असेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जो आज की मॉडर्न सर्जरी का इंटीग्रल हिस्सा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इन्फेक्शन से बचाव के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना स्टार्ट किया और सर्जरी के दौरान सफाई को इंश्योर करना उनकी इनोवेशंस में शामिल था। दोस्तों, ज़हरावी ने अपनी किताब किताब अल तसरीफ में न सिर्फ सर्जिकल टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया, बल्कि उन्होंने बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर भी डिटेल्ड रिसर्च की। उन्होंने ह्यूमन बॉडी का बहुत गहरा जायजा लिया और हर एक ऑर्गन और सिस्टम का एनालिसिस किया। इस डिटेल्ड एनालिसिस से उन्होंने बहुत सी सर्जरी टेक्निक्स को रिफाइन किया, जैसे कि आई सर्जरी और डेंटल सर्जरी। आज भी जब हम डेंटल सर्जरी की बात करते हैं तो ज़हरावी के नाम को रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उन्होंने डेंटल टूल्स को भी तैयार किया था और उनके मेथड्स ने दांतों की सर्जरी और उसका इलाज एक नेशन में डाल दिया।

दोस्तों, उनकी सर्जरी टेक्निक्स का असर इस कदर गहरा था कि उनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। उनके इल्मी काम को यूरोपियन डॉक्टर्स ने भी अपनाया और उनके काम को रेफर किया। उनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि एक लंबे वक्त तक उनके कामों के साथ जोड़ा गया। उनका काम 16th सेंचुरी तक यूरोपियन मेडिकल टेक्स्ट में भी शामिल था। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं ज़हरावी की सोच और उसका असर। अबू अल-क़ासिम अल-ज़हरावी की सोच और उनका इल्मी सफर सर्जरी तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने तिब और सर्जरी को एक होलिस्टिक नजर से देखा। वो समझते थे कि पेशेंट की हेल्थ को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं, बल्कि उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के प्रेस्पेक्टिव से भी ट्रीट करना जरूरी है। दोस्तों, आज भी जब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ पेशेंट की बॉडी पे ही नहीं, बल्कि उनकी फिजिक पे भी होता है। ज़हरावी ने इस बात को समझा और अपने पेशेंट्स की केयर को होलिस्टिक बनाया। उनकी मेडिकल प्रैक्टिस से हम ये सीखते हैं कि डॉक्टर का रोल सिर्फ बॉडी का इलाज करना नहीं, बल्कि उनके ओवरऑल वेलबींग को मद्देनजर रखना है। ज़हरावी का इल्म सिर्फ सर्जरी तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक्स में भी काफी काम किया। उन्होंने ना सिर्फ अपने वक्त के लिए इल्म दिया, बल्कि रिसर्च आज भी मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, बात करें अगर मॉडर्न साइंस और ज़हरावी का असर जो उस पे हुआ, तो आज अगर हम मॉडर्न सर्जरी को देखते हैं तो उसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं, उनमें से काफी ज़हरावी के कामों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आज हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, उनका डिजाइन और डेवलपमेंट ज़हरावी के कामों असर से ही हुआ है। उन्होंने जो टूल्स बनाए थे, उनका इस्तेमाल आज भी होता है। जब हम सर्जरी के रिस्क को समझते हैं या पेशेंट की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, तो उसके पीछे जो इल्म है वो ज़हरावी के टाइम से आता है। उन्होंने अपने वक्त में सर्जरी को एक नई सोच और प्रोस्पेक्टिव दिया, आज भी रेलेवेंट है। दोस्तों, बात करें अगर अल-ज़हरावी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उन्होंने काफी कुछ इस बयान किया, जिनमें हेडेक इंजरीज, स्कल फ्रैक्चर्स, स्पाइनल इंजरीज और डिसलोकेशंस, हाइड्रोसिफलस, सबड्यूरल इफ्यूजन्स, हेडेक और कई दूसरे हालात का इलाज शामिल है। उन्होंने हाइड्रोसिफलस का एक केस वाज़े तौर पर बयान किया, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ड्रेनेज के कॉन्जेंटल डिफेक्ट की वजह से था। और उन्होंने कहा, मैंने एक बच्चे को दिखा जिसका सर अजीब तौर पर बड़ा हो गया था, जिसमें माथा और साइड्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जिस्म उसे उठाने में नाकाम हो गया। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए F107। दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए हैं अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये अमात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आप तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे, तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत।

वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सर्वर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अल ज़हरावी को ऑपरेटिव सर्जरी का बाप माना जाता है। उन्हें पहली थायरॉइडिक टॉमी करने का क्रेडिट दिया जाता है। उनकी मुकम्मल किताब जो ऑन सर्जरी नाम से मशहूर है का आखिरी बाब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेडिकेट किया जाता था। 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स इंट्रोड्यूस किए जो अपने जमाने के हिसाब से एक हैरत अंगेज नंबर था। उन्होंने प्रोब्स, सर्जिकल नाइफ्स, स्कैल्पल्स और हुक्स के इस्तेमाल के लिए तफसीली वजाहत दी। उन्होंने सर्जिकल सिजर्स, ग्रेस्पिंग सेप्स और ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप भी तैयार किए और उन्हें इन्वेंट किया। उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पेशेंट्स पहली मर्तबा टीचिंग और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों के लिए बनाए गए थे। आखिरकार उन्होंने बच्चों की तालीम और रवैये, स्कूल का सिलेबस और इल्मी तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि गिड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को प्राइमरी तालीम कबल करने के बाद तिब की तरफ रुझान दिलाया जाए, जिसमें जबान, ग्रामर, हिस्सा, फलक शिनासी और फलसफा शामिल हों। यह मकाला सिर्फ आंदुलस के इस अजीम अरब तिब्बी और जराही शख्सियत की दुनिया के लिए किए गए अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस की एक झलक है। दोस्तों, उनकी तिब इकाइयां वेस्ट में बहुत मकबूल हुई, खासतौर पर गेरार्ड ऑफ सेरेमोना, रोड्रिगस फ्रुगार्डी, रोनाल्डस परमेंसिस और दूसरे लोगों के लिए तर्जुमा होने के बाद। उनकी सर्जरी तालीमात मिडिल एजेस में तीसरी सदी तक सबसे तरक्की याफ्ता समझी गई। दोस्तों, एल्ब्यूकेसिस ने न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के मैदानों में इंट्रैक्टेबल माइग्रेन का इलाज करने के लिए एक गरम लोहे का टुकड़ा इस्तेमाल करने की तजवीज दी थी। उसने एपिलेप्सी और एपिलेप्सी के लिए भी कॉटरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर पैरालिसिस का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सर की चोटों और खोपड़ी के फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की चोटों और डिसलोकेशंस का सर्जिकल इलाज भी बयान किया। उन्होंने दर्द को एक सिम्टम के तौर पर वाजे किया जो खोपड़ी और दिमाग की सर्जिकल एनाटॉमी का भी वाजे बयान है। दोस्तों, अल ज़हरावी ने न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस में इनकलाबी काम किए और वो पहला डॉक्टर था जिसने एक ऐसी बीमारी जो खून के क्लॉट होने की सलाहियत को मुतासिर करती है के वरीसे होने का पता लगाया और पहली दफा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का वाज़े तौर पर इलाज किया। उनके काम से पहले ये नहीं मालूम था कि पैरालिसिस का सबब क्या हो सकता है। अल ज़हरावी पहले थे जिन्होंने ये समझाया कि स्पाइन फ्रैक्चर इसका हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने कई इनकलाबी मेडिकल तरीके दरियाफ्त किए जो बाद में दूसरे डॉक्टर्स को असरदार मिले, लेकिन अल ज़हरावी को उनका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। क्या आपको ये मालूम था कि ये तमाम काम उन्होंने ही किए थे जो बाद में कोशर्स मेथड के नाम से जाना गया। वो डिसलोकेटेड शोल्डर के इलाज था। दोस्तों, आज हमने अबू अल कासिम अल ज़हरावी के बारे में जाना, उनकी जिंदगी और कामों को समझा। उनका इल्म और उनके काम की वजह से ना सिर्फ उस वक्त के डॉक्टर्स को मदद मिली बल्कि उनका असर आज भी हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस में दिखाई देता है। आज हम मॉडर्न सर्जरी कहते हैं वो उन्हीं के कामों का नतीजा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि क्या क्या साइंस की कहानियां हैं। इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को

0: आपने सुना हमें और नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं। मगर अब वक्त है खुद मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए, एक और अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम ने। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, गाड़ी रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत सेफ्टी रिस्क भी। जब गाड़ी चल रही होती है तो एलईओं से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे सेफ और इलीगल एंड्स का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार करते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11:01 सुबह की, ठीक है, रात के नहीं हो रहे। और आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: तो भाई साथियों, ढेर सारा वेलकम है संडे मॉर्निंग्स में। देखें, संडे वाली जो मॉर्निंग है ना आज की, मेरी वाली कुछ अच्छी नहीं है। तो वैसे तो संडे मुझे वैसे ही नो बिकॉज ऑफ दैट वीकेंड हैंगओवर की वजह से कुछ खास नहीं लगता। लोगों के मंडे ब्लू होते हैं, मेरा संडे ब्लू होता है, क्योंकि हमारे पास पहला दिन संडे से शुरू होता है ना।

लेकिन फिर भी आपको ढेर सारा वेलकम करते हुए मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए मेरा जो है वो आपसे मुतालबा ये है कि कहाँ कहाँ वीकेंड मनाया ये तो बताओ जरा। जिस जिसके हिस्से में वीकेंड आया उसने कहाँ मनाया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हिस्से में वीकेंड नहीं आता, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जिन जिनके हिस्से में आया उन्होंने कहाँ मनाया। भाई मैंने कहाँ मनाया, पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं इतनी ही कोई गजनी चल रही हूँ कि मुझे ये अभी याद करने में 5 मिनट लगेगा कि मैंने वीकेंड पे क्या क्या किया है। मैंने वीकेंड पे क्या किया था, सच बता रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, सच बता रही हूँ। खैर याद करते हुए और आगे बढ़ते हुए अपने शो को शुरू करते हैं। साथियों देखें आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, ये एक ऐसा शो है, इंटरैक्टिव शो है जिसमें आपकी और मेरी मुलाकात होती है और हम गेम्स खेलते हैं। और आज की गेम हमारे साथ जो रहेगी वो होगी बॉलीवुड ट्रिविया की, जिसके अंदर मैं कुछ आपको कुछ आप कह लें कि मशहूर गाने, फेमस गाने, कुछ नॉट सो फेमस गाने, कुछ नए कुछ पुराने मिक्स गानों का आपको कुछ क्लिप्स सुनाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि गाने का टाइटल क्या है। क्लिप सुनाऊंगी छोटा सा, पहले बताना है आपने मुझे, बस मजा आएगा। और इसी के साथ साथ हमारा मुद्दा भी शामिल रहेगा, आप मुद्दे पर बात की जाएगी, वो मैं आपसे डिस्क्लोज करूंगी आपको कि क्या मुद्दा है। लेकिन इससे पहले कि मुद्दा बताया जाए, इससे पहले गेम खेली जाए, इससे पहले कि दूसरी तीसरी बातें आपके साथ शेयर की जाए, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, डिटेल देना चाहूंगी। जो पुराने लोग हैं वो तो उनको मुझे पता है कि माशाल्लाह से अब तक नंबर शंबर याद हो गए होंगे, लेकिन जिनको नहीं याद, जो हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनके लिए इतला आम है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू भी, और आप हमें चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 4433377 पर, और चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं 6222107 पर। मैसेज के लिए नंबर है 6622107, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 4433477 पर। पहली चीज तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा मुझे ये बताएं मैसेज करके, बेशक आप कॉल करें ना करें, लेकिन जरा मुझे मैसेज करके बताएं कि कहां कहां से सुन रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट निंस तो लगवाओ ना गोभी दें फुल्लो, और देखो खुशबू लगा कर आना। गर्मियों के दिनों में खुशबू तो नहीं भूलनी, दो चीजों तो आपने भूलनी नहीं है गर्मियों के दिनों में, एक पानी बोतल और एक परफ्यूम की बोतल। ये बोतलें बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली चीजें होती हैं, बेहतरीन साथी होती हैं, आप भी अच्छा रखती हैं ये, और दूसरों को भी आपके, पता है ना, समझ रहे ना, आपकी शर से बचा कर रखती है। तो भाई जहां गर्मी के बारे में बात कर ही रहे हैं इतनी, वहां सूरज चाचू को सल्यूट करते हुए आपको वेदर रिपोर्ट थोड़ी बहुत दे देते हैं। भाई वेदर रिपोर्ट का क्या हाल चल रहा है मेरे पास इस वक्त, देखो मेरे पास ना, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दो अलग अलग मोबाइल ऐप खोल कर बैठती, तो इंसान है कि आप करें, लेकिन एक्यूरेसी के लिए ना दो अलग अलग, आपको देखें ऑथेंटिकेशन लेवल देख रहे हैं आप, दो अलग अलग ऐप खोलकर बैठती हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए तो वेदर भाई, मेरे स्टूडियो में इस वक्त 18-16 डिग्री चल रहा है, लेकिन बाहर क्या मामलात हैं वो आपको ही पता होगा और इस वेदर रिपोर्ट को ही पता होगा। तो भाई मुझे ये दिखा रहा है कि आज का वेदर एज यूजल, जब मैं आई थी तब भी सनी ही था, जाहरी बात है गर्मियों के दिन, वेरी लॉजिकल थिंग। दूसरी बात यह कि अगर एग्जैक्ट प्रिसाइज टेम्परेचर के बारे में बात किया तो इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा हुआ है टेम्परेचर। अब दिल को थाम कर रखना, क्योंकि जो मैं डिग्री बताने वाली हूँ ना फील्ड में, वो बहुत खतरनाक है, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस, इट फील्स लाइक 49 डिग्री सेल्सियस। द हाइएस्ट टूडे द टेम्परेचर विल गो टिल 45 डिग्री सेल्सियस, ये मुझे मेरी ऐप बता रही है, ऑथेंटिकेटेड दो ऐप्स बता रही हैं। फिर वहीं से बात शुरू होती है कि वैसे मेरी ऐप मुझे ये बता रही है, आपकी गाड़ी क्या बता रही है आपको, मुझे जरा बता, देखते हैं आपकी गाड़ी में आज क्या टेम्परेचर हो रहा है। जिस दिन मुझे 41 बता रहा था, उस दिन लोगों को 45 बता रहा था गाड़ी में, आज मुझे टेम्परेचर 44 डिग्री से बता रहा है, तो आपका मतलब आपकी गाड़ी का टेम्परेचर कितना पहुंचा हुआ ये जरूर बताइएगा। और ये भी होता है कि मुख्तलिफ एरियाज के ना मुख्तलिफ टेम्परेचर्स होते हैं, तो मुझे तो ये बता रहा है, आई अग्री ऑन दिस, कि भाई इस एरिया में, दोहा के इस एरिया में ये टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस समझ में आ रहा है। हाँ, फील्स लाइक 49 डिग्री सेल्सियस, दैट्स ऑल्सो वन

थी. ह्यूमिडिटी का लेवल आपको बताती चलूं 28% पर है. थोड़ा सा ह्यूमिडिटी को आप कह लें सिमिलर टू यस्टरडे चल रही है, मतलब यूं कह लें कि कुछ कुछ ये 28% या कह लें कि अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत नंबर लें तो आप कह लें 25 से 28 डिग्री के बीच में ह्यूमिडिटी का लेवल चल रहा है, जो कि भाई पिछले हफ्ते से थोड़ा नीचे ही है. पिछले हफ्ते तो 35 पे पहुंचा हुआ था, इट वॉज टू. अगस्त का महीना शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे अगस्त के दिन गुजरते चले जाएंगे वैसे ह्यूमिडिटी का लेवल नीचे आता चला जाएगा इंशाल्लाह. उम्मीद यही है ह्यूमिडिटी का लेवल अगस्त के एंड तक थोड़ा मध्यम हो जाएगा. अच्छा मजे की बात बताए कि जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है इट्स नॉट जस्ट टेम्परेचर. डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि एक तो हमारा ये टेम्परेचर डिग्रीज सन का और दूसरा फिर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई हो जाए तो वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमिडिटी अभी 25 से 28 के बीच में चल रही है तो कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अगर उसी के साथ चलें आगे तो भाई देखो आज अगर आपका आपको बताती चलूं कि विंड का क्या हाल है, मतलब कि हवाएं किस रफ्तार में चल रही हैं. 10-13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से जो है ना हवाओं का थोड़ा बहुत आपको रिश्यू मिलेगा, मतलब इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है. हवा क्यों कंसिडर कर लें कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया, अभी जैसे हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं दोहा के एरिया में बैठे हुए हैं तो 8-10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवा चल रही है विच इज़ नॉट कंसिडरेबल कि आप कहेंगे इतनी तेज़ हवाएं नहीं चल रही. और आप जिस एरिया में वहां पर आपको क्या टेम्परेचर लग रहा है, वहां पे हवाओं का क्या हाल है हमें ज़रूर बताएगा. अगर आप दोहा से बाहर हैं तो कुछ लोग ये है कि शुमाल में भी होते हैं, कुछ लोग शाहानिया की साइड पर भी होते हैं, कुछ लोग दुखान की साइड पर भी होते हैं, कुछ लोग खोर से सुन रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास क्या टेम्परेचर के हाल अहवाल चल रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यूवी रेज जैसा कि आपको पता है हाई पर हैं. अरे भाई क्या कल परसों ना मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने को जो कि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, घर में आमतौर पर ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल की जाती है और करनी भी चाहिए डेली बेसिस पर. मुझे उस चीज़ का असर ऐसे पता चला, मैं जिस घर में रहती हूँ इंसुलेशन इतनी अच्छी हुई हुई है कोई कि मुझे एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मैं कहूँ कि मैं खुद ही इतनी कोई एनेमिक हूँ हाई लेवल पर कि मुझे एसी से वैसे ही सर्दी लगती है. लेकिन वैसे भी जो घर के अंदर का टेम्परेचर इट्स नॉट कि मुझे एसी की इतनी कोई ज़रूरत पड़े कि कोई मेहमान आ जाए वो कहे कि भाई मैं तो पिघलता हुआ बाहर से आया हूँ तो एसी चलाओ. तो जो चीज़ मैं आपको मशरूब में आपको बताने वाली हूँ इट इज़ वेरी वेरी वेरी कॉमन, लेकिन उसका असर मुझे ऐसा पता चला कि एसी बंद होने के बावजूद भी जब मैंने वो ड्रिंक कंज्यूम किया तो मेरे हाथों थोड़े ठंडे हो गए. मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई कोई ठंडी चीज़ पी ली, उसकी तासीर ठंडी है. और वो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो गर्मियों में हमारे ख़ास तौर पर देसी घरों में वैसे भी बनती है, तो वो है लेमनेड या हम कह लें शिकंजी. और अगर आप उसको मिक्स कर लें थोड़ा सा मिंट के साथ या थोड़ा सा जो है ना वो आप उसको मिक्स अप कर लें, कुछ लोग चिया सीड्स के साथ मिक्स करना पसंद करते हैं या कुछ लोग तुखमंगा जो होता है बेसिल सीड्स होते हैं उसके साथ, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में. सा ठंडा सा आप उसको बना कर ना अगर चाहें तो उसके अंदर आइस भी डाल सकते हैं अच्छी खासी, और उसके अंदर चीनी नमक काला नमक डालकर और लेमन अच्छा खासा उसके अंदर डालकर जिस तरह का आपको पसंद है वो आप कंज्यूम करें. चीनी और नमक डालने का कुछ लोग ये कहते हैं भाई शिकंजी जो है ना चीनी नमक के बगैर बनाओ, देखिए चीनी और नमक डालने का फायदा होता है ज़्यादा नहीं डालें लेकिन आप इतनी डालें कि आप ये ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना वो एक कुदरती लेवल पर, अगर चीनी नहीं डाल रहे तो हनी डाल लें, कुदरती लेवल बरकरार रखने के ना इंसान एक आप कह लें कि हमें यही बताया गया कि इंसान इक्वलेंट एलिमेंट से बना है, मतलब ये कि इंसान इक्वल एलिमेंट से बना है. तो आप ये नहीं कि चीनी को या मीठे को बिल्कुल कट डाउन करते हैं, अगर आपने हेल्दी ऑप्शन रखना है थोड़ा सा तो आप हनी डाल लें, क्योंकि नमकीनियात जो होती है ना जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें हाइड्रेटेड रखते हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको लॉक चीनी और थोड़ी सी सॉल्ट टी वाटर होता है वही लॉक करता है उनको. तो ये ध्यान में रखें कि अगर आप चीनी कंज्यूम नहीं कर रहे तो उसकी जगह कोई हेल्दी अल्टरनेटिव चीनी का ऐसे हनी

हो गया, काला नमक हो गया, थोड़ा सा एक दो चुटकी नॉर्मल नमक हो गया, या आप कह लें वो जो पिंक सॉल्ट होता है वो इस्तेमाल कर लिया, इससे आप डिहाइड्रेटेड नहीं होते। ये हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज को बिल्कुल कता ताल्लुक हो जाना उससे, दैट इज रॉन्ग। उसको एक हेल्दी लेवल में करना इज, एक राइट रेशियो में यूज करना इज अ वेरी गुड थिंग। तो लेमनेड में हेल्दी लेवल पर नमकीनियात का लेवल मद्देनजर रखते हुए कि बिल्कुल उसको कट ऑफ नहीं कर देना आपने, तो आप हैं ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आती है। भाई ये जो लेमनेड है या जो हमारा हम जिसे कहते हैं कि ये हमारा जो शिकंजी, ये बहुत काम की भाई, बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा। इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा, अगर चाहें ना थोड़ा ट्विस्ट लेकर आना चाहें, तो लेमनेड के अंदर हल्का सा आप जो है वो ऑरेंज जूस ही मिक्स करके पी सकते हैं। लोगों को सुनने में वियर्ड कॉम्बिनेशन लगेगा, बट आई हैव ट्राइड इट एंड इट इज गुड। क्योंकि भाई सिट्रस चीज है ना, तो उनका वो अपना टेस्ट बैल कर लेती है। और एक और चीज, अगर लेमनेड में, मैंने कब फिर कहा कि वो लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, कि अगर उसके अंदर ना आप इमली होती है ना, थोड़ा सा इमली का पानी भी मिला कर, ये याद रखें ऑर्गेनिक जो इमली होती है ना वो तासीर में ठंडी होती है, तो उसको अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ पियेंगे तो वो तासीर में ठंडी होती है, बॉडी को ठंडा रखती है। तो जब ये मशरूब आप पियेंगे, लेमनेड या इमली का जूस जो होता है वो जब आप पियेंगे, तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेटेड रखेगा और आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा, ख़ास तौर पर गर्मियों के दिनों में। तो भाई इसी मैसेज में, मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, स्ट्रोक से बचा कर रखे। भाई देखो सीधी सी बात है, गर्मी तो है, अब उससे बचना कैसे है या उसको हमने कैसे को इम्यून कर लेना है उससे, तो आपने ये तरीक़ेकार अपने छोटे मोटे टोटके अपनाने हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने मसले दिए वहाँ मसलों का हल भी। थोड़ा सा दिमाग सेहत के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसे नहीं तो वैसे सर्वाइवल मोड पे रहना है। तो अच्छे से सर्वाइवल मोड पे रहो ना, थोड़ा सा एफर्ट करके कि हाँ भाई मैंने एफर्ट किया था, तो भाई क्योंकि इस जान का हिसाब भी होना है भाई ऊपर जाकर। तो अपने खाने पीने के ऊपर, खासतौर पर मशरूबात के ऊपर, ड्रिंक्स के ऊपर अपनी ध्यान दें। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे थोड़ा सा गुरेज करें, जो बहुत ज़्यादा शुगर बेस्ड हैं इनसे थोड़ा सा गुरेज करें, मतलब इनसे थोड़ा सा परे रहें, दूर रहें, और कुछ नेचुरल ट्राई करें। इसी के साथ साथियों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फर्स्ट क्लास पे चलते हैं। देखो वैसे तो फर्स्ट क्लास पे बड़ा खर्चा आता है, लेकिन मैं लेकर जा रही हूँ आपको अरिजीत सिंह के साथ फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ब्रेक एंजॉय करो, ब्रेक के बाद वापस आओ तो बात करते हैं मुद्दे पर। क्या कहते हो, मुद्दे भी बात करेंगे? हाँ, हमारा फंड ट्रिविया भी है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, वापस आकर सुनते रहो 107 दिल से देसी, सन एंड साउंड विद सफा।

0: ये बादशाह भाई ने ना किसी भी गाने को नहीं छोड़ा, हर गाने का रीमेक किया है।
1: सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: हाँ तो मैं कह रही थी बादशाह भाई ने ना किसी को भी नहीं छोड़ा, इशू बॉय बादशाह। तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107। अरे मुझे भी अपना ना नाम रखना चाहिए, इशू बॉय बादशाह। अब मैं इसके ऊपर सोचूंगी कि अपना हुक कैसा रखना चाहिए नाम का। भाई तो भाई वेलकम बैक सन एंड साउंड में। साथियों जाने से पहले मैंने आप लोगों से ये किया था, क्या रिक्वेस्ट की थी कि हमें मैसेज करें 666-221-107 पर, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पे, क्योंकि भाई ये एक इंटरैक्टिव शो है। इंटरैक्ट करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक वो जो बात कर सके जैसे कि मैं कर रही हूँ, और दूसरा वो जो जवाब भी दे सके जैसे कि आप। तो भाई आप लोगों की मैसेजेस की भरमार शुरू हो चुकी है, पढ़ना शुरू करें क्या कहते हैं, चले भाई मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वैसे देखें एक बात बताऊं, ये जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई आज नहीं तो कल याद करके मैसेज या कॉल करेंगे, अरे भाई ट्राई तो करो, देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। मैसेज करके देखो, मैं परेशान नहीं करती, मैं वापस हॉन्ट नहीं करूंगी आपको, जो है ना मैं ट्रैक नहीं करूंगी कहां से क्या, मतलब आप जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी ही रखूंगी, टेंशन नॉट। अच्छा भाई गोविंदिया फुल्लो, किसका मैसेज है पहला? पहला मैसेज रोहेल भाई का, और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सफानूर, कैसी हैं आप? देखिए इन्होंने ना मुझे नाम ही भुला दिया है, ये मुझे सफानूर कहते हैं। तो भाई आप कैसी हैं गोविंदिया फुल्लो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और रोज अपने आप को याद दिला रही हूँ कि मेरा नाम सफा सफदर है मेरा नाम सफा सफदर है, मेरा नाम गोविंदिया फुल्लो सफानूर नहीं है। अच्छा भाई मोहम्मद यूसुफ जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हैप्पी वाला संडे जी, आपको भी हैप्पी वाला संडे। कह रहे हैं अच्छा टॉपिक बताओ। अरे भाई रुको जरा, सबर करो, रुको बता रही हूँ क्या टॉपिक है आज, उससे पहले हमारा फन ट्रिविया भी होना है। सलवा रोड से हमें सुन रहे हैं कौन से भाई, क्या है, सरताज भाई रहे? कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी का टेम्परेचर दिखा रहा है 46 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ? देखें ये जो नामालूम अफराद है ना, ये पता नहीं कौन ही है भाई, और इनकी गाड़ी में भी 14 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मतलब जो हमें फील्स लाइक हो रहा है वो गाड़ी में चल रहा है। ठीक है दमे हूँ और आग लगी आसमान में आग लगी हुई है, जाहिर ही बात है आसिफ भाई कह रहे हैं दफना की साइड पर वहाँ आसमान में आग लगी हुई है, भाई सूरज आग से ही बना हुआ है, आग ही लगी हुई है। तो देखिए अल्लाह ताला ने बड़ी एक अच्छी चीज़ रखी है कि इंसान अडेप्ट कर जाता है, अपने आप को थोड़ा सा पानी शानी का लेवल सही रखें। और भाई नसीम भाई, हाँ जी वालेकुम असलम नसीम भाई, दादी अम्मा यहीं पर मौजूद है, मेरे पूरे बाल सूख रहे हैं अब आपके दादी अम्मा बात सुनकर मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो गए। उम सलाल में भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, और ये 45 डिग्री सेल्सियस का हमें मैसेज किसने किया? तौफीक भाई ने भी मैसेज भेजा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भाई और कौन है, और कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, और मैसेज चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं।

46 डिग्री सेल्सियस का भी मैसेज हमें आया है अदील भाई ने, तस्वीर खींचकर भेजी है इन शॉर्ट। और हमारे साथ कौन है? अच्छा भाई, एयरपोर्ट एरिया में, मतलब मेरे घर के पास। हाँ, मेरे घर के पास है। अच्छा ठीक है, लिफ्ट दे देना मुझे भी, लेकिन मैं अभी शो में हूँ ना, तो क्या कर सकते हैं। 46 डिग्री टेम्परेचर, मैं तो हूँ नहीं, तो किस खुशी में 46 डिग्री पे पहुंचा हुआ है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलसद से। 47 डिग्री सेल्सियस। और कौन है हमारे पास? इमान खान भी है। देखें, ये जो आपने वेदर रिपोर्ट भेजी है हमें गाड़ी की, 47 डिग्री सेल्सियस, इसको हम इग्नोर करते हुए कहेंगे नहीं, मेरी वेदर रिपोर्ट 44 बता रही है। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, मेरी वेदर रिपोर्ट 44 बता रही है। मेरी सही कि आप लोग की सही। चलो अब हम चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा ये है कि देखें, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी जगह की जहाँ पर हिस्ट्री, आप कह लेंगे हिस्ट्री का पैमाना भरा हुआ है, लबरेज है वो हिस्ट्री से। और एक ऐसी जगह है जो कतर की तरह ही गर्म है। मतलब ये कि मैं आपको इसी बात के लिए बता रही हूँ कि देखो, सिर्फ आप ही नहीं हो मार्केट में अकेले जो बर्दाश्त कर रहे हो गर्मी, हर जगह का मामूल है। इट्स अ कॉमन थिंग। अर्थ अपने टिल्ट पे खड़ी हुई है, जहाँ जहाँ पे घूमेगी, जहाँ जहाँ टिल्ट जाएगा, जहाँ एरिया सन के पास जाएगा, मौसम होता है कुदरती तौर पर। तो आप अपने दिल को जरा समझाएं। मैं बात करने वाली हूँ आज आपसे टिम्बकटू के बारे में। टिम्बकटू के में ये ख्याल है आ जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े गर्म डेजर्ट यानी सहारा डेजर्ट के करीब वाकई है। टिम्बकटू का नाम हम सबने सुना होगा, लेकिन आज मैं कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपको थोड़ी बहुत डिटेल देती हूँ उसके। देखें, सहारा डेजर्ट तकरीबन कह लें कि 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। आप इसको एक अंदाजा लेना चाहते, मैं कहूंगी कि चाइना और अमरीका के करीब करीब का इसका एरिया है, इतना बड़ा है ये सहारा डेजर्ट। तो टिम्बकटू के बारे में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक सुनहरी तारीफ भी रखता है। लोग अक्सर वो कार टिम्बकटू का जब नाम लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता है क्या चीज़ आती है, क्योंकि लोगों को पता है कि सहरा उसके पास है, सहारा डेजर्ट के पास है, तो लोगों के दिमाग में आता होगा भाई रेगिस्तान है, गर्मियाँ हैं और क्या ही होगा। लेकिन एक वक्त था जब इस शहर को दुनिया के सबसे अहम तालीमी और तिजारती यानी कि एजुकेशनल एंड ये जो हम कहते हैं ना बिजनेस के तौर पर, इसको मरकज माना जाता था। सदियों पहले ना टिम्बकटू सहारा डेजर्ट को पार करने वाला, आप कह लें कि सहरा को पार करते हुए आते थे तो जो ताजिर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनके लिए ये एक सेंटर था। यहाँ सोना, नमक, किताबें और एजुकेशन, जो इल्म होता है ना, उसका लोग बाकायदा एक दूसरे के साथ तबादला किया करते थे यहाँ पर। इट वॉज अ मेन सेंटर। आप कह लें कि 15th और 16th सदी में ना क्या हुआ कि टिम्बकटू में हजारों स्कॉलर्स रहा करते थे। ये इतना 16th और 15th सेंचुरी का टाइम था ये। और यहाँ पर 15th और 16th सेंचुरी के टाइम पर ये बताया जाता है कि इस्लामी तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मरकज माना था, सेंटर माना था इल्म का। ये शहर अपने आप कह लेंगे पुरानी हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कदीम दस्तावेजों के लिए भी मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर सारे स्कॉलर्स इकट्ठे हुआ करते थे। इन पुरानी किताबों में साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी मजहबी तारीखें, उनकी तालीम मुतालिक यहाँ पर इल्म दिया जाता था। अच्छा, अब मामला क्या है अगर मैं गर्मी को लेकर बात करूँ तो देखें, टिम्बकटू वेस्ट अफ्रीका के मुल्क, आप कह लें कौन सा मुल्क, जहाँ तक मुझे माली, हाँ माली का एक तारीखी शहर है ये। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हिस्ट्री के लिए नहीं, गर्मी के लिए भी बहुत मशहूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेजर्ट के पास है, तो गर्मियों के महीनों में ख़ास तौर पर मई और जुलाई तक यहाँ दिन का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 40 डिग्री सेल्सियस जैसे हमारे पास होता है, वो चल रहा होता है। अक्सर दिनों में टेम्परेचर 43 से भी ऊपर चला जाता है जैसे हमारे पास है। ये जारी बात है, कतर भी सहरा की तरह ही है। तो जब कुछ दिनों में ऐसा मामूल होता है कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, तो अक्सर औकात ये होता है कि शाम के टाइम पर भी ना टेम्परेचर नीचे नहीं आता, गर्म रहता है, सेट वाला गर्म। और मज़े की एक बात है, अगर यहाँ पर लोगों को देखा जाए ना कि वो अपनी आज भी अपनी डेली लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो कोशिश ये

करते हैं कि वो इस गर्म मौसम को ऐसे हैंडल करते हैं कि वो जो है ना उनके जो खास तौर पे घर है ना उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो मड ब्रिक्स के बने हुए होते हैं. तो मड ब्रिक्स क्या करती हैं, वो जो है बाहर से गर्मी को रोकती हैं और अंदर से घर को कदर निस्बत बाहर के ठंडा रखती हैं. जैसे हमारे आज भी पाकिस्तान में अगर जाएं, मुझे इंडिया नहीं अंदाज़ा, लेकिन पाकिस्तान में अगर आज भी आप उधर जाएं ना अपने देहाती एरियाज में, तो वहाँ पर आपको ईंट से बनी हुई इमारतें मिलती हैं, घर लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इतनी मजबूत होती हैं और उनका मतलब ये कि वो मट से ऐसी वो लाल रेड मट से बनी हुई है तो वो उनको अंदर से ठंडा रखती हैं बनिस्बत दूसरे जो है ना मटेरियल के. तो लोग मड से बनी हुई ब्रिक्स वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और लोगों का डेली का रूटीन ये है कि वो सुबह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई काम ऐसा हो तो वो शाम के टाइम ना अपने काम निपटाते हैं. ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, जैसे हम लोग भी कतर में यही करते हैं ना कि ये जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा 12 बजे जो है वो कतर का एक बहुत पुरानी रिवायत है कि 12 बजे के बाद अक्सर औकात दुकानें बंद हो जाती, लोग रेस्ट लेते हैं बकायदा और फिर वो 4 बजे के बाद खुलती हैं. तो इन लोगों ने भी बिल्कुल वही रूटीन बनाई हुई है कि जब सूरज आपको पता है सवा नीजे पर आ गया है तो उस वक्त दुकानें अपनी बंद कर दी, समेट दिया सब कुछ, और फिर शाम जब थोड़ी ढलती है 3 बजे के बाद आप अपना वापस से काम शुरू करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको पता है जब सूरज बिल्कुल हेड पे बैठा हुआ है आप तो आप क्या ही काम कर लोगे. और कपड़ों का भी यही वाला हमारे वाला सीन है, कपड़े भी नॉर्मल मतलब वो जो है ना लोग वेंटिलेशन वाले कपड़े ऐसे ऐसे वाले पहनते हैं जिससे गर्मी ना. तो भाई अगर आपको ये लगता है कि कतर में ही गर्मियां गुजारना मुश्किल है तो जरा सोचिए एक ऐसी जगह जो कि मैंने आपको बताई टिम्बकटू, जहां पे टेम्परेचर ऐसे कतर की तरह ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और वो और भी सहारा डेजर्ट के आसपास फैला हुआ है. तो दिल को तसल्ली हो रही है कि कोई हमारे साथ कोई और भी रोस्ट हो रहा है. अक्सर औकात ऐसा होता है ना जब आप अकेले खड़े होते हैं तो आपको दुख हो रहा होता है कि हाय हाय हाय हाय मैं अकेला ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ. देखो आप अकेले ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारी तरह और भी लोग हैं दुनिया में. टिम्बकटू को देख लो, दिल को तसल्ली दो, दिल को तसल्ली दो. तो भाई करो ये कि अपने पानी में अपने हाथ में पानी की बॉटल्स रखो, सनस्क्रीन रखो और जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने पास रखो. वैसे एक बात तो बताएं, गर्मियों के दिनों में आप अपने साथ क्या कैरी करते हैं सबसे ज़्यादा? चलो पानी की बोतल हो गई, और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं गर्मी के दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं हाथ में कैरी करना, हाथ में कैरी करना या कह लें गाड़ी में रख लेना, जिन लोगों का गाड़ी में मोस्टली काम है या जिन लोग मतलब आपको क्या लगता है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं गर्मी के दिनों में क्या लेकर कैरी करना ज़रूरी है? मुझे तो सनग्लासेस बहुत काम करते हैं. मेरे पास गाड़ी में सनग्लासेस पड़े हुए, इतनी तो कोई पथेटिक बात है लेकिन बस गाड़ी में सनग्लासेस पड़े हुए, लेकिन मुझे सनग्लासेस पहनना पसंद नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुदरत के नज़ारे जो है ना वो उसको ब्लॉक कर देता है. महंगा वाला चश्मा रखा हुआ आपकी बहन ने, शौकिया दिलाया गया बहन को ज़बरदस्ती, गिफ्ट मिला बहन ने, अपना पैसा खर्च ना किया, लेकिन मुझे पहनने का शौक ही नहीं है. मैं जब भी चश्मा लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा ऑकवर्ड सा फील होता है, मुझे लगता है मुझे कुछ बैरियर आ गया है तो मैं निकाल के उस साइड फेंक देती हूँ. मुझे नहीं पसंद सनग्लासेस पहनना, पड़ा हुआ है वो बस. आपको क्या लगता है जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गर्मियों के दिनों में जब आप बाहर निकलते हैं? तो पानी की बॉटल, चश्मा, सनग्लासेस हो गए आपके, सनस्क्रीन हो गई, या कुछ और? कुछ लोग ग्लव्स भी पहनते हैं ड्राइविंग करते हुए, ग्लव्स पहनते हैं हाथों को सनबर्न से बचाने के लिए. आपके लिहाज से आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंट है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? कुछ लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं, तो आप बताएं आप क्या करते हैं. आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर, या चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर. गपशप मारेंगे. और भाई एक ट्रेंड था, एक टाइम था जब लोग यहाँ पर कतर में ना, जब मैंने देखा था कुछ डिफरेंट नेशनलिटी, मल्टीनेशनल कंट्री है कतर को पता है, तो मैंने कुछ जो ना लोगों को देखा कि वो छतरी लेकर, वो अम्ब्रेला होती ना वो लेकर घूमते हैं गर्मियों में. तो मुझे बड़ा उनका आइडिया, उस वक्त ना ये आइडिया नया नया था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने कुछ लोगों को बड़े अजीबोगरीब अफसरे करते हुए देखा कि वो ये कहते हैं कि हाँ आदमी होकर छाता लेकर घूम रहा है कितनी तो फनी बात है. अब ऐसा तो नहीं कि आदमियों को सन से एलर्जी ना होगी, कुछ लोगों को सन से एलर्जी होती है वाकई में,

सच बता रही हूँ, हीट स्ट्रोक हो जाता है. कुछ लोगों की स्किन जो है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन बर्न हो गई है. कुछ लोगों को और एक्जिमा जनरेट हो जाता है स्किन में. तो आपको क्या लगता है, ये चीजें होनी चाहिए कि भाई आप कहें कि हाँ भाई अम्ब्रेला लेना कोई बुरी बात तो नहीं है. अब जैसे मैं अपने एरिया में घूमती हूँ, मेरे एरिया में ना जहाँ मैं रहती हूँ अभी, वो ओल्ड एयरपोर्ट वाली साइड मतारगदीन पर, तो वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. इट्स अ यूजुअल थिंग कि आप अम्ब्रेला लेकर चल रहे हो. और मैंने एक दो दफ़ा ये काम किया, यकीन जाने बहुत अच्छी चीज़ है भाई. अम्ब्रेला कैरी करना बहुत अच्छी चीज़ है. आप हमारी जो गर्मियों में हालत बुरी होती है, अगर दुकान सामने वाली दुकान ही जाना हो तो कितना बुरा हशर हो जाता है. किसी दिन छतरी लेकर ऐसे ही अम्ब्रेला लेकर जाएं और देखें कितना फर्क पड़ता है. भाई मैं बता रही हूँ बहुत फर्क पड़ता है. फिलहाल तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद यानी कि दरिया के उस पार आपसे डिस्कस करेंगे क्या चीज, मुद्दे पर बात करेंगे. अभी तो फिलहाल मुझे मैसेज करके बताओ 666-22-107 पर, 666-22-107 पर मैसेज करके बताओ कि आपको क्या लगता है गर्मियों के दिनों में क्या चीज़ घर से बाहर निकलते वक्त कैरी करना ज़रूरी होती है. क्या पता आपका कोई किया हुआ मैसेज किसी और की लिस्ट में ऐड हो जाए और वो ये हो कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए. सुनते रहें FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफ़ा ऑन FM 107.

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, the अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock mind. Tune into a unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: Aap rahe hain Sun and Sound. RJ Safa ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se.

0: हाँ जी ऐसी धाकड़ है और जब भी मैं गाना सुनती हूँ ना तो भाई मुझे मैं याद आ जाती हूँ पता नहीं क्यों।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड एफएम 107 दिल से देसी। और इस वक्त अगर घड़ी में टाइम देखा जाए तो 11:54 हो गए भाई। तो जिसने अपनी घड़ियाँ सेट करनी है वो कर ले जल्दी से। देखो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दी है। अच्छा भाई इंटरैक्टिव शो है तो मैं आपको याद दिला चलूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर। 666-22107 इज़ द नंबर। और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल। और भैया मुद्दे पर आते हैं। देखो मैसेजेस मेरे भरमार पड़ी हुई है मैसेजेस की। मैसेजेस मैं आपके पढ़ती हूँ लेकिन उससे पहले कि मैं थोड़े बहुत मैसेजेस पढ़ के आपको सोचने का वक्त दूँ, मैं चाहूँगी कि मैं आपसे थोड़ा सा मुद्दे के बारे में बात कर लूँ। देखो भाई कभी आपने सोचा है कि बचपन की आंखों में एक अजीब ही फिल्टर था हमारा, वो फिल्टर जो छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसा लगता था जैसे महल की दौलत होती है ना बिल्कुल वैसा बनाता था। कभी सोचा है कि ऐसा भी टाइम था कि जब किसी के घर में कलर टीवी होता था ना वो बड़े से इंचेस वाला, या हमारे टाइम पे हम कह लें कि वो फ्लैट स्क्रीन हुआ करती थी, तो हमें ऐसा लगता था भाई इनकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। भाई जिसके घर में फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हुआ करती थी तो लिटरली ऐसा लगता था भाई ये बंदा ना शहजादों वाली जिंदगी जी रहा है अपनी। लेकिन वक्त गुजरता चला गया साथियों, हम बड़े हो गए और फिर पता चला कि जिन चीजों को हम बचपन में वो अमीरों की निशानियां समझा करते थे ना वो तो भाई जिंदगी की आम तोहफे हैं। तो भाई मेरा आज आपसे सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको आपके बचपन में बहुत ज्यादा अमीरी की निशानी लगती थी। आप कहते थे भाई ये चीज है ना जिसके पास भाई वो तो बहुत बड़ा शहजादा चल रहा। लेकिन ये होकर आपको ये पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। देखिए बचपन की दुनिया ना होती बड़ी अलग सी है। उस वक्त हमारे पास पैसों का हिसाब नहीं होता, हम तक पैसों का पता ही नहीं होता कि पैसे क्या चीज़ हैं, बस खुशियों का हिसाब होता है हमारे पास। जिसके घर में अपना एक अलग रूम था किसी के पास तो हमें कैसा लगता था कि भाई वाह इस घर का तो ऐसा लगता है जैसे इस बंदे का ना अपना महल है। ये छोटे होते हुए हमें ऐसा लगता ना कि जिस बच्चे का अपना एक अलग रूम है भाई ये तो शहजादा चल रहा है। आज हमारे पास अपना एक रूम है, बड़ी नॉर्मल सी एक चीज़ है, लेकिन बचपन में वो एक ख्वाब लगा करती थी। याद है बचपन में जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाया करते थे अम्मा अब्बा के साथ या किसी फैमिली गैदरिंग में, एक्स वाई जेड कुछ भी, किसी जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो कैसा फील होता था। अच्छा आज शायद हम ये कह सकें कि चलो

0: बाहर खा लेते हैं, लेकिन बचपन में रेस्टोरेंट जाना किसी फाइव स्टार एडवेंचर से कम नहीं होता था. पिज्जा खा लेना या ऐसे कोई फास्ट फूड खा लेना हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती थी. भाई मुझे याद है अपनी पसंद का बर्गर एक एक एक लिटरली एक जंग होती थी अम्मा से कि नहीं मुझे बर्गर खाना है, और उस बर्गर खाने के लिए पूरा पूरा महीना एड़ियां रगड़नी पड़ती थी और कहना पड़ता था अम्मा प्लीज बर्गर दिला दो, अम्मा प्लीज वहां फलानी जगह का बर्गर दिला दो. नए कपड़े पहनने के लिए याद है, या मौसम चेंज होने का वेट करना पड़ता था, या कभी कभी साल भर ईद का किसी फेस्टिवल का इंतजार करना पड़ता था. याद है, याद है वो टाइम जब फैमिली के साथ अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो आपको लगता कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वाओ ओ माय गॉड. या वो छोटा सा पैकेट होता था जो कि कोई मामू चाचू कहीं बाहर होते थे ऑस्ट्रेलिया या यूके में या अमेरिका में, तो वहां से आपके चॉकलेट्स लेकर आते थे. ओ भाई हमें वो चॉकलेट के पैकेट कैसे लगते थे, हमारे लिए वो कितनी बड़ी लग्जरी थे. आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आ रही है जो आपके बचपन में आपके लिए ओ माय गॉड वाली फीलिंग लेकर आती थी, शहजादों वाली, और आपको लगता था भाई मैं तो बिल्कुल एलीट क्लास ज्वाइन कर गया आज. कौन सी चीज है वो मुझे बताएं. 443-443-77 पे कॉल करके, 443-443-77 पे कॉल करके या मैसेज करके. मैसेज के लिए नंबर है 666-22-107. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
1: जी मैं मुबशर हूँ, बात कर रहा हूँ.
0: मुबशर भाई, मुबशर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर.
0: अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे. गर्मी के दिनों में आपका रूम का टेम्परेचर भी और दिमाग का टेम्परेचर भी सही वाला, अच्छा वाला रखे. अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रखे. देखिए भाई रोजी रोटी कमाने वाले लोग तो हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते, है कि नहीं?
1: हाँ ये तो है भाई.
0: जैसे ही 28 तारीख याद आती है ना तो हमारे मुंह से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरी रजा में राजी, बस रोजी रोटी लगी रहे, अपना चल रहे टर्टल की स्पीड से चल रहे, कोई मसला नहीं है. हाँ ये भी एक ये, अच्छा ये एक ऐसी चीज है, ये अगर इंसान अपनी जिंदगी में लर्न कर जाए ना, सीख ले तो यकीन जाने आधा दर्जन तो जिंदगी वैसी आसान हो जाती है. क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल 100% है.
0: अच्छा मुबशर भाई ये एक फैक्चुअल चीज है कि चाहे 90s के बच्चे हों, चाहे 80s के हों, चाहे 2000 की जनरेशन हो, चाहे कोई भी हो बच्चा, उसके दिमाग में ना अपना एक, उसकी आंखों का अपना एक अलग चश्मा होता है. और हर एरा में ये एक बात रही है, चाहे वो मोबाइल का दौर हो, चाहे वो फोन का दौर हो, चाहे वो एक्स वाई ज़ेड किसी भी कोई भी दौर हो, उसके अंदर हम जब बच्चे होते हैं ना तो हम सबको कोई एक चीज ऐसी होती है जो बड़ी फैंसी और फैसिनेटिंग लगती है, जो हम किसी और के पास देखें तो हम कहते हैं भाई ओए होए शहजादा चल रहा है ये तो सामने वाला, इसकी ये चीज है तो ये बड़ी अच्छी चीज है, ये काश मेरे पास भी होती. और हमें ना वो बड़ी इलीट क्लास का वो एक देती है, एहसास देती है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में बचपन में कोई सवाल बड़ा सिंपल सा है आज का मेरा, कि मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं जो आपके बचपन में आपको ऐसा लगा करती थी कि भाई ये बहुत मजे की और अमीर होने की निशानी सी के पास हो, तो लेकिन बड़े होकर आपको पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है.
1: जी जी.
0: वो क्या चीज थी?
1: मैं आपकी आपकी मैं बात समझ गया. मैंने आगे आपने मुझे जितने भी एग्जांपल दिए मैंने सारी पहले मैंने बड़े तफसीलन सुनी है, फिर मैंने आपको मैंने कॉल किया है. और शायद आपको पता है यकीन आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनली अपनी बात हूँ कि शायद मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ, या मैं उन बच्चों में से नहीं था कि मुझे इस तरह की मैं किसी बंदे की कुछ देखूँ और मैं बोलूँ कि इस बंदे की लाइफ तो बहुत लीड क्लास चल रही है और ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए. क्योंकि रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ने हर चीज़ हमें मुहैया की है, हर चीज़ हमें दिलाई है, हर चीज़ हमें लेके दी है. जो कि बेशक जैसे भी हालात थे, जैसे भी मामला थे, लेकिन हर चीज़

0: अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर में मौजूद है
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो हम अल्हम्दुलिल्ला। यही कहेंगे कि जितनी एलीट क्लास जिंदगी हमने गुजारी है शायद किसी ने ना गुजारी हो।
1: अपने
0: सराउंडिंग में बात कर रहा हूँ गुजारी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हर चीज मुहैया थी। कभी इस तरह नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरे जहन में नहीं आता कि भाई मैंने किसी के पास साइकिल देखी हो, मैंने किसी के पास टीवी देखा हो, मैंने किसी के पास कंप्यूटर देखा हो, मैंने किसी के पास मोबाइल देखा हो, या मैंने किसी के घर में कॉल देखी हो। हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर में।
1: अच्छा ये तो मटेरियल वाली चीज थी ना। चले हम कह लें कि कभी कभी ये भी होता है कि रेस्टोरेंट्स में खाना हो गया, या अक्सर उका जब हम छोटे होते थे तो एक और चीज, क्योंकि वो बचपन था, वो इट डज नॉट हैज अ लॉजिक, इट डज नॉट नीड टू हैव अ लॉजिक, उसके अंदर लॉजिक लगता ही नहीं था ना। अक्सर औकात ऐसा होता था कि जब स्कूल में जाते थे तो दूसरे बच्चों की कॉपियां हम लोग देखते थे बड़ी रंगीन किस्म की, और वो कलर पेंसिल और पेंसिलें जो होती थी, जबकि हमारे पास अपनी वाली अच्छी वाली थी। इट वॉज नॉट डेट कि हमारे पास नहीं थी, लेकिन वो कहते ना एक मीडियम देती थी आपको, आप कहते भाई शानदार चीज है मेरे पास। या
0: मैं
1: कभी
0: वही कह रहा हूँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि भाई शायद अपने पास करता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों की या मैं किसी और की नहीं करता, मैं अपनी यही बात करता हूँ कि मेरे माइंड में कभी इस तरह की कोई चीज नहीं क्लिक हुई,
1: क्लिक नहीं हुई कोई चीज,
0: क्लिक ही नहीं हुई।
1: तो आप फिर वो वाले लोगों में से जो कहते हैं फिकर ना फाका ऐश कर काका।
0: बस वो मैंने शुरू में मैंने यही बात की ना कि भाई हमें 28 तारीख का ये जन्म का मैंने ये मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा सही, ये सेट है, ये सेट है। मुझे याद करता है मुझे सिर्फ मुझे फास्ट फूड का शौक था, और अम्मा अब्बा इसलिए नहीं कि इट वाज इन बजट, इसलिए कि मुझे बस वो अम्मा अब्बा कहते बाहर का, वो एक एरा था जब अम्मा अब्बा कहते थे कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना बहुत ओकेजनली खाना होता था हमारा। तो मुझे एक बर्गर के लिए ना बहुत तरले मिनते करने पड़ते थे भाई अम्मा के, यूं आप समझो वो वाली हालत थी कि जमीन पे लेट जाओ आप घसीटे पाओ कि अम्मा प्लीज एक बर्गर दिला दो। तो इट वॉज नॉट कि वो अफोर्डेबिलिटी का नहीं था मसला, वो ये था कि वो माइंड सेट ऐसा था ना।
0: जी जी जी जी, मैं इस पे भी आपका मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ, जो कि मैं आई थिंक 9th क्लास में था, तो मेरे वालिद साहब बहुत हो गए थे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है सारा कुछ मेरी अम्मी ही कर रही थी सारी चीजें। तो हमें
1: सही।
0: उसके बाद भी मेरी अम्मी ने भी किसी चीज के भी अलग है, हालांकि वो भी
1: माशा
0: रही हूँ तो मैं तो सारा क्रेडिट उनको ही दूंगा
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: कभी भी जो के वो अभी बोला ना कभी अफोर्ड करने की बात नहीं है, लेकिन कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि भाई हमारे मुंह से कोई चीज निकली और वो चीज हमारे सामने ना आई हो
1: माशाल्लाह
0: देर से, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि भाई हमारी वो चीज और वो चीज पूरी ना आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज चाहे खाने से लेके पहनने से लेके सोने से लेके जाने तक मेरे माइंड में कुछ इस तरह कुछ भी इस तरह का नहीं है कि भाई ये चीज हाँ जिस तरह किसके पास अच्छे शूज है मेरे पास भी होने चाहिए। मैं अभी उसी में मैट्रिक में था, मेरे पास मेरे तकरीबन 5 शूज मेरे पास थे जो VIP किस्म के मैंने रखे हुए थे अपने पास।
1: सही सही सही,
0: हाँ कुछ भी इस तरह का नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई जो कि मेरे माइंड में क्लिक हो जाए कि इस तरह का बाकियों के पास है मेरे पास नहीं है। हमारे काफी अच्छे हैं, रिलेटिव्स भी हैं सबके पास, बहुत उस टाइम पे बहुत सारी अयाशी हैं जिस तरह हम कह सकते हैं अभी हम कह सकते हैं अमीर वाले जिंदगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे घर में भी था, कुछ
1: सही
0: इस तरह का नहीं था कि भाई अरे के फिर भी इंडियन मैं भी यही कहूंगा कि भाई मेरे मन में इतनी कोई चीज नहीं है कि जो हो। हालांकि ये मैंने तभी आपको कॉल की कि पता नहीं यकीन आएगा नहीं है,
1: नहीं होता है। देखिए वी आर ऑल टेक्निकली अगर देखा हर इंसान डिफरेंट है, तो कुछ लोग जो होते हैं ये नहीं कि वो दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा वो हों इंस्पायर हों या उनसे हसद करें, नथिंग,
0: बस
1: वो एक चीज होती है कि हाँ भाई ये जो थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लोगों के फ्रिज में वो हम लोग मस्ती के तौर पर भी बोल देते हैं कि भाई आपके फ्रिज में तो बर्फ है, फ्रीजर में बड़ी बात है भाई शहजादे चल रहे हो।
0: वो तो चले देखे वो तो एक टॉपिक है, गर्मी होगी जाओ बस जाओ उनके घर से जाकर बर्फ ले आओ, हमारी आज बर्फ नहीं पे बनी।
1: हाँ ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना बचपन में, अब आप जो बात कर रहे हैं ना वो थोड़ा लॉजिकल होकर बात कर रहे हैं, हम इलॉजिकल सी बात कर रहे हैं, उसका लॉजिक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आज के दौर में भी थोड़ा बहुत रेशो देखा जाए तो लोगों के घर में, मैं उस दिन रिसर्च पढ़ रही थी कि अगर आपके घर में फ्रिज है ना आज के दौर में भी, आज के दौर में भी अगर आपके घर में फ्रिज है तो यू आर वन ऑफ द एलीट क्लास, क्योंकि एक

0: तबका ऐसा है और वो बहुत बड़ा है उसका परसेंटेज जिसके घर में आज भी फ्रिज नहीं है. एंड इट इज नॉट कि वो कोई आप गरीब हो या आप क्या, इट इज नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि वो एक फैसिलिटी है जो अभी भी मौजूद नहीं है.
1: ये देखे मेरे दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए, कोई हाल नहीं, पागल तो है. देखा मैंने आपको, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मुझे बहुत लोग सुन रहे होते हैं.
0: मुबशिर भाई मुझे जो है ना आप बात के ऊपर पूरा पूरा यकीन है. पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद इस किस्म का इंसान हूँ कि जो कहता है कि इसको मटेरियल समझ, जिसको दुनिया समझ में नहीं आती, ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काके वाली अपनी कहानी है. हाँ
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: चले जी. अच्छा ये बता, साथ गेम खेलेंगे?
1: नहीं नहीं गेम नहीं खेलेंगे,
0: मैंने ऑलरेडी
1: बताया ना.
0: देखो हाँ जी, चलें ठीक है मैं समझ गई. चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
1: ओके अल्लाह हाफिज.
0: देखिए आज का क्वेश्चन ना बड़ा दिलचस्प है. इसको उस सेंस में नहीं लें कि आपको ये पॉइंट आउट कर रहा है कि दैट यू डिड नॉट हैड इट और समथिंग. नहीं नहीं नहीं नहीं, वक्त गुजरता जाता है, हम बड़े होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों को हम बचपन में अमीरों की निशानी समझ रहे होते थे ना, वो जिंदगी के बहुत आम से तोहफे होते हैं. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया चॉकलेट इसको नहीं मिलती होगी, भाई सबको मिलती है. लेकिन हमारा एक प्रसेप्शन था बचपन में कि भाई वो जो मामू लेकर आते हैं ना फलाने वाले चॉकलेट अमरीका से, अब पैकेट वो हमें यहाँ पे, हमारा मेरा बचपन तो कतर में ही गुजरा, तो वो चीज़ तो यहाँ पे भी मिल रही थी. लेकिन बचपन में दिमाग में ना कुछ एक अजीब सा स्क्रू ढीला था जो ऐसा लगता था कि वहाँ वाली जो ना वो ज़्यादा अच्छी होगी. एक चीज़ इट वॉज बचपन. या मुझे याद पड़ता है वो जो अक्सर औकात ऐसा होता था पाकिस्तान में, मैंने अभी भी देखा है कि कुछ लोगों की गाड़ियों में अभी भी एसी नहीं होते गाड़ी में. तो इट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग. कुछ लोग, हर इंसान अपनी जेब से शहजादा होता है. गाड़ी होना भी एक इट्स अ वेरी ऑनटिंग. फिर उसके अंदर एसी हो नहीं हो वो एक अलग बात है. अब अपने गाड़ी के अंदर अगर एसी ना भी हो तो वो जो हाई सुपर स्पीड कार्स होती हैं, जो दुनिया की फास्टेस्ट कार्स हैं, उनके अंदर भी कोई एसी वेसी नहीं होता. लेकिन बचपन में क्योंकि हमें ये बात पता नहीं थी, तो बचपन में हमारे लिए कितना वो छोटा दिमाग था. तो वो होता था ना कि यार गाड़ी वाला एसी वाली गाड़ी ना, ओए होए होए होए, गाड़ी में ऐसा वाला एसी हो ना तो सेट बात है. तो ऐसा कुछ था आपके बचपन में, मुझे बताएं. 443-443-77 पे कॉल कर सकते हैं. 443-443-77 पे कॉल कर सकते हैं. एंड वी लिसन एंड वी डोंट जज. इधर कोई किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि कौन कैसा था, किसका घर कैसा था, किसका ये फलाने का धमाके का कैसा था. नो, वी आर जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंसेस कि बचपन में जब मैं छोटा था ना तो मेरा दिमाग कुछ ऐसा काम करता था. अब इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. मुझे अच्छी तरह से याद है जब फोन आया था, मोबाइल फोन आए थे, तो वो एक बहुत ब्रांड का नाम नहीं लूँगी लेकिन एक बहुत मशहूर कंपनी थी उस ज़माने में जिसने पहला फ़ोन कतर में निकाला था. तो मुझे याद पड़ता है कि मुश्किल से उस ज़माने में 6 से 7 लोग थे यहाँ पर जिनके पास मैंने कहीं कतर में मोबाइल देखा था. वो मैं 2000s की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं, 2000 से थोड़ा सा पहले की. तो उस ज़माने में ना लोगों का मैं रिस्पॉन्ड ये देखती थी कि अगर आपका मोबाइल कहीं बज जाता था ना तो एवरीबडी वॉज लाइक ओ दे हैव अ मोबाइल मोबाइल. और मोबाइल को उस ज़माने में अच्छा समझा भी नहीं जाता, पता नहीं क्यों. मेरे मामू चिढ़ते थे, कहते थे हाँ इनको देखो शोबाजी के लिए हर जगह मोबाइल लेकर घूमते हैं. और हम शोबाजी के लिए नहीं लेकर घूमते थे, इट वॉज़ जस्ट कि अम्मा अब्बा किसी और मुल्क में रह रहे हैं, हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं, तो इट वॉज़ अ कम्युनिकेशन थिंग ही. लेकिन एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिफरेंट माइंड. तो आपके टाइम पर कोई ऐसी चीज़ थी? 443-443-77 इज अ नंबर टू कॉल. देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. सारी कहानियां निचोड़ के निकाल दो, हमारे लिए कुछ बात ही नहीं रखो कि हम लोग भी कुछ पाता
0: था. नहीं देखिए, हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं. अब मसला ये है कि हम सबकी एक ही कहानियां हैं, लेकिन जो जिस तरीके से बताता है ना उसमें मजा आता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल. ये जो कहानियां उस टाइम एकदम अजीब सा, मतलब हम लोग कभी ख्वाबों में नहीं सोचते थे कि ये हम छोटे थे, जहाज हमारे सरों के ऊपर से उड़ के जाते थे. यार देखो वहां पहुंची वो ये है, वो राकेट है.

0: में तो वो है ये कभी ख्वाबों में सोचते नहीं थे कि मतलब हम भी किसी दिन इसमें सवार होके और एक आम सा मतलब सवारी के जैसा हमारे लिए एक ये हो जाएगा।
1: अच्छा आप पहले अपना नाम बता दें, पहले नाम बता दें।
0: रईस बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा भाई रईस भाई, रईस भाई इतने टाइम बाद कॉल करते हैं कि मैं आवाज पहचानना भूल जाती हूँ।
0: नहीं नहीं असल में आपके उसमें थोड़ा सा कम आप ज्यादा सुना के समझा देती है तो आप बोलते हैं कि अब कुछ नहीं रह गया।
1: चलिए अब मैं कम बोला करूंगी कम।
0: नहीं बेहतरीन बेहतरीन
1: अब रईस भाई बोलेंगे।
0: जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बोलते हैं और आप समझा लेती है, पूरा समझा देती है ना।
1: अक्सर लोग यहाँ से वहाँ निकल जाते हैं ना, तो आप बताएं आपके टाइम पे किसी, रईस भाई मुझे बताएं, मुझे इंटरेस्ट है सुनने के आपके टाइम पे क्या चीज थी।
0: ये सब चीजें जो आपने बताया वो सारी चीजें हमारे टाइम पे भी थी तकरीबन, हो सकता है कि हम लोगों का एज भी करीब करीब मिलता जुलता हो। तो ये 2000 और 1999 98 का वो उसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब जानने के लायक हो गए थे।
1: सही।
0: तो उससे ये सब बहुत मतलब बहुत अजीब सा लगता था कि किसी के हाथ में मोबाइल हो। अरे भाई अरे उसका मतलब
1: लोग कैसे देखते थे ना,
0: पेजर आया था हमारे उधर पहले। पेजर आया था तो पेजर पे एक मैसेज आ जाता था कि मतलब फला बंदा करने की करना चाहता है, तो वो स्टडी पे जाके और लोकल पे जाके मतलब उससे बात पॉइंट तो डाल के और वो सब चीजें इतने मतलब। लेकिन उसमें क्या था ना कि उस टाइम आदमी का माइंड कुछ बहुत मतलब समझ लो कि उससे उस वक्त हसद कम था लोगों के अंदर, ये
1: बेसिक चीज थी।
0: जी तो ये सब चीजें बहुत मतलब है, बहुत से मतलब ये लगते थे कि यार ये चीजें हम तक शायद बहुत मुश्किल है कि हम उस वहां तक मतलब उस ऊंचाई तक पहुंच पाए। ये सब बहुत अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये वक्त को बदलते बदलते इतना आसान, हम सऊदी अरब में पहले गए,
1: सही
0: बता रहे हैं कि मोबाइल जब जिस टाइम पे नोकिया का मोबाइल पहले फर्स्ट में लिए सादा वाला, तो अब उसकी कीमत की क्या बताएं, आपको कुछ आइडिया होगा कि कितने महंगे थे उस वक्त
1: भाई। देखिए
0: तो नॉर्मल अगर कोई कैमरे वाला मोबाइल अगर लेके चलता था ना, तो उसको पुलिस ये करके कर दी, क्या है इसमें कि मतलब क्यों कैमरे वाला मोबाइल इतना बड़ा मतलब उसको यूज किया गया था।
1: वो बड़ा एक अच्छा मजे की एक बात ये कि जेलेसी फैक्टर, आपकी ये बात इस बात पे मैं आपकी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इट वाज वो जेलेसी फैक्टर नहीं था, वो बस हमारे लिए एक अजीब नमूना नुमा चीज थी भाई।
0: बिल्कुल उस वक्त का थॉट आदमी के अंदर इतने बड़े शुमार किया करते थे कि हम उनको उनकी इज्जत भी करते थे कि अरे भाई इतनी, अभी तो भाई पांच दरवाजे स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो तो उसका खास इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। और पहले के एक हमारे एक बाइक को खरीद के लिए दिया जाता था तो बाइक का इतना वैल्यू दिया जाता था कि यार इसके पास तो बाइक है चलने के लिए और ये इतना मतलब समझ लो कि इसके पास है पैसे का और ये सब का कहीं ना कहीं से सोर्स है, कमा रहा है और पेट्रोल डाल के और गाड़ी को लेके चल रहा है। और ये सब चीजें तो बिल्कुल आम हो चुकी है, लोग तो उसका कोई समझ लो कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से मुहैया करवा दिया कि एक आम सी बात हो गई कि लोगों का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोग आजकल तो हमारे उधर बड़े सगीर में तो ये सब शादियां मादियां करके ये सब तो आम हो गया, मांग रखते हैं बाइक से लेके फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऑन ईयर से मतलब बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल करम सारी चीजें कहीं से भी जाओ मतलब उससे ज्यादा ऊपर हमने अपने अपने मेहनत के कमाई से हमने सारी चीजें मतलब
1: ये तो बड़े होने की बात है ना, हम बचपन की बात कर रहे हैं। देखें जैसे छोटे बचपन में थे, अब अगर दोस्त के पास साइकिल थी ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं थी, लेकिन वो ना वो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना बचपन की कि हर कोई अपने बजट के साथ अफोर्ड कर सकता है।
0: पेंसिल की बात कर रहे हैं हम लोग तो मतलब एक स्याही को मतलब आपने शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, हम लोग तो पहले ये इसके जो लकड़ी एक आता है उसका मतलब हम लोग क्या वो आप लोग की जबान में क्या बोलते हैं उसका कलम बनाया करते थे हम लोग और उस कलम से लिखा करते थे उसमें स्याही को ये करके और उसपे मतलब उसमें डुबो के स्याही डुबो के लिखा जाता
1: था। मैं समझ रही हूँ सही।
0: तो वो सब चीजें बड़ा मतलब उसके अंदर बहुत समझ लो कि मजा था वो बचपन का पढ़ाई।

0: थी और वो बचपन की जो सोच थी वो सब चीजें बहुत मतलब मजेदार थी, और आज तो एकदम समझ लो कि कहां से कहां हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कहां से मतलब कितने छोटे उससे और कितने ऊपर तक है अल्लाह ताला ने मुहैया कराया।
1: अब वो चीजें आम हो गई हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक आम से अभी मोबाइल के ही बारे में अभी कुछ सालों पहले जब मैं खासकर जब से मैं यहाँ पे कतर के अंदर आया तो ये सब चीजें मतलब समझ लो कि ये के जो नॉर्मल पता था उसके हाथ में नहीं होता था जो लेबर, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये के एक नॉर्मल सा मतलब भी वो ये करने वाला अच्छे से अच्छे मोबाइल सस्ती कर दिए गए इलेक्ट्रॉनिक मतलब सामान उस महंगे थे और बंदा मतलब ये
1: नहीं कर सकता था, सही
0: अफोर्ड नहीं कर सकता था। और अल्लाह ताला ने आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मतलब सारी चीजों की महंगाई तो
1: अब तो चल पड़ी, अब तो वो चीजें चल पड़ी, अब तो वो आम मामूल हो गई जिंदगी का।
0: जी जी बिल्कुल, तो ये सब बड़ा मजा आता था पहले का, और जो सोचते थे हम लोग यार यहाँ तक हम बिल्कुल हमारे लिए मतलब इम्पोसिबल है।
1: रईस भाई एक चीज आपको याद है, आप कहाँ से, आप इंडिया से है ना? हाँ जी, तो इंडिया पाकिस्तान का एक ही हिसाब है। आपको याद है जब एसी आया था नया नया?
0: जी जी जी,
1: और वो स्प्लिट वाला एसी, स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो वो कितनी बड़ी लग्जरी लगता था भाई। एक होता था वो विंडो एसी, याद है हम लोग मीटर देख देख के चलाया करते थे कि अच्छा इस टाइम पर चलाएंगे तो इतना बिल बनेगा, और वो विंडो वाला एसी होता था तो मीटर देख देख कर चलाते थे कि हाँ इतनी देर चलाएंगे तो इतना बिल आएगा, इतने यूनिट गिरेंगे।
0: आपको बल्ब के बारे में भी मतलब पता होगा कि पहले बल्ब किस तरीके के आते, 700 वाट के, तो वो बल्ब 200 वाट के और रोशनी तो करते थे लेकिन इतना मीटर को चूसते
1: और
0: थे।
1: अब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह
0: बल्ब आ गए हैं बिल्कुल 10 वाट 5 वाट के लगा बेहतरीन, हमारे घरों में सब वही सब लगे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिल्कुल 0 वाट का जो बल्ब होता है वो भी अपना नॉर्मल आपका काम घर का।
1: बड़ी खूबसूरत यादें भाई, ये बड़ी खूबसूरत, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल्डन यादें भाई, गोल्डन यादें।
0: जी बिल्कुल, बिजलियां पहले तो हम लोगों ने लालटेन से भी मतलब पढ़ाई की हुई है, जिस टाइम बिजली लगी तो उस टाइम हम लोग इतने खुश थे, इतने अपने आप को ये महसूस करते थे कि यार अब तो हम अल्लाह ताला ने बहुत ऊपर पहुंचा। लेकिन इंसान की जो अपनी सोच है ना, दिन ब दिन मतलब कसरत से बढ़ते जाता है कि वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक पहाड़ के बराबर हो, पहाड़ के बराबर उसको दे दिया जाए दूसरे का फिर तो करने लग जाता है।
1: सही सही सही, अल्लाह ताला इस चीज से बचाए मोमिन को, इस शर्त से बचाए कि वो दूसरों को देखकर हसद करने लगे अपनी अपनी।
0: हसद तो मतलब अपने जगह है ही है लोगों के अंदर, वो तो ना सोच के भी बस सिर्फ माँ बाप वो हंसती है जो अपने से ऊपर देखना चाहती है। मैं सीधा बात बोलता हूँ कि चाहे अपने अपने औलाद
1: हकीकत
0: हकीकत कोई भी बंदा हो उसके दिल में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि यार मैं इसके पास से तो भले ना वो बुरा गए लेकिन वो वहाँ तक पहुँच वो मिले क्यों ना वो हासिल कर लूँ मैं वो ये करके।
1: चले ये तो हो गई हमारे मुद्दे पे बात, और आपसे बात करिए मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो जितनी चीजें आपने बोली है ना वो मैंने जी है वो चीजें।
0: पुराने वक्त के बारे में आपने मतलब ये किया तो मैं बोला यार चलो
1: ये कुछ कुछ कुछ दौर इसका कुछ हिस्सा मैंने भी जिया है, और वो बड़ी खूबसूरत यादों
0: को देख के पीछे पीछे दौड़ना पीछे पीछे सोचते थे कि जहाज हम तो इससे आगे हम निकल गए।
1: हाँ ये एक चीज थी। अच्छा रईस भाई ये बताएं, थोड़ा सा गेम शेम खेलेंगे, स्टार्ट लेते हैं आपसे गेम का।
0: अब गेम के बारे में
1: अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रईस भाई, कोशिश ना देखें, एक मिनट का टाइम है, एक मिनट के टाइम में आपने जितने गाने पहचान सके उतने गाने पहचानने, आपने सिर्फ मुझे टाइटल बताना है गाने का, ठीक है?
0: ये सब चीजें तो मेरे लिए बहुत आ रहा है लेकिन चलो कोशिश कर लेते हैं। चलो ठीक है,
1: ट्राई मारेंगे ट्राई,
0: ठीक है ट्राई कर लेते हैं।
1: चलिए जी आपसे शुरुआत करते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है, कहां गया भाई का, अरे ये कहां ही चला गया, मेरे गाने की लिस्ट कहां चली गई, हाँ ये रही। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा अगर आप किसी एक का जवाब नहीं दे सकेंगे तो गेम वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है आगे नहीं जाएंगे, पास नहीं है इसके अंदर। चलें ये वाला बताइए, तो बहुत मशहूर है ये वाला, बहुत मशहूर, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।

0: जहन में बिल्कुल ये गाना सुना हुआ है।
1: ये बहुत घिसा हुआ गाना है, बहुत घिसाया है हमने इस गाने को। चले अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा रईस भाई, खुश रहें। जब भी कभी उदास हुआ करें ना तो अपने ये पुराने लम्हात बचपन के याद करें, बहुत मुस्कुराहट आती है भाई चेहरे पर।
0: मजा आता है सुनने में, मजा आता है और सोचने में, ये करने में, वो सब चीजें यादों में हमेशा होती हैं।
1: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। मुझे पता है रईस भाई की कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप खो जाते हो। मजा आया बात करने में। मुझे ना इनकी लालटेन वाली बात पे याद आया, लालटेन तो हमने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना एक क्या होता था कि वो एक, अब उसे मैं कैसे समझाऊं, मैं ढूंढती हूँ उसको कि उससे कहते क्या थे मुझे, क्योंकि वो बिल्कुल बचपन की याद है धुंधली सी। वो क्या किया करते थे, वो गैस से जलने वाली एक चीज़ थी, उसके ऊपर एक फिल्टर लगाते थे, जब लाइट चली जाती थी ना तो इट वॉज कनेक्टेड थ्रू द गैस, और उसके ऊपर एक फिल्टर लगाते थे और उसको जैसे आप आग लगाते थे तो वो जल पड़ता था मशाल की तरह। किसको याद आ रही है ये, किसी को याद आ रहा है इसको क्या कहते थे? अगर मेरी एक्सप्लेनेशन किसी को समझ में आ रही है तो, गैस के पाइप से वो कनेक्टेड थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना गैस डायरेक्ट आती थी उधर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो गैस का एक पाइप निकाल कर हम कहते थे कि हॉल में या वरांडे में ना वो लगा दिया जाता था, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता था, फिर उसके ऊपर एक नेट नुमा एक फिल्टर लगाते थे और उसको जैसे आप माचिस से या किसी लाइटर से जलाते थे ना तो वो मशाल की तरह जल पड़ता था, वो रोशनी देता था। जब लाइट चली जाती थी तो उसको इस्तेमाल किया जाता था, और वो भी होना एक बहुत बड़ी बात थी, नॉट एवरीबडी हैड दैट। तो इंसान की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं। बचपन की चीजें आप याद करो तो आप हंसते हो, आज के दौर में आप हंसोगे कि मैं किन चीजों को लेकर इतना ज्यादा वो सोचा करता था कि भाई ये तो बड़ी लग्जरी है लाइफ की। अब जैसे मैंने बर्गर के बारे में बात की, बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, बर्गर तो अभी भी खाते हैं तो, लेकिन बचपन में खा लेता था भाई मैं बड़ा होऊंगा ना तो देखना बर्गर की बारिश होगी, बारिश, रोज बर्गर खाया करूंगा। लेकिन अब नहीं जाता। बचपन में ऐसी क्या चीज थी जिसके बारे में आप सोचते थे? मुझे याद है वो मुझे ना लेंस पहनने का, क्योंकि मुझे आंखें वैसे ही बड़ी खूबसूरत लगती हैं अपनी, दूसरों की वो पहली नज़र आंखों पर जाती है, तो लेंस पहनने का बड़ा शौक था, कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं ना, वो बड़ी लग्जरी चीज लगती थी मुझे। अरे भाई कौन है ये लोग जो लेंस पहन जाते हैं, थी एक जमाने में ऐसी चीज, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। चले मैं 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज, और 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सरताज खान अर्ज कर रहे हैं।
1: जी सरताज भाई कैसे हैं?
2: बिल्कुल दुआ शुक्र है आपकी, अल्लाह का करम है।
1: चले भाई सरताज तो, भाई जरा बताएं आपके बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको
2: पहले तो मैं आपकी मालूम में इजाफा कर दूं, जो आपने पूछा ना वो क्या चीज नेट वाली होती थी, उसे मेंटल बोलते हैं, मेंटल
1: मेंटल
2: मेंटल दिमाग कहते हैं, मेंटल
1: मेंटल मेंटल सीरियसली, वो जो पागल वाला मेंटल होता है।
2: हाँ, नहीं वो पागल नहीं था, वो अच्छा था मेंटल, मेंटल के कुछ भी होते तो वो रेशम के धागे से बना होता है, जब उसे चढ़ा के लगाते हैं ना तो वो रोशन हो जाता है।
1: सही।
2: और मट्टी के तेल के जो गैस होते हैं ना उनमें भी यही लगता था, एक तो जो गैस है फिक्र करनी, एक मट्टी के तेल के होंडे बोलते थे हाथ में पकड़ के लेके जाते थे वो,
1: सही,
2: वो
1: सही,
2: उसमें मट्टी के तेल में हवा भरते थे तो यही मेंटल यही होता था। लेकिन इसमें एक बात थी, वो जब जल जाता था ना, अगर जरा सी ठोकर लगेगी पूरा झड़ जाएगा।
1: हाँ हाँ झड़ जाता था। हाँ वो तभी मुझे याद है, जब हम कभी छुट्टियों पे जाते थे तो मामू हमें जाना सुदूर रखा, लेकिन वो ऊपर छत की तरफ था,
2: खूबसूरत लाइट, क्या बात है,
1: बहुत बड़ी वाकई में बड़ी खूब, ना आंखों में चुभने वाली ना कुछ, लेकिन आपको नजर सब कुछ आता था,
2: ठंडी लाइट होती
1: थी बिल्कुल।
2: और
1: मैं कहती हूँ जिन लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया ना उस चीज का, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कोई चीज खोई है।
2: मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो गैस जो हाथ में पकड़ के जाने वाला मिट्टी के तेल का, वो तो यहाँ से मैं भी लेके गया था, अभी भी लोग लेके जाते हैं, बहुत कारम चीज है वो।
1: सही सही सही सही सही सही।
2: वो खास तौर पे जब अल्लाह रहम मरना था हम सबने, रात को किसी के मैय दफन हो रही है तो लाइट चलते थे।
1: सही सही।

0: सही सही सही। अच्छा ये
1: दादा मुझे एक बात याद आ गई, वो चिमनियां साफ करते थे ना, वो हाँ हमारे घर में पानी खा जाता था, चूना लेके ना उसे लगाती नहीं बालता, तो वो चूना लगा के तो साफ किया जाता था
0: सही सही
1: चिमनी को
0: सही।
1: ओ चिमनी टूट गई थी, फिर मैं लेके गया, उस जमाने में तीन आने की चिमनी थी, वो तीन आने भी
0: बहुत ज्यादा थे भाई वो उस जमाने में।
1: तो हमें मोहल्ले का दुकानदार था, वो लड़का मर गया बेचारा पिछले दिनों, मैंने कहा यार इतना महंगा हमें जाओ कहीं और से लेने जाके, मुझे सारी जिंदगी बात नहीं भूली इसकी।
0: वो जिस तरीके से उसने बोल दिया होगा ना, जिस लबो लहजे में
1: बोलते, मोहल्ले का दोस्त जानने वाला कौन सही चुपी, उसकी डेथ हुई है तो मैंने फेसबुक पे देखा उसका ऐलान, वैसे वो शेठ थे, वाकई वो शेठ थे, उनके मैंने दादा भी देखा है और परदादा भी देखा है,
0: सही
1: शेठ लोग।
0: तो सही सही,
1: तो मैं अपने यहाँ दोस्त से जिक्र कर रहा था यार, जहीर नाम था, अल्लाह उसकी मकसद करे, उसने इलाका में वो ईद वगैरह जहाज भी करते थे, मैं वहां भी कर, तो वो जमाने
0: तो वो आप आपके लिए ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने दिल में सोचा कि भाई अब वो बड़ी मामूली सी चीज है, बड़ी मामूली सी, लेकिन उस जमाने में आप कहते हैं भाई ये जो चीज है ना बड़ी क्लासी चीज है भाई ये।
1: उस जमाने में टेलीफोन वगैरह ही था, घरों में कहाँ थे, पूरे मोहल्ले में घर में होता था,
0: पूरे मोहल्ले में घर में होता था, है ना। हाँ
1: बिल्कुल, मैंने एक बार पहले किसी प्रोग्राम जिक्र किया था, हाँ उसी लड़के की वालदा, देखो कैसी बात याद आ गई, उसी लड़के की वालदा, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, इतनी नेक खातून मैंने देखी, इतनी मोहब्बत करने वाली, हम खाला जी कहते थे, तो वो जब यहाँ से फोन करते थे और केबल एंड वायरलेस तो पत्रा बिल्डिंग के पास जहाँ ऑफिस है, अभी भी ऑफिस है वो बंद है, वहाँ टेलीफोन के बूथ बने हुए थे,
0: सही।
1: तो वहाँ से हम जाके फोन करते थे, ऊपर हमारे घर में जाके इतला दे के आते थे, अल्लाह मगफिरत करे उनकी, फिर वो वालदैन हमारे आते थे, खत्म।
0: ये भी एक बड़ी वो बात थी कि लोग बाकायदा इतने हेल्पफुल थे कि अपना फोन नंबर दे दिया करते थे कि भाई तुम्हारा कोई परदेश है, बचा है, कोई जानने वाला है, कोई माँ बाप है तो उनसे बोलो इधर कॉल कर लेना, हम तुम्हें बता देंगे। ये भी मुझे कोई मुझे को पड़ोस बोले मैं कहूंगी भाई मुझसे नहीं हो रहा कि मैं जाके उनका दरवाजा खटखटाऊं।
1: वो एक जो औरत थी थोड़ा जिसमें उनका फरबा था तो चलने में दिक्कत थी, फिर वो बाद में किसी बच्चे को भेजती थी।
0: सही सही सही सही।
1: और मजे की बात ये देखी उस दिनों में इनके वजादारी कितनी थी, वालदैन जाते थे चाय भी पिलाती थी वो,
0: जन्नती औरत थी, कंफर्म जन्नती, कंफर्म जन्नती, माशाल्लाह।
1: ये लोग खत्म हो गए, वो लोग खत्म हो गए, वो बिल्कुल खत्म हो गए। कभी बात का बहुत अफसोस होता है,
0: लोग नहीं है, दुआएं ही पहुंचती हैं इंसान का ही पीछे, इंसान को ये चीज बड़ी बेसिक याद रखनी चाहिए कि आप तो चले जाते हो, आप मिट्टी से आए हो मिट्टी में चले जाओगे, लेकिन एंड में आपका इखलाक रह जाता है, जो हमारे दीन में भी कहा गया कि अपने इखलाक को दुरुस्त करो, अपने इखलाक को दुरुस्त।
1: मैं जो समझा हूँ ना कि दूरी जो हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की है, जो मोबाइल आ गया, अदरवाइज पहले घरों में हर घर में जाते थे हम लोग, अब तो कोई जाते ही नहीं है,
0: कोई शुगल नहीं था, बस ये होता था कि अच्छा फलानी आंटी से खैर खबर लेकर आते, जब बोर हो रहे हैं तो फलाने बच्चे के साथ खेल लो।
1: मैं जब यहाँ से फर्स्ट टाइम गया, मैं 74 में आया था, तो 77 में मैं गया और उनको सबको पता लग गया कि आ रहा है वो, तो वो सब खालाएं जिनको हम मासी जी कहते थे, वो सब दरवाजे पे खड़ी थी, हमारी गली बंद थी, बंद है वो,
0: सही।
1: वो लो जी गैस में गली में एंटर हुआ है वो सब,
0: जैसे बारात हो,
1: प्यार देना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं अपने दरवाजे पे आकर रुका, अभी आगे भी 5-6 घर थे, वो सब खड़ी थी, वो क्या उन्होंने इशारे से बुलाया, इधर आ, मैं गया, वो कह लगे तू आया क्यों नहीं, मैं कहा खाला जी मुझे शर्म आ रही थी, कह लगी यहीं से तू किया है, वही है तू। क्या लोग सही मान से वो हो, बहुत खसारा हो गया, बहुत खसारा हो गया। ये
0: कुछ चीजें वक्त के साथ साथ बदलती हैं, बस हमें अपने ऊपर जो है जो बचा कुछ है इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुछ विरासत में देंगे कुछ अच्छा इंशाल्लाह। कुछ
1: अल्लाह ख्याल करे, नई पौ से कहाँ उम्मीदें हैं, वो सब आगे हालात नजर आ रहे हैं, अपने देखे मैंने भांजी भांजियां और वो,
0: अरे सरताज भाई कोई नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम करेंगे, कुछ तो देंगे, उस्ताद 100% नहीं दे पाता अपने शागिर्द को, लेकिन कुछ ना कुछ तो देता ही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो देता है।

0: से उम्मीदें बाहर रख।
1: अच्छा ये बताएं, हमारे साथ गेम खेलेंगे थोड़ा सा।
0: क्या गेम, क्या है
1: भाई गेम? ये कि आपने गाना पहचानना है, गाने का नाम बताना है बस हमें।
0: मैं सुन, गाना गाना है,
1: गाना गाना नहीं, गाना गाना नहीं है, गाना पहचानना है। अगर मैंने और आपने गाना गाना शुरू कर दिया ना, यकीन जाने लोग अभी रेडियो बंद करके चले जाएंगे।
0: नहीं, ये तो अगर आपकी आवाज हो सकती है, लेकिन अपने बारे में वो शायद मैं कुछ फैन नहीं बना हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
1: चले, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमने गाना पहचानना है।
0: असल में पता है, एक अरसा हो गया, मैं माशाल्लाह 76 का हूँ, अरसा हो गया फिल्में देखे हुए, इंटरेस्ट भी नहीं रही अभी।
1: चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
0: आखिरी फिल्म मैंने कुर्बानी देखी थी, अब देखने कौन से सन में रिलीज हुई थी, वहाँ 2009 में, उसके बाद फिल्में कहाँ देखी कोई भी।
1: चले कोई बात नहीं, लेकिन आप बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: आपकी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मौका मिलेगा फिर बात करेंगे।
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत मेहरबानी, अल्लाह
1: हाफिज़। तो भाई बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान की जिंदगी में, बचपन में, बचपन का लेंस अलग होता है भाई। देखिए हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं, तो अगर मैसेज पढ़े जाएं तो ये क्या है, मिस्टर जैस खान। अच्छा जैस खान ने भाई, इन्होंने क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, ओ धाकड़ लेडी सफा जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर आफियत से हूँ, आप सुनाएं। और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलक भाई ने मैसेज किया है, भाई जिन्होंने मैसेज भेजे माजरत, देर हो गई थोड़ी सी मैसेज पढ़ने में, वो जरा हम घूमने निकल गए थे ना, पार्क शार्क की हवा ठंडी अच्छी खासी चल रही, तो हम घूमने निकल गए, बेल बूटे अच्छे वाले नजर आने लगे हमें। शहजाद सलीम है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हमें आपके साथ FM 107 कॉल करो मैम, मैं शहजाद सलीम। शहजाद भाई मैं आपको कॉल करती हूँ, थोड़े से मैसेजेस पढ़ लूँ। और ये मुझे किसी और ने भी मैसेज किया है, इमरान खान भाई ने मैसेज किया है, हाँ इन्होंने गैस लैंटर्न मेंटल का मुझे, मैंने पूछा था इसे क्या कहते हैं, तो अच्छी सोर्स से इन्होंने मुझे बता दिया है, ठीक है। और कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, आसिफ, आसिफ भाई हैं, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, मैडम जी गुड मॉर्निंग, मैं दफना से ठीक है, आरजे सफा जी फुल ऑन दे, क्या क्या कैसी हो वैसे, आपकी उम्र कितनी है, मुझे तो यही डी कोड नहीं समझ में आ रहा, बीच वाले मैंने कुछ वर्ड्स गुम कर दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ इन्होंने कुछ कि आपकी उम्र कितनी है। देखिए मेरी उम्र उतनी नहीं है जितनी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो जिन जिन चीज़ों का मैं अगर आपको बताऊँ ना कि मैंने किन किन चीज़ों को यूज़ इस्तेमाल किया हुआ है, इस्तेमाल होते हुए देखा है, तो आप कहेंगे कि ये शायद अपने 70s में या 60s में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। बस मामला ये है कि जिंदगी के तजुर्बे जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। तो हमारे साथ और कौन है, सरताज साहब की आवाज मेरे अब्बू से मिलती है, जो अब अल्लाह के अल्लाह ताला सबके वालिदैन को खैर आफियत से रखे। चलें आपको अपने अब्बू जैसी आवाज सुनने को मिली तो आपको अच्छा लगा होगा, ट्रस्ट मी जब किसी की आवाज ऐसी लगती है ना कि किसी अपने प्यारे से मिलती जुलती आवाज लगती है, और हमें पता हो कि वो अब नहीं है हमारे साथ, तो ठंड मिलती है दिल को, अच्छा लगता है। और कौन है हमारे साथ, अच्छा जी कौन है हमारे साथ, किसने भेजी है ये, अरे भाई ये मुझे लग रहा है अरसदा, ना करो भाई ना करो प्लीज, इस टाइम पे नहीं करो। अब्दुलरहमान पाकिस्तानी, ठीक है अब्दुलरहमान भाई ने कुछ वॉइस मैसेज भी भेजा है, अब्दुलरहमान भाई माजर के साथ वॉइस मैसेज मैंने अभी सुना नहीं है, लेकिन भाई ये मैं बता रही हूँ नो डाउट या खिचड़ी है या चार सद्दा है, कुछ तो है जो कि बहुत लजीज तस्वीर उन्होंने भेजी है। और देखो मेरा मामला पता है क्या चल रहा है, मैं पिछले 2 हफ्ते से घर के अंदर ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं खिचड़ी बना लूँ, मेरा इतनी शिद्दत से दिल कर रहा है ना वो काली दाल वाली खिचड़ी जो होती है ना, माशी दाल वाली खिचड़ी खाने की, विद अचार, विद पापड़, विद मैं क्या बोलूँ, सबको मुँह में पानी आएगा, लेकिन मेरे घर में कोई खाने को तैयार नहीं है भाई उसे। अब एक अकेले बंदे के लिए क्या ही कोई खिचड़ी बनाए, मुझे लगता है मुझे कोई दावत करनी पड़ेगी, द खिची दावत। और कौन है हमारे साथ, अच्छा हमें मोहम्मद हुसैन भाई ने यही मैसेज किया था कि भाई इनकी आवाज़ मेरे अब्बू की तरह मिलती जुलती है। मोहम्मद हुसैन भाई अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और जब भी वालिदैन की याद आया करें ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे आपके माँ बाप हयात हैं

के सबसे ज्यादा अमीर अमीरी वाली चीज यही है और मैम हम तो उस दौर के बच्चे हैं जो पड़ोसी के घर से आग मांग कर लाते थे चूल्हा जलाने के लिए अम्मा के कहने पर। और ये इमरान खान है हमारे साथ, उन्होंने ये लिखकर हमें भेजा है। तो है सबकी अपनी अपनी मजे मजे की कहानियां हैं भाई, बहुत मजे मजे की दिलचस्प कहानियां हैं। यूसुफ भाई ने क्या भेजा है, यूसुफ भाई कह रहे हैं बचपन में मुझे डिजिटल रिस्ट वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता था, ये उस जमाने की एक लग्जरी आइटम होती थी, बहुत ही कम लोगों के पास ये होती थी। तो मेरे बड़े भाई कैसे में होते थे, वो लाए थे मेरे लिए वो डिजिटल रिस्ट वॉच में डेट अलार्म और लाइट भी आती थी, हाँ मुझे याद है, जिसकी वजह से सभी बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे। लेकिन आजकल ये सब ऑप्शन मोबाइल में आ गए, ये एक हकीकत बात है। और ये शायद अच्छा इनकी बात पढ़कर ना मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए। तो वो एक सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का जो याद आ जाता है, जिन लोगों ने ये लम्हे जिए हैं उनको ज़रूर याद आएगा कुछ ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम सफ़ा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तो भाई कौन है, शौकत अली खान है। सफ़ा जी इस गर्मी में अव्वल तो निकलना नहीं चाहिए बट हमें तो मजबूरी है, तो अम्ब्रेला एंड वाइट कपड़े तो कवर टू कवर योर फेस। शौकत खान, अच्छा ठीक है, हम जो गर्मी के बारे में बात करते थे उसका मैसेज मैंने अभी पढ़ा है इनका। और कौन है हमारे साथ, हाँ मैंने पूछा था कि क्या कैरी करते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमारे भाई ने हमें मैसेज किया है, आई कैरी माई सन ग्लासेस एंड हुडी। मिस्टर नीतूराम, मिस्टर नीतूराम ने मैसेज किया, ठीक है गुड। और अरे भाई ये कौन है जिनको 52 डिग्री दिखा रहा है, खैर है भाई, कौन है 52 डिग्री वाले भाई, कहाँ बैठे हुए शाकिर जी, आप कहाँ बैठे हुए जो 52 डिग्री दिखा रहा है भाई, खैर है। अच्छा और कौन है हमारे साथ, 52 डिग्री में कौन बैठा हुआ है भाई, और हमें किसने मैसेज किया है, ये अशरफ भाई ने भी मैसेज किया है, तौफीक भाई ने भी मैसेज किया है। तो भाई सबके मैसेजेस चल रहे हैं साथ साथ, अरे मैं अभी पढ़ रही थी तो बाकी। और मुबीन भाई ने भी मैसेज किया है, मुबीन भाई आपको भी हमारा सलाम। हमजा खोकर ने भी मुझे खजूरें भेजी, भाई ये वाली जो खजूरें जो आपने भेजी हैं ये मेरी फेवरेट हैं, रेड वाली, वो हाफ पकी हुई होती हैं हाफ कच्ची होती हैं, देर देर सुभान अल्लाह माशाल्लाह ताला की जिस नेमत का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, सोहेल एहसान है, कह रहे हैं भाई उस टाइम पे बहुत सकून था, खैर पख्तून खान से हैं, हाँ अभी भी सकून है बस इधर उधर ढूंढने की कुछ मामला आते हैं। अच्छा मैम अब क्या कह रहे हैं, पता नहीं इनका मैसेज डीकोड करना पड़ेगा, रुक जाओ ये कुछ तो कह रहे हैं, इनका मैसेज आराम से पढ़ेंगे। एक काम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथियों। अरे भाई याद करते करते हमारा टाइम भी अप हो गया है, तकरीबन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद

चाह रही हैं, थोड़ा सा इंतजार और फिर वापस आके आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी। भाई आज संडे का दिन है तो बादशाह बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। और भाई वीकेंड पे और संडे वाले दिन बादशाह अच्छा लगता है, नाइस।

0: जी हाँ जी, वापस आ जाओ जी. आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107.
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: तो गोपीदियाँ भूलना, वापस आ गए हो आप. जी हाँ, वापस आ गए हो. देखो, मैंने आज आपसे बात की. अच्छा, बात करते करते टाइम कहाँ चला ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद करना होता है, अच्छा होता है. तो भाई देखिए, मुझे आज आप लोगों की बातों से, मैसेजेस से, अभी कॉल्स अभी भी जा रही हैं, लेकिन मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी क्योंकि अब मेरा शो ख़त्म करने का टाइम आ गया है. साथियों देखिए, बचपन भी ना बड़ी कमाल की चीज़ होती है. बड़े हम सब ने हो जाना है, बड़ी एक बेसिक सी बात है, वो एक नेचर का फिनोमेना है कि हम सब ने बड़े हो जाना है. जहाँ बचपन में जहाँ हमें एक छोटी सी चॉकलेट भी ऐसा लगता था ना कि जैसे लॉटरी लग गई हो. एक कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता था जैसे पार्टी हो गई. याद है वो हम 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते थे तो दोस्तों के साथ या कजन के साथ कैसे शेयर करते थे. शर्तें लगती थी कि भाई तुम इस गेम में हराओगे तो. बहुत बड़ी चीज़ होती थी कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर वाली बॉटल, बहुत बड़ी चीज़ होती थी. मुझे नहीं पता जो 2000 पैदा हुए उनको उस चीज़ का एहसास है कि नहीं है, लेकिन हम जो 90s वाले बच्चे हैं ना, उनको बखूबी पता है कि ये चीज़ें कितनी मैटर करती थी. आज हम बड़े हो गए, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं,

0: लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों वाली जो फीलिंग होती थी ना वो कहीं पीछे रह गई है. शायद इसीलिए कभी कभी बचपन की यादें हमें बिल्कुल एक टाइम मशीन जैसी लगती हैं जो हमें बिना टिकट के वापस ले जाती हैं हमारी दुनिया में. और जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना तो लाजमी इन चीज़ों को याद किया करें, छोटी छोटी चीज़ों को याद किया करें. जब आप कभी डाउन फील कर रहे हो तो अपनी बचपन की छोटी छोटी खुशियों को याद किया करें, यू विल फील बूस्टेड. तो मुझे ज़रूर बताइएगा. वैसे अभी तो शो का टाइम ख़त्म हो गया, मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ करने लगी हूँ, लेकिन और ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर बताइएगा कि आपके बचपन में वो अमीरों वाली चीज़ क्या थी. भाई कोल्ड ड्रिंक अमीरों वाली चीज़ थी, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भाई बहुत बड़ी चीज़ थी. फिलहाल के लिए सफ़ा को दीजिए इजाज़त, याद रखिए खुश रहिए, खुश रखिए, चाहे आप किसी भी एरा के हों, चाहे 90s के बच्चे हैं, चाहे आप 2000s के बच्चे हैं, चाहे आप नए दौर के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन खुश रहें और खुश रखें दूसरों को. उदासी के लिए बहुत कुछ है दुनिया में. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा. भाई सफ़ा को दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट. इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. जिनों की कॉल अटेंड आज नहीं कर पाई, इंशाल्लाह से कल बात होगी. तो भाई मेरी तरफ से टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज.
1: दिलबर मेरे कब तक मुझे
0: ऐसे ही तड़पाओगे. हाय हाय हाय, मैं तो कहीं खो गई. चलो चलो गाना सुनते हैं और भी साइनिंग आउट, अब नहीं वापस आऊंगी, पक्का पक्का.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। फिलहाल 1:02 इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो जिसका नाम है समर स्पोर्ट्स।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: सब स्पोर्ट्स में आप सभी का है स्वागत। FM 107 के इस शो में आपको स्पोर्ट्स की दुनिया की सारी खबरें मिलती हैं कि किस मुल्क में कौन सा खेल चल रहा है और आज क्या खास होने वाला है। लेकिन इस शो के फॉर्मेट में सबसे पहले होता है एक ऐसा सवाल जिससे पता ही चलता है क्या आप स्पोर्ट दुनिया में एक्टिव हैं, क्या आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो फुटबॉल के बारे में बात हो, चाहे वो फीफा 2026-2022 के बारे में बात हो। वहाँ से एक सवाल निकल के आता है और चेक किया जाता है कि क्या हमारे सुनने वाले स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या नहीं। वेल, इसी तरह आज हम सबसे पहले सवाल करेंगे और सवाल के बाद आपका जवाब 107 के व्हाट्सएप नंबर पर लिया जाएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 666-22107 और मुझे उम्मीद है कि आज का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। ऑल्दो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसका जवाब आपके पास आई एम 100% श्योर कि आपके पास होगा, और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपके पास जवाब जरूर होगा। उसके अलावा क्या बात होगी आज? आज कुछ ऐसी मेजर चैंपियनशिप है जो होने वाली है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करेंगे, गोल्फ और टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे, साइकिलिंग और एक्वाटिक्स के साथ साथ क्रिकेट में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है उस पर हम बात करेंगे, और ग्लोबल सुपर लीग यानी कि GSL 2026 फाइनल यानी कि T20 और एग्जीबिशन क्या होने वाला है उस पर भी हम नजर डालेंगे, और डोमेस्टिक लीग में क्या कुछ चल रहा है, एंड देन फुटबॉल क्लब के जो फ्रेंडली मैचेस हैं जो कुछ दिनों से हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं उस पर भी बात होगी। पर टेनिस कैसे छूट सकता है? दुनिया के टॉप 3 गेम्स में टेनिस आता है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है लोग खर्च करते हैं, सबसे बड़ा रेवेन्यू टेनिस जनरेट करता है, फुटबॉल क्रिकेट जिसमें टेनिस भी है, तो ये टॉप 3 में से आता है और टेनिस के बारे में तो जरूर बात होगी। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले सवाल का जवाब देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107। तो सबसे पहले सवाल करते हैं और सवाल यह है कि अभी हाल ही में एक प्लेयर हैं और उन प्लेयर ने 5 विकेट बैक टू बैक लिया है क्रिकेट में, इंटरनेशनल मैच में 5 विकेट बैक टू बैक लिया है और एक भी रन नहीं दिया और लगातार 5 ओवर में एक एक विकेट लिया है। कुछ दिन पहले मैंने इस पर बात भी करी थी और बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं। मैं टीम का नाम लेना चाह रहा हूं लेकिन यू नो थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए मैंने इस तरह का सवाल किया है। एक प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में हर ओवर में 5 ओवर लगातार डाले हैं और हर ओवर में एक विकेट लिया है, और ये मेडन विकेट लिया यानी कि मेडन ओवर विकेट, फिर मेडन ओवर, फिर विकेट, फिर मेडन ओवर विकेट, मेडन ओवर विकेट, मेडन ओवर विकेट, बिना एक रन दिए हुए लगातार 5 ओवर किए और हर ओवर में एक विकेट। प्लेयर का नाम बताना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22107। कुछ दिन पहले आपको हमने प्लेयर का नाम बताया भी था। बहुत ही आसान होने वाला है और मैं 100% श्योर हूं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। लेट्स सी कि कौन है जो व्हाट्सएप पर हिम्मत कर रहा है

0: इसका जवाब दे दिया जाए।
1: ओके दोस्त, सबसे पहला जो जवाब आया है, कोशिश अच्छी है लेकिन रमेश भाई ने जो जवाब दिया है वो गलत है और स्पेलिंग में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है, लेकिन मुझे आर्चर का जो नाम है उसमें आचार लिखने वाले जो रमेश भाई हैं उसमें मुझे मजा आया। देखो जोफ्रा आचार इन्होंने जवाब दिखा है, लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है, दूर दूर तक इनसे नाता नहीं है। वह एक और जवाब है मोहम्मद कासिम, और मोहम्मद कासिम बहुत ही गहरे तरीके से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इस वजह से इनको शायद पता है, या तो अगर आप पाकिस्तान के हैं तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बस पता चल जाएगा। इस पर और डिटेल हम कुछ देर में आपको दे ही देंगे। आपको बताना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, 666-22107। नाम है मोहम्मद कासिम, आई गेस कासिम नाम है या असीम नाम है, मोहम्मद आसिम असीम पाकिस्तान से हैं भाई, इन्होंने लिख दिया है। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई कैसे हैं, नाम आपका, नाम नहीं लिखा है और जवाब नहीं पता है। ओके कोई बात नहीं, आप नहीं पता है तो कोई मसला नहीं, अगर आप आजकल सोशल मीडिया भी खोलेंगे तो आपको यहां से जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक प्लेयर है जिसने 5 विकेट हर ओवर में लिए हैं, लगातार 5 ओवर डाले हैं और हर ओवर में 1 विकेट लिए हैं और बगैर 1 रन दिए रिकॉर्ड बनाया है, बगैर 1 रन दिए रिकॉर्ड बनाया है, हर ओवर में 1-1 विकेट लिया। तो पहले 0 विकेट था जब 5 ओवर डाला उन्होंने, तो 5 ओवर 27 रन 5 विकेट, सॉरी 6 ओवर, सॉरी 6 ओवर 27 रन 0 विकेट, फिर 11 ओवर 27 रन 5 विकेट, ये कारनामा करके दिखाया है। आपको बताना है नाम किस शख्स ने किया, और भी लोगों के जवाब आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब हमें 666-22107 पे दे सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया से लेकर फुटबॉल की दुनिया तक के क्या कुछ चल रहा है। दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप ही अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीज्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर द्वारा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रखती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें, क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करे तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइन पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
4: बस बहुत हो गया रूडी, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, और खो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Ameera. Sunday to Thursday, dopahar 1 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Aap sun rahe Summer Sports with RJ Fazil. Only on FM 107. Dil se, desi.
6: जी दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का समर स्पोर्ट्स, ये शो जहां पर समर की सारी जानकारी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है और आपको जिस गेम में भी इंटरेस्ट है उसमें आप कर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे इन खेलों का आज है आखिरी दिन। आज जो सभी बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए मैच हैं, उनके मुकाबले खत्म हो जाएंगे और इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जो कि बड़ी खूबसूरत होने वाली है। तो मेजर टूर्नामेंट का अगर आखिरी दिन है तो वैसे कॉमनवेल्थ गेम है। और AIG वुमेन ओपन गोल्फ में इंग्लैंड के रॉयल लिथम और सेंट एंस गोल्फ क्लब में चल है इस बड़े गोल्फ टूर्नामेंट का आज फाइनल राउंड होना है। और अगर आपको गोल्फ में इंटरेस्ट है तो आप AIG विमेंस ओपन देख सकते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स कौन ही नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं आई गेस। स्कॉटलैंड कितना ही खूबसूरत और फिर ऊपर से ग्लासगो कितना लाजवाब है। क्लोजिंग सेरेमनी है और ये कॉमनवेल्थ गेम भी बड़ा जवाब रहा। क्रिकेट में भी धूम मच रही है। ग्लोबल सुपर लीग GSL 2026 ये क्रिकेट लीग एक नई क्रिकेट की लीग है और आज जो सबसे बड़ा फाइनल मैच है ये मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जा रहा है और ये मैच देखना बड़ा ही लाजमी है। एशियन लेजेंड्स लीग भी चल रही है जाम्बिया के लुसाका में। पुराने दिग्गलाड़ी जो एक यहाँ पर एक बार मैच हुआ था ना, लेजेंडरी प्लेयर आए थे जिसमें कै

थे, युवराज थे और फिर श्रीलंका के कई प्लेयर्स थे, पाकिस्तान के कई प्लेयर्स आए थे लेजेंडरी, तो वो एशियन लेजेंड्स लीग है वो जाम्बिया पहुंचा हुआ है इस बार। जाम्बिया के लुसाका में पुराने दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे, जिसमें शिखर धवन की कप्तानी वाली इंडिया लेजेंड्स का सामना मोहम्मद हफीज की पाकिस्तान लेजेंड्स करेंगी। तो दो मैच बड़े देखने वाले होंगे, लेकिन देखो कितना भी हो के अरे देखो अब तो पुराना मैच गया है, पुराने लेजेंड्स खेलेंगे, और मन में जो राइवलरी है उसको कैसे छुपाएंगे वो तो मजेदार होने वाला है। क्रिकेट में दी हंड्रेड भी चल रहा है जो कि यूके में हो रहा है, और आज इस लीग डबल हेडर के दो मुकाबले होने वाले हैं। ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइजर्स लीड्स की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी, और पहले विमेंस डिवीजन का मैच है और फिर मेंस डिवीजन का, तो विमेन और मेंस दोनों खेल रहे हैं दी हंड्रेड में, यूके जो में हो रहा है और ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइजर्स लीड्स में। वेल, यूके में एक केस सामने आया, और ये केस ये है कि सीनियर टीम जो है वो खेल रही थी खेल, स्लिप में एक बंदा खड़ा हुआ था, बॉलर ने बॉल डाली और स्लिप में खड़ा हुए बंदा जो है जैसी बॉल करीब से पास करती और कीपर के पास पहुंचती है ना, तो बैट के पास होते ही ऐसे चुटकी बजाता है वो स्लिप वाला बंदा, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। अंपायर ये सोचता है हाँ ये बैट को क्लिक हुई है बॉल, और अंपायर आउट दे देता है। लेकिन फिर जब वीडियो रिलीज हुई, वायरल हुई, तो उस प्लेयर को बैन कर दिया गया है जिसने चुटकी बजाई थी। तो ये खेल ना हमारे इंडिया से निकला है। इंडिया में मुझे बहुत किसी ने वीडियो दिखाई थी जिसमें बंदे ने बॉलिंग डाली, बैटर के करीब जब बॉल पहुंची भाई ने चुटकी बजाई, और फिर अंपायर आउट दे भी रहा और सबको लग भी रहा यार बैट लगा है। तो ये भी खेल चला और ये यहां से यार यूके पहुंच गया है ना। उसके अलावा सबसे मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का होने वाला है। क्यों ये सबसे बड़ा मैच है? क्योंकि दो टेस्ट की सीरीज में वेस्ट इंडीज 1-0 से लीड पर है। जिससे पहले जब मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो क्या बात करी थी अपन ने कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्या कैक किया भाई। 311 रन 98 ओवर में पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज ने बनाया था, जिसमें केवम हॉज और शाई होप ने 92 स्कोर किया। पाकिस्तान की टीम आई जिसमें आपको बताया था 282 रन जो है वो स्कोर किया, और 109 शान मसूद ने मारा और इमामुल हक ने 63। यहाँ तो सब ठीक था, फिर वेस्ट इंडीज को 181 पे 10 विकेट दे दिए वेस्ट इंडीज वालों ने पाकिस्तान को, और लगा कि हाँ यार मैच जो है पकड़ में आ जाएगा पाकिस्तान के या फिर ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज के बॉलर भाई वो कहाँ छोड़ने वाले थे, वेस्ट इंडीज के बॉलर ने आतंक मचा दिया, 120 रन पर रोक दिया, 10 किस विकेट गिर गए, और बॉलर ने तो आतंक मचा दिया जेडन सील्स ने, पहले जस्टिन ने और फिर दोबारा जेडन सील्स ने, यानी कि दूसरे इनिंग में 5 विकेट लिए, और फिर केमार रोश ने 2 विकेट, जस्टिन ग्रीव्स ने 2 विकेट, शमार जोसेफ ने 1 विकेट लिया, और 120 पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम। लेकिन आज साख सीरीज ही पाकिस्तान की बच सकती है। कैसे बचेगी? वो सिर्फ ऐसे बचेगी कि ये जो टेस्ट है दूसरा वाला वो जीत जाए। आज होने वाला है, शाम को 5 बजे से शुरू होगा, 2 अगस्त यानी 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये मैच जीतने मैच चलेगा, और जीतने की प्रोबेबिलिटी है वेस्ट इंडीज की 40% है, ड्रॉ की 23% है, पाकिस्तान की 37% है। वेस्ट इंडीज के जबरदस्त प्लेयर हैं और रोशन चेज कप्तान हैं, जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर हैं, कैप्टेंसी कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस बार कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अगर इकलौता कोई फाइटर था पाकिस्तान के दूसरी इनिंग में जो टेस्ट मैच चल रहा था, उसे सिर्फ बाबर ही बाबर थे, इकलौते बाबर फाइट कर रहे थे। 58 रन इन्होंने बनाए 107 बॉल्स पे, नॉट आउट रहे, कहीं से भी मैच को छोड़ा नहीं है, बॉल के बिल्कुल करीब जाकर खेल रहे थे, 54 की स्ट्राइक रेट से 58 का स्कोर किया। फिर आखिरी जो बैटर थे मोहम्मद अब्बास, उन्होंने 33 बॉल पे 23 रन का स्कोर किया, लेकिन वो LBW हो गए जेडन सील्स के बॉल पे, तो पाकिस्तान मैच जो है वो हार गए। लेकिन आज का मैच थोड़ा सा खास है, लेट्स सी कि क्या होता है। बात कर लेते हैं बाकी स्पोर्ट्स के बारे में। कुछ दिन पहले जैसे आपको बताया था टूर दे फ्रांस फेम्स चल रहा है, और लेडीज की महिलाओं की इस मशहूर साइकिलिंग रेस का आज स्टेज 2 चल रहा है, जहां राइडर्स अपने नए रास्ते ढूंढेंगे, नए रास्ते से गुजरेंगे, और ये भी बड़ा ही लाजवाब साइकिलिंग स्पोर्ट्स है टूर दे फ्रांस। और यूरोपियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप चल रही है स्विमिंग की, फ्रांस के पेरिस शहर में स्विमिंग और स्विमिंग से जुड़े बाकी जो खेल हैं उनके मेडल इवेंट्स जो हैं वो आज चल रहे हैं। और फिर नेशनल बैंक ओपन रोजर्स कप होने वाला है, इसको जरूर देखिएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल और टोरंटो शहरों में टोरंटो

में इस बड़े टेनिस टूर्नामेंट में जो ड्रॉ के मैचेस हैं चल रहे हैं। फुटबॉल में फ्रेंडलीज, जैसे कि पहले बताया था, प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस खेले जा रहे हैं। आज का जो बड़ा मैच है वो लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड के साथ साथ एजेक्स और वेंडम शामिल हैं। तो ये कुछ अपडेट है जो चैंपियनशिप्स हैं, क्रिकेट हैं, फुटबॉल है, टेनिस है, साइकिल है, स्विमिंग है, इन सब के बारे में हमने बात करी। और अब ज़रा हम वापस आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या किया आज? बड़ा ही आसान सवाल है और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि जो सवाल है वो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले एक प्लेयर ने 5 विकेट लिए थे और एक भी रन नहीं दिए थे। लगातार हर ओवर में एक विकेट लिया, 5 ओवर लगातार डाले और 5 विकेट उन्होंने लिया। कौन है वो प्लेयर? उस प्लेयर का नाम क्या है? ये आपको बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107। अब जरा आते हैं मैसेज की तरफ। ओके, सबसे पहले मेरे भाई असीम का मैसेज था और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब बताया था। इमरान खान ने मैसेज ग्रीफ इमरान भाई, पहला ठीक है, दूसरा कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही जवाब। अबू खान क्या कहते हैं? अबू खान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। ये कहीं से कॉपी तो नहीं किया, सर्च इंजन का इस्तेमाल तो नहीं करा? एहतराम साहब ने बड़े एहतराम से बात करता है कि भाई ये नया प्लेयर है, ऑडियो भेजिए। और ये नया प्लेयर है, फला टीम का है, टीम भी बता दिया है, नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन नया प्लेयर है। चलो ठीक है, मैं

किस्सा है, मतलब ऐसे तो फिर एक ओवर में चार मलिंगा ने भी लिया था ना हैट्रिक के बाद भी, अबू सऊद अहमद। अरे एक और खेल हुआ यार अभी, मैं मैच खेल रहा था एक स्टेडियम है यूडीएससी, वहां पर मैं मैच खेला था, उस दिन बहुत ही अलग खेल हुआ, हैट्रिक भी हुई, बंदे ने 5 विकेट भी लिए, सेंचुरी भी पड़ गई, और जिस टीम की हैट्रिक ली थी दूसरी टीम ने वो टीम हार गई, जिसमें सेंचुरी पड़ी थी वो टीम जीत गई, है ना, जिस बंदे ने 5 विकेट लिए थे वो टीम हार गई, बड़ा ही अलग खेल हुआ था, कुछ ऐसे यूनिक गेम हो जाते हैं। वेल ब्रॉड ने 4 ओवर में 5 विकेट लिया था, और इसमें जवाब भी अबू सऊद ने बिल्कुल सही दिया, बहुत ही उम्दा सऊद साहब। फिर तौफीक भाई ने मैसेज किया है, फजल भाई मोहम्मद अमीन भाई अच्छा, अरे वो अमीन भाई अभी छुट्टी पे हैं, जिस दिन साथ में शो करेंगे तब आप अमीन भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद तौफीक। मोस्टली लोगों ने सही जवाब, लेकिन रमेश भाई ने जोफरा आचार लिखा है आर्चर लिखना चाह रहे हैं। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अब हम आ जाते हैं जरा जल्दी से जवाब पर। वेल वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार 5 ओवर डाले हैं पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के मैच में, और ये पिछले टेस्ट मैच के बारे में बात हो रही है जहां पर उन्होंने मैच में बोल डाली, हर एक ओवर में एक विकेट लिए। नाम है जस्टिन ग्रीव्स, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, और ये हिस्टोरिक फीट उन्होंने हासिल किया है। 27 जुलाई 2026 का दिन याद रखिएगा, तीसरा दिन था, पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी जो कि तौरौबा में, तौरौबा त्रिनिदाद, ये एक जगह है जहां पर 32 साल के जस्टिन ग्रीव्स ने ये कारनामा करके दिखाया है, और ये ऑलराउंडर हैं, पहले बॉलर बने जो टेस्ट के पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में 5 कंसेक्यूटिव विकेट लिए हैं और मिडन डाला है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि 10 साल बाद हो रहा है, इस दशक में हो रहा है, सेंचुरी में हो रहा है, ये हिस्ट्री है, 5 कंसेक्यूटिव विकेट मिडन डाला है उन्होंने, क्या बात है यार, राज जवाब काम करके दिखाया जस्टिन ग्रीव्स, बिल्कुल सही जवाब लोगों ने बताया है। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा करो, और अब इसी के साथ मुझे यानी कि फली जी इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आज शाम 4 बजे जहां पर आपके अपजी के गाने होंगे, और समर स्पोर्ट्स की खबरें अब आपसे परसों मैं जब मुखात होंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हसन इकबाल की आवाज गाना सुने और एंजॉय करें FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@umc.ua।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक में दोपहर के 1:31 यानी इट्स टाइम फॉर।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? हाँ जी, आज तो आई एम वेरी सर्टेन फुल ऑन एनर्जी आपकी होगी बिकॉज दो दिन की छुट्टी के बाद वीकेंड के बाद हफ्ते की नई शुरुआत एंड यू आर बैक। मैंने कहा जाता है ना कि अभी जो गर्मियाँ इतनी तीखी हैं कि ऐसी फीलिंग आती है कि बस क्या मिल जाए, एसी मिल जाए और फिर एक अंदर बस सो जाए जहाँ भी मौका मिले। नहीं नहीं नहीं, इस टाइम में आपको सोने के लिए एकदम प्रो नहीं करूँगी कि भाई सो जाओ जाके आराम कर लो। नो नो नो नो नो, ये टाइम तो वो टाइम है जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल टॉप पर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एस्केप रूम चैलेंज। वैसे मुझे लगता है कि आज हम ना थोड़े अपने बचपने में लौटने वाले हैं। कैसे? देखो, जब हम छोटे थे तो बहुत सारे खिलौने खेलते रहते थे, पूरा वक्त हमारा गर्मियों का ऐसे ही जाता था, गर्मियों की छुट्टियों में निकलता था और हमें कोई ये नहीं होता था कि टेम्परेचर कितना है क्या है, फुल एंजॉय करते थे। अब इमेजिन करो कि आज आप अपने बचपने में लौटे, ठीक है, फुल ऑन गेम्स हैं, टॉयज हैं, ब्लॉक्स हैं, खेल रहे हैं, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि आप जो हैं खुद एक खिलौना बन जाते हैं। यस, तब फिर क्या होता है? वो जो बताए आपको ये सिचुएशन है एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद डिटेल में पता चलेगी। फिलहाल के लिए आप 666-1107-666-2107 हमारा नंबर याद कर लीजिए बिकॉज इसके तो चैलेंज बड़ा ही कमाल का होने वाला है। और अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आज एस्केप रूम में कहां से आपको एस्केप करना है। ठीक है, तो बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समझ का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। दिल से देसी। Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और अब वक्त है एस्केप रूम के भारी भरकम चैलेंज का। तो क्या हुआ, आज आप कहीं भी बस आराम से बैठे हुए थे और आपने सोचा

वो बचपन के दिन कितने प्यारे थे ना, जहाँ पर आप बिल्कुल बिंदास घूमते थे, अपने मर्जी के गेम्स खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ चिल मारते थे. एंड सडनली कुछ हुआ, एकदम से कहीं टाइम मशीन चली गई. जैसे ही ये टाइम मशीन चली, आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आप अपने बचपने में पहुंच गए. यस, अब आपके सामने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऐसे रिमोट कंट्रोल कार्स हैं, और वो जो ट्रेन होती थी ना, लंबी सी ट्रेन जिसमें चाबी भरो तो चलने लगती थी, वो सारे खिलौने आपके सामने हैं. पर एक खामोशी भी है. आपने खिड़की के बाहर देखा तो सूरज अब ढल चुका है. नाइट लाइट्स थरथरा रहे हैं और अचानक से आपको एहसास हुआ कि आप श्रिंक होते जा रहे हैं. इतने श्रिंक कि आप 3 इंच के हो गए. आपको लग रहा है, अरे यार ये क्यों है मेरी हाइट को. एंड जब आपने सर उठा के देखा तो यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ मैसिव वुडन टॉय बॉक्स. अब इस वुडन टॉय के अंदर आप कैद हो गए हैं. ढक्कन ओक की लकड़ी का है भाई, तो पूरी तरह बंद है, अब निकले कैसे. आपने देखा यहाँ वहाँ, यहाँ पुराने क्रेयॉन्स की महक है, चारों तरफ अंधेरा है, थोड़ा सा कुछ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं. बाहर निकलने का देखो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो जो कोने में एक वी ड्यूटी रिमोट कंट्रोल कार है, आपकी नज़र वहाँ गई. लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि ये कार भी बंद है, इट्स डेड, ना लाइट है ना आवाज़ है. इस बाहरी ढक्कन को जो आपके सर पर है ओक की लकड़ी का, उसको टक्कर मारने के लिए ना ये जो कार है इसका स्टार्ट होना ज़रूरी है. फिर आपने यहाँ देखा, अपने छोटे स्क्रू ड्राइवर्स उठाए और कहा कि चलो अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा. हमने रिमोट कंट्रोल जो कार है उसका हुड खोल दिया है, पर अंदर वायर्स का एक जाल छा है. ऐसा लगता है किसी टॉय डायनासोर ने उसकी जो मेन पार की लाइन है उसको चबा लिया है. अब इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी से व्हील्स तक पहुँचाने के लिए हमें इस गैप को भरना होगा. हमें एक ऐसे रास्ते की तलाश है जिसमें कोई रुकावट ना हो. तो ध्यान से सुनिए हमारा पहला क्लू जो आपको इस टॉय बॉक्स से बाहर निकालने में मदद करेगा. सुनिए, मैं एक ऐसी चेन या गोल रास्ता हूँ जो बिजली को दौड़ने के लिए चाहिए होता है. अगर मुझ में थोड़ा सा भी गैप आ जाए, यानी मैं ओपन हो जाऊँ, बिजली का सफ़र वहीं रुक जाता है और अंधेरा हो जाता है. पर अगर मैं पूरी तरह जुड़ा रहूं, क्लोज रहूं, तो एनर्जी बिना रुके मोटर तक पहुंचती है. बताइए बिजली के इस गोल रास्ते को क्या कहते हैं. देखो ये गोल रास्ता अगर क्लोज्ड होगा ना, ये चेन अगर क्लोज होगी, तो एनर्जी सीधा मोटर में दौड़ती हुई चली जाएगी और ये जो आपकी रिमोट कंट्रोल कार है स्टार्ट हो जाएगी. तो वो क्या है बताएं, उस गोल रास्ते का, उस चेन का नाम बताएं. आप बिल्कुल बिजली की भाषा में बात करेंगे, ठीक है. सो 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपना सही जवाब दीजिए और देखते हैं कि ये पहला पड़ाव इस टॉय बॉक्स से बाहर निकलने का आप पार कर पाते हैं या नहीं. और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक बनता है क्योंकि सोचने के लिए थोड़ा म्यूजिक का साथ चाहिए, है कि नहीं. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. तो कैसे लगे आपको ये म्यूजिकल गाने हमारे बड़े शानदार से? आई एम श्योर कि एस्केप रूम का ये जो ब्रेक आपको मिला आपने जरूर एंजॉय किया होगा. और अभी हम वापस आते हैं आज की सिचुएशन में कि भाई देखो आज हमारा कद भी है ना वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है और हम सब की हाइट जो है वो 3 इंच की हो गई है क्योंकि हम खुद एक खिलौना बन चुके हैं. और आज एक वुडन टॉय बॉक्स के अंदर हम कैद हैं. अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए रिमोट कंट्रोल कार जो हैवी ड्यूटी कार है उसमें ना जान फूंकनी होगी. तो आपने छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स लिए यहाँ वहाँ करना शुरू किया. कार को आपने खोला तो देखा कि भाई देखो सारे वायर्स ना इधर उधर हो गए क्योंकि कोई टॉय डायनासोर ने इसकी पावर को चबा लिया है. अब आप ना क्लू नंबर वन इसका जवाब देना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं एक ऐसी चेन या गोल रास्ता हूँ जो बिजली को दौड़ने के लिए चाहिए होता है. अगर मुझ में थोड़ा सा भी गैप हो जाए यानी मैं ओपन हो जाऊँ तो बिजली का जो सफ़र है वो रुक जाएगा. पर अगर मैं पूरी तरह से जुड़ा हूँ क्लोज हूँ तो एनर्जी बिना रुके मोटर तक पहुँच जाएगी. तो मैं हूँ एंड आई सी दी आंसर्स. हमारे लिसनर्स ने अलग अलग जवाब देने की कोशिश की है. ज़्यादातर लोगों ने इलेक्ट्रिक वायर लिखी है. कुछ ने ये स्टेबलाइजर क्या होता है स्टेबलाइजर किसी ने लिखा है. प्लग सॉकेट लिख दिया है. ओके और क्या लिखा है वायर्स. ये जवाब हमें मिले हैं. सिर्फ हमारे चुनिंदा लिसनर्स हैं जिन्होंने लिखा है सर्किट. ओके तब सही जवाब क्या हो सकता है? देखो सिंगल वायर तो नहीं हो सकती. हमें एक सर्किट की ज़रूरत है और सर्किट जो होता है वो एक क्लोज लूप होता है विच इज मेड ऑफ वायर्स अ पावर सोर्स और एक डिवाइस. समझ में आई बात? तो सही जवाब इज सर्किट. क्या बात है. जिन्होंने भी सर्किट लिखा है ना भाई देखो अपनी थपथपा लो. और हमारे बाकी लिसनर चलो आपको समझ में आ गया कि क्लू नंबर वन क्या हो सकता है. आइए देखिए जिन्हें सबसे पहले हमें सही जवाब दिए उनके नाम है साद मोहम्मद और अकबर. हाँ जी आपने ही सही जवाब दिया और पहला पड़ाव पार कर लिया. चले जो सही जवाब नहीं दे पाए कोई बात नहीं अब आगे बढ़िए और बाकी के क्लूज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जैसे ही आपने सही जवाब दिया सर्किट रास्ता आपको मिल गया पर लगता है हमारा जो फ्यूल है वो गलत तरीके से लगा है. मेन बैटरी कंपार्टमेंट को देख रही हूँ ठीक है. वहाँ दो सिंबल्स हैं ठीक है प्लस और माइनस. अगर हमने इन्हें सही लाइनअप नहीं किया तो केमिकल एनर्जी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदलेगी. सो हियर कम्स योर क्लू नंबर टू. मेन बैटरी के वो दो सिरे ठीक है. फिर से सुने मैं बैटरी के वो दो सिरे हूँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है या बाहर निकलती है. एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव. इन दो एंड्स का टेक्निकल नाम क्या है मुझे जल्दी बताइए ताकि हम इन बैटरीज को सही शक्ल में फिट कर सकें. ओके मैं आपको ऑप्शन देती हूँ क्या नाम हो सकते हैं. सॉकेट टर्मिनल्स प्लग्स. अब इन तीनों में से कोई एक टेक्निकल नाम चुनो और बताओ सही जवाब क्या है. एक बार क्लू नंबर टू में फिर से दोहराऊंगी. मैं बैटरी के वो दो सिरे हूँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है या बाहर निकलती है. पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है और इन दो एंड्स का टेक्निकल नाम जल्दी से बताओ. 666-22-107 666-22-107 पर अपने नाम के साथ सी की अभी टू नंबर टू आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं और दूसरा पड़ाव पार कर पाते हैं. भाई ये जो गाना है ना ये मुझे लगता है कि सारे दिल जलो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें, आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: हाँ जी, एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे दोपहर के 2:02। जनाब जल्दी से विश कीजिए, जल्दी से दुआ कीजिए कि आप एस्केप रूम के आज की इस सिचुएशन से बाहर निकले और आप जो खुद एक टॉय बॉक्स में कैद हैं, खुद टॉय बन गए हैं भाई, वापस अपने रूप में आ जाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107। दिल से दी
2: वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता।

हाँ जी, तो एस्केप रूम में क्या हो रहा है आज? आज की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम थोड़ा सा अपने पुराने ख्यालों में जाएंगे, अपने बचपने को याद करेंगे और टाइम मशीन कहीं चल जाएगी और उसके बाद हम खुद ही एक टॉय बन जाएंगे। देखिए, अभी यहाँ से निकलना है, 3 क्लूज फटाफट हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब था सर्किट। अब जो दूसरा क्लू है, देखिए वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने देखा तो बैटरी कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, वहाँ 2 सिंबल्स हैं प्लस और माइनस का। अगर हमने इन्हें सही लाइनअप नहीं किया तो केमिकल एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील नहीं होगी। तो क्लू नंबर 2 था हमारा, मैं बैटरी के वो 2 सिरे हूँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है या बाहर निकलती है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव। इन 2 एंड्स का निकल नाम क्या है, मुझे जल्दी से बताइए। और मैंने आपको ऑप्शन भी दिए, सॉकेट, टर्मिनल्स, प्लग्स। तो सही जवाब है, बता दूं, टर्मिनल। हाँ जी, जोरदार तालियां हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने टर्मिनल या टर्मिनल्स लिखा है। ये हिंट देने के बाद हमारे कुछ लिसनर्स ने सॉकेट इस ऑप्शन को चूज किया, पर सही जवाब इस टर्मिनल्स। आइए देखें जिन्होंने जवाब दिए उनके क्या क्या नाम है। तो मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है, अमायरा ने सही जवाब दिया है, नितुरम ने सही जवाब दिया है, साद मोहम्मद अकबर, कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, तो बाप के 2 क्लूज सॉल्व हो चुके हैं और सही जवाब देने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं? बैटरीज लग चुकी हैं, सर्किट तैयार है, पर एक आखिरी कनेक्शन अभी भी ढीला है। मोटर के पास 2 वायर्स लटक रही हैं, ठीक है, एक ब्राइट रेड है और एक डीप ब्लू है। अब मैनुअल के मुताबिक हमें इन्हें जोड़ना होगा ताकि फ्लो पूरा हो सके। सो क्लू नंबर 3 आपके लिए ये रहा, ध्यान से सुनिए। मैं वो मटेरियल जो इन वायर्स के अंदर होता है और बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है, ठीक है। अक्सर मैं कॉपर या गोल्ड का बना होता हूँ, मैं इंसुलेटर का बिल्कुल उल्टा हूँ, मुझे क्या कहते हैं? कम ऑन, वो वर्ड, वो जवाब हमें चाहिए। तो जवाब लिखिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। आई कैन सी हमें जवाब आने शुरू हो चुके हैं। अब सही है या गलत वो तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन क्लू नंबर 3 इज, मैं वो मटेरियल हूँ जो इन वायर्स के अंदर होता है और बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। अक्सर मैं कॉपर या गोल्ड का बना होता हूँ, मैं इंसुलेटर का बिल्कुल उल्टा हूँ, तो मुझे क्या कहते हैं? कम ऑन, थिंक, हम सब ने साइंस पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर और इस आखिरी पड़ाव से गुजर पार कीजिए इसे। और अभी थोड़ा सोचिए, म्यूजिकल ब्रेक आपकी राहों में आ चुका है। के और पलक मुच्छल की आवाज, उफ, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, लेट्स एंजॉय टुगेदर। FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ

आपकी ए फॉर अमिता। और अभी भी हमारे लिसनर्स कह रहे हैं, अमिता क्या हो गया, दवाई वगैरह नहीं ले रही हो क्या, मतलब अभी ऐसे आपकी आवाज भारी क्यों लग रही है? ओ भाई, ये जो सर्दी जुकाम है ना, जाते जाते जाता है। वेल, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो माजरत चाहूंगी, बट यस, एस्केप रूम की सिचुएशन पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। तो जनाब, आज सिचुएशन में हम एक टॉय बॉक्स में बिल्कुल कैद हो गए हैं। टाइम मशीन ने हमको वहाँ कैद कर दिया। सोचा नहीं था कुछ हमारे साथ होगा, लेकिन हो गया। बचपन की यादें हम पर थोड़ी सी भारी पड़ गई। अब जिस लकड़ी के बॉक्स के अंदर हम हैं, उसका जो ढक्कन है वो बड़ा ही ज़्यादा भारी है। उससे बाहर निकलने के लिए एक रिमोट कंट्रोल की हैवी ड्यूटी जो कार आपके सामने थी, उसको हमें स्टार्ट करना है। देखिए, आपने पूरी कोशिशें, क्लू नंबर वन आपने सॉल्व किया, सही जवाब था सर्किट। क्लू नंबर टू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था टर्मिनल्स। और अब क्लू नंबर थ्री पर आकर हम थोड़ा सा अटक गए, क्योंकि हमारी जो कार है उसमें बैटरीज लग चुकी हैं, सर्किट तैयार है, पर एक आखिरी कनेक्शन अभी भी ढीला है। मोटर के पास दो वायर्स लटक रही थी, और एक ब्राइट रेड और एक डीप ब्लू। अब मैनुअल के मुताबिक हमें इन्हें जोड़ना होगा ताकि क्लू पूरा हो सके, और क्लू नंबर थ्री यही था कि हमें सॉल्व करना है, और वो ये है, मैं वो मटेरियल हूँ जो इन वायर्स के अंदर होता है और बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। अक्सर मैं कॉपर या गोल्ड का बना होता हूँ, और मैं इंसुलेटर का बिल्कुल उल्टा हूँ, तो मुझे क्या कहते हैं? देखिए, जवाब तो हमें आए हैं, कुछ सही कुछ गलत। मैं किस तरह से आपको हिंट दूँ, मैं सोच रही हूँ। चलिए, मैं इसकी स्पेलिंग से आपको एक हिंट दूँ, ठीक है? अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं, शुरुआत में सी आता है और एंड में आर आता है, ठीक है? आप सोचिए क्या सही जवाब हो सकता है। अपना नाम लिखे 666-22107 पर, 666-22107 पर, और सही जवाब दीजिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, हमें ये हैवी ड्यूटी कार को स्टार्ट करना है और इस वुडन टॉय बॉक्स से बाहर निकलना है, ताकि हमें भी हमारा जो उल कद है वो वापस मिल सके। सो गेट प्रिपेयर्ड, और आप जब तक प्रिपेयर होते हैं तब तक मैं आपका माइंड बिल्कुल सही करती हूँ एक बेहतरीन से गाने के साथ, लकी अली, श्रिया घोषाल की आवाज। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। लेट्स एंजॉय टुगेदर। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी फरमीता। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हम और एस्केप रूम में भाई आज बचपन की याद पड़ी हम पे भारी। टाइम मशीन हमको ले गई एक ऐसी जगह जहां पर खुद ही एक टॉय बॉक्स के अंदर टॉय की तरह कैद हो गए। अब यहाँ से निकलने के लिए हमें क्लूज सॉल्व करने थे और एक बड़ी हैवी ड्यूटी सी रिमोट कंट्रोल कार थी उसको स्टार्ट करना था क्योंकि उसमें कुछ खराबी थी। ठीक है, पहला हमने क्लू सॉल्व किया, सही जवाब था सर्किट। दूसरा हमने क्लू सॉल्व किया, सही जवाब था टर्मिनल्स। तीसरा क्लू हमारे लिए था कि मैं वो मटेरियल हूँ जो इन वायर्स के अंदर होता है और बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है। अक्सर मैं कॉपर या गोल्ड का बना होता हूँ। मैं इंसुलेटर का बिल्कुल उल्टा हूँ, मुझे क्या कहते हैं। तो मैंने कहा था कि चलो अंग्रेजी के अल्फाबेट से आपको मैं थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि स्टार्ट सी से होता है, एंड आर से होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे चार्जर लिख के दे दिया। ओ भाई नहीं, इंसुलेटर का उल्टा भाई। वेल, जिन्होंने भी चार्जर लिखा, इट्स द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज कंडक्टर। जोरदार तालियां उन सबके लिए जिन्होंने हमें सही जवाब दिया और इस चैलेंज से बाहर निकलने की कोशिश। आइए जरा देखें जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है उनके नाम क्या है। उनके नाम है उमर, अकबर, मोहम्मद, जकसक, मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं, उन्होंने भी सही जवाब देने की कोशिश की है। यहाँ पर अमायरा ने भी हमें सही जवाब दिया है, वेल डन। समीरा, वाह, समीरा जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सो हमारे लिसनर्स ने सही जवाब दिया, जोरदार तालियां उनके लिए। अभी भी हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो चार्जर लेकर नहीं, भाई दैट इज नॉट द राइट आंसर, कंडक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, और जैसे ही आपने कंडक्टर कहा, आपने उन कॉपर वायर्स को जोड़ा। ठीक है, आपकी जो रिमोट कंट्रोल कार थी उसकी हेडलाइट्स चमक उठी और आपने रिमोट को हाई स्पीड पर एकदम ढकेल दिया। अब ये जो कार थी आपकी, रिमोट कंट्रोल कार, एकदम टॉय बॉक्स के फ्लोर पर बिजली की तरह दौड़ती हुई और यू करके बाहर, ओ हो, सीधा बाहर निकली, लैच खुला, रॉ अंदर आई और आप टायर्स के सहारे ऊपर चढ़ते हुए सीधा कारपेट पर कूद गए और आपका जो कद 3 इंच का हो गया था वो अब अपने ओरिजिनल हाइट पर पहुंच गया है। हाँ जी, तो कैसी फीलिंग आ रही है एस्केप रूम के इस टॉय बॉक्स से एस्केप करके। हाँ, वेल, आप सभी को बहुत बधाई क्योंकि आपने ये आज का एस्केप पूरा कर लिया। लेकिन आज के लकी विनर कौन है भाई? हमारे चीफ इलेक्ट्रीशियन, उनका नाम है उमर। भाई मुबारकबाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं उमर के लिए। कमाल किया मैंने, कमाल किया, क्या बात है। वेल, कहते हैं कि टॉय बॉक्स का सर तो भाई यहाँ ख़त्म हो गया है। पर याद रखिए, चाहे वायर्स छोटा हो या कोई बड़ी मिस्ट्री हो, अगर आप सही सर्किट ढूंढ लेंगे ना तो हर चीज़ जुड़ जाती है और आप हर एक मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। ऑन दिस नोट, अब मैं कहूँगी कि आप मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का। आप कल दोपहर 1:30 बजे एक नए चैलेंज के साथ आपकी फरमीता हाजिर होगी एस्केप रूम में। तब तक के लिए आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। अपने आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया में ढूंढकर मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए भाई ये कहना तो बनता है, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum साथियों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 विद सफा। साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, पॉजिटिविटी हो और जहां आने वाला हर मेहमान कहे भाई वाह क्या तो माशाल्लाह प्यारा घर है। देखें, घर को डेकोरेट करना हम सबको पसंद होता है। कभी नए कर्टन्स लगाते हैं, कभी नए कुशन्स रखते हैं, कभी खूबसूरत शो पीसेस भी हम ऐड करते हैं और कभी कभी तो फर्नीचर भी चेंज करने का मूड बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर को ब्यूटीफुल बनाने की इस रेस में हम एनवायरनमेंट को कितना अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं एक ऐसे सिंपल आइडिया की जो आपके घर को भी स्टाइलिश बना सकता है और नेचर का भी ख्याल रख सकता है। तो भाई, हमारा आज का इको फ्रेंडली का टॉपिक है होम डेकोर, यानी अपने घर की सजावट एनवायरनमेंट के साथ, दोस्ती के साथ। साथियों देखें, अक्सर हम घर की डेकोरेशन के लिए नए नए आइटम्स खरीदते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब जो है ना हमारे घर का लुक चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी डेकोरेशन आइटम्स प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल बने हुए होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होते। सोचिए, एक प्लास्टिक का शोपीस जो है वो कुछ महीने में घर में अच्छा लगता है, कुछ महीने, लेकिन जब वो पुराना हो जाए तो वो कहाँ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, कचरे में। इसी तरह जब हम पुराना फर्नीचर फेंक कर नया फर्नीचर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, वुड, एनर्जी और दूसरे तीसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके चीजें नई बनाई जा सकती हैं। अगर हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करेंगे तो भाई वेस्ट भी तो ज्यादा बढ़ेगा ना। अच्छा, एक और मसला ये है कि ओवर डेकोरेशन भी हो जाती है कभी कभी। कभी कभी हम घर को इतनी सारी चीजों से भर देते हैं कि सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी कहीं खो जाती है। देखिए, मैं ना सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ। तो भाई अब आप पूछेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है एक छोटा सा इको स्विच। भाई सबसे पहले बाय लेस, Choose wisely and reuse more. यानी हर नई चीज का खरीदना जरूरी नहीं होता। No. आप अपनी पुरानी चीजों को नए अंदाज में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी लकड़ी की चेयर्स जो होती हैं, वुडन चेयर्स जो होती हैं, उनको आप रीपेंट करके एक ब्यूटीफुल कॉर्नर बना सकते हैं। पुरानी ग्लास बॉटल्स को डेकोरेट करके फ्लावर वास बन सकता है भाई। पुरानी जार्स को स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं उनकी तो आप इस्तेमाल करें, मैं भी यही करती हूँ। पुराने कपड़ों से कुशन कवर्स या टेबल रनर्स बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने कर देखा है और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। और अगर आप डेकोरेशन के लिए कुछ नया लेना चाहते हैं तो नेचुरल मटेरियल्स को चूज करें ना, जैसे कि बैम्बू आइटम्स हो गए, वुड डेकोरेशन हो गई, कॉटन फैब्रिक्स हो गए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए या इंडोर प्लांट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखें, प्लांट्स जो होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, वो घर की ब्यूटी भी बढ़ाते हैं और एक फ्रेश सी फीलिंग

0: भी देते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, इको फ्रेंडली घर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका घर बिल्कुल प्लेन और बोरिंग सा लगे, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस रखना। चलिए भाई, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल दुनिया भर में बहुत से लोग घरों में सस्टेनेबल डेकोरेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय उसे रीस्टोर कर लेती हैं। एक पुरानी वुडन टेबल जो होती है, उसको अगर पॉलिश करके बिल्कुल नया लुक दिया जाए तो वो अच्छी खासी दिखती है। कई लोग अपनी बैल्कनी या लिविंग रूम में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाते हैं, जहाँ प्लांट्स, रिसाइकल पॉट्स और नेचुरल डेकोरेशंस होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी पुरानी चीजें ही घर को सबसे ज्यादा स्पेशल बनती हैं, क्योंकि हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी होती है भाई। दादी का पुराना वुडन बॉक्स, पुरानी फैमिली फोटोज के फ्रेम्स या हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स, ये सिर्फ चीजें नहीं होते, ये यादें भी होती हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए है कि अगर आप अपने घर में एक ऐसी चीज ढूंढें जो आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो जरा सोचिए वो क्या होगी और खुद से एक सवाल करें, क्या इसको फेंकने के बजाय दोबारा रीयूज कर सकता हूँ? हो सकता है एक पुरानी जार की एक बॉटल हो जो कि एक ब्यूटीफुल प्लॉट बन जाए। हो सकता है एक पुरानी चेयर जिसे आप रेनोवेट करें तो भाई वो एक फेवरेट कॉर्नर बन जाए। और हमें जरूर बताएं आपके घर की वो कौन सी चीज है, या कहूँ के पुरानी चीज है, जो आज भी आप बहुत स्पेशल है। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, खूबसूरत घर वो नहीं जहाँ सब कुछ नया हो, बल्कि वो है जहाँ हर चीज की कदर हो। छोटी छोटी आदतें बदलें साथियों, और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है वालिदैन की खिदमत. वालिदैन की खिदमत इस्लाम में बहुत बुलंद मकाम रखती है. उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बिना किसी शर्त के हम पर अपना वक्त, मेहनत और मत लगाई. उनकी खिदमत करना सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि जन्नत तक पहुंचने का जरिया भी है. अक्सर हम अपनी मसरूफ जिंदगी में उनकी छोटी छोटी जरूरियात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी मदद, एक प्यारा सा लफ्ज या उनके साथ वक्त गुजारना उनके लिए बहुत कीमती होता है. इस्लाम हमें सिखाता है कि वालदैन से नरमी से बात करें, उनकी बात सुने और उनका दिल कभी ना दुखाए. उनकी दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत होती है. आज का अमल यह है कि अपने वालदैन के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनका हाल पूछें और उनके लिए दिल से दुआ करें. ये था आज का मैसेज. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। देखिए आज की दुनिया में ना सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इसका मतलब है कि हर इंसान को हर वक्त सेफ हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो। देखो आने वाले साल में दुनिया की बड़ी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो गजा है उसकी डिमांड बढ़ेगी और सवाल ये होगा कि क्या सारे जितने लोग हैं सबको उस तरह से फूड अवेलेबल होगा कि नहीं। सवाल ये भी है कि कितने ज्यादा लोगों के लिए फूड का इंतजाम कैसे किया जाएगा जबकि आप जानते हैं कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें इस डिमांड को भी फुलफिल करना है। शायद इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जरूरी हो गया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या। दोस्तों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद है ऐसी फार्मिंग जो कि जमीन पानी और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बगैर फूड प्रोड्यूस करे और इसका मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरा करना नहीं है बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को महफूज रखना है। दोस्तों पुराने जमाने में लोग जमीन को फितरी तरीके से यूज करते थे लेकिन वक्त के साथ फार्मिंग में केमिकल्स पेस्टिसाइड्स और देखा जाए तो एक्सेसिव वाटर यूज बढ़ गया है। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ी है लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई है। जमीन की फर्टिलिटी कम हुई है, पानी जाया हो रहा है या होता है और फिर पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। आज सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जाती है और सस्टेनेबल फार्मिंग का फोकस ये है कि हम कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ज्यादा और बेहतर फूड प्रोड्यूस करें। डियर फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी और एनर्जी बचाई जा सके। वैसे फूड वेस्ट भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में लाखों टन खाना रोजाना वेस्ट होता है। लोग भूख का सामना करते हैं और भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या फिर घरों में खाना जाया हो जाता है। अगर हम सिर्फ अपना फूड वेस्ट कम करते हैं तो शायद हम फूड सिक्योरिटी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं या फूड सिक्योरिटी में बेहतरी ला सकते हैं।

0: इंसान इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। घर में उतना ही खाना आप खरीदिए जितने की आपको जरूरत है। वहीं पर जो लूवर्स हैं उनको रीयूज करना और फूड को सही तरीके से स्टोर करना छोटी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कदम है। वहीं वाटर कंजर्वेशन भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अहम हिस्सा है। फार्मिंग दुनिया की पानी का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करती है। अगर पानी का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फ्यूचर में पानी की कमी पैदा हो सकती है। इसीलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का यूज बहुत जरूरी है। देखिए आप और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है। फिर चाहे एक्सट्रीम हीट हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ये सारी चीजें क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं। फार्मर्स के लिए नई टेक्निक्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की जरूरत है ताकि फूड प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर हो। कतर जैसे ममालिक में फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए लोकल फार्मिंग और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। इससे इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंडेंसी जो है वो कतर की कम हो रही है और लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मर्स की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, कंज्यूमर्स हो, सबको मिलकर काम करना होगा। ऐसे स्कूल्स में भी अब देखा जाए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटीज में एजुकेशन कैंपेन्स भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों फ्यूचर का जो फूड सिस्टम है वो स्मार्ट और सस्टेनेबल होगा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर इंसान को हेल्दी फूड मिल सके और एनवायरमेंट भी फूज रहे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि दोस्तों फूड सिक्योरिटी सिर्फ खाने का मसला नहीं है, ये हेल्थ का भी मसला है, ये इकोनॉमी का भी मसला है और शायद सस्टेनेबल फ्यूचर का एक बड़ा मसला। अगर हम आज सही फैसले करेंगे तो कल की नस्लें भी बेहतर और सेहतमंद जिंदगी पाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कहूंगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2020.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड, एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समीन, मुसलमान की पूरी जिंदगी इलादत से लेकर वफात तक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में ढली हुई है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ये एक इबादत होने के साथ साथ मुसलमान के लिए मुकम्मल तर्ज हयात भी है। सामिन, जब हमारा छोटा नन्ना मेहमान दुनिया में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हिदायत दी कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और ये हिदायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलती है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के कान में अजान दी जब वो फातिमा के यहाँ पैदा हुए थे। और बज़ाहिर ये अमल इस बात की अलामत है कि बच्चे की पहली समात तौहीद और अल्लाह की किबरियाई के कलमात से आबाद हो। ज़रा सोचिए सामीन, एक नन्ना बच्चा जो अभी दुनिया की किसी बात से वाकिफ नहीं, उसके कान में सबसे पहले ये सदा गूंजती है, यानी अजमत, किबरियाई और तौहीद का पैगाम। ये मंजर बताता है कि इस्लाम इंसान की तरबियत का आगाज जिंदगी की पहली सांस से ही करता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, अजान का राज ये है कि इंसान के कान में सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, वहदानियत और कलिमा शहादत की गूंज हो। जैसे जिंदगी के आगाज पर उसे तौहीद सिखाई जाती है, उसी तरह मौत के वक्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है। यूं समझिए कि जिंदगी के दरवाजे से दाखिला भी तौहीद के साथ है और उसका इख्तिताम भी तौहीद के साथ। आइए हम भी अपने घरों में इस सुन्नत को जिंदा करें ताकि आने वाली नस्लों के कान भी सबसे पहले अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठे। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: Hello and welcome to the show called Invest Qatar, where we dwell into the world of finance, investment and businesses. Well, today on this topic of Invest Qatar, we'll be talking about investments during challenging situations. To connect with us, we have Mr. Asif Rehmani, who is actually a board member of RICS. So, Asif ji, aapko pehle hum welcome kahenge FM 107 pe. Hope you are doing good.
2: Thank you very much, Nazia, for lovely introduction. It's always a pleasure coming to your studio and meeting you in person.
1: Pleasure. अच्छा हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है कि investments during challenging situations. तो शुरुआत इसी से करेंगे कि ग्लोबल वॉर या फिर अनरेस्ट की सिचुएशंस में इकोनॉमीज पर क्या असर पड़ता है?
2: वेरी गुड क्वेश्चन नाजिया। अगर ग्लोबल वॉर या किसी भी अनरेस्ट सिचुएशन में देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन कैजुअल्टीज, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है। ऑयल प्राइसेस, फूड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर जाता है और जॉब्स पर प्रेशर आता है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और ऐसे वक्त में हम इन्फ्लेशन को तेज होता हुआ देखते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिस इज यू नो ए साइड इफेक्ट ऑफ एनी ग्लोबल अनरेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
1: राइट, बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अपने वेल्थ को बचाने के लिए तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, फिर कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल लॉस जो है वो कम से कम हो?
2: सवाल अच्छा है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर वेरियस मॉडल्स इन सच ए सिचुएशन, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल एंड कॉमन मॉडल बताऊंगा, डाइवर्सिफिकेशन। कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए। अपने स्टॉक्स को रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके आप डाइवर्सिफाई करें। एमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करें। रिलायबल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन द की इन सच ए सिनेरियो इज टू डाइवर्सिफाई, बिकॉज द सिचुएशन इज चेंजिंग एंड इफ द सिचुएशन इज इमर्जिंग यू डू नॉट नो व्हिच इंडस्ट्री इज गोइंग टू हिट हार्ड। तो इफ योर इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड, सपोज कर लीजिए रियल एस्टेट इज अफेक्टेड, देन यू हैव इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, और अगर गोल्ड अफेक्ट होता है तो यू हैव इन आईटी इंडस्ट्री। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करके यू कैन मिनिमाइज योर यू नो लॉसेस।
1: मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज द की, जो आप कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। अच्छा, क्या गोल्ड बॉन्ड्स एक्चुअली ये है क्या? पहले तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा समझाइए और साथ ही इनमें इन्वेस्ट करना क्या एक अच्छा ऑप्शन है?
2: जी, गोल्ड हमेशा से कहते हैं कि इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की गारंटी के साथ में आते हैं। फिजिकल गोल्ड की जगह पर अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टोरेज का रिस्क नहीं होता है और साथ ही फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सिक्योर और टैक्स फ्री ऑप्शन होता है। क्योंकि देखिए, अगर फिजिकली आपके पास गोल्ड है और उस पहले तो मसला उसका ये है कि आपको उसको कहीं सिक्योर जगह सेफ रखना है उसको। वॉर सिचुएशन में यू डू नॉट नो कि whether that place will be safe or not, किसी बैंक में रखा और if the bank is bombed, then you your gold is not safe anymore. लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड में है तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो रिस्क ऑफ डैमेजेस और इट्स गारंटीड बाय गवर्नमेंट्स, तो इट्स कंसीडर्ड ए सेफ ऑप्शन, सेफर ऑप्शन आई विल से।
1: अच्छा, गोल्ड बॉन्ड्स आपने कहा सेफर ऑप्शन है, तो क्या गोल्ड या दूसरे प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट उतना सेफ नहीं है?
2: जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेशियस मेटल्स कभी इतने गोल्ड के मुकाबले में इतने सेफ ऑप्शन नहीं होते हैं। गोल्ड इज ऑलवेज कंसीडर्ड सेफर ऑप्शन, लेकिन गोल्ड बॉन्ड इज इवन सेफर, क्योंकि उसमें आपको कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं है, कोई डैमेज का रिस्क नहीं है। एंड वॉर में डैमेज इज द बिगेस्ट कैजुअल्टी।
1: राइट, बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, अब बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। क्या लगता है ये फायदेमंद है, और रेंटल प्रॉपर्टी के रिस्क या फिर उनके एडवांटेजेस भी आप हमारी ऑडियंस को बताइए।
2: देखिए, रियल एस्टेट एक स्टेबल एसेट होता है, स्पेशली रेंटल प्रॉपर्टी जो रेगुलर कैश फ्लो देती है आपको, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। जैसे का इशू है आपका, मेंटेनेंस कॉस्ट है या मार्केट का डाउन टर्न है, लोकेशन या

0: डिमांड एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है. अगर प्लानिंग सही हो तो रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है और पैसिव इनकम दोनों मिल सकते हैं उसमें. लेकिन आजकल आप देखें रियल एस्टेट डिपेंड करता है कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में रियल एस्टेट इज नॉट डूइंग वेरी वेल. इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस. बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि वो गॉन बैंकक्रप्ट. आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड दे गॉन बैंकक्रप्ट. You know, I will not name any of the builders, lekin there are several cases, many cases, big builders have gone bankrupt. Middle East mein, real estate mein abhi bhi is quite safe, comparatively.
1: Qatar ka market kaisa hai real estate ke liye investment?
0: It's very good market, I will say, ke it's a good place to invest in real estate.
1: वेरी गुड. चलिए बहुत ही अच्छी बात. अच्छा यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर बैंकिंग सिस्टम पे किसी तरह का कोई असर होता है, जो कि होता ही है ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन एंड ऑल दैट, तो ऐसे में इसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है और इसका असर कैसे आम आदमी की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है?
0: देखिए बैंकिंग सिस्टम पे अगर असर पड़ने का मतलब होता है कि लोन्स मुश्किल से मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और लोगों की सेविंग्स पे खतरा हो सकता है. इसका इम्पैक्ट हर आदमी पर होता है. मकान खरीदना, बिजनेस चलाने या एजुकेशन फाइनेंस कराने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की या बैंक की लोन की फाइनेंस की ज़रूरत होती है. और ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. मिटिगेशन के लिए लोगों के पास मल्टीपल बैंक्स में अपने डिपॉजिट अगर रखे हैं आपने, यू नो, अपनी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट को भी अगर आपने डाइवर्सीफाई किया हुआ है.
1: अच्छा, वो कैसे?
0: कि अपना एक अकाउंट और अपनी सेविंग किसी एक पर्टिकुलर बैंक में रखने की बजाय अगर आप उसको तीन या चार बैंक में रखते हैं, तो इफ वन बैंक कोलैप्सेस देन एटलीस्ट यू नो योर इन्वेस्टमेंट इज इन अदर फोर बैंक्स, तो एटलीस्ट योर इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडरेबली सेफर.
1: बहुत ही अच्छी टिप दी आपने, जबरदस्त.
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्ट समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म. सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की.
1: अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन, उसे देखते हुए कौन सा सेक्टर आपको लगता है सबसे ज्यादा बेहतर है और सेफ है
0: इस वक्त? जो सबसे ज्यादा अच्छा सेक्टर माना जाता है हेल्थ केयर.
1: हेल्थ केयर,
0: यूटिलिटीज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और गोल्ड माइनिंग कंपनीज, द कंपनीज हु प्रोड्यूस गोल्ड, ये सारे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं. टेक्नोलॉजी आईटी भी एक अच्छा सेक्टर था, लेकिन अब आईटी से ज्यादा अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी जो है, विच इज ऑल्सो एन ऑफशूट ऑफ आईटी, लेकिन एग्जैक्टली आईटी, यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल रहे हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द गुड इंडस्ट्रीज, गुड सेक्टर्स टू इन्वेस्ट, स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म. लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई मीन यू नो यू कैन नेवर से वन इंडस्ट्री इज बेटर देन द अदर.
1: कोई शख्स ऐसा है जिसकी बहुत ही लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, वो खुद को किस तरह से अपडेट और अपग्रेड करें? कोई है तरीका, कोई टूल है?
0: देखिए, ऑनलाइन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादातर कमर्शलाइज्ड होती है. द कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशंस विद डीप पॉकेट्स, दे पब्लिसाइज देयर कंपनीज थ्रू गूगल. तो वो जो आप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकती है.
1: अच्छा.
0: सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप एंगेज करें. और आजकल स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन कतार, कतर में ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स दे डू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी. दे हैव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यू एंड दे आर अवेलेबल फॉर फ्री. यस, तो यू गो एंड टॉक टू देम. बहुत सारे बैंक्स, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट अमाउंट का है, तो दे गिव यू वन ऑन वन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. दे कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड दे कैन टेल यू के विच सेक्टर्स आर ग्रोइंग. एंड इसमें आपकी अपनी विजन भी काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सिंपल सी बात है, आजकल इट्स नॉट रॉकेट साइंस के प्रॉफिट ज़्यादा उस इंडस्ट्री में होता है जो विच इज़ द इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर. आजकल ब्लॉक चेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, और उसमें जो कंपनियाँ स्टार्ट हो रही हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रही हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले एप्पल, इट यूज टू बी अ पेनी शेयर. और जिन लोगों ने उस वक्त एप्पल में इन्वेस्ट किया, वो आज एक शेयर की वैल्यू $10,000 से ज़्यादा की वैल्यू है.

0: इतनी बड़ी वैल्यू हो गई कि एप्पल को अपने शेयर को स्प्लिट करना पड़ा। तो जो भी इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर होगी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स इज ऑलवेज देयर।
1: एक्सीलेंट, ये टिप मेरे ख्याल से किसी ने

0: सवाल समझाने, लिक्विडिटी
1: लिक्विडिटी से मतलब है मुराद कैश.
0: आई नो तो लिक्विडिटी मींस.
1: हां, अब हम अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन का शिकार हैं, किसी भी कंट्री में हम रहते हैं एक्स वाई जेड में, और वहां पर वॉर या सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में किस तरह से अपने लिक्विड को रिलीव किया जाए, लिक्विडिटी?
0: देखिए, दो तीन चीजें ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होती हैं. एक बात तो यह है कि वॉर सिचुएशन में यू नेवर नो के व्हेन यू हैव टू लीव दैट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, या उस कंट्री को आपको कब छोड़ना पड़ेगा. तो उस लिक्विडिटी में उसका एक एक इम्पॉर्टेंस पोर्शन ऑफ दैट शुड बी अवेलेबल विथ यू इन यूएस डॉलर्स, कि आप किस कंट्री में मूव कर रहे हैं, वहाँ पर वो करेंसी चलती है या नहीं चलती है. यूएस डॉलर इज़ वन करेंसी जो कि दुनिया में हर जगह चलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि दो तीन साल पहले मैं आई टुक कतरी रियाल फ्रॉम हेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड इट वॉज क्वाइट लार्ज सम ऑफ मनी एंड आई कुड नॉट एक्सचेंज इट. तो आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू सर्वाइव देयर फॉर कपल ऑफ वीक्स. तो यूएस डॉलर का की शक्ल में आपके पास करेंसी होना ज़रूरी है. प्लस अगर आपके पास बॉन्ड्स हैं, जो लिक्विड बॉन्ड्स मिलते हैं आपको, बहुत सारे अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह आपको ट्रेवलर्स बॉन्ड्स देते हैं, वो कैरी करना बड़ा सेफ ऑप्शन रहा है. लेकिन वॉर सिचुएशन में वो जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी है, कन्वर्जन अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो आई विल से कि US dollar is the safest bet, or pound sterling is also in most of the countries in the world. You can exchange it to into a local currency.
1: Very well said. बहुत ही अच्छी बात की. अच्छा, क्या alternative currencies की बात की या crypto currencies में भी invest करना ठीक है आपके हिसाब से?
0: Well, मैं तो personally not favor of cryptocurrencies, लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं. क्रिप्टो करेंसी के साथ में क्या है कि ये high risk और high reward investment है. तो अगर आपने सपोज कर लीजिए रिस्क लेने का एपेटाइट आप में है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो यस, इट्स अ गुड ऑप्शन. चांसेस आर कि आप यू इन्वेस्ट $100 टुडे, इट मे बिकम यू नो $5,000 इन 6 months टाइम, और चांसेस आर कि इन्वेस्ट $5,000 टुडे, इट मे बिकम $100 इन 6 months टाइम. दिस अ वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड टाइप ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट है ये. If you have surplus cash and if you want to play around, if you have money extra, तो ठीक है.
1: कर लीजिए.
0: लेकिन अगर if you are with limited funds, I will say के not to take that risk.
1: उस केस में कहाँ invest करें? Mutual funds.
0: Mutual fund, the investment.
1: Diversify.
0: Yes.
1: When you say diversification, that means.
0: Yes, and as I said के invest in the future industry. ब्लॉकचेन, यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फ्यूचर इंडस्ट्री हैं. और ये ट्रेंड हमेशा से ही रहा है कि आप देखें, जिन लोगों ने आज से 100 साल पहले अगर आप जाएं, तो मैं एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 1900s, जिन लोगों ने कार की कंपनीज में इन्वेस्ट किया, वो पेनी शेयर्स हुआ करते थे फोर्ड कंपनी के, और वो जो आज वो पेनी शेयर जो हैं वो दे आर इनटू मिलियंस नाउ इन 100 ईयर्स टाइम. तो जो भी फ्यूचर इंडस्ट्री हो, अर्ली 1900 में कार इंडस्ट्री वाज़ अ फ्यूचर इंडस्ट्री. देन यू सी इन 50s एंड 60s, जब जेट प्लेन का ज़माना आया, तो ये बोइंग और लॉकहीड मार्टिन और आपकी एस, ये फ्यूचर इंडस्ट्रीज थी. उनमें लोगों ने बहुत अर्न किया, बहुत सेफ अर्न किया, क्योंकि दीज आर ऑल फ्यूचर इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम. तो इफ यू लुक एट दोज ट्रेंड्स, दैट ट्रेंड ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रीज हैज चेंज्ड. अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करेंगे जहाँ के आज वो ऑलरेडी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो जो उनकी मार्केट शेयर वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने वाली है.
1: सही,
0: राइट? क्योंकि वो अपना पीक पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. आपको तो किसी कंपनी को कोई भी शेयर को उस वक्त पकड़ना है जब वो बिल्कुल अपने रॉक बॉटम पे स्टार्ट कर रहा है.
1: बट वही है कि आपके अंदर उतनी होना चाहिए कि आप उसको इतने टाइम तक जो है आप प्रोलॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स में आप यकीन करें और ये आपके लॉक हो जाए, इंटैक्ट हो जाए फॉर 10 years एंड यू जस्ट फॉरगेट दैट.
0: नहीं राजी, आपने बात कही है वो कहीं ना हद तक सही है. और अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो ये इट इज़ क्वाइट ट्रू कि जिन लोगों ने कार की इंडस्ट्री में मूव किया, इन्वेस्ट किया, उनको ग्रो करने में 20-25-30 साल लगे. फिर जेट की इंडस्ट्री में, जेट प्लेन की इंडस्ट्री में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको 10-12 साल लगे. मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जब ज़माना बदलता है तो ज़माने की कदरें बदलती हैं और साथ साथ ज़माने की रफ्तार भी बदलती है. तो अब जो आईटी इंडस्ट्री में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था लेट 90s में, और

0: अर्ली लेट 80s और अर्ली 90s में, उनकी जो रिटर्न था, जो ग्रोथ थी, वो कहीं ज़्यादा फास्ट थी पुराने इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में. हाँ. कार की इंडस्ट्री की ग्रोथ 20 साल में हुई थी, जेट की इंडस्ट्री की ग्रोथ 15 साल में हुई थी, तो आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 2-3 साल में. हाँ. और आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ जो है विद इन ए ईयर और 2 years होगी उसी अमाउंट को लेके.
1: राइट.
0: तो जमाने की रफ्तार हमेशा बदलती है.
1: मेरे ख्याल से नेसेसरी पे भी डिपेंड करता है कितना ज्यादा उसकी जरूरत है, कितनी तेजी से जरूरत है उस चीज की.
0: ट्रू ट्रू ट्रू. लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि जब जैसे जैसे दुनिया ग्रो करती है तो ग्रोथ की रफ्तार भी बदलती है.
1: बिल्कुल.
0: तो आज जो रफ्तार, जो जिस रफ्तार से चीजें ग्रो कर रही हैं, आज से 50 साल पहले नहीं ग्रो करती थी. तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंडस्ट्री जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री, वो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में इट विल रीच इट्स पीक.
1: बिल्कुल. बहुत ही अच्छी बात की, बहुत अच्छी टिप हमारी आपने ऑडियंस को दी है.
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म. सुनिए शो इन्वेस्टर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की.
1: जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का रोल जो है या उनका इंटरवेंशन किस तरह से इकोनॉमीज को स्टेबलाइज कर सकता है.
0: देखिए, इसके कई पैरामीटर्स हैं. पहली बात तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, दीज आर टू मेन एलिमेंट्स जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं. प्लस इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. यू मे फाइंड कि देयर आर सम वेरी वेरी क्लीन गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन पब्लिक का सेंटीमेंट उनकी तरफ नहीं है क्योंकि मीडिया इज अगेंस्ट देम. देयर आर सेवरल कंट्रीज, आई विल नॉट नेम एनीवन, दे आर वेरी गुड कंट्रीज, दे आर वेरी सेफ एंड वेरी फ्रेंडली कंट्रीज, लेकिन मीडिया परसेप्शन अबाउट दोस कंट्रीज इज वेरी नेगेटिव, और उसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करता है. तो दीज आर सर्टन फैक्टर्स.
1: बहुत ही अच्छे पॉइंट, और बड़े आप क्लियर और टू द पॉइंट बात करके ना एकदम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि आप बजटिंग और सेविंग के रोल को किस तरह से देखते हैं.
0: देखिए, बजटिंग स्टार्ट होती है अपनी नीड से. आपकी नीड क्या है लाइफ में? अब एक आम आदमी है, एक आदमी है, आप देखेंगे कि जो 10,000 रियाल कमाता है लेकिन बहुत मॉडाइफ लीड करने का आदी है. राइट. तो वो उसकी बजटिंग जो है वो इस तरह से होगी कि आउट ऑफ 10,000 रियाल वो 7 या 6,000 रियाल अपना सेविंग में डालता है वो.
1: हाँ.
0: और अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो 3,000 रियाल पे लिमिट करता है वो.
1: हाँ.
0: तो अपने खर्च उसी तरह से बजट करता है. और एक आदमी ऐसा है जो कि 10,000 रियाल कमाता है लेकिन वो 15,000 रियाल का खर्चा करता है.
1: हाँ.
0: तो उसकी बजटिंग उस तरह से होती है. पहली चीज बजटिंग में ये है, अपने एक कॉमन में आदमी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग इन्वेस्टर्स, एक कॉमन इंसान जो 10-15,000 रियाल 20,000 रियाल लेके आते हैं.
1: हाँ.
0: कि एक बड़ा सेक्शन जो है आपका सेक्टर अपनी सैलरी का, यू हैव टू सेट असाइड एज योर सेविंग. एटलीस्ट 50% ऑफ दैट मस्ट गो इनटू योर सेविंग. क्योंकि देखिए, हम लोग ख़ास तौर से हम लोग जो साउथ एशियन कंट्री से आते हैं, वहाँ कोई स्टेट सपोर्ट नहीं होती है कि आपके आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पेंशन और स्टेट फंड्स. तो उसके लिए आपको अपने फ्यूचर के वंस यू क्रॉस 60 or 65 यू हैव टू हैव सेविंग. सो बजटिंग आपको अपनी 100% इनकम पे करनी है या आपको अपनी 50% या 40% पे करनी है, दैट्स द की थिंग. एंड उसके लिए अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने डिजायर्स को आपको बहुत कंट्रोल करना होता है.
1: Right.
0: और फिर उसके हिसाब से आपको चलना होगा. लेकिन मैं बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स बजटिंग.
1: बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हैं आप. चीजों को, ख्वाहिशों को थोड़ा सा आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी सेविंग्स हो सकती है.
0: नाजिया, लेकिन एक बात और बताऊँ आपको मैं ख्वाहिशात के बारे में, जिंदगी में, दुनिया में हर इंसान के पास ख्वाहिशात होती हैं, और आपके पास उन ख्वाहिशात को पूरा करने के मीन्स हों वो उससे बड़ी बात है. लेकिन अगर आपको पास ख्वाहिशात भी हैं, ख्वाहिशात को फुलफिल करने के मीन्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद में ख्वाहिशात को आप कंट्रोल करते हैं, वो उससे बड़ी क्वालिटी है इंसान की.
1: बहुत अच्छी बात
0: जी. तो अगर आप में वो सलाहियत है

0: FM 107 Time Check.
1: हाँ जी, टाइम फॉर द टाइम चेक FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:01 इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो द रिक्वेस्ट शो।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ भाई, 2 अगस्त का दिन और आज आपके मर्जी के गाने लेकर मैं तैयार हूँ। चेहरे पर तो होगी। अच्छा, शुरुआत के और आखिर जो महीने के दिन होते हैं ना, चेहरे पर खुशी भी होती है और इंसान ना ऐसा झगड़ा नहीं करता। घरों में झगड़ा मालूम है आपको कब दिखेगा? ऐसा 2 हफ्ते के बाद से, ऐसा 10 तारीख के बाद से लेकर 22-23 तक, उसके बाद झगड़े नहीं होते। या हो सकता है कि कई घरों में 28 तक भी जाता हो लेकिन एक बार जब सैलरी आ जाती है ना बाबा, फिर झगड़े नहीं होते, फिर मोहब्बतें होते हैं, फिर है ना। तो ये एक अच्छी बातों में से एक है। बाकी इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, ये शो द रिक्वेस्ट शो। और 2 तारीख आज का जो थीम है, वो थीम मैं एक बार फिर से वही लेकर आया हूँ जो पिछले हफ्ते था। लगभग वैसा ही है। क्यों? क्योंकि उस दिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पिछले संडे जब हम उदित और अलका के बारे में बात कर रहे थे, उनके गाने जब हम प्ले कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और भर भर के हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो हमने सोचा कि यार संडे के दिन क्यों ना थोड़ा मज़े के गानों के साथ शुरुआत हो और थोड़े पुराने भी हों तो चलेगा। क्योंकि जो उदित ने कर रखा है, जो अलका जी ने कर रखा है गाने में, गाने की दुनिया में, वो लाजवाब कर रखा है भाई, उनका कोई सानी नहीं है। अच्छे कॉम्पोजिशन के गाने भी हैं, फास्ट ट्रैक गाने भी हैं, एनर्जेटिक हैं, वाइब्रेंट गाने रहे हैं 90s के, तो कुमार सानू भी इसमें पीछे नहीं रहे थे। तो आज कुमार सानू के फैंस के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी प्लेलिस्ट में कुमार सानू के गाने हैं, भले वो फैन रहे हों ना रहे हों, लेकिन उनके गाने वो बड़े दिल से पसंद करते हैं, उनके लिए है आपका ये शो जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, निकालिए अपना मोबाइल और डालिए 666-22107 के व्हाट्सएप मैसेज पे एक मैसेज, और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं कुमार सानू का, उस गाने का नाम बताएं। मूवी अगर आपको याद है तो मूवी भी बता सकते हैं। आ जाएगा मजा क्योंकि कुमार सानू साथ होने वाले हैं आपके।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो।

0: यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी बताओ दोस्तों क्या करना है, फिर उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। और मैसेज आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला जो मैसेज है आशिकी के गाने सुनाए। रईस भाई दिल के बहुत रईस है, लोगों के जेब में पैसे होते हैं, रईस भाई के दिल में मोहब्बत है, आशिकी है। और कितना है मेरे को ये आइडिया नहीं, मतलब कितने लोग हैं इनके दिल में, और आगे नहीं बोल सकता, जिनको पता है उनको पता है। दिल में और क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन आशिकी गाना सुनने में कोई बुराई थोड़ी है भाई, अच्छा है, अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हुसैन साहब क्या कहते हैं, हुसैन भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई के भाई, आपकी इंस्टेंट स्टोरी में देखता हूँ हमेशा, तो भाई लगा दो फिर चुरा के दिल मेरा। क्या मेरे इंस्टेंट स्टोरी भी क्या देखते हैं भाई के, भाई आपकी इंस्टेंट स्टोरी में देखता हूँ हमेशा, अच्छा मेरी इंस्टेंट स्टोरी देखते हैं, तो भाई लगा दो फिर चिरा के दिल मेरा गोरिया चली और कर दो आगाज प्रोग्राम का। ओहो प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है जी हाँ भाई और बहनों। मिस्टर फैसल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है फजील भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ है, तू मेरी आशिकी है, तू मेरी आशिकी, मैं देखता हूँ ये गाना। सलाम वालेकुम, जुनैद भाई का सलाम आ गया, वालेकुम अस्सलाम। और तैमूर भाई ने भी बता दिया है कि वो FM 107 सुन रहे हैं और रिक्वेस्ट करेंगे, ये गाना है दिल के मानता नहीं, काहे के लिए नहीं मान रहा है दिल। दिलबर अली कहते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई, मेरी तरफ से आप खुद लगा लो। अरे वाह दिलबर भाई ने मेहनत नहीं करी है कि कुमार सानू का तो मेरे को आए दे, नहीं तो मेरी तरफ से लगा दो। ठीक है दिलबर भाई, अगर कोड़े सामने जो कोड़े वाला है ना, अगर वो इधर उधर हुआ तो अपने मर्जी का गाना लगा लूंगा। हिशाम भाई का सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे। फिर एक और मैसेज है सलाम, काश के हम होश में आए ना आए, उस्मान भाई गाना लगवा के ही मानोगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, रईस का मैसेज, वालेकुम अस्सलाम, एक सनम चाहिए आशी के लिए। ओफो मुशीर भाई क्या बात है, एक सनम चाहिए, वैसे मुशीर भाई ऑलरेडी होगी, मतलब जैसे ब्याह तो हो गया होगा ना, लेकिन भाई दिल है, दिल है, हो सकता है सुनाना चाहता हो, ये मेरा मतलब है। ज्यादा नहीं बोलो फजील मामू, मामू बना दिए जाओगे। मुझे याद है, मुझे याद नहीं कोई भी गाना कुमार सानू का, आप ही लगा दो कोई आपकी चॉइस का। ठीक है मेरा भाई, नाम यहाँ पर लिखा नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं और भाई के मुशीर नहीं है भाई, ना बिया हुआ। ओए अल्लाह मुशीर भाई, आपके आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र यार 35-38 तो होगी, और उम्र के हिसाब से तो हो जानी चाहिए, जैसे कि हर हर जनरेशन में नाम अलग अलग आया है। ठीक है, तो जैसे जैसे किसी का नाम शकील है, हैं अकील है, किसी का नाम नदीम है, ऐसा लगता है इनकी उम्र होगी अब तक तो 35-40। ठीक है, जो नए जमाने के लड़के हैं सादिक, ऐसा सूफियान सिद्दीक साहब है ना, उसके अलावा है ना यूनुस अजमी, ऐसे नाम सुनो तो ऐसा लगता है कि हाँ इनकी उम्र जो है 25-30 के अराउंड है। फिर एक और ज़माने का गाना नाम आए एकदम ही ताज़े ताज़े, अभी आप जैसे सुनते होंगे कैरव आरव अनुष, मैंने एक नाम सुना है, फिर टीना अदीबा, नए नए ज़माने का नाम, तो ऐसे मुशी वाला थोड़ा सा लग रहा है 35 के बाद वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हो जानी चाहिए थी यार अब तक, नहीं आपको लग रहा है, मतलब मेरे को तो ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू एहसास सा हुआ। चेक तो करें, इतना लाइट अच्छा सॉन्ग है, अच्छा उस्मान भाई कह रहे हैं ये 50 साल, उस्मान भाई का है क्या, उस्मान इतना जेनरिक नाम है कि किसी का भी उस्मान नाम रख दो और आपके साए तो पता चला 50 के सामने आने के बाद पता चलता है। मेरा एक दोस्त है उस्मान भाई, उस वो अभी 30 का है और 6-pack abs है, कहता है 35 दौड़ता हूँ मैं, अरे ये तो ज़्यादा हो गया भाई। मतलब अगला आदमी इतना बोले जितना हाकना आपसे पच पाए, इतना ना हाको कि यार सामने से मुंह से निकल जाए, अरे यार इतना क्या हलवा थोड़ी 35 किलोमीटर, 35 का मतलब यहाँ से आप जो है वकरा, इतना थोड़ी कोई दौड़ पाया रहा, एक दो लोगों को जान दो बस यही दौड़ते हैं। खैर गाने पर आते हैं, जल्दी से गाना लगाना शुरू कर देते हैं वरना क्या देर हो जाती है फिर।

फैसल भाई की रिक्वेस्ट पे तू आशिकी है, मैं ये गाना ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक गाना मिल जाए उसके बाद ना क्या होता है कि फिर आसान हो जाता है। तू मेरी आशिकी, ये झंकार बीट्स का के का गाना है यार। तू मेरी आशिकी, इन्होंने कहा है तू मेरी आशिकी। मैं ये छांटने की बीनने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाता तो बढ़िया है। तू मेरी आशिकी से तो गाई गाना है नहीं भाई। तू मेरी जिंदगी लिखे कोई बात नहीं फैसल भाई, मैं आपका गाना बाकी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बाकी लोगों के गाने की रिक्वेस्ट देख लेता हूँ, ताकि क्या होता है कि फिर आसान हो जाता है बाकी ढूंढने के लिए। एक गाना चलता रहे, अपन यहाँ पर अपनी उंगलियों से मेहनत करते रहे हैं कीबोर्ड पे। दिल है के मानता नहीं, लो ये भी नहीं है क्या? दिल है के मानता नहीं। मैं यार सिंगर तो बन सकता था। ये गाना है, लेकिन इसमें एक मसला है कि यार ये मिक्स गाना है। क्या जिंदगी है, कभी कभार दिल है की स्पेलिंग अलग हो जाएगी यहाँ पर। दिल HAIN नहीं है भाई, ये वाला गाना भी अपने पास है, मिला। अरे भाई बहुत छानबीन दिन बढ़ती है। पहला गाना दोस्तों मिल गया है हमें, और ये गाना है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। अब पाजी शुरू कर देते हैं। कुमार भाई आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है शुरू। तैमूर रहमान ने इस गाने की रिक्वेस्ट करी है, और पहला गाना तैमूर भाई के लिए प्ले कर रहे हैं। इसी बीच आप भी अपने गाने हमसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। दिल है कि मानता नहीं, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में FM 107 पे फजील के साथ हैं। दिल से देसी।

थोड़ा रियाज की जरूरत है मुझे। नहीं रियाज भाई आपकी जरूरत नहीं। मतलब गाने का रियाज जो कह रहा हूँ वो, उसके बाद जो है मुझे लगता है कुमार सानू से कुछ रैंक नीचे ही आएगा। मतलब जैसे कुमार सानू अगर फर्स्ट पे हैं तो मेरी 250 रैंक जो है वो आ जाएगी, उसके बाद रियाज की जरूरत है। वरना भाई मेरा भी जवाब नहीं है। ठीक है, बाकी अपने को गाना मिल गया है और जो गाने अपन प्ले करने वाले हैं, एक बहुत ही पुराना गाना है या मैंने सुना नहीं है इतना ज़्यादा, ये है फैज भाई का, सलाम वालेकुम फजील भाई, दिल जिगर नज़र क्या है। ओह दिल का क्या कसूर, 1992 की मूवी है, उसमें कुमार सानू ने इस गाने में आवाज़ दी है और ये गाना मुझसे कहा है प्ले करने को, तो मैं बिल्कुल इस गाने को जो है वो प्ले करूँगा और हमारे पास 3 गाने रेडी है। So, सबसे पहले जो गाना आ रहा है वो है बाजीगर, ओ बाजीगर आए हाय। भाई यार तुम लोगों का जो टेस्ट है ना गाने में है तो यार गाढ़ा। अब्दुल वहाब भाई की रिक्वेस्ट है और बाजीगर ओ बाजीगर ये पहले नंबर पे हम प्ले कर रहे हैं, और फिर हुसैन भाई की रिक्वेस्ट है और ये गाना है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ठीक है, ये गाना है हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे, और फिर तीसरे नंबर पे है गाना फैयाज भाई का दिल जिगर नजर क्या है। अब ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि जो बहुत नेक शायर थे उनने वो शायरी मार दी गालिब साहब ने कि अरे साहेब मसनद ये क्या है, मतलब ऐसा। खैर फैयाज भाई की ये जो 3 रिक्वेस्ट है तो मिल गई है, अब बाकी रिक्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये गाने मिल गए तो हम जरूर प्ले करेंगे। सबसे पहले मुशीर भाई ने कहा कि ये 30 के हैं। मुशीर भाई बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ऐसा नाम का कभी कभार है, मैं सिर्फ मजाक के तौर पर कह रहा था, बाकी होंगे 30 क्या यार, दिल तो हमेशा 25 का होता है। ये वही पुरानी घिसीपिटी लाइन है। एहसान अली कहते हैं भाई कुमार सानू के तो सारे ही गाने हिट हैं, ये कोई बात है यार, गाने का नाम बताओ एहसान भाई, ये ऐसे नहीं होता। मंसूरा के उमसलाल अली 35 किलोमीटर है, मंसूरा से उमसलाल अली, अच्छा ये बता रहे हैं। रोज का सफर है क्या दानिश भाई। जुगनी सॉन्ग प्ले करते हैं बी प्राक और सोनू की आवाज में। अरे भैया हम कुमार सानू के बारे में बात कर रहे हैं दानिश भाई, क्या हो गया है आपको दानिश भाई, लग रहा है आज आपका खान पान सही से हुआ नहीं है। दिमाग में जो एनर्जी पहुंचनी चाहिए वो एनर्जी पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा आज का थीम है कुमार सानू। मुमताज भाई इसी बात पे करते हैं रिक्वेस्ट और ये गाना है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली। ये पुराने गाने अच्छे लगते हैं ना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, है ना। तो ऐसे उस वक्त क्या था कि गाना अच्छा भी लगता था, फीमेल भी उधर से रिप्लाई करते थे। आजकल आप ये गाना नहीं गा सकते, उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं डोली में, ये जैसे ही आप डोली में बोलेंगे उधर से पुलिस आ जाएगी क्योंकि आपके ऊपर FIR हो चुकी होगी। फिर पुलिस वाले कहेंगे उठा ले जाऊंगा तुझे मैं वैन में। देखते रह जाएंगे कॉलोनी वाले सारे। ये गाना गा भी ना देना किसी के सामने, ठीक है। पहले ये गाना ठीक है चल जाता था, अभी माहौल चेंज हो गया। मुमताज भाई की रिक्वेस्ट पे इस गाने को भी अपन जो है प्ले करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एक ऑडियो कुछ देर में, यूसुफ भाई का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम फजील, क्या बात है आज आप नेम एक्सपर्ट लग रहे हैं, नाम के एक्सपर्ट नहीं यार ऐसा। बाकी कहते हैं आंखों से दिल में उतर के तुम मेरी धड़कन में हो, अगर ये गाना मिल गया तो जरूर प्ले किया जाएगा। फिर उसके बाद अपनों की फिल्म में बेगाने हम। भाई क्यों रुला रहे हो यार अनुज भाई, हमेशा ऐसा करते यार, ऐसे गम वाले गाने लेकर आते हैं कि मेरा दिल ऐसे धक धक होने लगता है, भाई सब ठीक है। फिर मेरा सॉन्ग फिर ना गुम हो जाए, क्या कहा है, अच्छा ठीक है। उस्मान भाई छू करे इतना लाइट क्या, ऐ काश के हम होश में आए। ओके रुको, किस मूवी का है, ऐ काश के हम होश में आए, ये गाना मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, ऐसे ना बहुत मुश्किल हो जाता है होश गाना, हाँ इतने लंबे नाम और उसमें फिर इतने ज्यादा लफ्ज होते हैं ना, वो मसले हो जाते हैं। ऐ काश ऐ काश ऐ काश का

काश काश प्लीज मिल जाओ। मधुशी का गाना मिल गया है ये, लेकिन दूसरा है। ठीक है, मैं जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे, तो वैसे ही मैं गाने के पीछे कोशिश करूंगा। अगर ये मुझे गाने मिल जाते हैं जो आपने रिक्वेस्ट किया भाई, अपन प्ले कर देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आपने नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं थोड़ा देर में आपको ढूंढ के ये गाना, ये जो आपका नाम है वो बताऊंगा, क्योंकि ऊपर फिर छानबीन करनी पड़ेगी। तब तक गाना प्ले करते हैं, और गाना है अनु और अलका की आवाज में बेहतरीन ये बाजीगर गाना। जितने भी बाहर बाजीगर सुन रहे हैं, ये आपके लिए है दोस्त।

क्या बात है, पूरा वादा कर लिया कि दिल जिगर क्या है भाई साहब, जान ले लीजिए आप। कुमार सानू की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग दिल जिगर नजर क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे आखिरी तीन गाने प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम खेलेंगे पहचान कौन गेम, क्योंकि कुमार सानू के ये गाने थोड़े से लंबे रहे हैं। ऑल्दो मैंने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के गाने जरूर प्ले करूँ। फिलहाल 4:34 हमारे स्टूडियो की, और बाकी गानों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उस्मान भाई की रिक्वेस्ट प्ले होगी, और ये है आकाश के हम होश में ना आए। ये गाना ढूंढा भाई, बहुत ढूंढा तब जाके मिला है। फिलहाल हमने ये गाना सेव कर लिया है। और फिर यूसुफ भाई का जो गाना है आंखों से दिल में उतर के, ओफो आंखों से ढूंढना पड़ेगा ये वाला, बहुत ढूंढा था आखिरी एक। हाँ मिल तो गया, फरेब 1996 का ये सॉन्ग है जिसे गाया है कुमार सानू ने। और फिर उसके बाद एक गाना और है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये है कुमार सानू का गाना। ये मुमताज़ भाई की रिक्वेस्ट पे तीसरे नंबर पे सॉन्ग, बीच में यानी कि यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे आंखों से दिल में उतर के, और फिर सबसे पहला गाना कुमार सानू की आवाज़ में कि आकाश के हम, जो कि रिक्वेस्ट किया है उस्मान भाई ने।

फिर इस बीच अगर मौका लगा तो अपन बाकी लोगों के सॉन्ग भी प्ले करेंगे और मैसेज में पढ़ देता हूँ कितने लोगों के आए। हमारा सॉन्ग कब आएगा, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, क्या मैंने ये प्ले नहीं किया है? अच्छा हाँ, ये निकला तो है। ओ हाँ, तो एक गलती हो गई है। मुझे लगा ये गाना सबसे पहले यही चला, लेकिन सबसे पहला गाना था दिल है कि मानता नहीं। ओके, तो एक करेक्शन कर देते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुमताज भाई का गाना, मुमताज भाई की रिक्वेस्ट थोड़ी लेट में आई है। तीसरे नंबर पे एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, इस गाने को रख देते हैं। उस्मान भाई का पहला। यार यूसुफ भाई आज थोड़ा लेट होगा। उस्मान भाई का सबसे पहला आएगा, दूसरे नंबर पे मुशीर भाई का एक सनम चाहिए, और फिर यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना है आंखों से दिल में उतर के। आखिर में मुमताज भाई का गाना उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। ठीक है, हो गया, डन है। देखा, सबके साथ कुछ ना कुछ तो मैं कर ही देता हूँ। फिलहाल इन तीन गानों को एंजॉय करें। FM 107 पे वापस जब आएंगे तो गेम खेलेंगे, और उस गेम का नाम होगा पहचान कौन।

कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना आंखों से दिल में उतर के। लाजवाब ये गाना एफएम 107 पे फजील के साथ है। आप फिलहाल 4:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया है पहचान कौन गेम खेलने का। तो दोस्तों इस हफ्ते के पहले दिन कुमार सानू की थीम के साथ हमने कोड़े मारने वाले को वापस घर भेज दिया, क्योंकि अब वक्त है पहचान कौन गेम खेलने का। और 45 मिनट बेचारा ऐसे ही खड़ा रहा, कोई काम में नहीं आया। सैलरी लेकिन भाई की तभी बंदेगी जब वो कोड़े पड़ेंगे मुझे लेकिन बेरोजगार तो करके रखा हुआ है हम लोग ने मिलके, हम लोग ने मैंने, बाकी तो आप लोग कहीं ना कहीं से कोशिश कर लेते हैं कि उसको रोजगार मिले बेल्ट चलाने का, कोड़े चलाने का मेरे ऊपर, लेकिन मैं भी बहुत चलागू। फिलहाल 4:47 और ये तीन गाने जो यहाँ पर प्ले किए जाते हैं, बीच से कहीं से लिरिक्स काटी जाती हैं और उसे प्ले करता हूँ। अगर आप सच में कुमार सानू के फैन हैं आज तो आप बता पाएंगे कि गाने का असल नाम क्या है। गाने का हुक असल में गाने का नाम होता है। तो बीच से कहीं से ये म्यूजिक काटेंगे पहचान कौन में। जो नए लोग हैं उनको एक बार फिर से बता दें, गाना में होता सिंपल सा है पहचान कौन गेम में, जहां पर बीच से कहीं से भी लिरिक्स प्ले कर देते हैं, आपको गाने का नाम बताना होता है सिंपल। तो बस उतना सही गेम है। और कुछ लोगों के अगर गाने नहीं चले तो माजरत, अगर आखिरी में गाना चलने का वक्त हुआ तो मुमताज़ भाई की रिक्वेस्ट पे चलेगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली पे। बाकी एक भाई का मैसेज है, थैंक्स, थैंक यू सो मच। और अनुज भाई माजरत, आज आपका गाना नहीं प्ले हो पाया। यूसुफ भाई कहते इट्स ओके, दिस इज योर फैंस ओनली। अरे नहीं है, फैंस वगैरह कुछ भी बात नहीं है, बस जिस पे मौका मिल जाता है अपन वो प्ले कर देते हैं। दिलबर अली, आपका वैसे गाना प्ले हो गया सुबह। दिलबर अली कहते हैं आज भाई आप तो अलग फॉर्म में, मैं हमेशा रहता हूँ आए अपना फॉर्म, वैसे क्रिकेट में भी तगड़ा चल रहा भाई, सेंचुरी 50 80 80 ये चल रहा मेरा, उसके बाद नज़र लग गई किसी की 19 20 12 12 हो गए शहजाद भाई कहते हैं माई रिक्वेस्ट सॉन्ग खता तो है जब हाल दिल में किसी से। भाई शहजाद भाई थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन थोड़ा जल्दी रिक्वेस्ट करते तो पक्का प्ले हो जाता। फिलहाल गाने की तरफ आते हैं, यानी कि पहचान कौन गेम की तरफ आते हैं। और सबसे पहला जो आज का पहचान कौन का गाना है वो बड़ा आसान है, 100% लोग सही जवाब देंगे। लेट्स प्ले दिस।

गाने का नाम बताओ मेरे भाई। इसकी टोन भी इतनी आसान है ना कि अगर मैं यही कंटिन्यू कर देता तो आपको आसानी से पता चल जाता। ऑल दो वैसे पता चल भी गया होगा यार, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इस गाने को पहचानना। सॉन्ग है, बिल्कुल सही जवाब बताया।

यूसुफ भाई ने सबसे पहले किया है और दानिश भाई सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे कैसर भाई हैं बहुत ही उम्दा, मकसूद भाई ने तीसरा नंबर ले लिया, हिशाम भाई ने जवाब दे दिया है बहुत ही उम्दा, फैसल भाई ने सही जवाब दिया है और फलक, ये क्या हो गया, फलक ने आज गलत जवाब दिया है, गलत जवाब, हुसैन भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आफाक ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है और अरमान खान ने सही जवाब दिया है और उसके बाद है शहजादा सलीम, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, सिर्फ एक गलत जवाब है। लेकिन क्या है, कई बार ना आपका जवाब सही होता है लेकिन वो हुक लाइन जो स्पेसिफिक होती है ना वो आप नहीं बताते हैं, आप फिर लिरिक्स बीट से आपको जो याद आ रही होती है आप वो बता देते हैं। एक बार फिर से सुनिए।

अगर देखा जाए तो फिर और जवाब जो है एहसान अली के, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, रईस ने गलत जवाब दिया है। ये लाइन मैं मानूंगा नहीं, अगर बीच में भी कहीं अगर ये लाइन है, मैंने प्यार तुमसे ही किया, ये लाइन नहीं है एक्चुअली में, इस गाने का नाम है।

जरा जरा क्या बात है, बहुत ही उम्दा लोगों ने खेल का मुजाहरा किया, एक दो लोग गलत थे बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। सेकंड गाना यानी कि दूसरे नंबर पे भी गाना है, आप इसमें भी पास तो हो सकते हैं। थोड़ा सा ये टफ जरूर है बट पता चल जाएगा कितने ज्यादा आप कुमार के फैन हैं।

0: थोड़ा गलत हुआ है कुछ ये प्ले करना था।
1: मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं।
0: है कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट, कोई बात नहीं। आप मेरे ख्याल से मुझे ये वाला गाना प्ले करना था।

बस बस बस बाबू मुशायद, ज्यादा गाना नहीं प्ले करना, आपको बताना है इस गाने का नाम असल में क्या है। यार ये वाला तो मतलब आसान से भी आसान होना चाहिए, लेकिन जो पहला गाना मैंने प्ले किया था इससे पहले वाला, वो वाला गाना आपको नहीं बताना है, ये वाला बताना है, ठीक है। रईस भाई जो दोबारा प्ले किया इसका बताइए, फिर उसके बाद दिल जिगर आपने बता दिया, उस गाने में एक्चुअली दिल जिगर ही है, वो गाने का नाम ही दिल जिगर है, वो गलत प्ले हो गया था, ये वाला ये नया है, ठीक है ये बताना है। देखते हैं, हुसैन भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही बताया है, फिर उसके बाद दानिश ने बिल्कुल सही बताया है, कैसर ने सही बताया है, श्याम ने सही बताया है, फिर अरमान ने बिल्कुल सही बताया, फैसल ने भी ये गाना सही बताया, हमजा ने रोज सही बताया है और रोज रोज सही बता रहे हैं, फलक ने तो बिल्कुल सही बताया, बहुत ही उम्दा, पहला गाना थोड़ा सा मसला हो गया था। फिर उसके बाद ये है मकसूद भाई, इन्होंने भी सही बताया है, खलील ने कहा है, सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल, मैं बहुत अच्छा खलील भाई, थोड़ा देर हो गया, खल्लू भाई किधर चले गए थे, बिल्कुल सही बताया। अच्छा दो अलग फलक आ गए हैं क्या, ओ हाँ एक फलक अलग है, ये दूसरे वाले फलक है, ओके तो पहले वाले नहीं गलत बताया था, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी जो दूसरा आपने जवाब बताया फलक वो सही है, फिर उसके बाद अब्दुल अजीज़ ने सही जवाब बताया है, मुमताज ने सही जवाब बताया है, आफाक साहब ने सही जवाब बताया है, रईस ने अब जाके सही बताया है, बहुत ही उम्दा, फजील भाई मैं दूसरा फलक हूँ हाँ नहीं बिल्कुल सही, ठीक है सॉरी लेट हो गया, अरे क्या सॉरी की बात है, एक बार फिर से सुनिए गौर से और फिर बताइए क्या आपको ये गाना समझ में आ रहा है।

0: बस बस बस इतने में आपको बस बता लेना है, इसमें ज्यादा कुछ वैसे तो है नहीं, 100% लोगों को पता है इस गाने में क्या है।
1: तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके

0: बस बस बस इतने में तो लोगों को पता चल गया है। और फलक शब्बीर सिंगर ना हो देखिए। नहीं नहीं, फलक फलक अलग है। मैं फलक SRK हूँ। अच्छा ठीक है, ये डिफरेंशिएट अपन कर लेंगे फलक SRK करके। आगे मैसेज, आगे तीसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 4:55 हो गए भाई। ये गाना थोड़ा सा अनोखा है, इस अनोखे गाने को पहचानिए और बताइए।
1: तकदीर संवर जाए
0: बस, तो इतनी ही सी लाइन है, तकदीर संवर जाए, इसको आपको पहचानना। मैं थोड़ा सा और भी प्ले कर सकता था लेकिन फिर क्या उसमें गड़बड़ हो जा रही है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बाबा। तो आपको गाने का नाम बताना है, एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं और लंबा वर्स अगर प्ले कर पाए। बताइए गाने का नाम क्या है। वेल, इसमें कैच भी है, अगर अगर वो कैच अगर पकड़ लें तो बढ़िया है। जैसे कि फैसल भाई इस कैच को नहीं पकड़ पाए। उसके अलावा रईस भाई कहते हैं भाई ये मूवी देखने के लिए हाउसफुल था। अरे क्या बात कर रहे हैं, टिकट लेने के लिए लाइन लगी थी। खैर कैसर भाई ने इस गेम को समझ लिया जो मैंने अभी खेला है। उसके अलावा एक और भाई हैं वो फंस गए हैं, मकसूद इनका नाम है, ये भी कहते हैं आकाश के हम, बिल्कुल गलत जवाब है। फिर पास आने लगे ज़रा ज़रा, ये तो सबसे पहला गाना था हमजा शब्बीर, आप लेट हो गए। फिर उसके बाद तुम पास हो जब मेरे, ओके हिशाम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फलक ने जवाब दे दिया है, दानिश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मुमताज़ ने भी जवाब तो दिया लेकिन गलत जवाब दिया है। वो मेरे गेम मैं गेम खेलने की वजह से थोड़ा पिछड़ गए लेकिन गलत जवाब है वो। खैर यूसुफ भाई कहते हैं आकाश के मेरे सीने में दो दिल होते नहीं, ये गलत जवाब है। सही खेल गया यार मैं, कुछ लोगों का गलत जवाब है। ये गाना है लंबी जुदाई, नहीं बिल्कुल गलत जवाब है, लेकिन आपने पहले सही लिखा है मेरा भाई, आपने फिर बाद में क्यों चेंज। तुम पास हो जब मेरे, MD हुसैन साहब आपने सही जवाब दिया था फिर बाद में आखिर में आपने चेंज कर दिया। प्यार उभर जाए अरमान खान, आप भी मेरा गेम नहीं पहचान पाए, लंबी जुदाई मूवी का है, नहीं बिल्कुल गलत जवाब है। और गाने का असली जो नाम है वो यही है, सुनिए।

कुमार सानू आशा भोसले का ये गाना है और 2004 में मूवी थी ये लम्हे जुदाई के उस मूवी का ट्रैक है। ऑल्दो कई लोगों ने ये मूवी सही बताई बट गाने में फंस गए, बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, चलता है। लेकिन अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:58, 2.5 मिनट का गाना प्ले करेंगे और ये है कुमार सानू की आवाज में। उठा ले जाऊंगा मुमताज भाई के रिक्वेस्ट पे गाना और आप लोगों ने बहुत ही उम्दा खेल का मजाक किया, लाजवाब। और यूसुफ भाई कहते हैं खेल गए आज तो, हाँ थोड़ा थोड़ा खेल गया मैंने। एंजॉय करें इस गाने को और मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपकी अपनी मर्जी के गानों के साथ। सुंदर FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: फिर तेरे को बताऊं क्या हुआ आज मुझे बोला मैं दुआ वाला कबीर मैंने कहा होगा अपने घर पे
4: देखियो
3: फालतू बजाते आ गया हुआ

शाबाश शाबाश छेनों से कबीर हाजिर आ आपको भाई और मैं दो तीन बातें और कह दूं मैं आपसे। सबसे पहली बात तो बहुत प्यार करूं मैं आपसे। जब मैं शो पे नहीं भी होता हूं तो जुमे को भी लोगों के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ना ऐसा एहसास होता है कि चलो कोई बात नहीं, भले सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूं, लोग कतई भाई अपने लिए क्या बात है भाई, इलेक्शन करवा दें नहीं नू कह दो करा दे। बाकी व्हाट्सएप 666-22107 एंड 666-22107 कई सारे मैसेजेस हैं, मैं कुछ पढ़ देता हूं। फलक भाई वालेकुम अस्सलाम, जयस भाई कह रहा है भाई क्या हाल है भाई के, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हमने सब सुन लिया, क्या सुन लिया इन्होंने, अरे रे आगे कहते होगा दोहा वाला कबीर अपने घर पे, क्या चल रहा है भाई, मैं नहीं बता सकता, अरे वो

0: की बात है, फलक भाई कह रहे हैं अटेंडेंस लगवा दी भाई। और यासर अमर यासर भाई वालेकुम अस्सलाम मेरे जान, और एक और मैसेज आया है ये किया भाई जुमेरा तिरन भाई ने, कह रहे सलाम वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम, इनके बाद हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई कह रहे हैं कैसा रहा वीकेंड। ये सवाल आप एक गेमर से पूछिए ही मत, इतनी सी गर्मी में मुझसे ये सवाल मत ही करो, मैं भाई पूरा फर्नीचर बन के कोने में पड़ जाता हूँ। मेरे तो घर पे भी सारे लोग दावत वावत में गए हुए थे भाई, मैं तो घर पे ही था, बढ़िया गेमिंग कर रहा था, मौज आ रही थी भाई कसम से। बाकी 666-22107 नंबर है, 666-22107। आज की कहानी ओए होए, सो जो शुरुआत मिलेगी ना आपको संडे को, किक स्टार्टर 7 course meal है कतई, 7 course meal आपने बस टिके रहना है। मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम भाई मकसूद, और एक और मैसेज आया है, ये मैसेज किया हमें हुसैन भाई, हुसैन भाई थैंक यू भाई। और खादिर अब्दुल्ला भाई भी लिख रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और क्या है भाई, कुछ तो चल रहा था कैफे में, नहीं नहीं अरे जैस भाई कम ऑन यार, आता हूँ कुछ देर में, 11 minutes 2 seconds के बाद मिलते हैं, आपने जाना नहीं है। सुनो बेस्ट है यहाँ पे मामला, मैं खुद कबीर को ही सुनता हूँ, ठीक ठाक हो जाता है मूड, ठीक है। जाना नहीं है आपने, वो कौन सा गेम था जहाँ पे रोक देते थे,
1: कौन सा गेम था,
0: स्टैचू।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

शाबाशी भी मिलेगी और हंसने वाली कहानी मिलेगी, टेंशन लेने का नहीं। साजिद भाई एकदम रिलैक्स, क्या एक मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, हाय कबीर भाई, हाय मेरे भाई, क्या हाल है भाई आपके। मोहम्मद कुरैशी साहब का मैसेज है, एक और मैसेज है, हाय हाय हाय हाय, आपका नाम क्या है। समीर भाई थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है वेद साहब का, वेद साहब वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं मिसाल खैर मेरे भाई, क्या हाल है भाई के। नियाज भाई वालेकुम अस्सलाम, मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, जब भी आप आ रहे हैं कि चार चांद लगा दे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। एन अबू यूसुफ भाई ने मैसेज किया, भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं पिछले मतलब कहानी की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा भाई बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आज का स्टार्ट होगा ना कहानी का भाई, संडे का मैं बता रहा हूँ, थर्सडे को आते आते जो इंटेंस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट रियलाइजिंग ब्रो, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। देखते जाओ आप, देखते जाओ, इस हफ्ते जो कहानी आने वाली है, दिस विल मेक यू गो क्रेजी। सैयद फिरोज साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाइस एंट्री विद फुल ऑफ एनर्जी, बहुत सारा प्यार भाई को। एंड अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम नौशाद आफ्ते आलम भाई, कभी भाई ये गर्मी में तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाना तो अच्छा लगता है मुझे हीरो भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे भाई। और एक मैसेज है, हाउ आर यू, मैं बढ़िया। अजहर हुसैनी साहब, ऑलरेडी आई एम क्रेजी ब्रो, तो फिर मैं और ज़्यादा क्रेजी करूँगा, डोंट वरी, एकदम क्रेजी कर देंगे। मोबिन मुबशिर भाई वालेकुम अस्सलाम, प्रेजेंट लगा रहे हैं, प्रेजेंट लगा दिए रजिस्टर में। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, और फिर एक मैसेज है हेलो भाई जान गुड इवनिंग अनुज, अनुज भाई थैंक यू। और एक मैसेज, मैं बहुत कम खाता हूँ। अरे आप डाइट वाइट वाले लोग हैं खातिम भाई, हम कहाँ हैं, हम तो देखो तो नागे टायर बना लिए हैं भाई, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आप,

0: सही, मैंने ये सवाल पहले ही पूछा था लेकिन टाइम थोड़ा सा बदल गया है। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग अपनी जिंदगी में AI यूज़ करते हैं और किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में AI अभी तक आया है कि नहीं आया है, आर यू यूजिंग इट फॉर एनी पर्पस या नहीं, वरना यार मैं टेक इनोवेशन में गाता रहता हूँ ये AI ले लो वो AI ले लो। रियली आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि क्या कोई इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ। एक मैसेज है, मैं आजकल कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को सामने कर लिया है, ट्रेडिंग व्यू को सामने कर लिया मतलब मैंने आज कल कर रहा हूँ ट्रेडिंग, समझाने, अच्छा ट्रेडिंग को समझने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड भाई, काफ़ी अच्छा यूज़ है। एक और मैसेज है, नो ब्रो, अच्छा मनोज भाई इज़ नॉट यूजिंग। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, इट लुक्स लाइक यू रियली एंजॉयड योर डे ऑफ, वी डोंट गेट दैट चांस अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई डोंट वी एवर गेट टू एंजॉय लाइक दैट। भाई मुझे लगा आपने मुझे डांट दिया अब्दुल वहाब भाई, सॉरी भाई एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम कर लूँगी, वहाब भाई सब ठीक हो जाएगा। वैसे अभी तक नहीं किया, कैसे सॉर्ट कैसे करते हैं मालूम ही नहीं, भाई सीख लो, मैं सही बता रहा हूँ। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सर को आपने स्टोरी भेजी वो रिपीट, हाँ मैं जानता हूँ, होते वाली रिपीट चली गई थी, वो आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ये कॉल आ रही है, कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या कोई है? वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे हैं कबीर भाई? आप माजिद बात कर रहा हूँ।
0: माजिद भाई, अरे लॉन्ग टाइम नो सी माजिद भाई, वेयर आर यू?
1: जी जी जी, बस थोड़ा सा टाइमिंग आउट हुई थी ऑफिस से वापसी की, तो ट्यून इन नहीं कर पा रहा था रेडियो।
0: अरे रे रे रे,
1: और आपकी आवाज सुनने में काफी दिन गुजर गए और आज बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने सोचा इस कॉल ही मारते हैं सीधा, मैसेज नहीं करते।
0: बिल्कुल सही किया माजिद भाई आपने, मैं सच में मिस कर रहा था, मैंने कहा माजिद भाई आया करते थे, माजिद भाई बिल्कुल ही गायब, मैं समझ सकता हूँ, काम ही ऐसे शिफ्ट हो जाती है।
1: जी बहुत बड़ी बात है कि आप मिस कर रहे थे।
0: ऑफ कोर्स मेरे भाई,
1: बहुत शुक्रिया।
0: ऑफ कोर्स भाई, बहुत प्यार माजिद भाई को। तो माजिद भाई, आप यूज करते हैं AI, मतलब आर यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ AI? किस चीज के लिए?
1: बिल्कुल यूज करते हैं, और पर्सनल कामों के लिए भी यूज करता हूँ, ऑफिशियल कामों के लिए भी यूज करता हूँ, ऑफिस के लिए।
0: अच्छा,
1: ऑफिस में हमारे पास क्लॉड है और उसके लिए हम डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा पायलट फॉर गिटहब है, उसके अंदर हम लोग काफी काम करते हैं, डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं उसको भी।
0: वेरी नाइस,
1: और ये दोनों ऑफिशियल वर्क के लिए, लेकिन पर्सनल में ये है कि पर्सनल में जैसे रिसेंटली मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन 5 साल हो गए उसको, और वो एक होता है ना, एक रूटीन में मैंने छोड़ दिया करके कुछ पैसे डाल के, और फिर मैंने उसको देखा नहीं, और फिर वीकली स्टेटमेंट तो आती रहती है उनकी,
0: राइट?
1: ठीक है जी, वीकली स्टेटमेंट आ रही है, कोई डेली रिपोर्ट आ रही है, कोई मंथली रिपोर्ट आ रही है, मैं उसको गौर से देखता नहीं था, और वो बहुत छोटा सा मार्जिन आपको नजर आता है, शेयर इतने परसेंट मुझे फायदा हुआ,
0: वो नेग्लिजेंस वाला हो जाता है ना, नेग्लिजेंस वाला मामला हो जाता है,
1: अब समझ में भी नहीं आता कि क्या फायदा हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले 2-3 साल की रिपोर्टें सारी डाउनलोड करके उसको पकड़ा दी, मैंने कहा जरा मुझे एनालाइज करके बताओ मैंने क्या खोया और क्या पाया, जो मेरी इनिशियल स्टेटमेंट थी उससे लेके अब तक।
0: ओके,
1: तो मुझे वो डिसीजन लेने में इतनी ज्यादा आसानी हो गई उसको देखकर, जो उसने मुझे रिजल्ट दिए कि अच्छा भाई ये जो था ना आपने इन्वेस्ट किया था,
0: अच्छा
1: ओवर द टाइम इतना आपको नुकसान हुआ, इतना प्रॉब्लम,
0: हाँ।
1: और अगर आप इसकी बजाय इस फंड में कर लेते या इस टाइम पे ये डिसीजन लेते, आप यकीन करें उसने ऐसी चीजें बताई जो नॉर्मल फंड मैनेजर्स भी बता नहीं सकेंगे आपको।
0: हाँ, ओके।
1: और बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये एनालिसिस उसके थ्रू करने का।
0: हाँ, नाइस, वेरी नाइस।
1: इसके अलावा फिर आ गया क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, अब उसको भी रीड करते हैं आप, और आपको ट्रेंड जानना है अपना ओवरऑल, क्योंकि कभी आपके घर वाले भी यूज कर रहे होते हैं, कभी मिसेज यूज करते हैं।
0: मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज़ यू यूजिंग AI सो मच एंड वेरी मतलब विलफुली भी, और साथ में वैल्यू भी एडेड निकल रहे उससे, तो कितना जरूरी है, आप कितने मानते हैं आपकी AI भी जरूरी है सीखना? डू यू थिंक अभी भी वो टाइम आ गया जहां पे AI सीखना जरूरी है, या फिर लाइक अभी भी टाइम है, रहने दो भी मत सीखो?
1: नहीं, बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: है सीखना, इतना से ज्यादा उसको यूज करना जरूरी है, यूज करेंगे सीख दी जाएगी।
0: राइट राइट,
1: आप ये ना सोचेंगे आपको कुछ सीखना है, आप ये करें कि अच्छा मैं जो बात अपने दोस्त से पूछता था फोन उठा के, या मैं कोई बात पूछने से रह जाता था, सिर्फ अपने इंटेलिजेंस पे बिलीव करके चलता था, मैं ये नहीं कहता कि आपको डम बनना है, आपको डम थिंकर बिल्कुल नहीं बनना, आपको खुद सोचना है, खुद डिसीजन मेकिंग करें, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग में स्टेप्स होते हैं ना, पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदर करके एक जगह पे लाना, वो स्टेप आपको AI से करवाना है।
0: करेक्ट, मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ।
1: हाँ, अगला स्टेप आपको

0: एग्जाम्पल देता हूँ
1: जी.
0: बेटी का होमवर्क मिला हुआ था, समर कैंप में डाला हुआ उनको.
1: अच्छा.
0: तो उसको उसका होमवर्क मिला तो उसमें कुछ शीट थी जो प्रिंटेड थी और उसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करने थे, कुछ इस तरह की चीजें करनी थी. तो यकीनन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बेटे की आसानी के लिए और उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, मैंने एआई को उसके सामने यूज करते हुए सैंपल इमेज दिया और मैंने उसको बोला कि भाई मुझे जो है ना इसकी एक आसान सी फिल इन द ब्लैंक करके दो जो कि इस लेवल के बच्चे के लिए समझना आसान हो.
1: राइट.
0: उसने पूरा उसी फॉर्मेट को फिल करके और वो निकाल के दे दिया. मैंने प्रिंट आउट लिया और एक शीट वो थी जो उसको स्कूल से मिली है. अब ये एक शीट थी जो कि मैंने एआई से जानी. दोनों उसके सामने रख दिया. मैंने कहा आप, मैंने सोचा कि आपने इसको देख के इसको फिल नहीं करना बल्कि आपने इसको समझ के यू हैव टू चेंज इट.
1: अब देखो पढ़ाई पढ़ाई में तो भाई एआई का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी गलती है, इनका यूज करना चाहिए.
0: उसने उसने दो चीजें सीख ली. उसने ये भी सीखा कि अच्छा यार ये भी एक्सपेक्टेड आंसर है और एक वो भी है जो मैंने अब लिखी है. तो उसके लिए दो एग्जाम्पल आ गई.
1: हां राइट, वेरी गुड, वेरी गुड.
0: वो बिल्कुल रॉ डेटा पे सोचता कि अच्छा इसमें आएगा क्या. अब उसके पास एक एग्जाम्पल है, अच्छा ये इस तरह का वर्ड है तो उसने उस टाइप के वर्ड ढूंढ के लिख लिया. तो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल एज एन एक्टिविटी फॉर किड्स एज वेल.
1: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
0: तो उसको यूज करें और उसको अपना फायदा उठाने के लिए यूज करें.
1: डेफिनेटली, डेफिनेटली. माजिद भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत अच्छे से
0: आपने आप जितना प्रमोट करते हैं, जितनी रिसर्च करके चीजें लेके आते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प इन दैट.
1: बहुत प्यार.
0: और ये चैनल जो है इसके थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो.
1: थैंक यू सो मच माजिद भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. थैंक यू,
0: थैंक यू जी, थैंक
1: यू. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज. और माजिद भाई के बाद जो है एक अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाह. अरे जैस भाई कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई बढ़िया हैं, दुआएं आपकी. मैं हाजिरी में गाते हैं भाई पंडित जाकर.
1: और भाई क्या चल रहा है भाई, एआई शिया यूज करते हो नहीं करते हो?
2: अरे यार ये चीजें जो है ना, आज का टॉपिक जो है हम जैसे फ्री लोगों के लिए नहीं
1: भाई. मैं सही बता रहा हूँ आपको, अभी लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको ये वो टाइम अभी आ रहा है धीरे धीरे जहां पर इट विल बिकम अ नेसेसिटी. मैं सही बता रहा हूँ, नॉट किडिंग.
2: नहीं आपकी बात ठीक है. हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर इंशाल्लाह जो है ना हम अपना बच्चों को जो है ना
1: प्लीज प्लीज हाँ आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो सोच के लो कह रहे हैं ये क्या होता है, पर बहुत सारी जो इस दुनिया में अभी स्पेसिफाई इसीलिए खुल रही है. तो
2: हम जो है ना हम तो इतने बड़े वाले आलसी इंसान हैं, क्योंकि जो कोई चीज फ्री में मिल रही हो ना तो हम जो है ना उसका पूरी भरपूर तरीके से फायदा उठाते
1: हैं.
2: जो है ना फोटो भी हम एडिट नहीं करते, हम तो चैट जीपीटी को दे देते हैं, ले भाई एडिट करके देते हैं. यहाँ लोकेशन लगा दे, वहाँ की लोकेशन लगा दे, ये बैकग्राउंड लगा दे, वो लगा दे.
1: बस यही तो भाई, यही तो खेल है, बस इससे आगे बढ़ना है, बस एक कदम. ये तो चल ही रहा है. एडिट करना तो कति आसान हो गया
2: कबीर भाई. उससे आइडिया ना मैं बहुत जबरदस्त लेता हूँ, यानी कि फाइनेंशियल है या किसी चीज को इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, बड़े जबरदस्त प्लान बताएगा भाई, बड़ा इजी लगेगा. तो उसको समझने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे किसी ने ना गिरे हुए उस पे जैसे तेल लगा दिया, पानी गया.
1: नहीं मैं इस बारे में बात करूंगा, मैं आसान करूंगा इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि कई चीजें पूछना भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी तरफ से जितना कर सकूं, जितना मैं हेल्प कर सकूं. तो कभी भी आपको लगे कुछ जानना है कोई प्रॉम्प्ट के ऊपर, भाई जरूर बताना, मेरे भी इस तरीके से रिवीजन हो जाएगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी. आई वुड लव टू हेल्प, नो प्रॉब्लम.
2: बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई. ठीक है. हां अगर जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ तो बड़ी मेहरबानी है कि भाई साहब. तो
1: आई नो मेरे भाई, हो जाऊंगा.
2: भाई साहब जितने भी लोग सुन रहे हैं ना आज सबको जो है ना भाई साहब को कबीर भाई को ये याद दिलाना है कि भाई साहब प्लीज
1: आपका पासवर्ड ये रहा. छोटी सी वजह थी, बट आई विल कम, नो प्रॉब्लम. वो उस वजह मुझे निजात मिल गई है चार दिन पहले, सो इंशाल्लाह विल कम, नो प्रॉब्लम.
2: भाई जितने भी लोग जो है ना अभी कॉल लगाना, सबसे पहले भाई साहब को, कबीर भाई को यही चीज जो है ना सलाह देंगे, कम बैक टू सोशल मीडिया.
1: डन है, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे जरूर, बट आई वांट देम. ठीक है, डन है भाई, देखते हैं कितनी पब्लिक याद दिलाती है. जयस भाई थैंक यू सो मच.
2: ओके भाई, अल्लाह
1: हाफिज. और वेस भाई मैसेज क्या है, लव यू भाई जप्पे, लव यू टू मेरे भाई जप्पे. वेस भाई को एक मैसेज आया है, ये देखें एआई से करवाया है मुबीन भाई ने, मुझे एक बाकायदा ग्राफ भेजा है एनालिसिस है किसी चीज़ का. सईद भाई वालेकुम अस्सलाम. और मलिक वगैरह साहब कहते हैं AI यूज़ करता हूँ ईमेल्स के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए. ओके वेरी गुड. यूज़ एक मैसेज, कबीर भाई सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई. रहमत रहीम साहब का मैसेज है, फिर आया है सीखने के लिए भाई, मेरा नाम शकील है। शकील भाई सीखिए भाई, दिल लगा के सीखो। और सैयद खादिम साहब कह रहे हैं मेरी उमर एआई की नहीं। भाई उम्र उम्र की बात ही नहीं है मेरे जान, उम्र की बात ही नहीं है। और एक मैसेज है यूसुफ भाई के, लिखते हैं कबीर मैंने कभी भी कोई एआई टूल यूज़ नहीं किया है अभी तक, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से टूल्स हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऑफिस के काम पूरे एआरपी और एक्सेल शीट्स में होते हैं। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। हाँ फातिमा बहुत अच्छी है एआई यूज़ करने में, स्कूल के असाइनमेंट्स वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ करने में एआई की हेल्प लेती है। मुझे पूछती है अब्बू ये देखिए एआई, मैं कहता हूँ आप खुद करो मुझे मालूम नहीं। पर यूसुफ भाई जगाइए इंटरेस्ट, मैं सच बता रहा हूँ आपको, यू माइट फाइंड इट क्रेजी कि आज की तारीख में एआई क्या कर सकता है। आई गिव यू वन एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के काम आएगा, बहुत सारे लोग, बट एक कॉल ले लूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, चले एग्जांपल चले यार, मैं सुन रहा हूँ।
1: तो भाई एग्जांपल बड़ा सिंपल है, मैंने ना कुछ दिनों पहले ही अपने आप को सिखाने में थोड़ा टाइम लगाया था, बट आप एक आसान से प्रॉम्प्ट्स के जरिए अपनी खुद की शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं। दैट इज समथिंग जो हर कोई कर सकता है। आजकल मीडिया पे जो लोग इतनी कसरत से लगे हुए हैं, कैमरा इधर लगा के, लाइट उधर लगा के, अगर आपके कोई इमेजिनेशन, इफ यू वांट टू क्रिएट शॉर्ट मूवी, इट इज एक्सट्रीमली इजी। आपको ये भी नहीं है कि प्रॉम्प्ट खुद लिखना है, आप प्रॉम्प्ट दूसरे ऐसे लो, इसे चेपो और तैयार है। तो ये भी एक तरीका है जो लोग सोशल मीडिया पे जाना चाहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया।
3: मिलेंगे भाई,
1: क्या मिलेंगे?
3: हिडन जेम,
1: हिडन जेम, हिडन जेम पूछ के देखो यार, देखो कहाँ कहाँ पहुँचाएगा आपको।
3: ठीक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप सुनाइए।
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि अभी तक तो फिलहाल खाली मस्तियाँ करके छोड़ी है मैंने एआई में।
1: अच्छा,
3: इसके देखता हूँ थोड़ा सा, चीज करता हूँ तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू।
1: आपने कभी एआई से फुल ब्लोन कॉन्वर्सेशन करी है कभी? पूरी भी कॉन्वर्सेशन
3: नहीं, टाइम नहीं मिला भाई।
1: नहीं करिए ना, एक एआई है, मैं उसका नाम ले नहीं सकता, जिसको चाहिए मैं मैसेज कर दूंगा, तो उस एआई पे आप पूरी तरह से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला कि भाई तेरा नाम जो है हमजा है, तेरी मेरी लड़ाई हो गई है, अब मुझसे लड़, ठीक है। एंड इफ यू से इट इन उर्दू और हिंदी, ही विल एक्चुअली फाइट विद यू। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मजे का एग्जांपल, बट यू कैन डू फार बेटर। आप उससे बात कर सकते हैं, भाई तुम ये बन जाओ और तुम्हारा आज से रोल ये है और मेरा ये है, एंड टॉक टू मी। एंड उससे कई मरतबा लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई मरतबा लोग दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं। देर आर एप्स जो लैंग्वेज सिखाती हैं, लेकिन एआई से जब कुछ पूछते हैं ना आप कि भाई मेरे को यार ये थोड़ा सिखा दे,
3: शादीशुदा बनने के लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा।
1: नहीं नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मैं मजाक स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राई करके देखना।
3: आपके पास तो हस्बैंड जो है वो बोलेंगे ठीक है भाई मेरी तरह जगह बन के बात कर लो, बचा लो।
1: अरे मैं खुद
3: कर लो आज,
1: मैं तो सच में सोच रहा था, मैंने कहा मैं क्या कहते हैं, इतनी बार अपने दूसरे टैक शो में इतनी दफा बोल चुका हूँ ना, पता नहीं कोई यूज कर भी रहा है कि नहीं, या मैं खुद ही बड़बड़ाया जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सवाल पूछते
3: हैं, बहुत सारे आपका कौन सा पिछले दिनों एक मैं सोच रहा मैं करूंगा। हाँ कोई डांस करके था यार वो, आप बता रहे, मैं सोच रहा था डाउनलोड करूंगा उसको मैं।
1: अच्छा ओके ओके ओके, मुझे इतना कुछ बता चुका हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली याद रहा, बट अगर बताओगे तो कुछ
3: काम था, मुझे खुद ही एग्जैक्टली नाम याद नहीं रहा।
1: अच्छा
3: अगर मैं यार देखो कंडीशन ऐसी हुई, मैं जुमरात वाली कंपनी में बड़ा खुश हो रहा था कि आप आज बोल ले के मिल जाएगी, मैं चलो कहानी तो मिलेगी क्योंकि मैं उस दिन काम पे तो आया था।
1: नहीं नहीं मिलेगी,
3: बट आ गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था।
1: डन डन,
3: तो उसकी वजह से मेरे दो तीन दिन रह गए, तो आज दोबारा काम पर आया हूँ।
1: नहीं नहीं आज आज आपको पक्का पक्का जो है कहानी मिली, थर्सडे वाली भी और आज वाली भी, डन है, दोनों मिलेंगे। ओके मेरे भाई, वालेकुम सलाम। और हर कोई पूछा उस एआई का नाम जिससे बात कर सकते हैं, तो मैंने एआई का नाम लिख के भेज दिया, पर वो शुरुआत के आपको मेरे ख्याल में 12 कॉन्वर्सेशन देगा, फिर वो रिफ्रेश हो जाता है, तो अगले दिन फिर बढ़ा देगा। उसका पेड वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं, कैन हैव 12 कॉन्वर्सेशंस एंड देन वो अगले दिन जो है वो वापस रिफिल हो जाएगा। तो पेमेंट करने पे बिल्कुल लालच मत जाना, बिकॉज जो मैंने एआई बताया वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि खामखा के कौन ले रहा है, बट दैट रियली हैज द एबिलिटी टू टॉक टू यू। आप उससे बोलेंगे कि भाई टॉक टू मी लाइक दिस, यू योर नेम इज दिस, टॉक टू मी दिस वे, तो वो करेगा। आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, स्पेनिश जो मर्जी उससे बुलवाना चाहें, जस्ट डू इट एंड यू माइट गेट अ न्यू परसेप्शन, और वो आपको गाइड भी करेगा उसी तरीके से। इफ यू वांट अ फ्रेंड एंड इफ यू वांट कि भाई मैं सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू ग्रो इट दिस वे, आपकी पक्का मदद करेगा वो। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं मजाक भी कर रहा हूँ बीच में, पर मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। सो ट्राई, ये आने वाले वक्त में, अभी आपको इफेक्ट बताऊँ मैं, बोरिंग लगेगा बता दूँ, फिर भी बोरिंग फैक्ट है, फिर भी बताता हूँ मैं। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल क्या खरीद रही है पता है आपको, टेक की दुनिया में? मेमोरी, एआई की वजह से इतनी ज़्यादा।

डिमांड है मेमोरीज की, क्योंकि भाई भर भर के डिमांड्स आ रही हैं एआई यूज करने वालों की, और एआई का डेटा हो रहा है हैवी. देर आर जॉब्स विच इट अपने आप तो रन करेगा नहीं एआई. देर वुड बी पीपल हु गिव इट प्रॉम्प्ट्स एंड डू इट. सो अगर आपके घर में कोई टीनेजर है, कोई ऐसा है जो सीखना चाहता है, मेक देम लर्न. मैं सही बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट इज़ फ्यूचरिस्टिक. आज आपको शायद समझ में ना आए, आने वाले वक्त हम बोलेंगे यार वो कबीर उस दिन सही कह रहा था. एक मैसेज, सलाम भाई प्लीज़ शेयर विद मी. अच्छा ओके, मैं भेज देता हूँ. बहुत सारे लोगों ये वाला है चाहिए. अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ. और आज की मैं बस कहानी शुरू करने ही जा रहा हूँ. एक सेकेंड, क्या आया है मैसेज? मैंने क्राई नहीं किया, नाउ आई विल श्योरली फाइट विद हिम. श्योर मेरा भाई, ट्राई करके देखना, उसको नाम भी देना एंड देन यू विल नो. कैसे कहते हैं, और जितने भी लोग नाम ले रहे ना, कल जो बताना इन केस यू यूज़ इट. ओके, मुझे ज़रूर बताना इन केस यू यूज़ इट. आई वुड लव टू नो कि कल आपका क्या कहना है. और एक मुझे मैसेज आया है अरबाज भाई का. अरबाज भाई क्या कह रहे हैं? अरबाज भाई कुछ पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से. एक सेकेंड, फाइटिंग वाला कुमसा वाला सबको लड़ना क्या क्या चक्कर है भाई? और भी काम करता हूँ. और भाई विच आई टूल दैट यूज नाउ टोल हमजा ब्रो, अरे वो ये है, चलो भेज दिया मैंने. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो आप स्टोरीज रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं या किसी तरह वीडियो में कन्वर्ट हो जाए, बट पहले ऑडियो है फिर स्क्रिप्ट एंड देन वीडियो, बट ये कैसे होगा समझ नहीं आता. क्या होता है कि उर्दू हिंदी में होती है इसलिए समझ. अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सो वंस यू गेट समथिंग जिसके ऊपर ऑडियो जो है वो हिंदी या उर्दू का चिपका हुआ है, ठीक है, देर आर मैनी ए आईज जो उसका पूरा का पूरा ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है. एंड एक चीज में प्रॉब्लम है कि फिर आपको थोड़ा पेपर वर्जन यूज करना पड़ेगा ताकि वो उसको पूरी तरह से कन्वर्ट करके आप ट्रांसक्रिप्शन दे दें. ट्रांसक्रिप्शन बोले तो जो मैंने बोला या इसी ऑडियो में था उसकी स्क्रिप्ट बना के दे देगा. देन उस स्क्रिप्ट को लेके आपको एआई को बताना होगा कि भाई मुझे इसकी स्क्रिप्टिंग चाहिए इन अ स्टोरी नैरेटिव. वो आपको स्टोरी नैरेटिव बना के देगा उस स्क्रिप्ट का, बिल्कुल ब्रेक डाउन करके, और फिर उससे आप किसी तीसरे चौथे एआई से उसे एक मूवी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट्स अ प्रोसेस, पर अगर आ गया तो आपके बल्ले बल्ले. अबू साद साहब वालेकुम अस्सलाम. बता दो फाइटिंग वाला भाई सबको फाइटिंग वाला क्यों चाहिए? और भी काम करता है यार, हद हो गई. कभी बोर होऊंगा तो उसके साथ. हाँ बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल डन डन डन. कभी साइड में लेंगे. वांट टू आस्क टू लर्न हाउ टू फाइट विद वाइफ. ये लो कल सबके सब जो भी मुझसे ले रहे हो ना, ये मैं पूछूंगा कल इसका हिसाब किताब. समझ में आ रही? मुबशिर फरहान हियर, विजन कबीर भाई शेयर विद मी. ओके लेट मी शेयर इट विद यू. और बता दूं इसके पेड वर्जन में मत जाना. यू कैन चैट विद द एआई फॉर अबाउट लाइक 12-15 मैसेजेस, उससे भी ज्यादा लिमिट अभी है. लॉन्ग टाइम वी यूज द प्रो वर्जन. अरे ये तो दूसरा यूज कर रहे हैं आप. ये आप जो यूज कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी कंपनी वाला है, वाला नहीं कह रहा मैं. जी सर, समटाइम्स आई यूज एआई मोस्टली टू माय इंग्लिश करेक्ट माय मैसेजेस और गेट इन्फॉर्मेशन, बट माय थॉट्स फीलिंग्स एंड डिसीजंस आर ऑलवेज माय ओन. गुड, ये सबसे अच्छा यूज है अब्दुल वहाब भाई. टू यूज एआई फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छी बात है ये. यूसुफ भाई कह रहे हैं कबीर मेरा भतीजा बीटेक किया है एआई स्पेशलाइजेशन में, बहुत परफेक्ट करता है माशाल्लाह. आजकल के बच्चे चीजों में एक्सपर्ट है माशाल्लाह. ही इज परसुइंग मास्टर्स इन द सेम. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड यूसुफ भाई, मेरी तरफ से मुबारकबाद. मेरे सब पूछ रहे हैं, मुझे भी बता. ओके मैंने बता दिया. ऑलराइट, कोई मैसेज मिस नहीं हो मुझसे. अरबाज भाई ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम ऐसा ये, हाँ ये ही है. यस ओके, तो है आगे बढ़े ज़रा. तो मैं कहानी की तरफ पढ़ाऊँ. आज की कहानी इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल ऑफ द ट्रैक कहानी, थोड़ी अलग किस्म कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर संडे की शुरुआत इससे कर रहा हूँ तो मज़ा आएगा आपको. कामरान भाई वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. और सब देना भाई मैंने, ठीक है डन हो गया, हो गया ओके डन. ओके तो अब ज़रा क्या भाई किस बारे में बात कर रहे हो भाई? एआई बात कर रहा था मैं, आपको तो पता है आप तो इंजीनियर साहब हैं. नियाज भाई से प्लीज सेंड मी द एआई, सबको वही चाहिए भाई. ये लो ताहिर भाई. ओके अब आ कहानी. तो अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, आज स्टूडियो को लाइव सुन रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि लोग ऑडियंस बैठे हुए हैं. और बाकी देखो मैं आपको शो से अलग भी, FM 107 का मकसद ये है कि टू हेल्प द कम्युनिटी. मैं जितना सीख रहा हूँ मैं उतना आपको सिखाऊँ, आप जितना सीखें मुझे सिखाएं. इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू एआई पूछ सकते हैं आप. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सोल्यूशन दे सकूँ. ओके बट मीनवाइल कहानी का वक्त है, तो कहानी बस एक छोटे से प्रोमो के बाद, ठीक है, जाना नहीं आप.

0: अपने स्टे का ट्यून्ड।
1: समर टेम्परेचर तो गिरता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सन क्यों ना हो, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: हाँ जी, ये भी मेरी आवाज और ये मेरी आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 भाई, और अब जरा मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। सो आई होप के लाइव सुनने वाले कितने लोग हैं भाई, जरा हाथ तो खड़े कर दो, बता तो दो। आज सबके सब AI में लग गए सारे, उससे बात कर रहे हैं, बाद में कर लेना बात उससे। ये मैंने अच्छा इनको कान दे दी। भाई हेलो कहानी, एक्सक्यूज मी, गिव मी सम टाइम। हाँ कहानी शुरू करो। हाँ प्लीज। ओके सो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सस्पेशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का जो किस्सा है, इट इज उफ अनरियल भाई। और जितने भी लोगों का नाम यूसुफ है, जितने भी मुझे सुन रहे जिनका नाम यूसुफ है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? बढ़ा दूं वॉल्यूम? चलो वॉल्यूम तो आपको बढ़ानी है, बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे शुरू करने के लिए मैं बिल्कुल इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाऊंगा। तो साल था 2013 मार्च का महीना, ओके? यूसुफ नाम का एक बंदा था, ये मोरक्कन था यूसुफ, और यूसुफ ऐसा बंदा था जो सोशल मीडिया पे छाया रहना पसंद करता था। लाइक ही वुड डू एनीथिंग, वो किसी से भी बात कर सकता है, और जब भी बात करेगा ऐसे बात करेगा जैसे वो बने कितने सालों से उसे जानता है। और ऐसे में जब यूसुफ पोस्ट किया करता था तो अक्सर उसकी पोस्ट पे कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन एक नाम उसकी प्रोफाइल में कॉन्स्टेंटली आया करता था, कॉन्स्टेंटली। और वो नाम था एक फ्रेंच लड़की का, जिसका नाम था मीना एल। मीना एल जो थी वो फ्रांस की थी, हजारों किलोमीटर दूर रहती थी, क्योंकि यूसुफ जो रहता था, यूसुफ रहता था फैज मोरक्को में, और मोरक्को और फ्रांस एकदम दूर, लेकिन सोशल मीडिया ने दूरियों को बहुत बहुत कम कर रखा है ना। डजंट मैटर हाउ फार यू लिव, एज लॉन्ग एज आप सोशल मीडिया पे किसी से जुड़े हुए हैं आपको दूरी महसूस नहीं होती है। तो बातें शुरू हुई, और मार्च से ये बातें शुरू हुई 2013 में। यूसुफ ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी कि फौरन बोल दे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ऐसा कुछ नहीं। वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बोथ ऑफ देम, दोनों के दूसरे के करीब हो रहे थे, पता लग रहा था। एंड इतने ज्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी थी कि मीना जो फ्रांस में थी, उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया था कि दिस इज अ वेरी काइंड मैन। एंड यूसुफ की सारी बातें भी ऐसी, मतलब कभी उसने ऐसा लिखा कि नाइस पिक डीपी, नाइस डीपी सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज वेरी वेरी नाइस टू हर, एंड जहां जरूरत है वहां कॉम्प्लीमेंट देगा, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं देता था। अब मीना को लग रहा बाकी सब आते हैं, कॉमेंट करते हैं, चाहते हैं कि कॉल पे आए, बट ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय। तो उसने भी टाइम दिया, दोनों ने अपने आप को काफी टाइम दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 2014 शुरू हो गया, इनकी दोस्ती को तकरीबन एक साल हो चुका था। इन मार्च में डिसाइड ये हुआ कि दोनों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे नहीं पता, बिकॉज बहुत फर्क है, मोरक्को इधर, फ्रांस कहां, कैसे मिलेंगे। बट फिर मीना ने कहा, यू नो व्हाट यूसुफ, डोंट वरी, मैं आती हूं। यह सुनकर यूसुफ बड़ा हैरान था, अरे यार, एक किसी का ये कहना कि अरे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, वो बंदा बहुत दूर रहता है, तो आपको पता है कि मिलेगा तो है नहीं, जस्ट ऐसी कह रहा है दिल रखने के लिए। एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉट पॉसिबल, राइट? कभी आपने अगर किसी बाहर किसी शख्स से दोस्ती करी जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है, तो आप भी जानते हैं और वो भी जानता है कि भाई खर्चे का सौदा है, ऐसे सोशल मीडिया पे एक साल बात करके किसी से मिलने तो नहीं जाएगा। बट मीना ने जब ये बोला कि यूसुफ, यू नो व्हाट, आई वांट टू मीट यू, तो यूसुफ बड़ा हैरान था। तो उसने भी कहा, व्हाई नॉट, श्योर। मीना ने अपने

घर वालों को बताया। एंड मई की 19 तारीख को 2014, मई 2014 19 तारीख शाम तकरीबन 7:30 बजे शी लैंडेड इन मोरक्को। अब क्या होता है, आप किसी से बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे टाइपिंग में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है, पर जब आप किसी के सामने आ जाते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टू गुल हो जाती है। स्पेशली वो शख्स जिसे आपको शायद उम्मीद हो या मोहब्बत में हो, है ना, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। यार मैसेजेस में तो बात कर लेता हूं, सामने नहीं होती। और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, इट इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट बहुत मुश्किल है जब कोई सामने आ जाए उससे उसी तरीके से बात करना जैसे मैसेजेस में हो रही है, या यूं कहूं कि वही केमिस्ट्री होना जो मैसेजेस में बनी हुई है सामने भी बनी रहे। और इसी बात का डर यूसुफ को था, वो लिटरली रात भर तो सोया नहीं, एक रात पहले पूरे दिन तैयारी करता रहा, दुनिया जहां के परफ्यूम्स अपने आप पे छिड़क लिए कि मैं बस अच्छा दिखूं, अच्छे से बात कर पाऊं, क्योंकि वो बहुत डर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि मीना भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो तो ट्रेवल करके आ रही। सो वंस शी लैंडेड, तो जब एयरपोर्ट के बाहर आई एंड दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि क्या ये वही है, प्रोफाइल फोटोज को याद कर रहे थे एंड बाकी सारे फोटोज को मैच कर रहे थे एंड दे फिगर्ड आउट क्या रे ये तो वही है। तो फिर दोनों मिले, दोनों बहुत ही शर्मीले हो रहे थे, पर यूसुफ ने कहा यू नो लेट्स गो आउट फॉर डिनर। तो वो उसे घर पे ले गया, उसने कहा यू नो व्हाट आई विल कुक फॉर यू। एंड यूसुफ ने पूरी तरह से सब कुछ, खाना पीना सब कुछ बनाया मीना के लिए। मीना और उसने बहुत सारी बातें करी, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुए एंड दे वर रियलाइजिंग कि दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ मैसेजेस के लिए नहीं है। इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस हुई, इतनी सारी बातें हुई, साथ में हंसे एंड दे वर श्योर कि ये केमिस्ट्री जो मैसेज वाली है ये असल जिंदगी में भी चल सकती है। इट इज सो ब्यूटिफुल। फिर डिनर खत्म करके यूसुफ ने कहा यू नो वॉट, तुम जो हो लिविंग रूम में बैठो, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूं। तो बोला ठीक है, यूसुफ गया और वो किचन में चला गया, सो आउट ऑफ साइट। इतने में क्या हुआ कि जब वो वापस आया किचन से, उसने जो देखा उसके हाथ में दो ग्लासेस थे, दोनों के दोनों गिर गए। ही वॉज पैनिक्ड बुरी तरह से, क्योंकि उसके सामने मीना वॉज ऑन द फ्लोर। उसने फटाफट जाके चेक किया और उसे अंदाजा हुआ, रही ये तो मर गई। एंड ही वॉज रियली रियली स्केयर्ड, मैं क्या करूं। और उसके दिमाग के सारी वायरिंग जो थी वो हिल चुकी थी एंड ही हैड नो आइडिया क्या करना क्या नहीं करना। उसने सोचा भाई यार लोग तो मुझ पे शक करेंगे, लोग तो मुझे ही समझेंगे कि मैंने मारा है, मैंने नहीं मारा है। और वो अपने आप से इतनी सारी बातें लगातार की जा रहा था, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। उसने कहा भाई मैं क्या करूं। उसका आइडिया है, इसे लंबी सांस लेता हूं। उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन एरिया था और ऊपर से रात हो रही थी, तो ऑब्वियसली किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। तो उसने कहा एक काम करता हूं, मेरे पास शवल है, वो लिटरली फावड़ा लेके गया और अपने गार्डन में गया और उसने बहुत देर तक गड्ढा खोदा और अपने आप से बात करते हुए, मैंने नहीं किया, मैंने तो मारा भी नहीं है, मैं तो अभी मिला हूं, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को पता लग गया तो। और इधर उधर देखे जा रहा था, कोई नेबर ना देख ले, कुछ ना देख ले, एंड ही वाज जस्ट डिगिंग। जब पता लगा कि गड्ढा काफी अच्छा खासा उसने खोद लिया है जिसमें उसे अच्छा खासा टाइम लगा, तो चुपके से बॉडी को लेके आया और उसने बॉडी को उसमें गिराया और उसे दफना दिया। ही वॉज शेकिंग बुरी तरह से। उसे बस ये एक ख्याल था कि पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया, बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव। वो सोचता था अगर मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई क्यों मानेगा मेरी, ये मेरी कहानी तो पुलिस वाला भी नहीं मानेगा। कि अगर मैं बोलूंगा मैं तो किचन में गया था, बस सर जूस लेने के लिए गया था, बाहर आया तो मर गई, ऐसे कैसे कोई रैंडमली गिर गया। एंड यूसुफ कांप रहा था बुरी तरह से और वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना जिंदगी के, आप उस टाइम पे सब लगाने लग जाते हैं। वो सोचा यार अगर मैं

पकड़ा गया तो लंबी जेल होगी, अगर इनको पता भी लगा तब भी जेल में डालेंगे। मैं अब कुछ तो कर नहीं सकता हूं। पर आने वाले दिनों में कुछ हुआ नहीं, आने वाले दिनों में कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया पूछने के लिए। उसके सारे प्लान्स पे पानी फिर चुका था बेचारा यूसुफ, ना तो काम कर पा रहा था, ना वो ऑफिस जा पा रहा था, ना वो किसी दोस्त से मिल पा रहा था, बैठे बैठे खोया रहता था। एंड ऐसे करते करते 12-13 दिन निकल गए और इन तकरीबन 2 हफ्तों के बीत के बाद यूसुफ अपने घर पे था, खोया हुआ था अपने में, बिकॉज ही हैड नो अदर थॉट्स इन हिज माइंड। और उसका दिल जो था वो जोर से धड़का जब दरवाजे पे हुई एक दक। जब दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई तो यूसुफ को लगा, रे भाई साहब अब कौन है, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी। वो गया, उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला तो उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स थे। उसके होश उड़ गए, उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। पुलिस ने बोला, यू मिस्टर यूसुफ? तो उसने बोला, यस ऑफिसर, व्हाट हैपेंड? पुलिस ने बोला, क्या आप मीनाइल के बारे में जानते हैं कुछ? और यूसुफ ने सुनते ही, उसे भी नहीं पता क्यों किया, पर उसने सुनते ही बोला, मीनाइल, आई एम सॉरी ऑफिसर, आई नो एनीवन बाय दैट नेम, मुझे नहीं पता मीनाइल कौन है, आई एम सॉरी। पर उसकी आवाज में साफ एंग्जाइटी झक रही थी, पता लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, वो ये तक नहीं छुपा पा रहा था। और उसे ये भी पता था कि ऑफिसर समझ चुके हैं दैट इज लाइंग। उन्होंने बोला, मिस्टर यूसुफ, हमने मीना की फैमिली से बात करी है, इन्होंने बताया कि वो आपसे ही मिलने के लिए, स्पेशली आपसे मिलने के लिए मोरक्को आई हैं, तो आप अगर सच बता देंगे तो अच्छा होगा। यूसुफ वाज कंप्लीटली ब्लैंक कि अब तो पकड़ा गया, अब मैं क्या बोलूं। एंड वो अपने आप पे भी सोच रहा था कि मैं कितना बेवकूफ हूं, ऑफकोर्स अपनी फैमिली को बता के आई होगी, ऑफकोर्स उन्हें पता होगा, मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि मुझे पता नहीं है। और अब तो वो कोई कहानी बता भी नहीं सकता, लाइक ऑलरेडी वो पहले झूठ बोल चुका है, उसकी और पुलिस के बीच की शुरुआत झूठ से हुई है। यूसुफ के पास कोई चारा नहीं था और वो पैनिक करने लगा। उसने बोला, ऑफिसर, और रोने लगा बुरी तरह से, ऑफिसर प्लीज अंडरस्टैंड, ऑफिसर मैंने कुछ भी नहीं किया, शी जस्ट डाइड, शी डाइड, पता नहीं कैसे सर, मुझे नहीं पता है, मैंने उसे नीचे गार्डन में दफना दिया सर, आप ऑटोप्सी कर लीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो लगातार बस ये बोलता, मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर ये सुनने के बाद जब उसने ये छोटी सी कहानी उन्हें बताई तो दे वर रियली शॉक्ड, ये कैसा कन्फेशन है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो खाना बनाया मैंने उसके किचन में किया और मर गई, ये कैसा कन्फेशन है। एक ऑफिसर जो दूसरा वाला था, जो बात नहीं कर रहा था, पीछे खड़ा हुआ था, उसने फोरेंसिक टीम को बुलाया फौरन, और दूर से वो लगातार यूसुफ पे नजर रखा हुआ था, बोला, रोना बंद करो। और यूसुफ अपने आप को जैसे जैसे संभाल रहा था, वो जानता था कि अब बहुत बहुत मुश्किल में है। वो बस दुआ कर रहा था कि बस किसी तरीके से उसकी कहानी इन्हें बिलीवेबल लगे और किसी तरीके से वो बच जाए। उसी दिन, लिटरली उसी दिन सुबह होते के साथ ही उन्होंने जो गार्डन में दफनाया था उसको एग्ज्यूम कराया, उसकी बॉडी को मीना की, और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर था कि यूसुफ कितना सच कितना झूठ बोल रहा है। फिर रिपोर्ट आई, तब तक यूसुफ को डिटेन किया हुआ था पुलिस ऑफिसर्स ने। अब जब रिपोर्ट आई तो वो इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि एवरीबॉडी इज इन शॉक कि इस केस को कैसे लिया जाए, क्योंकि क्लियरली यूसुफ ने नहीं मारा, यूसुफ वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, यूसुफ बहुत ही इंपल्सिव इंसान था। तो हुआ क्या, मीना को दरअसल अनडायग्नोस डायबिटीज थी, उस वजह से मीना को आया डायबिटिक कोमा। यूसुफ बीइंग इंपल्सिव, उसने कंफर्म भी नहीं किया कि वो जिंदा भी है या मर गई। उसके हिसाब से जब वो बेहोश हुई, कोमा में गई, ही डिसाइडेड ये तो मर गई। वो एकदम से पैनिक में आया ताकि मर्डर का ना इल्जाम लग जाए उस पर, मर्डर का

काम ना लग जाए, एंड ही कमिटेड अ मर्डर. क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि मीना की डेथ सफोकेशन हुई है. यानी कि मीना को डायबिटिक कोमा आया, इसे लगा वो मर गई, इसे ने उठा के उसे जमीन में गाड़ दिया, एंड शी डाइड ऑफ सफोकेशन. यूसुफ वॉज चार्ज्ड फॉर इनवॉलंटरी मैन स्लॉटर, जिसकी सजा भुगतने का मौका, सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया सलाखों के पीछे. रीसेंट टाइम्स ही इज आउट, बट मेंटली ही इज कंप्लीटली ब्रोकन, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं और बहुत कुछ किया भी. नाउ आई लीव इट टू यू टू डिसाइड कि आपका इस पे क्या कहना है. 666-22-107 666-22-107 ये जो है आज का किस्सा. आपके वाले मुझे बताइएगा आप क्या कहना है. फरद भाई वाले नाम कह रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू एज वेल मेरे भाई. तो आज की कहानी पे आपके रिस्पॉन्सेज जरूर जरूर चाहिए, बिकॉज बिकॉज क्या चाहिए भाई, चाहिए. आपके मैसेजेस के बिना कैसे चलेगा बताइए. सो 666-22-107 बताए जरूर. एंड ऑल द यूसुफ्स आउट देयर, आई एम रियली सॉरी ब्रो, आपका नाम मुझे लेना पड़ा. क्या करो, बन जा तू मेरी चरणप्रीत और बादशाह. भाई क्या हुक स्टेप है इस गाने. बाकी कहानी के ऊपर आपके मैसेज जरूर चाहिए मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज. आपके मैसेज आएंगे तो ये शाम बन, तो मेरे लिए कर देना प्लीज.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस डाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, तो 6:02 तो हो लिए और आपने बताना है कि आज की कहानी आपको लगी तो लगी कैसी, जोर की लगी कैसी लगी, क्योंकि आज की कहानी की शुरुआत मैंने जानबूझ के संडे की शुरुआत ऐसी करी क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा मैं आज अभी से यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ मेरा भाई जी, भाई बताइए।
3: पहला मार दिया ना बंदा फिर आज आपने।
2: भाई क्या करें, वो रास्ता ही नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए, क्या नहीं करना
3: था। सारे बगैर हमें भी तक था भाई,
2: क्या करें भाई।
3: लेकिन यार वो आपकी ना वो सारी बातें के सोशल मीडिया वाली जो बात, रिसेंटली गुजरा हुआ एक वाकया याद आ गया अपने कराची में ना। इसी तरह एक लड़के ने यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए लेडी से पूछी, ठीक है, तो उसने क्या किया कि पहले तो बातें सही चलती नहीं, अच्छा खासा निजाम चला, जिस तरह का तो लेडी पूरी एग्री हो गई, लेडी आ गई वापस इधर कराची आ गई वो उसके चक्कर में। अब वो थी कोई जना ब्लैक पीपल्स में से थे, ठीक है। अब जिस तरह कराची है वो लेडी का फेस दिखाने का और तो माशाल्लाह सेहत और लड़के जिस तरह देखा उसने बोला मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो काफी स्कैंडल बना हुआ भाई, और फिर पुलिस वालों ने कहकर केस सॉल्व करवाया और फिर वो वापस उसको भेजा। नहीं तो वो बोले कि भाई मैं तो इसका प्यार पागल वाली स्किल की।
2: अरे भाई ऐसे बहुत चीज होती है, वो कैट फिशिंग भी होती है, पर अभी ये वाली कहानी कैसी लगी ये बताइए आप।
3: और इतनी लेकिन बात ये थी कि उसको सोच समझ के उस वक्त पैनिक नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि किसी भी हादसे के ऊपर आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आप अपने आप पर कंट्रोल करो ताकि आप चीजों को।
2: बेशक बेशक बेशक
3: बोलते हैं ना अक्सर, आपने आपको सिर्फ ये याद दिलाया कि मदद रास्ते में है।
2: हाँ ये हुई बात, एकदम सही फरमाया आपने, एकदम सही फरमाया। ठीक है,
3: क्योंकि हम यार मोस्टली जना केसेस यहाँ पे आके खराब होते हैं जिस तरह इंसान पैनिक हो जाता
2: है।
3: मोस्टली केसेस वहीं खराब होते हैं जहाँ इंसान पैनिक हो जाता है ना, उसने वो काम ना जाके भी खराब कर दिया। देखो सारी वो शुगर की वजह से अटैक आया हुआ था और उधर काम खराब हो गया, दूसरा बेचारी बंदी मार दी पूरी इतनी दूर से मिलने।
2: मैं बता, बहुत ही अजीब सी डार्क सी स्टोरी है, बड़ा ही अजीब कंक्लूजन है इसका, तो मैंने कहा चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर यहाँ से रास्ता नापेंगे पूरे वीकेंड का इंशाल्लाह।
3: बैठ के बातें करा रहा था ना, मुझे तो अभी लगा था कि बस अभी अगले कुछ लम्हों में शादी की बात डिस्कस हो जाएगी।
2: करा देंगे अगली कहानी मूवी करा देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, वो भी करा देंगे। ठीक है मेरा भाई।
3: लेकिन बाकियों को भी सबको यही सलाह है कि भाई सिचुएशन के ऊपर पैनिक होने की जरूरत
2: नहीं होना है, बिल्कुल
3: काम रह के काम करो, देखो सिचुएशन समझो कि हुआ क्या है, ठीक है। तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसान वाकई पैनिक हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करो कि देखो चीजों को समझो कि हुआ क्या और अब आगे क्या करना है।
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट।
3: कुछ करना है तो ये काम, मैं अपने ऊपर इस मामले में बड़ा

0: जो है ना मेरा को वो होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी पैनिक नहीं किया।
1: हाँ
0: ठीक है, मैं इन चीजों में कभी पैनिक नहीं किया। मैं कतर में रहे कभी मेरा दो तीन बार मैं मिस के हुआ हूँ, गिरा हूँ। हाँ। मोटरसाइकिल का कहा था, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि गिरा डब्बा मेरा मोटरसाइकिल का एक तरफ, मोटरसाइकिल मेरी एक तरफ।
1: नहीं भाई, हमेशा हमेशा जो है पैनिक नहीं करने का है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अभी टाइम थोड़ा सा कम है, फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे खुल के। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई के तुरंत बाद जो है कुछ और मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि अभी कुछ देर में हो जाएगा अजान का वक्त। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, फिर एक मैसेज है तकदीर का फसाना है जाकर किसे सुनाए, ये तो देख लीजिए समीर भाई जो अच्छा लगे सुना दें उसको। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, खुद यूसुफ भाई ने, मतलब हमारे यूसुफ भाई ने, इतने अल्लाह बेचारा कहाँ खाम खां कहाँ फंस गया, वो क्यों डॉक्टर को नहीं बुलाया उसी वक्त, क्या हो गया था उस बेचारे को उस वक्त, और वो खुद कैसे डिसाइड कर लिया कि शी इज़ डेड, हाउ नो वन कुड थिंक यूजुअली नॉर्मल पर्सन कॉल टू डॉक्टर दो थ्रू एनी वन। अच्छा, और सज़ा कितनी हुई, ये कोई मोटिव इंटरनेशनल इंटेंशनली तो नहीं था। इससे ये सबक मिलता है कि कभी भी कोई डिसीजन जल्दी में नहीं लेना चाहिए। मैं गौर से सुन रहा था सिंस स्टार्टिंग, आपने बोला कि यूसुफ नाम के लोग गौर से सुने, अच्छी थी स्टोरी मगर ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मेरे भाई। पैनिक कर गया यूसुफ भाई, पैनिक कर गया लड़का, कोई बात नहीं है। अब्दुल अमजद साहब वालेकुम अस्सलाम, और सज़ा उसको मेरे ख्याल में 8 साल की सुनाई थी, क्योंकि बीच में वो छूट गया था जहाँ तक मैंने पढ़ा, वो क्लियर रिपोर्ट्स नहीं है उसकी। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी भाई लिखते हैं, वेरी क्विक बट इंटरेस्टिंग एंड योर नैरेटिव इज़ आउटस्टैंडिंग एज यूजुअल। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आपको। और एक मैसेज है, क्या लिखा है भाई साहब, नाइस स्टोरी विद ग्रेट नरेशन, थैंक यू सो मच। और फलक भाई लिखते हैं, जबरदस्त कहानी, थैंक यू। फरद भाई कहते हैं, मेरा भी दोस्त है, उसका नाम यूसुफ है। अब बहुत सारे यूसुफ के लिए आज की कहानी। और एक भाई कह रहा है, रोना आ रहा है, वहाब भाई कह रहे हैं। और एक मैसेज है, अगर यूसुफ AI से पूछ लेता सब पता चल जाता भाई, 2014 में कहाँ पूछता, कौन से AI से पूछता बेचारा, यार निपट लिया बताओ। मैं सलाम कबीर भाई, आज और थर्सडे की बिल्कुल मिलेगी भाई। अरबाज भाई कह रहे हैं, सबसे पहले तो सर आज की स्टोरी अब तक जितनी भी स्टोरीज मैंने सुनी है उनसे बेस्ट है, मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और दूसरी बात सर, जब वो क्या मॉर्फिन लगा कि उससे मिलने जा रहा था, परफ्यूम लगा के उससे मिलने जा रहा था, तो मुझे अपनी पुरानी याद आई, उस सीन ने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अरे बाजू बेटे, तबसुम मैं लिखती है, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम बहन। और आगे लिखा है, बहुत दुख की बात है कि मीना की डेथ हो गई, लेकिन आपने जैसे बोला मैंने खाना बनाया खिलाया, मैं किचन में गया और वो मर गई। ये क्या बात हुई। और आगे लिखती है, आई बर्स्टेड आउट लाफिंग, नाइस स्टोरी विद गुड लेसन, बेस्ट इज योर नरेटिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच बहन, टोटली वर्थ इट, आपको इतनी माइन्यूट चीज़ भी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच बहना, बहुत बहुत प्यार। और ख्याल भाई वालेकुम अस्सलाम, ख्याल भाई कैसे भाई, मैंने कहानी नहीं सुनी। उमर शहजाद साहब आपकी दिक्कत है भाई, आपकी गलती है ये। अब्दुल करीम साहब वालेकुम अस्सलाम, जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, एंड या खलील भाई को वालेकुम अस्सलाम। तो या आज की स्टोरी आपको क्लियरली सिखाती है कि कुछ भी हो ऐसे भगदड़ नहीं जाने का, क्या स्लोली स्लोली जाने का, जल्दी को नहीं भाई, आराम आराम सी होली। और एक मैसेज है, और सर और हमारी सेटिंग शादी हो गई, ले कह रहे हैं यूसुफ को तो मिली नहीं, वो तो निपटी, और हम जिसके लिए परफ्यूम लगे गए उसकी शादी हो गई, बहुत बड़े बड़े। हाया कुरेशी जी का मैसेज है, अमेजिंग ग्रेट स्टोरी, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सो मच। ओ सॉरी, ग्रेट वर्क लिखा है, थैंक यू। और DP भाई वालेकुम अस्सलाम, DP भाई, तो या नेवर एवर डू समथिंग रश। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अदनान से यूसुफ कुड हैव कॉल्ड स्पाइडरमैन। अदनान कह रहे स्पाइडरमैन को बुला नहीं पाए बेटे, वो 2014 में उसका दिमाग नहीं चला बेचारे को, पता नहीं क्या हो गया अदनान, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न अदनान, ही इज़ हैप्पी राइट नाउ, यूसुफ भाई बाहर आ गए हैं। बाकी थैंक यू सो मच बहना, अदनान को बहुत सारा प्यार। ओके, सो 666-2107, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट द स्टोरी आप ज़रूर ज़रूर कहें, बाकी आपका मूड चैट हम कर देते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, तभी देखो वॉल्यूम बढ़वाऊँ मैं आपसे, देखो मेरे जादू देखो, ये मेरे छड़ी घुसाई हैरी पॉटर वाली, मैं हरी छड़ी घुमा रहा हूँ, पेट्रिफिकस टोटलस, ये देखो मेरा जादू, वॉल्यूम बढ़ेगा अभी, ये देखो बढ़ती हुई नजर आ रही तुम्हें, बढ़ाइए देखो बढ़ाई, देखो ये बड़ी, देखो ये कहीं 22 पे देखा, यहीं बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, छोटे मोटे जादूगर थोड़ी हम, ये लो

आप की कशिश हिमेश भाई की आवाज आसिक बनाया आपने भाई। हम तो इतने बड़े फैन हैं, हमने तो ब्लैक बुशर्ट भी लेके आ गए थे इमरान हाशमी के चक्कर में भाई, इतने बड़े फैन हैं हम। एक तो मस्जिद आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम शाबाश शाबाश। तब उसमें कहते हैं हमको पता कब किसकी नब्ज बनी आपने गाना चला। देखो भाई गाना चलाया मैंने इसलिए मुझे पता था लोग जो भी उनको चाहिए कुछ थड़कता भड़कता, तो क्योंकि अभी कम टाइम बचा है तो मैं काम करता हूँ गाना ही चला देता हूँ। तो लिसन टू दिस वन, क्योंकि भाई मूवी आने वाली है 14 अगस्त को रिलीज है। अभी तक ट्रेलर का आता पता नहीं है, ये लोग मार्केटिंग करना भूल गए क्या भाई? मार्केटिंग करो विशेष फिल्म्स वालों, जाओ आवारापन टू की मार्केटिंग ही नहीं हो रही यार, दिल टूटता है भाई, दिल दुखता है। फिर वही कर रहे हैं जो 2019 में साथ में किया था, 17 में किया था, साथ में किया था, 17 में साथ में किया था। अरिजीत सिंह की आवाज आवारापन टू से गाना, भाई आदमी कुछ भी गा सकता है मैं कन्फर्म हूं।

मैं एक सेकेंड, टू टाइम्स मेरे को ना एक बात गुस्सा आ रहा है कि ये जो है मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहा यार मूवी की आवारा पंटू की, ट्रेलर नहीं है अभी तक, आया ही नहीं ट्रेलर, पता नहीं किधर है, टीजर डाल दिया बस। अच्छी खासी मार्केटिंग, अच्छे खासे ट्रेंड पे चले गए, मार्केटिंग में इतना डाउन क्यों हो रहे हैं? अभी तो बस मैंने मैसेज किया 11 दिन बाकी हैं, सिर्फ 11 दिन बाकी हैं भाई, अब तो जाग जाओ, एक ट्रेलर ही दे दो हमें, दो गई जो भी है। 14 अगस्त को रिलीज हो रही है इमरान।

0: रश्मि और भाई डायरेक्ट जाएगा आपका भाई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो डन है यार, उसके बाद डायरेक्ट मूवी देखेंगे। मुझे भी लग रहा है भाई डायरेक्ट मूवी देखनी पड़ जाएगी, डॉक्टर साहब क्या करें, ट्रेलर नहीं दे रहे तो। बट एनीवे, या तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फर्स्ट डे लास्ट शो, सर और भाई पर डिपेंड करता है। मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं है आपने, स्टे ट्यून्ड।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

कि अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई कह रहे हैं स्टोरी सबक मिलता है कि कहें कि शॉकिंग टाइम पे कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. बहुत अच्छी स्टोरी थी. थैंक यू सो मच ताहिर भाई. अब हमारा इंट्रोडक्शन छोड़ो बटन दबाओ.

सबसे पहले शुरू करेंगे खबरों से। मैं अपना नाम तो बता चुका हूँ और इतना बड़ा प्रोमो चला दिया और क्या बताऊँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने संडे को हाईलाइट किया है अपनी मित्राश सर्विस के बारे में। मित्राश में इतनी सारी चीज़ें एड ऑन हो चुकी हैं माशाल्लाह। अभी उन्होंने कहा है कि जो यूज़ करने वाले हैं मित्राश, जो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसे लेता है तो। उसका मकसद यह है कि इन्हांस किया जाए रैपिड रिस्पॉन्स को और पब्लिक सिक्योरिटी की श्योरिटी के लिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप और बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड मित्राश अगर आप देखेंगे तो पहले जब लॉन्च हुई थी उसके बाद तो कितना कुछ चेंज आया उसमें, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। सो कुडोज टू कतर फॉर constantly working on the app। बड़ा बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नेशनल ऐप है भाई, बहुत ज़रूरी ऐप है। इसके अलावा ओबेसिटी जो है वो जो हाल है स्टेट ऑफ कतर के, उसके बारे में बातचीत की गई है। ये सिर्फ एक कहा गया है, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ का मैटर है। चैलेंज करता है कई सारी चीज़ों को। जो एफर्ट्स है बाय द कम्युनिटी वो लिए जाने बड़े ज़रूरी हैं। और नेशनल ग्लोबल्स कन्फर्म कर दिए कि रेट ऑफ ओबेसिटी यानी कि वजन ज़्यादा हो जाना, ओवरवेट हो जाना इन कतर में इज़ अमंग द हाइएस्ट इन द रीजन। तो इसमें सिर्फ बड़े नहीं हैं, बच्चे भी शामिल हैं। एंड बड़ी ज़रूरत है कि इसके बारे में काम किया जाए क्योंकि इसी से क्रॉनिक डिजीज़ का जन्म होता है और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जन्म होता है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाए एंड वर्क ऑन इट प्लीज़। ये नहीं कि आप तुरंत कोई फैसला ऐसा ले लें कि अब तो मैं एकदम से पतला जाऊँगा, वैसे वाले फैसले भी हों, बट दैट इज़ इन एमरजेंसी केसेस, नॉट एवरी टाइम। सिंपल कुछ चीज़ें छोड़ देने से भी होता है। मैं अगर कोशिश करने

0: वाला हूँ तो आप भी कीजिए. आई हैव डिसाइडेड आई विल डू इट फ्रॉम दिस मंथ ओनली एंड नॉट किडिंग. मैंने इस पर बहुत मजाक बनाया कि तो ना गई वो आ गई, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं भी इस पर काम करूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज़ मिल गई है वसीयतनामे में. तो प्लीज़ अपना ज़्यादा ख्याल रखिए. एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने एक्सपेंड किया अपनी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट को और प्राइवेट स्कूल तक पहुँचा है, किंडरगार्टन तक, और साथ ही बढ़ाया है टोटल नंबर ऑफ स्टडी सीट्स को जो कि अवेलेबल हैं अंडर द इनिशिएटिव. पहले सीट की जो गिनती थी वो थी 13,627 और पहले 9,257 थी, अब हो चुकी है 13,627 और ये बहुत बड़ा मूव है. ऐसे नहीं 2-3-10 बढ़ा दी ना. एंड इस मूव के बाद डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल किंडरगार्टन से पहुंचे तो बहुत मदद मिलेगी. दूसरी बात यह कि मौसम का जो हाल है भाई, ह्यूमिडिटी ने कतई मोमो बना रखा है, ऐसा लग रहा है स्टीम हो रहा है मामला, कतई स्टीम हो रहा है. तो प्लीज़ जिनको भी सांस की प्रॉब्लम्स हैं आप कतई बीच से दूर रहें. आई नो आपके अंदर का आर्टिस्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा मुझे तो समंदर के पास बैठ के ही आइडिया आते हैं, आई नो, बट प्लीज़ डोंट गो देयर. अभी वाला मौसम नहीं है, क्लियर वेदर है फॉर नाउ. क्लियर वेदर का मतलब ये किसी भी किस्म के बादल या बादल का नुक्ता भर भी नहीं है. टेम्परेचर 38 degrees फॉर नाउ, मैक्सिमम 47 तक जाएगा और लोएस्ट टेम्परेचर 31. हो गया तो हो गया, वैसे कोई उम्मीद तो है नहीं. बाकी टेम्परेचर का हाल ह्यूमिडिटी के लेवल से ज़्यादा डिफाइन होता है. कल ह्यूमिडिटी का लेवल आज से ज़्यादा था, मगर आज जो है गर्मी ज़्यादा है. आज ह्यूमिडिटी का लेवल 42% है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके. हवाओं की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं है. गस्ट ऑफ विंड इज़ लाइक 14 kilometers पर आर और हवाओं की रफ्तार 7 kilometers, विच इज़ nothing. एक मैसेज है, यस ब्रदर, हेल्थ इज वेल्थ. आई हैव कट डाउन शुगर कम्प्लीटली. गलत से सुलेमानी पे आ गया, वो भी विदाउट शुगर. मकसद नहीं भूलना है भाई साहब. 43 kgs मोर टू लूज इंशाल्लाह. इंशाल्लाह मेरे भाई, आई एम विद यू ऑन दिस. आई हैव सीन योर वीडियोज एज वेल डॉक्टर साहब. और ये चीज़ काम आती है क्योंकि यहाँ पर रहते हुए ना आदमी थोड़ा सा बैठा बैठा ज़्यादा रहता है. जिनके बाहर चलने फिरने का काम बात ठीक है, बट मोस्टली पब्लिक काम का हमारा काम है बैठना. बैठ के कर रहे हैं भाई. इसके बाद घर गए बैठ गए, गाड़ी में गए बैठ गए. ये मुझे, मैंने बहुत हल्के में लिया इस चीज़ों को. एंड आई हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट कि नहीं यार मजाक बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा ये टायर कम करना पड़ा. तो उनका मैसेज आया है, करण भाई. करण भाई वालेकुम अस्सलाम भाई. करण क्या हाल है भाई के? बाकी जो लोग कह रहे हैं स्टोरी, भाई मिल जाएगी स्टोरी, सब्र रखिए. थर्सडे और आज की मैं एक साथ भेज दूंगा जिनको नहीं मिली है. सो उसके लिए आप टिके रहिए. जाना आपने किधर भी नहीं है, आपको पता है यार सबसे बढ़िया जगह पर आप कहाँ जाओगे, सबसे बढ़िया जगह है. चलो भाई बंटा है कि पब्लिक
1: आ गया मैं. हाँ जल्दी से कर दो अब लाइट्स कैमरा एक्शन, जहाँ भी जाऊँ मैं कर दूँ जमा कर दूँ जैसे मैं माइकल जैक्सन.
0: सीधा माइकल जैक्सन क्या भाई, मैसेज करने का क्या, पब्लिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने का, 666-2107 क्या.
1: दोस्त एक महीना के गायब था, कौन बनाना है, इसको चेक करना बोल, ये बोल के पलटा.

0: सरदार खुशी तो बहुत ज्यादा होगी अगर गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत ज्यादा ही हो रही है भैया। एक मैसेज आया है कबीर भाई, ड्राइव थ्रू का प्ले करो ना एक बार भाई, वो मैं प्ले नहीं कर सकता करण भाई, मजबूरी है मजबूरी। सेंड मी स्टोरी कबीर भाई, आई विल। फिलहाल जरा आपको बता दूं जो ट्रैफिक का हाल हाल है, तो अभी अहमद बिन अली स्ट्रीट के पास अगर आप निकल रहे हैं, अगर आप अलजामी स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो इंटरसेक्शन की तरफ आपको जाम मिलेगा। अगर वादी अल सेल वेस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे तो मामला क्लियर है, लेकिन अगर आप मोहम्मद बिन सानी स्ट्रीट पे हैं और आप यहाँ से कॉर्निश ज्वाइन करेंगे तो कॉर्निश के बीचों बीच आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टॉपेज 5-6 मिनट का ज़्यादा है नहीं। जो मेन ट्रैफिक है वो लगा है भाई साहब सलवा रोड पर, बढ़िया वाला लगा, बढ़िया वाला मौजी। इधर से जाएंगे तो आप इधर बी रिंग रोड से अगर आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक है, इनफैक्ट अगर आप रौदतुल खैल स्ट्रीट पर हैं तो इंटरसेक्शंस पर आपको रुकना पड़ेगा अच्छा खासा। अलमंसूरा स्ट्रीट पर भी जाम लगा हुआ है, पूरी की पूरी स्ट्रीट अभी बिजी चल रही है। सो अगर आप ये वाला रूट लेना चाह रहे हैं तो प्लीज इग्नोर इफ यू कैन। हालांकि रात तक यहाँ पे रहेगा, इधर ही चलाता है मैं, मेरे को पता है। इसके अलावा सी रिंग रोड पर अगर आप आ रहे हैं तो मुबारक हो, नजमा की तरफ आपकी गाड़ी होली होली होली चलेगी। एंड इसके अलावा अगर आप डी रिंग रोड पर हैं और इधर से भी नजमा की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक आपको अच्छा खासा मिलेगा। नजमा स्ट्रीट इनफैक्ट पूरी पूरी भरी हुई है, जो द मॉल दोहा है ना इसके पास पार्किंग शार्किंग कोई नहीं है। और भाई अल नसर जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो लोग वीकेंड पे जाके पार्किंग ढूंढ लेते हैं ना, मेरा आपको सलूट है भाई, दूर से सलूट करो मैं दूर से। अल नसर स्ट्रीट पे जो लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं भाई, आप लोग ड्राइवर वाइवर नहीं भाई, आपको एवेन्यू में भर्ती करना चाहिए, आप गलत जगह पर हैं। ना ना ना, आपको तो भाई आयरन मैन के साइड में होना चाहिए। कैसे कर लेते हो भाई ये, कैसे कर लेते हो? दैट इज़ व्हाट आई एम शॉर्ट अबाउट। ऐसे आई नो नीड टू मार्केटिंग, अरे ज़रूरत है भाई। 2007 में भी मार्केटिंग नहीं करी थी इन लोगों ने, फिर बार अपन चली नहीं थी, फिर हम रोते रहे इतने सालों तक, फिर हिट हो गई। तो हमें वो नहीं चाहिए, इस बार हमें चाहिए फुल मार्केटिंग हो, इमरान हाशमी भाई के पीछे पूरी ताकत लगानी चाहिए विशेष फिल्म्स को। बट एनीवे, आपको क्या प्रतिक्रिया हुई और कोई मूवी सजेशन देना चाहें तो ज़रूर ज़रूर बताएगा, आई एम वेटिंग। मेरे पास कुछ मूवीज़ हैं बताने के लिए, वो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊँगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं एकदम बढ़िया भाई, आप सुनाएं। सलमान भाई मैं बहुत चंगा, आप ये क्या हाल है? आज की स्टोरी शॉर्ट हो गई भाई, भाई शॉर्ट ही भेजी मैंने करण भाई, आज की स्टोरी शॉर्ट थी, मैं ज़बरदस्ती कैसे बड़ा करेगा करण भाई, कहानी उतने पूरी हो गया ना भाई। और जकी भाई वालेकुम सलाम, मैं बढ़िया जकी भाई, क्या हाल है जकी भाई के? तो अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ज़रा एक कॉल ले लेता हूँ मैं, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात, क्या हाल मेरे भाई के?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार, आप सुनाए मेरे भाई, क्या है?
1: बहुत बढ़िया भाई, क्या चल रहा है यार? तो उसका नहीं ट्रेलर आ रहा है ना कुछ, यार क्या देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ मैं भाई, मैं दूसरी मूवी जो उसके साथ रिलीज हो रही है उसका आ चुका है ट्रेलर, लेकिन हमारापन का ट्रेलर ही नहीं डाल रही है लोग, दो गाने डाल के चुप बैठ गए, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
1: तो यार भाई इमरान हाशमी की मूवी है यार, बता यार।
0: हाँ वही ना, तो अभी देखते हैं, 11 दिन है अभी, 11 दिन में पता नहीं कुछ मार्केटिंग पुश करेंगे एंड में, पता नहीं यार, कह नहीं सकते।
1: बट तो सारी तैयारी हो रखी है भाई, 11 दिन है बात है, तैयारी सारी हो रखी,
0: क्योंकि मूवी के अंदर एक गाना है तेरा मेरा रिश्ता, जो इस बार का वर्जन है वो मिथुन ने गाया है, ठीक है, वो भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, अभी तक वो भी नहीं रिलीज किया।
1: वो भी तो नहीं सुना अभी तक मैंने।
0: हाँ वो भी आने वाला था, उन्होंने डाला था कमिंग सून, लेकिन अभी तक वो कमिंग सून ही है, वो अभी तक आया नहीं है और 11 दिन बचे हैं।
1: वही ना, वो भी सुना, वो बहुत मस्त गाना था, पहला वाला तो बहुत जबरदस्त है भाई।
0: हाँ,
1: अब सेकंड वाला क्या है नहीं है तो सुनने के बाद ही मैं बताता।
0: हाँ वही वही वही उसी चीज के अंदर, क्योंकि बंटवारा रिलीज हो रही है अवारापन 2 के साथ, तो बंटवारा का पूरा का पूरा ट्रेलर आ चुका है, 3-3.5 मिनट का मेरे ख्याल में है वो, और इसका अभी तक नहीं आया है, तो पता नहीं शायद जानबूझ के छुपा रहे हैं एंड में पुश करेंगे, बट देखनी तो है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते।
1: देखनी तो है भाई,

0: मैं भेज दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैसेज कर देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा।
1: नो प्रॉब्लम, काम थोड़ा ज्यादा हो गया था ओवर लोड इस वजह से।
0: नो प्रॉब्लम मेरे भाई, मैं जरूर जरूर एक बार मैसेज कर देना बस मुझे, ठीक है?
1: हाँ ठीक है, मैं अभी मैसेज कर दूंगा आपको, बस मुझे स्टोरी भेजना, मैं बिना स्टोरी सुने रह नहीं पाऊंगा।
0: डन है भाई, अभी मैं अभी
1: एडिक्ट हो गया हूँ, मैं एडिक्ट मेरे नस नस में कबीर तलवार की स्टोरी घिस चुकी है।
0: खुश नसीबी मेरी, खुश नसीबी भाई, अभी तो
1: अरे भाई कब आ रहे हो भाई, लाइव कब आ रहे हो यार? अगस्त बोले थे, आज 2 तारीख है।
0: बस आ गया ना अगस्त भाई, आ गया ना अगस्त भाई, मेरे बर्थडे का मंथ है भाई, इसी में सारा धूमधड़ा करेंगे भाई, टेंशन मत लो।
1: मैं रेडी हूँ, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया, सिर्फ तुमको फॉलो कर रखा
0: है। नहीं भाई, बस आए भाई, गाड़ी आ रही है अपनी, एकदम स्कीड मार के रुकेंगे।
1: बेल आइकन वगैरह सब दबा दूंगा मैं, एक बार डालो तो सही।
0: डन है मेरा भाई, बस यही सुनना था मेरे जान, आया हूँ इसमें।
1: अरे भाई टेंशन ना लो भाई, हमें पहला कमेंट मेरा ही रहेगा।
0: ये है मेरा भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए, थैंक यू। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इसी मोहब्बत के चलते आना ही पड़ेगा। आई हैव रियलाइज दैट, जकी भाई कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, आई यूज्ड टू लिव इन अलनसर स्ट्रीट ऑन द मेन नियर फ्राइडेज, आई कैन अंडरस्टैंड द पार्किंग इशू। पार्किंग इशू नहीं है वो जकी भाई, पार्किंग मिलती कहाँ है इशू के लिए, पार्किंग मिली तो सही। बट यू राइट, आई थिंक जो लोग अलनसर स्ट्रीट के पास रहते हैं उनको पता है, बस दे नो इट। अगर आप फ्राइडे के दिन वहाँ पर चले गए और आपकी बुद्धि में आ गया कि मैं तो बहुत हैवी ड्राइवर हूँ, मैं पार्किंग ढूंढ लूंगा, मैं आपको इतना कहूँगा, ऑल द बेस्ट, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। एक मैसेज है, तोते की कहानी कब सुनाने को मिलेगी दोबारा से? वो तोता भाई, वो कहानी सुना के चला गया। मैं एक मैसेज, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मेरे भाई, करण भाई को बहुत सारा, करण भाई थैंक यू भाई, बहुत मेरे भाई। तो या अलनसर स्ट्रीट पे जो लोग वीकेंड पे जाना चाहते हैं और अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाना चाहते हैं, वीकेंड का इंतजार करो फिर जाना, पता लग जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग उस तरफ नहीं गए हैं। और जिन्होंने सालों तक वो कह रहे हैं वकरा में गाड़ी चलाई है, आप तो ज़रूर जाएँ, आपको दुनिया दिखेगी, ठीक है? जाना जरूर। बढ़िया लिरिकल गाना चला रहा हूं, बढ़िया लिरिक्स भाई, ऐसे कर रहे लिरिक्स सुना इस गाने के, क्या कहूं मैं।
2: जोड़ के किनारे
0: हाय, अभी देखना जब रैप आएगा, हरियाणवी रैप भाई, कती मौज आ जाएगी, धुम्मा उठा दूंगा भाई।

0: तस्वीर ग्रेवाल ठाणा डोली वाला इश्क बावला।
1: हाँ जी भाई साहब बढ़िया चल रहा। और मैं कह रहा था ना प्रमोशन थोड़े फीके पड़े हैं आवारापन टू के, तो उस पर तब सुबह लिखते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि शादी के लिए सिर्फ एक हफ्ता रहेगा तब कार्ड बांटेंगे, सुबह भी वही हो रहा है आवारापन के साथ। बैन दिस इज द बेस्ट पंच लाइन, दिस इज द बेस्ट पंच लाइन। एक मैसेज वॉल्यूम हाई पर सुना भाई, बहुत बढ़िया भाई आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा मेरे भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। और एक मैसेज आया भाई, मैं अलनसर स्ट्रीट पे 13 घंटे ड्यूटी करता हूँ कार में एज अ डिलीवरी ड्राइवर। भाई आपको सलूट सलाम। और एक भाई ने मैसेज किया है कि मतार कदीम के आगे तो नहीं होगी भीड़। भाई साहब ऐसा है, सुनो मेरी बात, क्या नाम है आपका? वकास। वकास भाई मतार कदीम की भीड़ और अलनसर की स्ट्रीट की जो भीड़ है मत करो कंपेयर, मुझे लगता है आप कभी उस रास्ते गए नहीं हैं। मजाक सेट के, अगर आपको लगता है कि मतार कदीम में ज्यादा भीड़ है अलनसर स्ट्रीट पे, तो कभी वीकेंड पे दोनों जगह जाके देख लेना। सीटी बजाएगी सीटी एकदम बढ़िया वाली, ठीक है। भाई मैं तो अभी इस वाले वीकेंड पे गया था, मगर ना जी ना, मेरी गाड़ी यहीं फर्श पे छोड़ जाता हूँ मैं, मेरा बस के को नहीं यहाँ गाड़ी चलाना। वैसे अजरबैजान बीच जा रहा हूँ साथ, भाई बढ़िया है भाई, जाओ बढ़िया, वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी का लेवल मिलेगा, बस अपना ख्याल रखना भाई। मैं यही दुआ करता हूँ जो लोग बीच की तरफ जा रहे हैं और वो भी वीकडे में, इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला को टाइम दिया है, जाइए भाई मौज करिए, बस सुखी रहो भाई, ड्राइव सेफली एंड बी सेफ, दैट्स इट। बाकी जो लोग मेरी तरह साइनस में हैं, परेशान है साइनस से, प्लीज़ डोंट गो आउट, घूमिए भले घूमिए लेकिन रेत वेत से दूर रहना भाई, हम इसके लिए बिल्ड नहीं है, समझ रहे हो आप, प्लीज़। एक मैसेज इस्लाम ये देखो छेड़ना शुरू। एक भाई लग रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये चीज़ जो है ना यहाँ लागू नहीं होती, दिल्ली वालों को वहाँ पे रहने की आदत है भाई, वो पोल्यूशन के बिना हमें दिल्ली दिल्ली नहीं लगता है, समझ रहे हैं आप, तो उसकी आदत हो चुकी है हमें, उसका असर ही नहीं होता आपके लिए, वो नेगेटिव है कहाँ से बताइए आप। अच्छा मुंबई से, मुझे पता था ये मुंबई वालों को ही प्रॉब्लम है हमसे। तो सुनो मुंबई वालों, ठीक है वहाँ पोल्यूशन है सब कुछ है, लेकिन हमें आदत हो चुकी है भाई, मज़ा नहीं आता पोल्यूशन नहीं होता तो क्या करें। और एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मैंने सारे गाने चला दिए, मेरे पास अभी वक्त नहीं है इसलिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह कल जब आऊँगा तो हमारा पंटू के गाने लगा दूँ, एक तो मैंने चला दिया, बट आई एम होपिंग कि दे ड्रॉप अ ट्रेलर रियली रियली सून। बाकी आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, शाम को 5 बजे मिलेंगे, हफ्ता तो अभी शुरू हुआ है, एंड इंशाल्लाह धुम्मा उठा देंगे भाई, बढ़िया कल भी कहानी ऐसी मिलेगी ना आपको, मज़ा आ जाएगा, मज़ा इंटेंसिटी बस यहाँ से कन की बढ़ती ही चली जाएगी। सो ऑल द स्टोरीज दैट यू विल बी लिसनिंग फ्रॉम नाउ ऑन, सबकी इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊँगा। और थर्सडे को जो कहानी मिलेगी, अरे भाई साहब तैयार नहीं है आपके लिए। उस टाइम पर लिखते हैं भाई मुंबई वालों को बोल दो दिल्ली में इंसाफ भी है, अब ये नहीं बोल पाऊँगा उनसन भाई। ये नहीं बोल पाऊँगा। पर हमेशा भाई दिल से दिल्ली भाई, ये साइड तो लेनी पड़ेगी मुझे, ये शहर है भाई अपना, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ, दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, और कल मिलते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम और हर जगह मुझे ढूंढ सकते हैं आप, दोहा वाला कबीर FM107, टिकटॉक पर भी मिल जाऊँगा, प्लीज़ आइएगा, बिकॉज आई एम अबाउट टू स्टार्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया और बहुत नर्वस हूँ मैं, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ कबीर साइनिंग ऑफ, ये कहते हुए

0: फीडबैक टू मी लेटर ऑन. ओके अब बढ़ते हैं जरा निकल गया कुछ गैजेट्स की तरफ.
1: Cool gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन मतलब रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ मतलब पहला गैजेट बता रहा हूँ तो इसका नाम है ऑल इन वन बॉट ब्यूटी वाला बॉट. ये 25 वॉट का वायरलेस चार्जर है इसमें ब्लूटूथ स्पीकर है और एक स्लीप बडी भी है. ये एक बहुत ही चंगा सा सोना सा क्यूटी पटूटी सा छोटा सा रोबोट है मगर इसके लुक पर मत जाना भाई. आपको लगेगा ये तो शोपीस सा लग रहा है. शोपीस ना है भाई शोपीस को नहीं कति काम का भाई. इस पे आप ऊपर फोन रख दीजिए इसमें स्टैंड भी है इसका आप एक बाहें फैला दीजिए वो आपकी घड़ी को चार्ज कर देगा. आप दूसरे बाहें निकाल लीजिए उस पे आप अपने जो कानों में आप लगाते हैं हेडफोन्स उनको लगा दीजिए चार्ज कर लीजिए. स्लीपिंग बडी भी है आपको भाई साहब वाइट नॉइज देगा बढ़िया. जैसे मेरे ऐसे लोग हैं जो शोर शराबे में सोना पसंद करते हैं आई नो हमारी तादाद थोड़ी कम है बट यू गॉट माई पॉइंट राइट. सो ऑल इन वन बॉट जो है अवेलेबल है राइट नाउ ऑन फ्यू वेबसाइट्स मगर मेरा सजेशन ये इफ यू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम इंडिया उनको बोलिएगा वहां पे भाई बढ़िया चीप प्राइस पे मिल रहा है और बहुत ही सस्ता प्राइस है. बहुत ही ज्यादा नहीं है 2500-2000 का होगा रुपए की बात कर रहा हूँ 2500-2000 रुपए मुश्किल बा मुश्किल आपको 100 रियाल का पड़ेगा. ये बहुत बहुत काम का है और अच्छा भी लगता है डेस्क पे और गिफ्ट भी करना चाहते हैं दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट. सो ऑल इन वन बॉट नाम है इसका ऑल इन वन बॉट. ओके लेट्स मूव ऑन. अगला जो है भाई साहब ये एक हेडफोन ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है. इसका नाम है KZAN01. मैं दोबारा नाम बताता हूँ बिकॉज नाम थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल है. सो KZAN01 ये टाइप कीजिएगा और ANC और फिर वायरलेस अडेप्टर फॉर IEMS टाइप कीजिएगा. ऑडियो क्वालिटी एक नंबर ठीक है साउंड क्वालिटी एक नंबर. ब्लूटूथ 5.4 ऑफर करेगा आपको ये 15 रेंज देगा आपको. मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी है इसके साथ साथ चार पे ध्यान दीजिएगा चार इनबिल्ट माइक्रोफोन्स हैं फॉर एनहांस कॉल क्लैरिटी. एंड इसके अलावा यूनिवर्सल 0.75 mm QTC कनेक्टर है जो कंपेटिबिलिटी हर चीज के साथ देता है. इसके साथ टच कंट्रोल्स हैं सिंपली प्लेबैक और मोड स्विचिंग के लिए. तो इट इज वेरी हाई ऑन द लिस्ट सो ये आपके काम आ सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग गैजेट. ये वाला जो गैजेट आपको बताने जा रहा हूं ना मुझे भाई बहुत ही प्यारा लगा. ये है टायर शेप्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जो मैं बता रहा हूं एज इट इज आपको टाइप करना है अगर आप ढूंढना चाहते हैं टायर वो जो गाड़ी वाला टायर होता है टायर शेप्ड ब्लूटूथ स्पीकर. एक टायर के शेप में आपके सामने ब्लूटूथ स्पीकर आएगा और आप कहेंगे यार ये तो बड़ी सही चीज है बड़ी सही चीज है. ये आप कहीं ले जाएंगे ना लोग आपसे पूछेंगे भाई मुड़ मुड़ के कहां से ले यार ये बड़ा अच्छा दिख रहा है. ये वैसी वाली चीज है और ये टायर के शेप में है पोर्टेबल ब्लूटूथ है जैसे मैंने कहा बहुत हैवी बेस देता है. LED लाइट्स लगी हैं इसमें वायरलेस म्यूजिक सिस्टम है इसमें HD साउंड है लॉन्ग बैटरी बैकअप है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव कम. ज्यादा महंगा भी नहीं है और सबसे अच्छी बात ये कि ये इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है. अमूमन क्या होता है वो फटी सी आवाज आती है ना तो मजा नहीं आता ऐसा लगता है वो पहले चाइना के 16 स्पीकर वाले फोन आते थे. नहीं वैसी आवाज नहीं है बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड ये भी इजिली अवेलेबल है मार्केट में. कतर में भी मिल जाएगा आपको बाहर भी मिल जाएगा बाहर थोड़ा और सस्ता मिल सकता चांसेस हैं बिकॉज बाकी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग भी है इसकी. सो फॉर एग्जांपल इंडिया इफ यू गो इफ यू वांट टू बाय दिस परफेक्ट प्राइस में आपको मिल सकता है. और इसका जो हिसाब किताब है वो ऐसा है कि ये आपको अच्छी खासी दूरी तक आवाज देगा. तो इफ यू वॉन्ट टू लुक कूल यू वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू समबडी गो अहेड एंड डू इट. आपको सिंपल जो मैंने बताया बस वही टाइप कीजिएगा इफ यू सर्चिंग फॉर दिस गैजेट टायर शेप्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर. ठीक है जी टायर के शेप का है और बहुत बहुत काम का है. ऑलराइट मूविंग ऑन टू इनटेक न्यूज. सबसे पहली खबर है सैमसंग की जिसने मुझे फैन बॉय बना दिया भाई. ये सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी जी फोल्ड 8 और दो वेरिएंट में लॉन्च किया. एक जो नॉर्मल गैलेक्सी फोल्ड है वो तो है दूसरा वाला भाई जो वाइड वाला बनाया उन्होंने छोटा वाला मेरा दिल आ गया उस पे यार. मैं एप्पल से हिलने को राजी नहीं था. मैं मानता हूं मैं ढीठ हूं ऐसा नहीं है कि मैं एप्पल से हिलूंगा तो दूसरा फोन खराब ही है मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मैं समझेगा एप्पल यूजर तो ऐसी बात करते बट ऑनेस्टली मुझे लगा चलो आई एम यूज्ड टू एप्पल एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट. मैं ज्यादा फोन चेंज करता भी नहीं हूं मैं बड़ा इसमें सादा आदमी हूं मगर इसने दिल ले लिया यार. सैमसंग का गैलेक्सी जी फोल्ड 8 तो उसका एक दूसरा वेरियंट है जो थोड़ा चौड़ा है छोटा है इतना क्यूट फोन.

0: मजबूर कर रहे हैं मुझे दूसरा फोन लेने का, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, बस ये लालच मुझे दे दिया है सैमसंग ने। सो इफ एनीबडी आउट देयर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म का डिफरेंट फोन चाहिए, फोल्ड चाहिए, फ्लिप चाहिए, तो फोल्ड में ये वेरिएंट बहुत बहुत बढ़िया है, वाइड फोल्डिंग बुक स्टाइल जो गैलेक्सी जी फोल्ड 8 आया है, इट शुड डेफिनेटली बी ऑन द लिस्ट, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बाकी इट्स अप टू यू। अभी जो है एक यूनिक लाइनअप है, अभी आई थिंक 2 महीने रह गए फिर एप्पल भी आने वाला है, सो अभी लोग ये लगा रहे हैं हिसाब किताब, अनुमान लगा रहे हैं, अजम्पशंस हैं, रूमर है कि एप्पल भी फोल्डेबल फोन ला सकता है। डोंट कोट मी, आई एम जस्ट सेइंग रूमर है, तो अगर ऐसा हुआ, वैसे मुझे चांसेस कम लगते हैं, एप्पल डू नॉट रियली गो फॉर इट जब तक कि बाकी सारी जो कंपनीज हैं वो आइडिया को घिसना दे जब तक एप्पल उसे इस्तेमाल नहीं करता, आई डोंट नो, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं गेमिंग न्यूज की तरफ।
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट।
0: रिसेंटली मैंने आपको बताया था गेमर्स जाग जाओ, प्ले स्टेशन की जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है, रॉकस्टार गेम्स ने कहा कि भाई अब हम फिजिकल सीडीज नहीं देंगे, आपको ऑनलाइन गेम्स खरीदने पड़ेंगे, और अगर हम फिजिकल देंगे तो एक बॉक्स देंगे जिसके अंदर कोड होगा, उस कोड से आप गेम को बाय कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ गेमर्स लाइक मी आर सैड अबाउट इट, मैं खुद बहुत उदास हूँ, मैं कहा क्या यार, अब आप लोग भी कहेंगे अरे सीडी नहीं मिली तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, क्या बुरा है, नहीं वो फील नहीं आता ना, वो जो फिजिकल सीडी ओन करने का जो फील है, इट्स लाइक अ कलेक्टिबल एंड यू लव इट। मैं अपनी गेम की सीडीज को बहुत प्यार से, बहुत संजो के रखता हूँ, मुझे बहुत जरूरी हो जाता है वो लेना। इसके ऊपर बयान देते हुए बहुत बवाल हुआ है, और अभी जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA के और रेड डेड रिडेम्पशन के डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस बारे में आगे की बात करी है, एक सैन डिएगो में एक कॉमिक कॉन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, और बड़ा ही अजीब सा उन्होंने बयान दिया, वो कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली कोट कर देता हूँ, I don't know what I care, but if people want that, I think companies should provide it. अरे तो तुम provide करते ना पहले, समझ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मुझे physical CDs या digital से कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, पहली बात तो ये अजीब सी लाइन है, paradoxical चीज है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कंपनी देना चाहती है वो दे, पर आगे कहते हैं but I don't know what I personally care. अरे भाई तुमको care करना पड़ेगा, personally नहीं है मामला, it is out there. You are the guys who are pushing physical or digital copies. तो ये थोड़ा सा hurtful है, because मतलब clear उसकी उम्मीद थी मुझे, और इनकी वजह से हो ही रहा है कि बाकी consoles जो हैं, Xbox है, उन्होंने भी कह दिया कि वो भी आने वाले वक्त में physical CDs को eliminate कर देंगे, which is a very sad story. But let's see what happens, because this is going to happen eventually. पर ये कितना होगा, किस तरीके से आगे तक जाएगी ये बात, it's up to you. Gamers and myself, all the best. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आ जाइएगा जरूर जरूर, FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो दोहा वाला कबीर के ABIR स्पेलिंग रहेगी .FM 107, फाइंड मी ऑन सोशल्स, एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से ले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
6: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
5: गेम ऑन,
6: वॉल्यूम अप,
5: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1

0: बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दिल से देसी।
2: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107 विद सफा। साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, एक ऐसी जगह सुकून हो, पॉजिटिविटी हो, और जहां आने वाला हर मेहमान कहे, भाई वाह क्या तो माशाल्लाह प्यारा घर है। देखें, घर को डेकोरेट करना हम सबको पसंद होता है। कभी नए कर्टन्स लगाते हैं, कभी नए कुशन्स रखते हैं, कभी खूबसूरत शो पीसेस भी हम ऐड करते हैं, और कभी कभी तो फर्नीचर भी चेंज करने का मूड बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर को ब्यूटीफुल बनाने की इस रेस में हम एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं एक ऐसे सिंपल आइडिया की जो आपके घर को भी स्टाइलिश बना सकता है और नेचर का भी ख्याल रख सकता है। तो भाई, हमारा आज का इको फ्रेंडली का टॉपिक है होम डेकोर, यानी अपने घर की सजावट एनवायरनमेंट के साथ, दोस्ती के साथ। साथियों देखें, अक्सर हम घर की डेकोरेशन के लिए नए नए आइटम्स खरीदते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई अब जो है ना हमारे घर का लुक चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी डेकोरेशन आइटम्स प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होते। सोचिए, एक प्लास्टिक का शोपीस जो है वो कुछ महीने में घर में अच्छा लगता है, कुछ महीने, लेकिन जब वो पुराना हो जाए तो वो कहां जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, कचरे में। इसी तरह जब हम पुराना फर्नीचर फेंक कर नया फर्नीचर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, वुड, एनर्जी और दूसरे तीसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके चीजें नई बनाई जा सकती हैं। अगर हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करेंगे तो भाई वेस्ट भी तो ज्यादा बढ़ेगा ना। अच्छा, एक और मसला ये है कि ओवर डेकोरेशन भी हो जाती है कभी कभी। कभी कभी हम घर को इतनी सारी चीजों से भर देते हैं, सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी कहीं खो जाती है। देखिए, इसमें ना सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो भाई, अब आप पूछेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक छोटा सा इको स्विच। भाई सबसे पहले बाय लेस, चूज वाइजली एंड रीयूज मोर। यानी हर नई चीज का खरीदना जरूरी नहीं होता। नो नो नो नो नो नो नो, आप अपनी पुरानी चीजों को

0: नए अंदाज में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी लकड़ी की चेयर जो होती हैं, वुडन चेयर जो होती हैं, उनको आप रीपेंट करके एक ब्यूटीफुल कॉर्नर बना सकते हैं। पुरानी ग्लास बॉटल्स को डेकोरेट करके फ्लावर वास बन सकता है भाई। पुरानी जार्स को स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं उनकी तरह आप इस्तेमाल करें। मैं भी यही करती हूँ। पुराने कुशन कवर्स या टेबल रनर्स बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने कर देखा है और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। और अगर आप डेकोरेशन के लिए कुछ नया लेना चाहते हैं तो नेचुरल मटेरियल्स को चूज करें ना, जैसे कि बैम्बू आइटम्स हो गए, वो डेकोरेशन हो गई, कॉटन फैब्रिक्स हो गए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, या इंडोर प्लांट, वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखें, प्लांट्स जो होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, वो घर की ब्यूटी भी बढ़ाते हैं और एक फ्रेश सी फीलिंग भी देते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, इको फ्रेंडली घर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका घर बिल्कुल प्लेन और बोरिंग सा लगे, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस रखना। चलिए भाई, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल दुनिया भर में बहुत से लोग घरों में सस्टेनेबल डेकोरेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय उसे रीस्टोर कर लेती हैं। एक पुरानी वुडन टेबल जो होती है उसको अगर पॉलिश करके बिल्कुल नया लुक दिया जाए तो वो अच्छी खासी दिखती है। कई लोग अपनी बैल्कनी या लिविंग रूम में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाते हैं जहाँ प्लांट्स, रिसाइकल पॉट्स और नेचुरल डेकोरेशन होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी पुरानी चीजें ही घर को सबसे ज्यादा स्पेशल बना देती हैं, क्योंकि हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी होती है भाई। दादी का पुराना वुडन बॉक्स, पुरानी फैमिली फोटोज के फ्रेम्स या हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स, ये सिर्फ चीजें नहीं होते, ये यादें भी होती हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगर आप अपने घर में एक ऐसी चीज ढूंढें जो आप रिप्लेस कर सकते हैं तो जरा सोचिए वो क्या होगी, और खुद से एक सवाल करें, क्या मैं इस चीज को फेंकने के बजाय दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। हो सकता है पुरानी जार की एक बॉटल हो जो कि एक ब्यूटीफुल प्लांट पॉट बन जाए। हो सकता है एक पुरानी चेयर जिसे आप रेनोवेट करें तो भाई वो एक फेवरेट कॉर्नर बन जाए। और हमें जरूर बताएं आपके घर की वो कौन सी चीज है, या कहूँ के पुरानी चीज है, जो आज भी आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, खूबसूरत घर वो नहीं जहाँ सब कुछ नया हो, बल्कि वो है जहाँ हर चीज की कदर हो। छोटी छोटी आदतें बदलें साथियों, और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अल मुदाका के बारे में, जो कतर चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेस में एक बहुत ही बड़ा नाम है और अहम शख्सियत समझे जाते हैं। मोहम्मद अल मुदाका ने कतर में चेस के फरोग के लिए काबिल तारीफ काम किया है और इस गेम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनकी क्यादत में कतर चेस एसोसिएशन ने ना सिर्फ लोकल ट्रेंड्स को बेहतर बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कतर का नाम रोशन किया। कतर में मुनक़द होने वाली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को दुनिया भर से सराहा गया, जो अल मुदाका की प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के वजह से सबूत। मोहम्मद अल मुदाका PDA यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अहदे पर भी फाइज हैं। इस जिम्मेदारी के जरिए वो दुनिया भर में शतरंज को प्रमोट करने, नए ममालिक तक गेम को फैलाने और यंग प्लेयर्स को मौका देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा एशिया में शतरंज के मुस्तकबिल पर जोर दिया है और रीजनल डेवलपमेंट को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है। अल मुदाका का मानना है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कतर की शिरकत खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उन्हें ग्लोबल एक्सपीरियंस हासिल होता है। दोस्तों, मोहम्मद अल मुदाका आज कतर स्पोर्ट्स लीडरशिप की एक रोशन मिसाल है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। देखिए, आज की दुनिया में ना सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इसका मतलब है कि हर इंसान को हर वक्त सेफ, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो। देखो, आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो गजा है उसकी डिमांड बढ़ेगी। और सवाल ये होगा कि क्या सारे जितने लोग हैं सबको उस तरह से फूड अवेलेबल होगा कि नहीं। सवाल ये भी है कि कितने ज्यादा लोगों के लिए फूड का इंतजाम कैसे किया जाएगा, जबकि आप और हम जानते हैं कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें इस डिमांड को भी फुलफिल है। शायद इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत जरूरी हो गया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या। दोस्तों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद है ऐसी फार्मिंग जो कि जमीन, पानी और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाए बगैर फूड प्रोड्यूस करे। और इसका मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरा करना नहीं है, बल्कि

0: जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को महफूज रखना है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग जमीन को फितरी तरीके से यूज करते थे, लेकिन वक्त के साथ फार्मिंग में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और देखा जाए तो एक्सेसिव वाटर यूज बढ़ गया है। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं। जमीन की फर्टिलिटी कम हुई है, पानी जाया हो रहा है या होता है, और फिर पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। आज सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जाती है, और सस्टेनेबल फार्मिंग का फोकस ये है कि हम कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करके ज्यादा और बेहतर फूड प्रोड्यूस करें। डियर फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी और एनर्जी बचाई जा सके। वैसे फूड वेस्ट भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में लाखों टन खाना रोजाना वेस्ट होता है। बहुत से लोग भूख का सामना करते हैं और भूखे सो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे घरों में खाना जाया हो जाता है। अगर हम सिर्फ अपना फूड वेस्ट कम करते हैं तो शायद हम फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। हर इंसान इस मिशन का हिस्सा बन सकता है। घर में उतना ही खाना आप खरीदिए जितने की आपको जरूरत है। वहीं पर जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनको रीयूज करना और फूड को सही तरीके से स्टोर करना छोटी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कदम है। वहीं वाटर कंजर्वेशन भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अहम हिस्सा है। फार्मिंग दुनिया की पानी का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करती है। अगर पानी का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फ्यूचर में पानी की कमी पैदा हो सकती है। इसीलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का यूज बहुत जरूरी है। देखिए, आप और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है। फिर चाहे एक्सट्रीम हीट हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ये सारी चीजें क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं। फार्मर्स के लिए नई टेक्निक्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की जरूरत है ताकि फूड प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर हो। कतर जैसे ममालिक में फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए लोकल फार्मिंग और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। इससे इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंडेंसी जो है वतन की कम हो रही है और लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मर्स की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हो, बिजनेसेस हो, कंज्यूमर्स हो, सबको मिलकर काम करना होगा। ऐसे स्कूल्स में भी अब देखा जाए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटीज में एजुकेशन कैंपेन्स भी जो है वो चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर का जो फूड सिस्टम है वो स्मार्ट और सस्टेनेबल होगा, होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर इंसान को हेल्दी फूड मिल सके और एनवायरमेंट भी महफूज रहे। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि दोस्तों, फूड सिक्योरिटी सिर्फ खाने का मसला नहीं है, ये हेल्थ का भी मसला है, ये इकोनॉमी का भी मसला है, और शायद सस्टेनेबल फ्यूचर का एक बड़ा मसला। अगर हम आज सही फैसले करेंगे तो कल की नस्लें भी बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगी। कल दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूंगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे

0: लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
1: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि इस झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
6: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हमें से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी दिली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिकराम, आज का मौजू है बच्चों से मोहब्बत का इजहार करना और उन्हें बोसा देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करें कि कुछ देहाती आराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप लोग अपने बच्चों को बोसा देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो हैरान होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, हम तो अपने बच्चों को बोसा नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों से रहमत निकाल दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तबलीकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गोद में लेते, उन्हें सीने से लगाते, बोसा देते और उनके साथ खेलते भी थे। एक मरतबा किसी सहाबी ने अर्ज किया, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। सामिन किराम, आज बहुत से बच्चे वालिदैन से माली आसाइश तो हासिल कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत के दो बोल नहीं सुन पाते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तालीम ये है कि मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। एक बोसा, एक मुस्कराहट, एक दुआ, ये सब बच्चों के लिए ऐसी नेमतें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर मंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट

0: मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
1: फजील के साथ
0: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक की, मगर ये कि बहुत से जो बालिग अफराद हैं अपनी मसरूफ जिंदगी, रात की ड्यूटी या थकन की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। अगरचे वक्ती तौर पर वो एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बालिग अफराद में ज्यादा कैफीन दिल की धड़कन को तेज कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उससे, और इसी तरह वो बहुत ही बेचैनी या फिर घबराहट का शिकार भी हो सकते हैं। बाज अफराद में सर दर्द और मेदे की शिकायत भी पैदा होती हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मुतासिर उससे होता है। बहुत से अफराद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बालिग अफराद

0: बुजुर्ग अफराद हों तो उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए एहतियात क्यों ज़रूरी है? तो इस उम्र में बहुत से अफराद पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, डायबिटीज़ या नींद के मसाइल का शिकार होते हैं, उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बुजुर्ग अफराद में कैफीन के असरात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे थकन, इसी तरह तवज्जो में कमी और मजमूई सेहत मुतासिर होती है। कुछ अफराद थकन दूर करने के लिए बार बार एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असल मसले का हल नहीं है। और अगर मुसलसल थकन महसूस हो रही हो तो उसकी वजूहत जानने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स को ही हम देखें और उन्हें ही हम इस्तेमाल करते चले जाएं। सेहतमंद तवानाई हासिल करने के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मुनासिब नींद लेनी बेहद ज़रूरी है। और इसी तरह से जो बैलेंस डाइट है, मतवाजन गिज़ा है, वो आप लीजिए। पानी का मुनासिब इस्तेमाल कीजिए, यानी 8 से 10 गिलास पानी जो है वो आप ज़रूर लीजिए। और बाकायदा एक्सरसाइज सबसे मुअसर तरीका है। याद रखिए कि एनर्जी ड्रिंक्स वक्ती आपको एक्टिव कर सकते हैं, चुस्ती तो दे सकती हैं, लेकिन तवील मुद्दत में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ही हकीकी तवानाई और तंदरुस्ती की जमानत है।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे टेनिस की तारीख के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम लीडरशिप, कंसिस्टेंसी और कामयाबी की मिसाल बन चुका है। यहाँ दोस्तों आज का रिकॉर्ड है रफाल नडाल के।

राफेल नडाल का 14th फ्रेंच ओपन टाइटल्स, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है और टेनिस की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। जहाँ दोस्तों टेनिस की दुनिया में कई अजीम खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तारीख में बस जाते हैं और राफेल नडाल उन्हीं चंद खिलाड़ियों में से एक हैं। जब भी फ्रेंच ओपन या रोलांग गारोस का जिक्र होता है, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो राफेल नडाल का होता है। स्पेन के इस लेजेंडरी खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में 14 टाइटल्स जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसे तोड़ना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी अब मौजूद हैं वो ज्यादातर नए खिलाड़ी हैं और एक ही जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वो जोकोविच हैं, लेकिन जोकोविच भी हमेशा से इतना ज्यादा चुस्त नजर नहीं आ रहे इन दिनों, और पिछले फ्रेंच ओपन में वो नाकामयाब रहे और सेकंड राउंड से ही बाहर हो गए थे। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर, और इस टाइटल के पीछे उनकी बेमिसाल कामयाबियां हैं। जहां पर भी क्ले कोर्ट हो, स्पेशली फ्रेंच ओपन तो क्ले कोर्ट में ही खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन के टूर्नामेंट में राफेल नडाल को रोकना मुश्किल ही लगता था हमेशा हर खिलाड़ी के लिए। ही वॉज अनडिफिटेड, ही वॉज इनवेंसिबल। क्ले कोर्ट पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी उनके सामने अक्सर बेबस नजर आए, चाहे वो रॉजर फेडरर क्यों ना हो, चाहे वो जोकोविच क्यों ना हो। फ्रेंच ओपन के 14 खिताब सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं दोस्तों, बल्कि टेनिस की तारीख का एक ऐसा चैप्टर है जो शायद कभी दोबारा ना लिखा जा सके। बात कर रहा है 2005 की। अच्छा, उस टाइम पहली मर्तबा राफेल नडाल फ्रेंच ओपन जीता, और उस वक्त नडाल सिर्फ 19 साल के थे और दुनिया को अपनी सलाहियतों का अंदाजा दिलाना शुरू ही किया था। अपने डेब्यू फ्रेंच ओपन में ही टाइटल जीतना किसी भी प्लेयर के लिए गैर मामूली बात होती है। नडाल ने फाइनल में मारियानो पुएर्टा को हराकर पहला रोलांग गारोस टाइटल अपने नाम किया, और इस जीत के बाद नडाल ने जो सिलसिला शुरू किया दोस्तों वो कई सालों तक जारी रहा। उन्होंने 2006, 2007 और 2008 में मुसलसल फ्रेंच ओपन जीतकर दुनिया को बता दिया कि क्ले कोर्ट पर उनका मुकाबला करना कितना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर लेजेंडरी एक राइवलरी की भी बात कर लूँ रॉजर फेडरर के साथ राफेल नडाल की, और फ्रेंच ओपन की तारीख नडाल और रॉजर फेडरर की राइवलरी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। रॉजर फेडरर को टेनिस की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है, लेकिन रोलांग गारोस में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल नडाल की वजह से ही पेश आई। ग्रास में रॉजर फेडरर वॉज अनबीटेबल, ग्रास कोर्ट में रॉजर फेडरर को हराना बड़ा मुश्किल होता था, वेरी क्लासी प्लेयर। 2006, 2007, 2008 के फ्रेंच ओपन फाइनल्स में नडाल ने फेडरर को शिकस्त दी। फेडरर हर सरफेस पर कामयाब थे, लेकिन क्ले कोर्ट पर नडाल की डोमिनेंस उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी रही। आखिरकार फिर ने 2009 में फ्रेंच ओपन टाइटल जीता जब नडाल टूर्नामेंट से पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। दैट वाज एन इजी वे आउट फॉर रॉजर फेडरर द स्विस माइस्ट्रो। एक ही टूर्नामेंट में बेमिसाल डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर बात करूँ, स्पोर्ट्स की दुनिया में किसी एक टूर्नामेंट पर इतनी लंबी मुद्दत तक हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल होता है। गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस, किसी भी खेल को देख लिया जाए इतनी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। नडाल ने फ्रेंच ओपन के टाइटल्स 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 19, 2020 और 2022 में जीते। ये 14 टाइटल्स किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर के सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं, और आज ये रिकॉर्ड स्टिल अनब्रोकन है। इससे पहले किसी ने भी किसी एक ग्रैंड स्लैम इवेंट में इतनी कामयाबी हासिल नहीं की थी। नडाल ने इस रिकॉर्ड को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि दूसरे प्लेयर्स के लिए उस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल नजर आता है। और यकीनन नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह हम कहते हैं। क्ले कोर्ट सरफेस पर पॉइंट्स लंबी रैलीज के जरिए जीते जाते हैं, और प्लेयर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिटनेस, पेशेंस और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। राफेल नडाल की गेम क्ले कोर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उनका हेवी टॉप स्पिन फोरहैंड, बेहतरीन मूवमेंट और कभी हार ना मानने वाली सोच

उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाती थी। अच्छा, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नदाल क्ले कोर्ट पर शायद टेनिस हिस्ट्री के सबसे डोमिनेंट एथलीट रहे हैं। उनका विनिंग परसेंटेज रोला गारो में 97% के करीब रहा, जो किसी भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए हैरतअंगेज है। जब नडाल की डोमिनेंस की बात होती है दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच का नाम भी जरूर आता है। सर्बियन सुपरस्टार उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो नडाल को फ्रेंच ओपन में हरा सके। ये जो ट्रॉयका है, ये जो ट्रायंगल है, सुपरस्टार्स के जो ट्रायंगल, उस टाइम में आज से 15 साल पहले ये तीनों खिलाड़ियों के दरमियान ही था। और ये जितने भी कॉम्पिटिशन टेनिस कॉम्पिटिशन होते थे, उसमें या तो नडाल वर्सेस रॉजर फेडरर या तो रॉजर फेडरर वर्सेस जोकोविच है जोकोविच वर्सेस नडाल, तो इन तीनों खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया है। जोकोविच ने नडाल को 2015 और 2021 के फ्रेंच ओपन में शिकस्त दी। खास तौर पर 2021 का सेमीफाइनल टेनिस हिस्ट्री के बेहतरीन मैचेस में शुमार किया जाता है। इसके बावजूद नडाल की ओवरऑल डोमिनेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास 14 टाइटल्स का बेमिसाल रिकॉर्ड मौजूद है। इक्का दुक्का हार तो चलता है, लेकिन वो जो डोमिनेंस को तोड़ने वाली बात होती है ना, वो किसी भी खिलाड़ी में नहीं, इतना दम नहीं था कि रफाल नडाल को तोड़ सके। एंड रफाल नडाल चट्टान की तरह हमेशा फ्रेंच ओपन के क्ले कोर्ट में हमेशा खड़ा रहा, और यू नो ही अलॉट द ट्रॉफीज एवरी टाइम 14 times, एवरी टाइम मतलब 14 times। वो भी सोच लीजिए कि आज की तारीख में मुश्किल है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, किसी भी टूर्नामेंट को मुसलसल जीतना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, नडाल के साथ ये भी था कि इंजरी प्रोन तो थे ही। नडाल के करियर का सबसे इंप्रेसिव पहलू ये है कि उन्होंने इतनी इंजरीज के बावजूद इतनी कामयाबी हासिल की। उनके घुटनों, पाँव और दूसरे जिस्मानी मसाइल ने कई मरतबा उनका करियर खतरे में डाला। कई दफ़ा एक्सपर्ट्स ने कहा कि नडाल शायद दोबारा अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस ना आ सकें, लेकिन हर मरतबा नडाल ने वापसी की और दुनिया को हैरान कर दिया। एंड दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ चैम्पियन। कितने स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं लोगों को शायद पता ना हो, मतलब देयर इज अ सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी भी हमेशा रहती है। ये दोस्तों, ये आप लोगों को भी याद होना है, और आप लोगों को पता भी है कि सक्सेस इतनी इजीली कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। इवन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत, मुसलसल हार्ड ट्रेनिंग, क्या क्या नहीं करना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी और इंडिविजुअल की बात कर लें। 2022 का फ्रेंच ओपन टाइटल इसका बेहतरीन सबूत था। इस टूर्नामेंट के दौरान भी नडाल फिटनेस इश्यूज का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी टाइटल जीतकर साबित किया कि चैंपियंस कभी हार नहीं मानते। या दोस्तों, नडाल के फ्रेंच ओपन रिकॉर्ड्स देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने रोला गारो में 110 से ज्यादा मैचेस जीते और सिर्फ चंद मुकाबलों में शिकस्त खाई। उनका विनिंग परसेंटेज टेनिस हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक है। कई सीजन्स में नडाल ने पूरा टूर्नामेंट बिना सेट हारे जीता। ये नंबर्स उनकी डोमिनेंस को बयां करने के लिए काफी हैं। अच्छा, दुनिया भर के टेनिस फैंस नडाल को सिर्फ उनकी जीतों की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से भी उनका एहतराम करते हैं। हर पॉइंट पर पूरी जान लगा देना, कभी हिम्मत न हारना और हमेशा ओपोनेंट से एहतराम करना नडाल की पहचान बनी। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और कई दूसरे लेजेंड्स भी नडाल की क्ले कोर्ट अचीवमेंट्स को टेनिस हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार करते हैं। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, आप अपने छोटे खिलाड़ी जो आप कम उम्र वाले होते हैं उनको आप डिसरेस्पेक्ट नहीं शो कर सकते। और यहाँ पे तो ये बात हो रही है कंटेम्प्रेरी खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही है। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इन्होंने हमेशा तारीफ ही की है ऑफ रफाल नडाल, स्पैनिश आर्माडा मैं यहाँ पे अगर कहूँगा तो मैं गलत नहीं हूँ। तो क्या ये रिकॉर्ड कभी टूट सकता है, क्वेश्चन ये भी हो, सवाल ये भी है कि क्या ये, हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नडाल का 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स का रिकॉर्ड कभी टूट सकेगा या नहीं। मौजूदा टेनिस जनरेशन को देखते हुए ये बहुत मुश्किल लगता है, दैट्स माई ओपिनियन। किसी प्लेयर को इस रिकॉर्ड तक पहुँचने के लिए कम अज कम 15 फ्रेंच ओपन जीतने होंगे। इसका मतलब है कि उसे लगभग 2/3 तक एक ही टूर्नामेंट में लगातार टॉप लेवल परफॉर्मेंस देनी होगी। और आज के टेनिस में कंडीशन पहले से ज्यादा सख्त है और प्लेयर्स के लिए इंजरीज से बचना भी मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए अक्सर

0: नदाल ने सिर्फ टाइटल्स नहीं जीते बल्कि टेनिस को नए स्टैंडर्ड्स दिए। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन नए प्लेयर्स के लिए मिसाल बन चुकी है। फ्रेंच ओपन के 14 टाइटल्स उनकी लेगेसी का सबसे रोशन हिस्सा हैं। जब भी टेनिस हिस्ट्री लिखी जाएगी, रोलर गारो और राफेल नडाल का नाम एक साथ लिया जाएगा। नडाल ने साबित किया कि टैलेंट के साथ मेहनत और जज्बा भी जरूरी होता है। उनका करियर हमें ये दर्स देता है कि मुश्किलात और इंजरीज के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है इंशाल्लाह। नतीजा, राफेल नडाल के 14 फ्रेंच ओपन टाइटल सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक्सेलेंस, डिटर्मिनेशन और ग्रेटनेस की मिसाल हैं। उन्होंने रोलर गारो को अपना फोर्ट बना दिया और लगभग दो दिहाइयों तक उस पर हुक्मरानी की। टेनिस की तारीख में कई अजीम चैंपियंस आए लेकिन फ्रेंच ओपन पर नडाल जैसी डोमिनेंस किसी ने नहीं दिखाई, इसीलिए उन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। उनका 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे अजीम रिकॉर्ड्स में शुमार होते हैं और मुमकिन है कि ये रिकॉर्ड आने वाले जनरेशन तक कायम रहे। राफेल नडाल का नाम दोस्तों हमेशा फ्रेंच ओपन के साथ जुड़ा रहेगा और उनके 14 टाइटल्स दुनिया भर के स्पोर्ट्स फैंस के लिए ग्रेटनेस की एक बेमिसाल एग्जाम्पल बनेंगे। लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले हमने जिक्र किया अबाउट राफेल नडाल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन टाइटल। अब दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें आज थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं एथलेटिक्स के जो रिकॉर्ड है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि किन के नाम है। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर का 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या दोस्तों, एथलेटिक्स की तारीख में सबसे मशहूर रिकॉर्ड में से एक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर का 100 मीटर स्प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है और अमेरिकन स्प्रिंटर ने उन्होंने ये 1988 में 10.49 सेकेंड्स का वक्त रिकॉर्ड कायम किया था। हैरत की बात यह है कि 35 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कोई भी फीमेल एथलीट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकी। फ्लोजो के नाम से मशहूर ग्रिफिथ जॉइनर अपनी रफ्तार और यूनिक स्टाइल की वजह से दुनिया भर में मकबूल हुई। आज भी उनका नाम विमेन स्प्रिंटिंग की तारीख में एक लेजेंड के तौर पर याद किया जाता है और उनका रिकॉर्ड एथलेटिक्स का सबसे मुश्किल चैलेंज माना जाता है। Now let's move on to the football pitch and world record goal scoring का जो फीट है वो किसके नाम है? फिलहाल मिरोस्लाव क्लोजे के नाम है और मिरोस्लाव क्लोजे को अभी हाल ही में लियोनल मेसी ने उनको इक्वल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज ने सबसे ज्यादा गोल्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। क्लोजे ने 4 वर्ल्ड कप्स में शिरकत करते हुए कुल 16 गोल स्कोर किए। उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील के रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा और टूर्नामेंट के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए। क्लोजे अपनी पोजीशनिंग, हेडिंग और फिनिशिंग के लिए मशहूर थे। उनका ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में एक खास मकाम रखता है। हर नई जनरेशन के स्ट्राइकर्स के लिए 16 वर्ल्ड कप गोल्स का रिकॉर्ड एक बड़ा चैलेंज हमेशा से बना हुआ है। दोस्तों, फुटबॉल के बारे में बात तो हो गई थी, एक रिकॉर्ड जो है पहले मिरोस्लाव क्लोजे के बारे में जिक्र किया था। अब एक और एक थ्रिलिंग, एक एक्साइटिंग फुटबॉलर के बारे में अगर मैं बना करूं तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर, ये शो जो है अधूरा ही रह जाएगा। तो बात हो रही है लामिन यामाल के बारे में। या दोस्तों, लामिन यामाल इस बहुत ही होनहार, टैलेंटेड, हुनरमंद, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स जो आने वाले टाइम में ही इज़ गोइंग टू एम्यूलेट कई रिकॉर्ड्स। लामिन यामाल सिर्फ 18 साल के और इसी 18 साल की एज में उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेलते हुए कई ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े, कई ऐसे परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया और इससे लोगों को साफ लग गया, स्पोर्ट्स फैंस एंड फुटबॉल फैंस को लगने लग गया कि मे बी ही इज़ द नेक्स्ट मेसी। वेल, अभी नेक्स्ट मेसी है या नेक्स्ट रोनाल्डो है ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, बार्सिलोना में नंबर 10

शर्ट जो है उनको उन्हें ही दिया गया था आफ्टर मेसी के बाद. एंड दैट्स हाउ लामिन यामाल हैज बिकम यू नो ऑब्वियसली एट दिस यंग एज लार्जर देन लाइफ पिक्चर एट बार्सिलोना फुटबॉल टीम. अच्छा अभी हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक ग्रुप मैच में लामिन यामाल ने स्पेन के लिए खेलते हुए उन्होंने एक गोल स्कोर किया. एंड लामिन यामाल का ये फर्स्ट मेडन वर्ल्ड कप में मेडन गोल, यानी पहली मर्तबा उन्होंने वर्ल्ड कप के मैदान पर वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पर एक गोल किया. दैट इज अ हिस्ट्री, एक तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, एक तरह से एक तारीखी गोल रहा है अगेंस्ट सऊदी अरब. उसका रीजन, उसकी वजह यह है कि सबसे यंगेस्ट, अगर पेले के बाद अगर बात करूं, पेले एट द एज ऑफ 17 प्लस 1958 के वर्ल्ड कप में पेले ने यंगेस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड जो है वो पेले है. लेकिन अगर पेले के बाद अगर कोई सेकेंड यंगेस्ट गोल स्कोरर अगर कोई रहा है या बना है तो ये लामिन यामाल है. लामिन यामाल का ये पहला मैच था क्योंकि फर्स्ट मैच जो है इंजरी की वजह से वो स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं थे. तो ये उन्होंने स्टार्टिंग लाइनअप में थे और उन्होंने मैदान में उतरते ही एक्चुअली सऊदी अरब के केस में 10th मिनट गोल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया. और ये रिकॉर्ड ये है कि यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर हिम और फॉर द स्पेन टीम एंड फॉर द वर्ल्ड कप रिकॉर्ड. सेकेंड यंगेस्ट स्कोरर आफ्टर पेले. पेले ने 1958 में, जैसे मैंने बताया 1958 में जब स्वीडन में वर्ल्ड कप मुनाकिद हुआ था तो तब पेले साहब ने गोल करके ही बिकेम द यंगेस्ट गोल स्कोरर और आज भी वो रिकॉर्ड है. और यहाँ पे लामिन यामाल इन द मॉडर्न फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में लामिन यामाल बिकम्स द सेकंड यंगेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर अ गोल फॉर हिज कंट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गोल्फ कोर्स एंड जहां पर आज हम देखेंगे जैक निकलॉस के 18 मेजर टाइटल्स का रिकॉर्ड कैसे हुआ. गोल्फ की दुनिया में जैक निकलॉस का 18 मेजर चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड आज भी सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है. अमेरिकन गोल्फर ने अपने करियर के दौरान मास्टर्स, यूएस ओपन, द ओपन चैंपियनशिप और पीजे चैंपियनशिप मिलाकर 18 मेजर टाइटल्स हासिल किए. उनकी कंसिस्टेंसी और प्रेशर में परफॉर्मेंस करने की सलाहियत ने उन्हें गोल्फ हिस्ट्री का अजीम तरीन प्लेयर बना दिया. कई मॉडर्न गोल्फर्स ने इस रिकॉर्ड के करीब आने की कोशिश तो की लेकिन अब तक कोई भी उन्हें पार नहीं कर सका. और इसी वजह से जैक निकलॉस को गोल्फ का गोल्डन बेयर और एक लेजेंड तस्लीम किया जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द रेसिंग ट्रैक और बात होगी मोटर स्पोर्ट्स की. और मोटर स्पोर्ट्स में वैलेंटिनो रॉसी के 89 प्रीमियर क्लास विंस के बारे में आज हम बात करेंगे. मोटर स्पोर्ट्स में वैलेंटिनो रॉसी का मोटो जीपी प्रीमियर क्लास में 89 रेस विंस का रिकॉर्ड बहुत अहमियत रखता है. इस इटालियन राइडर ने अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स और कंसिस्टेंसी के जरिए सालों तक मोटो जीपी पर हुक्मरानी की. डोमिनेंट यू नो रॉसी ने दुनिया भर में मोटोस्पोर्ट को मकबूल बनाने में भी बड़ा किरदार अदा किया. उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और थ्रिलिंग रेसेस ने लाखों फैंस को मुतासिर किया. 89 प्रीमियर क्लास विक्ट्रीज के साथ रॉसी मोटो जीपी हिस्ट्री के सबसे कामयाब राइडर्स में शुमार होते हैं और उनका नाम मोटोस्पोर्ट की तारीख में हमेशा एक लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा. यहाँ दोस्तों क्रिकेट को लेकर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैंने सोचा कि आज क्रिकेट के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें इंक्लूड कर लूँ, शामिल कर लूँ. और ब्रायन लारा को कौन भूल सकता. वेस्ट इंडीज के मशहूर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा. और ब्रायन चार्ल्स लारा का 400 नॉट आउट वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी अनब्रोकन है. क्रिकेट की तारीख में वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का 400 नॉट आउट का टेस्ट रिकॉर्ड सबसे मशहूर बैटिंग रिकॉर्ड में से एक है. लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा में ये बेमिसाल इनिंग्स खेली थी. उन्होंने पूरे मैच में विकेट ना गवाकर 400 रन स्कोर किए जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन हैं. इस इनिंग्स में लारा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन, टेक्निक और पेशेंस का मुजाहरा किया. ये अजीम बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे लेकिन अब तक कोई भी इसे तोड़ नहीं सका. ब्रायन लारा का 400 नॉट आउट क्रिकेट हिस्ट्री का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू कैमल रेसिंग. कैमल रेसिंग अरब दुनिया की सबसे पुरानी और मकबूल स्पोर्ट्स में से एक है और इस खेल में कई अजीम कैमल्स ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया लेकिन बशायर को सबसे मशहूर रेसिंग कैमल्स में शुमार किया जाता है. दोस्तों बशायर ने गल्फ रीजन के कई बड़े मुकाबले जीतकर अपनी गैर मामूली रफ्तार और कंसिस्टेंसी

0: क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इसे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ न कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने कराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस नए किस्त में आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे मशहूर आलिम और अदीब शेख अली तंतावी रहमतुल्लाह के किस्से से। एक मरतबा वो किसी इल्मी व अदबी मजलिस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ निहायत रवानी, वसत और गहराई के साथ मुंतकिल होते जा रहे थे। एक तलब इल्म ने हैरत से पूछा, शेख आप तकरीबन हर मौजू पर इतनी आसानी से कैसे गुफ्तगू कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जब से शऊर संभाला कई दिहाइयों तक रोजाना सैकड़ों सफहात पढ़ने का मामूल रहा है।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए मौजूद थे। एक कम उम्र लड़की तेजी से आई और खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ रोक लिया। फिर एक अराबी आया और उसने भी जल्दी से हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ भी थाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि शैतान इस खाने को अपने लिए हलाल करने की कोशिश कर रहा था, पहले इस लड़की के जरिए और फिर इस अराबी के जरिए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया था। इसी तरह सामिन किराम, अहादीस में इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौके पर शैतान के असर का जिक्र मिलता है। नींद के वक्त, नमाज के वक्त, वजू के बारे में वसवसों में, मस्जिद की तरफ जाते हुए, इबादत के दौरान तवज्जो हटाने में, मियाँ बीवी के ताल्लुक के वक्त भी शैतान से हिफाजत की दुआ सिखाई गई है। ये सब इस बात की निशानी है कि शैतान इंसानी ज़िंदगी के हाशिए पर नहीं बल्कि मुसलसल मौका की तलाश में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान में खून की गर्दिश की तरह गर्दिश करता है। शैतान आमतौर पर इंसान को एक ही कदम में बड़ी तबाही तक नहीं ले जाता, उसके कई स्टेज होते हैं। पहले वो ये चाहता है कि इंसान शिर्क कुफर में मुबतला हो, अगर इसमें कामयाब ना हो तो कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है, अगर बड़ी बुराई मुमकिन ना हो तो सगीरा गुनाहों को मामूल बनाता है, अगर इंसान उनसे भी बचता है तो उसे बिदअत, इफरात, यतीन में किसी ऐसे गैर मुश्तरीकों में उलझाने की कोशिश करता है, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो उसे मुबाह कामों में इस कदर मसरूफ कर देता है कि अहम आमाल के लिए वक्त बाकी न रहे, और अगर इंसान मुबाहात में भी वाजन हो तो फिर उसे अफजल अमल से हटाकर कम फजीलत वाले काम में उलझा देता है। एक शख्स अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुरा भला कह रहा था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु खामोश रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराते रहे, लेकिन जब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब देना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चले गए। बाद में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों तशरीफ ले गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये था कि जब तक तुम खामोश थे एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुमने खुद जवाब देना शुरू किया तो शैतान आ गया और मैं ऐसी मजलिस पर न बैठा जहाँ शैतान मौजूद हो। समझ कराम, हम तो सिर्फ एक ज़ाहरी मंजर देखते हैं कि एक शख्स ने गाली दी, दूसरे ने जवाब दिया, मगर नबवी बसीरत हमें ये बताती है कि बाज़ रद्द अमल के पीछे एक गैबी डायमेंशन भी होता है। खामोशी के साथ फरिश्तों की तायीद हो सकती है, गुस्से में जवाब देते ही शैतान फिजा को मजीद खराब कर सकता है। इसलिए गुस्से के वक्त सिर्फ ये न सोचें मैं क्या जवाब दूं, ये भी सोचें इस लम्हे में मेरे करीब रहमत का माहौल है या शैतान का, मेरा जवाब मसला हल करेगा या आग बढ़ाएगा। ये सोच इंसान के बहुत से रवैयों को बदल सकती है। अब तक हमारे सामने ताल्लुकात की जो तरतीब आई है, एक तो अल्लाह के साथ ताल्लुक उबूदियत की बुनियाद पर, अवलाद के साथ ताल्लुक तस्किया की बुनियाद पर, दूसरों के साथ ताल्लुक अदल और फजल की बुनियाद पर, शैतान के साथ ताल्लुक दुश्मनी की बुनियाद पर, और अब पांचवा ताल्लुक है हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है, वतन के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। वतन के साथ ताल्लुक की बुनियाद है वाबस्तगी और सदाराना ताल्लुक। ये ऐसा ताल्लुक नहीं कि इंसान सिर्फ वतन के आगोश में पनाह ले, उससे फवायद हासिल करे और बदले में कुछ न दे। ये सिर्फ तहफ्फुज़ का रिश्ता नहीं, हकीकी ताल्लुक तो ये है कि मैं जिस वतन का हिस्सा हूँ उसकी भलाई मेरी जिम्मेदारी है, उसकी इस्लाह, खिदमत, अमन, इल्म और तरक्की में मेरा भी हिस्सा है। बाज़ लोगों का ताल्लुक वतन से इस हद तक होता है कि मुझे क्या मिला, मुझे मुलाजमत मिली या नहीं, मुझे सहूलत मिली या नहीं, मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा या नहीं, अगर फ़ायदा मिले तो खुश, न मिले तो नाराज़। जबकि बाज़ का ताल्लुक वतन से बच्चों जैसा है कि इंसान वतन को माँ बाप की तरह समझता है, जो उसकी हर मुश्किल हल करे, वतन मुझे तालीम दे, वतन मुझे मुलाजमत दे, वतन मेरी हर नाकामी की तलाफी करे, वतन मेरे तमाम फैसलों और ज़रूरियात का जिम्मेदार हो। ये दरअसल एक डिपेंडेंट मेंटेलिटी है। हकीकी शहरी सिर्फ ये नहीं पूछता कि वतन ने मुझे क्या दिया, वो ये भी पूछता है मैं वतन को क्या दे सकता हूँ, मेरा इल्म कहाँ काम आ सकता है, मेरा अखलाक माशरे को कैसे बेहतर बना सकता है। इस ताल्लुक को हीरोइक रिलेशनशिप कहा जा सकता है। वो सिर्फ लेने वाला नहीं देने वाला होता है। वतन के साथ ताल्लुक ना ऐसा हो कि इंसान अपनी पूरी अकल, ज़मीर और दीनी उसूल वतन के नाम पर ख़त्म कर दे, और ना ऐसा हो कि वतन को सिर्फ अपनी हिफाजत और फ़ायदे का जरिया समझे, बल्कि इस ताल्लुक का मतलब ये होगा वफादारी, जिम्मेदारी, इस्लाह, खिदमत और उसूली शऊर, यानी एक मुतवाज़न।

अमल का अमल हिसाब होगा, हर नीयत सामने आएगी, हर हक वापस दिलाया जाएगा, हर जुल्म का फैसला होगा। जब ये यकीन में जिंदा हो तो इंसान के बहुत से जज्बात और फैसले मुनज़्ज़म हो जाते हैं। जब इंसान समझता है कि यही दुनिया आखिरी मौका है तो वह हर हक अभी और हर कीमत पर लेना चाहता है। वो कहता है कि अगर मैंने उसे अभी जवाब न दिया तो मेरा हक ज़ाय हो जाएगा, अगर मैंने बदला न लिया तो ये बच निकलेगा। लेकिन इस पर यकीन रखने वाला जानता है कि मेरा हक अल्लाह के पास महफूज है, मैं माफ़ करूँ तो अजर मिल सकता है, मैं सब्र करूँ तो ये खामोशी ज़ाय नहीं होगी। कुरान अहले ईमान की एक अजीम कैफियत बयान करता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे न बदला चाहते हैं न शुक्रिया। सामने किराम, ये सोच इंसान को लोगों की नाशुक्री से आज़ाद करती है। आप किसी की मदद करते हैं वो शुक्रिया नहीं कहता, आपके काम आते हैं वो याद नहीं रखता, आपने ताल्लुक निभाया वो बदले में वैसा नहीं करता। अगर आपका अजर लोगों के पास था तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर अजर अल्लाह के पास था तो आपके दिल में सुकून रहेगा। इंसान जितनी ज़्यादा तवक्कुआत लोगों से बांधता है उतने ही ज़्यादा सदमात उठाता है। अल्लाह फरमाता है, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। इस आयत में एक मुकम्मल दाखिली निज़ाम बयान हुआ है। एक तरफ इंसान जो अपने रब के सामने खड़े होने को याद करता है, दूसरी तरफ सेहत, इसी तरफ ख्वाहिश है। और इंसान अपने नफ्स से कहता है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, हर लज्जत जायज़ नहीं, हर मौका इख्तियार नहीं किया जाएगा। जब इंसान आखिरत को भूलता है तो नफ्स पर पाबंदी कम हो जाती है, फिर ख्वाहिश महज एक जज्बा नहीं रहती, फैसला साज बन जाती है। कुरान ऐसे शख्स का जिक्र करता है जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लेता है। अल्लाह फरमाता है, वला तुतिअ मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वतबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। उस शख्स की पैरवी न करो जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल पाया, जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की और जिसका मामला हद से गुजरा और बिखर गया। अब एक अहम बात समझने की है कि इन ताल्लुकात में से किसी एक में खराबी बाकी तमाम ताल्लुकात को मुतासर करती है। अल्लाह के साथ ताल्लुक कमज़ोर हो तो इंसान लोगों के साथ भी सही नहीं रह सकता। इसी तरह जो शख्स अपने नफ्स की तरबियत नहीं करता वो लोगों के साथ देर तक अच्छा मामला नहीं कर सकता। मजीद जब इंसान शैतान की मौजूदगी और उसकी चालों को भूल जाता है तो बहुत से रिश्ते मामूली बातों पर बिगड़ जाते हैं। इसी तरह वतन से जिस ताल्लुक का जिक्र हमने पहले है, अगर वतन के साथ ताल्लुक सिर्फ शिकायत और मफाद पर कायम हो तो इंसान हर वक्त मनफी रहता है। इसलिए किसी अरबी शायर ने खूब कहा है, जिसका मजमून ये है कि अगर अंधेरे में गुनाह का इरादा करे और नफ्स उसे बहकाए तो अल्लाह की निगाह से शर्म कर और अपने नफ्स से कह, जिसने अंधेरा पैदा किया है वो मुझे देख रहा है। सामने किराम, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये मेरा अमल नहीं था, जो कुछ इंसान ने किया होगा सब सामने होगा। अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिह वमन असा फअलैहा। जिसने नेक अमल किया अपने फ़ायदे के लिए किया और जिसने बुराई की अपने ही नुकसान के लिए की। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें तकवा ज़रूरी है वो अकीदा है, और इस अकीदे का सबसे बड़ा सुतून है तौहीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी कि इबादत की हर सूरत अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए। फिर तकवा का दूसरा पहलू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का रास्ता यही है। इसीलिए हर इबादत से पहले ये सवाल होना चाहिए, क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है? अगर जवाब हाँ है तो पूरी मोहब्बत से अमल करें, अगर नहीं तो इस सिलसिले में हमें मोहतात रहना चाहिए। सामने किराम, फिर उसके बाद नमाज का मरहला आता है, चूँकि क़्यामत के दिन सबसे पहले उसी का हिसाब होगा। नमाज हरकात और सकनात का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के सामने आजिज़ी और खुशू का नाम है। फिर नमाज का एक अहम तकाजा जमात भी है। कुरान करीम फरमाता है, वरकाउ मा राकईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज़ अदा करो।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अल मुदाका के बारे में, जो कतर चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इंटरनेशनल चेस में एक बहुत ही बड़ा नाम है और अहम शख्सियत समझे जाते हैं। मोहम्मद अल मुदाका ने कतर में चेस के फरोग के लिए काबिल तारीफ काम किया है और इस गेम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनकी क़यादत में कतर चेस एसोसिएशन ने न सिर्फ लोकल टूर्नामेंट्स को बेहतर बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कतर का नाम रोशन किया। कतर में मुनक़द होने वाली वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को दुनिया भर से सराहा गया, जो अल मुदाका की प्लानिंग और मैनेजमेंट स्किल्स के वजह से सबूत है। मोहम्मद अल मुदाका फीडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अहदे पर भी फायज हैं। इस जिम्मेदारी के जरिए वो दुनिया भर में शतरंज को प्रमोट करने, नए ममालिक तक गेम को फैलाने और यंग प्लेयर्स को मौका देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा एशिया में शतरंज के मुस्तकबिल पर जोर दिया है और रीजनल डेवलपमेंट को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया है। अल मुदाका का मानना है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कतर की शिरकत खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी हो कि से उन्हें ग्लोबल एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो मोहम्मद अल मुदाका आज कतर स्पोर्ट्स लीडरशिप की एक रोशन मिसाल है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरी विद आरजे सरवर मिर्जा। प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके

0: पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Aap sun rahe hain Health Check.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Listeners, aaj hum bahut hi ahem mauzu par baat karenge. बात हम कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक की, मगर ये कि बहुत से जो बालिग अफराद हैं अपनी मसरूफ जिंदगी, रात की ड्यूटी, यकन की वजह से एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। अगरचे वक्ती तौर पर वो एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को बहुत एक्ट महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बालिग अफराद में ज्यादा कैफीन दिल की धड़कन को तेज कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उससे, और इसी तरह वो बहुत ही बेचैनी या फिर घबराहट का शिकार भी हो सकते हैं। बाज़ अफराद में सर दर्द और मेदे की शिकायत भी पैदा होती हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मुतासिर उससे होता है। बहुत से अफराद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बालिग अफराद हों या बुजुर्ग अफराद हों, तो उनके लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए एहतियात क्यों ज़रूरी है, तो इस उम्र में बहुत से अफराद पहले से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, डायबिटीज़ या नींद के मसाइल का शिकार होते हैं, उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग अफराद में कैफीन के असरात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स नींद में खलल डाल सकते हैं, जिससे थकन, इसी तरह तवज्जो में कमी और मजमू सेहत मुतासिर होती है। कुछ अफराद थकन दूर करने के लिए बार बार एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये असल मसले का हल नहीं है। और अगर मुसलसल थकन महसूस हो रही हो तो उसकी वजूहत जानने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स को ही हम देखें और उन्हें ही हम इस्तेमाल करते चले जाएं। सेहतमंद तवानाई हासिल करने के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मुनासिब नींद लेनी बेहद ज़रूरी है, और इसी तरह से जो बैलेंस डाइट है, मतवाजन गिज़ा है, वो आप लीजिए, पानी का मुनासिब इस्तेमाल कीजिए, यानी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107 विद सफा। साथियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून हो, पॉजिटिविटी हो और जहाँ आने वाला हर मेहमान कहे भाई वाह क्या तो माशाल्लाह प्यारा घर है। देखें, घर को डेकोरेट करना हम सबको पसंद होता है। कभी नए कर्टन्स लगाते हैं, कभी नए कुशन्स रखते हैं, कभी खूबसूरत शो पीसेस भी हम ऐड करते हैं और कभी कभी तो फर्नीचर भी चेंज करने का मूड बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर को ब्यूटीफुल बनाने की इस रेस में हम एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए भाई, आज का इको स्विच में हम बात करने लगे हैं एक ऐसे सिंपल आइडिया की जो आपके घर को भी स्टाइलिश बना सकता है और नेचर का भी ख्याल रख सकता है। तो भाई, हमारा आज का इको फ्रेंडली का टॉपिक है होम डेकोर, यानी अपने घर की सजावट एनवायरनमेंट के साथ, दोस्ती के साथ। साथियों देखें, अक्सर हम घर की डेकोरेशन के लिए नए नए आइटम्स खरीदते हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब जो है ना हमारे घर का लुक चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी डेकोरेशन आइटम्स प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर नहीं होते। सोचिए, एक प्लास्टिक का शोपीस जो है वो कुछ महीने में घर में अच्छा लगता है, कुछ महीने, लेकिन जब वो पुराना हो जाए कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, कचरे में। इसी तरह जब हम पुराना फर्नीचर फेंक कर नया फर्नीचर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, वुड, एनर्जी और दूसरे तीसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके चीजें बनाई जा सकती हैं। अगर हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करेंगे तो भाई वेस्ट भी तो ज्यादा बढ़ेगा ना। अच्छा, एक और मसला ये है कि ओवर डेकोरेशन भी हो जाती है कभी कभी। कभी कभी हम घर को इतनी चीजों से भर देते हैं, सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी कहीं खो जाती है। देखिए, इसमें ना सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो भाई, अब आप पूछेंगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक छोटा सा इको स्विच। भाई सब पहले बाय लेस, चूज वाइजली एंड रीयूज मोर, यानी हर नई चीज का खरीदना जरूरी नहीं होता। नो नो नो नो

0: नो नो, आप अपनी पुरानी चीजों को नए अंदाज में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी लकड़ी की चेयर जो होती हैं, वुडन चेयर जो होती हैं, उनको आप रीपेंट करके एक ब्यूटीफुल कॉर्नर बना सकते हैं। पुरानी ग्लास बॉटल्स को डेकोरेट करके फ्लावर वास बन सकता है भाई। पुरानी जार्स को स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं उनकी तरह आप इस्तेमाल करें। मैं भी यही करती हूँ। पुराने कपड़ों से कुशन कवर्स या टेबल रनर्स बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने कर देखा है और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है। और अगर आप डेकोरेशन के लिए कुछ नया लेना चाहते हैं तो नेचुरल मटेरियल्स को चूज करें ना, जैसे कि बैम्बू आइटम्स हो गए, वो डेकोरेशन हो गई, कॉटन फैब्रिक्स हो गए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, या इंडोर प्लांट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखें, प्लांट्स जो होते हैं ना, जो पौधे, वो घर की ब्यूटी भी बढ़ाते हैं और एक फ्रेश सी फीलिंग भी देते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, इको फ्रेंडली घर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका घर बिल्कुल प्लेन और बोरिंग सा लगे, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस रखना। चलिए भाई, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल दुनिया भर में बहुत से लोग घरों में सस्टेनेबल डेकोरेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय उसे रीस्टोर कर लेती हैं। एक पुरानी वुडन टेबल होती है, उसको अगर पॉलिश करके बिल्कुल नया लुक दे दिया जाए तो वो अच्छी खासी दिखती है। कई लोग अपनी बैल्कनी या लिविंग रूम में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाते हैं, जहाँ प्लांट्स, रिसाइकल पॉट्स और नेचुरल डेकोरेशन होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कभी कभी पुरानी चीजें ही घर को सबसे ज्यादा स्पेशल बना देती हैं, क्योंकि हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी होती है भाई। दादी का पुराना वुडन बॉक्स, पुरानी फैमिली फोटोज के फ्रेम्स या हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स, ये सिर्फ चीजें नहीं होते, ये यादें भी होती हैं। तो साथियों, आज का इको चैलेंज आपके लिए ये है कि अगर आप अपने घर में एक ऐसी चीज ढूंढें जो आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो जरा सोचिए वो क्या होगी और खुद से एक सवाल करें, क्या मैं इस चीज को फेंकने के बजाय दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। हो सकता है एक पुरानी जार की एक बॉटल हो जो कि एक ब्यूटीफुल प्लांट पॉट बन जाए। हो सकता है एक पुरानी चेयर जिसे आप रेनोवेट करें तो भाई वो एक फेवरेट कॉर्नर बन जाए। और हमें जरूर बताएं आपके घर की वो कौन सी चीज है, या कहूं कि पुरानी चीज है, जो आज भी आपके लिए बहुत स्पेशल है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, खूबसूरत घर वो नहीं जहां सब कुछ नया हो, बल्कि वो है जहां हर चीज की कदर हो। छोटी छोटी आदतें बदलें साथियों, और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविशन और आज का टॉपिक है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत इस्लाम में बहुत बुलंद मकाम रखती है। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बिना किसी शर्त के हम पर अपना वक्त, मेहनत और मोहब्बत लगाई। उनकी खिदमत करना सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि जन्नत तक पहुंचने का जरिया भी है। अक्सर हम अपनी मसरूफ जिंदगी में उनकी छोटी छोटी जरूरियात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी मदद, एक प्यारा सा लफ्ज या उनके साथ वक्त गुजारना उनके लिए बहुत कीमती होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि वालिदैन से नरमी से बात करें, उनकी बात सुने और उनका दिल कभी ना दुखाएं। उनकी दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत होती है। आज का अमल यह है कि अपने वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनका हाल पूछें और उनके लिए दिल से दुआ करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इसे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमत रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आर नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। आज की दुनिया में ना सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इसका मतलब है कि हर इंसान को हर वक्त सेफ, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो। देखो, आने वाले सालों में दुनिया की बड़ी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो गजा है उसकी डिमांड बढ़ेगी। सवाल ये होगा कि क्या सारे जितने लोग हैं सबको उस तरह से फूड अवेलेबल होगा कि नहीं। सवाल ये भी है कि कितने ज्यादा लोगों के लिए फूड का इंतजाम कैसे किया जाएगा, जबकि आप और हम जानते हैं कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें इस डिमांड को भी फुलफिल करना है। शायद इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत जरूरी हो गया है। अब चलिए समझ लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या। दोस्तों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद है ऐसी फार्मिंग जो कि जमीन, पानी और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाए बगैर फूड प्रोड्यूस करे। और इसका मकसद सिर्फ आज की जरूरत पूरा करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को महफूज रखना है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग जमीन को फितरी तरीके से यूज करते थे, लेकिन वक्त के साथ फार्मिंग में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और देखा जाए तो एक्सेसिव वाटर यूज बढ़ गया है। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी पैदा हुए हैं। जमीन की फर्टिलिटी कम हुई है, पानी जाया हो रहा है या होता है, और फिर पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। आज सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जाती है, और सस्टेनेबल फार्मिंग का फोकस ये है कि हम कम रिसोर्सेस इस्तेमाल करके ज्यादा और बेहतर फूड प्रोड्यूस करें। डियर फार्मर्स जो है वो ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पानी और एनर्जी बचाई जा सके। वैसे फूड वेस्ट भी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में लाखों टन खाना रोजाना वेस्ट होता है,

0: भूख का सामना करते हैं और भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं या फिर घरों में खाना जाया हो जाता है अगर हम सिर्फ अपना फूड वेस्ट कम करते हैं तो शायद हम फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं या फूड सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं हर इंसान इस मिशन का हिस्सा बन सकता है घर में उतना ही खाना आप खरीदिए जितने की आपको जरूरत है वहीं पर जो लेफ्ट ओवर्स हैं उनको रीयूज करना फूड को सही तरीके से स्टोर करना छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट कदम है वहीं वाटर कंजर्वेशन भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक अहम हिस्सा है फार्मिंग दुनिया की पानी का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करती है अगर पानी का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फ्यूचर में पानी की कमी पैदा हो सकती है इसीलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का यूज बहुत जरूरी है देखिए आप और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है फिर चाहे एक्सट्रीम हीट हो सूखा हो बाढ़ हो ये सारी चीजें क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती हैं फार्मर्स के लिए नई टेक्निक्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की जरूरत है ताकि फूड प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर हो कतर जैसे ममालिक में फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए लोकल फार्मिंग और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है इससे इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंडेंसी जो है वो कतर की कम हो रही है और लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मर्स की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट हो बिजनेसेस हो कंज्यूमर्स हो सबको मिलकर काम करना होगा ऐसे स्कूल्स में भी अब देखा जाए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कम्युनिटीज में एजुकेशन कैंपेन्स भी जो है वो चलाए जाते हैं तो दोस्तों फ्यूचर जो फूड सिस्टम है वो स्मार्ट और सस्टेनेबल होगा होना चाहिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ हर इंसान को हेल्दी फूड मिल सके और इन्वायरमेंट भी महफूज रहे आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि दोस्तों फूड सिक्योरिटी सिर्फ खाने का मसला नहीं है ये हेल्थ का भी मसला है ये इकोनॉमी का भी मसला है और शायद सस्टेनेबल फ्यूचर का एक बड़ा मसला अगर हम आज सही फैसले लेंगे तो कल की नस्लें भी बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगी कल दोस्तों आज के लिए इतना ही कहूंगी अब नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: कानून हमें तहफ देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ
2: पुलिस और आवाम Every Monday 8 PM live only on FM 107 Dil Se Desi Dil Se Desi
3: Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। स्कैम
1: अलर्ट। दोस्तों, सस्ता एंटरटेनमेंट आपको बड़ा चूना लगा सकता है, आपके साथ बड़ा स्कैम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल आप सभी का, और मैं हूं फजील। इस हफ्ते लेकर आ गया हूं नए स्कैम का एक अलर्ट, एक नया फ्रॉड जो फ्रॉस्टर्स आपके साथ कर रहे हैं, आपके एंटरटेनमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे, हो सकता है आपको कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट या कॉमेडी फेस्टिवल या फिर आपको कुछ ऐसा देखना हो जो पैसे जहां पर लगते हों, जिसके लिए आपको टिकट्स लगती हों, और उसकी टिकट्स उस शहर में बहुत ज़्यादा महंगी हों, या फिर हो सकता है उस शहर में उस तरह का एंटरटेनिंग एक्ट ना होता हो और इस तरह का मौका आपके पास कम हो और उसकी टिकट्स बहुत जल्दी बिक जाएं, तो इस तरह के टिकट्स वाली चीज़ों पर स्कैमर्स की होती है नज़र। वैसे ये क्या है स्कैम, करते हैं इसके बारे में बात। दोस्तों, ये है चीप एंटरटेनिंग टिकट स्कैम, जहां पर एक बार, ये सच्ची घटना है, मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल था जहां पर एक शख्स को बहुत ही सस्ती टिकट मिल रही थी, और यहां आमतौर की जो टिकट होती है वो बहुत महंगी होती है। $300 की टिकट दिखी दो लोगों के लिए, और उसको लगा ये एक अच्छी डील होगी अगर मुझे इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल का मेलबर्न का ये टिकट मिल जाए तो। उसने उस बंदे से बात करी और ये जो मैसेज था उसके पास पहुंचा कहां से, सोशल मीडिया से। इस बंदे को लगा कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ये टिकट सस्ती इसलिए मिल रही है कि हो सकता है इसका अब जाने का मन ना हो, हो सकता कोई इमरजेंसी आ गई हो, इस वजह से हो सकता है सस्ते में ये दे रहा हो तो इससे ले लिया जाए। इसने कहा, यानी कि जिस बंदे को ये टिकट खरीदनी थी, इसने कहा कि भाई ऐसा करो कि मुझे आप ये टिकट दे दो और मैं आपको एक ऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर देता हूं। उसने इंसिस्ट किया कि एक काम करो, आप मुझे $300 भी मत दो, आप मुझे एक गिफ्ट कार्ड दे दो, और ये गिफ्ट कार्ड फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा चलता है। उसने $100 के 3 गिफ्ट कार्ड्स जो हैं वो खरीदा, और उसके बाद मिनटों के अंदर सारी डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल उस शख्स ने, इंफॉर्मेशन सारी जो है वो उस दूसरे बंदे को दे डाली। लेकिन यहां पर हुआ उसके साथ स्कैम। इसी के जस्ट बाद उसने सोशल मीडिया से उसे ब्लॉक किया, डिलीट किया, अनफ्रेंड करने के बाद उसने एक नया अकाउंट बनाया और फिर कहा कि $150 में आप ये टिकट मुझसे खरीद सकते हैं। उसने पिछला पैसा भी रिटर्न करने से सीधा सीधा मना कर दिया। तो वो जो दूसरा अकाउंट उसने बनाया वो एक बार फिर से उसे फंसाने के लिए बनाया था। एक बार ऑलरेडी वो गिफ्ट कार्ड देते हुए, 3 गिफ्ट कार्ड खरीदते हुए स्कैम उसके साथ हो चुका था। इस स्कैमर को लगा कि इसके साथ एक बार फिर से स्कैम किया जा सकता है, लेकिन स्कैमर को ये दूसरे शख्स जिसको टिकट खरीदनी थी उसने पकड़ लिया था कि ये वही शख्स है जो मुझे इस बार 2 टिकट $150 में दे रहा है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, किसी से गिफ्ट कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं। कई बार अक्सर लोग आपसे गिफ्ट कार्ड की जगह गेमिंग कार्ड खरीदने को कहते हैं, वो एक तरह का स्कैम ऐसा है कि आप उनसे गेमिंग कार्ड खरीद लेते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनका जो प्रॉफिट है उस गेमिंग कार्ड के थ्रू बन जाता है। ये पेमेंट मेथड वाला चीप ऑनलाइन एंटरटेनिंग स्कैम है, इसे आप प्लीज बहुत ज्यादा सीरियस लें और बचें। कैसे बच सकते हैं, अगर कोई भी आपसे गिफ्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट के बारे में बात करे तो बिल्कुल मना कर दीजिए। ऐसे थर्ड पार्टी ऐप के बारे में बात करें जो ऑथेंटिक नहीं है, जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उससे पेमेंट बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम भरोसा

0: करना शुरू करें और भरोसा तब करें जब फोन कर लें या फिर कोई ऐसा दोस्त जो आपका बड़ा करीबी है वो अगर बता दे कि भाई फला बंदे से मैंने खरीदा है, तो भरोसा करें। देखिए भरोसा करने के भी अपने एक तरीके हैं। आप किसी तीसरे कंट्री में दूसरे कंट्री में बैठे शख्स पे भरोसा आंख बंद करके बिल्कुल ना करें, उसे आजमाना बेहद जरूरी है। बचने का ये तरीका है कि ऑथोराइज्ड रिटेलर से आप टिकट खरीदें, सेफेस्ट जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करें और हमेशा इस तरह की ऑनलाइन परचेजिंग में कॉशियस रहें, खास तौर पे जब आप सोशल मीडिया से परचेज कर रहे हो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए इसी शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।

करने वाले थे। जालूत का कदोकामत और ताकत ऐसी थी कि बनी इसराइल की फौज उसका नाम सुनकर ही कांप जाती। जालूत ने ऐलान किया कि कोई एक मुझसे आकर मुकाबला करे, लेकिन बनी इसराइल के किसी भी सिपाही में हिम्मत ना हुई। तालूत ने ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को शिकस्त देगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा और उसे दरबार में आला मकाम दूंगा। उसी वक्त एक नौजवान चरवाहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। सबने हैरानी से देखा कि ये नौमर लड़का इतने बड़े पहलवान का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पे निकलता हूँ। मैंने बाप की बकरियों को शेर और रीत से बचाया है। अल्लाह ने मेरी मदद की, वही अल्लाह आज भी मेरी मदद करेगा। तालूत ने आबो जरार तलब दी, मगर आपने इस सब उतार दिया क्योंकि ये बोझ महसूस हो रहा था। आपने अपनी खुलैल और चंद पत्थर लिए और मैदान में निकल आए। जब जालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो हंसा और मजाक उड़ाया और कहा कि क्या तुम मेरे मुकाबले के लिए खेलने आए हो? मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पुरजोश अंदाज में कहा, तू तलवार और ढाल के साथ आया है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम के साथ आया हूँ जो तमाम जहानों का रब है। फिर आपने अपनी गुलैल में एक कंकरी डाली और अल्लाह के हुक्म से वो कंकरी सीधी जालूत के माथे पे लगी और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। जालूत की फौज भाग निकली और बनी इसराइल को फतह हासिल हुई। जालूत की हलाकत के बाद बनी इसराइल खुशी से झूम उठे। तालूत ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी और आपको दरबार का अहम मुशीर बना दिया। रफ्ता रफ्ता आपकी हिकमत, बहादुरी और इबादत गुजारी के चर्चे आम होने लगे। कुछ अरसे बाद जब तालूत जंग में मारे गए तो अवाम ने मुतफक्का तौर पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह मुंतखब किया। यूं आप एक ही वक्त में नबी भी थे और बादशाह भी। यह एजाज बहुत कम अंबिया को मिला है कि वो दीनी और दुनियावी दोनों क़यादतों के मालिक हों। कुरान मजीद में जिक्र है, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें बादशाही और हिकमत दी और उन्हें वो सिखाया जो चाहा। इस आयत से वाज़े होता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तीन अजीम नेमतें अता हुईं। बादशाहत, बनी इसराइल की सल्तनत के हाकिम बनाए गए। हिकमत, अक्ल व फहम, अदल व इंसाफ में गैर मामूली बसीरत दी गई। इल्म, दीनी और दुनियावी उलूम और खास तौर पे अल्लाह की किताब जबूर का नज़ूल। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब जबूर नाज़िल की। ये किताब कुरान, इंजील और तौरात की तरह इल्हामी किताब थी। कुरान कहता है, और दाऊद को हमने जबूर अता की। जबूर में ज्यादातर अल्लाह की हमदो सना, जिक्र अस्कार, नसीहतें और दुआएं शामिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब जबूर की तलावत फरमाते तो आपकी आवाज इतनी दिलकश और पुरअसर होती कि पहाड़, दरख्त और परिंदे भी आपके साथ जिक्र करने लगते। कुरान में है, हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद के साथ मुज़क्कर किया कि वो तस्बीह करते रहें। ये यकीनन एक अजीम मौजज़ा था कि गैर ज़िशोर मखलूकात भी आपकी आवाज के ज़ेरे असर अल्लाह की तस्बीह में शरीक हो जाती। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा भी अता फरमाया कि आप लोहे को मोम की तरह नर्म कर सकते थे। कुरान कहता है, और हमने के लिए लोहा नरम कर दिया। आपने इस सलाहियत को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपने जंगी जरहें यानी आहनी कमीजें बनाई जो पहले भी नहीं थी। इसी तरह बनी इसराइल की फौज ज्यादा महफूज हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये भी मौजज़ा दिया गया कि आप परिंदों और जानवरों की ज़बान समझ सकते थे। वो सब आपके मुती और फर्मा बरदार थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में खास तौर पर नुमाया थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब रोज़ा

दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ देते, और सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। वो आधी रात सोते, तिहाई रात इबादत करते और फिर छठा हिस्सा दोबारा सोते। ये इबादत गुजारी आपकी अल्लाह ताला के साथ गहरी मोहब्बत को जाहिर करती है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत बढ़ने लगी तो तालूत के दिल में हसद पैदा हो गया। अगरचे वो पहले आपके मोहसिन थे, लेकिन बाद में बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कभी मुश्किलों पे भेजते और कभी साजिश करते। एक मौके पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत को कत्ल करने का मौका पाया, लेकिन आपने ऐसा ना किया और सिर्फ उनके कपड़े का एक टुकड़ा काट कर कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें कत्ल कर सकता था, मगर मेरा मिशन मोहब्बत है, नफरत नहीं। इस अजीम किरदार से हमें ये सबक मिलता है कि दुश्मनी और नफरत के मुकाबले में सब्र, माफी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। इन वाकयात से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि एक नबी होने के साथ साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन बादशाह और हाकिम भी थे। अल्लाह की दी हुई सलाहियतें हमेशा इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हसद और कीना इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे कि तालूत के साथ हुआ। लिसनर्स, यहां हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी विरासत उनकी नबुवत है। आप पे नाजिल होने वाली आसमानी किताब ज़बूर आज भी इल्हामी सहाइफ में शामिल है। उनकी जिंदगी कुरान में एक मुस्तकिल रहनुमाई का जरिया है, जहां आपको सब्र, शुक्र, इबादत और अदल की अलामत बताया गया। दुनिया भर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक आदिल बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। कुरान ने आपको खलीफा फिल अर्थ करार दिया, यानी जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा। कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद दिखाई गई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे पहुंच कर वो थोड़े ठटक गए और रुक के कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र का कुछ हिस्सा इनको अदा किया जाए। और एक बड़ी खूबसूरत मुमासलत है कि कुरान ने दो जगह पर अल्लाह ताला ने अंबिया के लिए खलीफा फिल अर्थ का लकब इस्तेमाल किया, एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ और दूसरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी औलादों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कुछ अनोखी वाबस्तगी महसूस हुई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसलों की हिकमत आज भी कानून और अदलिया के मैदान में मिसाल

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM।

0: only on FM 107. Dil Se Desi. Dil Se Desi.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: FM 107. Dil Se Desi.

अल्लाह के सिवा किसी से न डरें, उन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और जिसने जान फिशानी की अल्लाह की राह में? अल्लाह के नज़दीक तो ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह के हाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जानो माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनूदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहां उनके लिए पायदार ऐश के सामान है, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तुम में से जो उनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम अजीज़ो अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से अजीज सर हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता।

कुफ्र में मुब्तला हुए थे। खुदा की मार इन पर, ये कहां से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है, और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहक इबादत नहीं है, पाक है वो उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं।

الله وسيحلفون.